0: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
2: भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में हुए सभी मानकों पर खरी उतरी मिसाइल। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की गोवर्धन योजना को दी मंजूरी। गुवाहाटी से तेजपुर के बीच 4-लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। दिल्ली से हरिद्वार और उज्जैन से देवघर तक सड़कों पर दिख रहा है कांवड़ यात्रियों की आस्था के रंग। देवघर में श्रावणी मेले के पहले 7 दिनों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। भगवान भोलेनाथ के भक्तों में गजब का उत्साह। चंदौली में बच्चों को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकली महिलाएं। लद्दाख में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए सेना ने पहली लद्दाख महिला फुटब�ल प्रीमियर लीग का किया आयोजन। 8 टीमों में हुए मुकाबले में लद्दाख फुटबॉल स्कूल एंड एकेडमी बनी चैंपियन। यूरोप में बढ़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए लोग अपना रहे हैं अजब गजब तरीके। क्रोएशिया के सुपेटार में पानी में घुड़सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदलती जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग के रंग में पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से जिनका लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: बिहार में तेंदुए के साथ प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है हाल फिलहाल का है, नीट पेपर लीक के खिलाफ लोगों ने तेंदुए के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: पच्चीस जुलाई को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठनों ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद किया था। इस दौरान राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था। अब इसी विरोध प्रदर्शन से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में लोगों को भीड़ के बीच एक तेंदुए को ले जाते हुए देखा जा रहा है। एक एक्स्यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार प्रोटेस्ट में वाइल्ड कार्ड एंट्री। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बिहार में लोग जो हैं तेंदुए के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने वीडियो की जांच की और देखिए दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने इंटरनेट और बिहार के तमाम मीडिया आउटलेट्स को खंगाला, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। क्योंकि अगर नीट पेपर लीक में विरोध में तेंदुए के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर होती और हर मीडिया आउटलेट्स पर उपलब्ध जरूर होती। इसके बाद फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो के हर फ्रेम को बहुत गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान गया वीडियो में आ रही आवाजों पर। देखिए, जब हमने इसे गौर से सुना ये इशारा मिला कि इस तरह के जो शब्द हैं बिहार के लोग अपने भाषा के दौरान यूज करते हैं। इसके अलावा वीडियो में ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि शख्स जो है तेंदुए को अपने कंधे पर रखा हुआ है। कुछ लोग तेंदुए के पूंछ को पकड़े हुए हैं लेकिन इस दौरान तेंदुए के शरीर में कोई हरकत नहीं देखने को मिल रही है। हमें थोड़ा अटपटा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे तेंदुआ जिंदा नहीं है। आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं, अपने मोबाइल के कैमरों में वीडियो बनाने में मशगूल नजर आ रहे हैं। इस दौरान हमें कहीं पर भी पुलिस के जवान भी नहीं नजर आए, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन वीडियो होता तो वहां पर पुलिस के जवान भी जरूर तैनात होते, नारे जरूर सुनने को मिलते, लेकिन कहीं भी कुछ हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर उतारा। तो देखिए, पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर दावा सच है तो वायरल वीडियो बिहार के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से शेयर होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हम बिहार के एक न्यूज पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर पहुंचे। न्यूज आउटलेट ने यह वीडियो 30 मई को शेयर किया था, उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन इससे यह पक्का हो गया कि वीडियो पुराना है। लेकिन सर्च के दौरान हमें मई में YouTube और Facebook पर शेयर किया गया ये वीडियो मिला, जिसमें कहा गया था कि तेंदुए को बिहार के पूर्णिया में पकड़ा गया था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान 27 मई को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्णिया के टिक्कापट्टी पुलिस स्टेशन इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुए को मार डाला। यह जंगली जानवर 3 दिनों से गांव में घूम रहा था, खेतों को बर्बाद कर रहा था और मवेशियों पर हमला कर रहा था। इसने ग्रामीणों पर भी हमला किया जिससे 3 लोग घायल हो गए। 28 मई को छपी एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक तेंदुए ने 2 बछड़ों और 1 बकरी को मार डाला और 3 ग्रामीणों को घायल भी कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उसे घेर लिया और काफी मशक्कत के बाद उसे मार डाला। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने तेंदुए का शव बरामद किया। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। दरअसल वायरल हो रहा वीडियो मई का है, जब बिहार के पूर्णिया में ग्रामीणों ने पीट पीट कर एक तेंदुए की जान ले ली थी। इसका छात्रों के विरोध प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: क्या जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन का समर्थन करने के बाद अब एक्टर ऋतिक रोशन ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ की है? वायरल हो रहे दावे में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है, लेकिन इस दावे की कितनी सच्चाई है? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।

0: कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की मांगे मान लेने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोस और दावे सोशल मीडिया पर अब भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक दावा इन दिनों सोशल मीडिया के बाजार की सुर्खियों में है। इस दावे को लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और डांसर ऋतिक रोशन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फोटो में ऋतिक रोशन की तस्वीर के साथ एक बयान छपा है। इस बयान में लिखा है, छात्रों को लैपटॉप दिए, यूपी को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव के दौर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय नेता और समर्थक इस वायरल दावे को बढ़ चढ़ कर शेयर कर रहे हैं। वायरल दावे को अखिलेश यादव के पुराने विकास कार्यों और लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ के रूप में पेश किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो इस दावे का हवाला देकर एक्टर ऋतिक रोशन को निशाने पर ले रहे हैं। लोग इस बयान पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं और ऋतिक रोशन पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा और सैफई महोत्सव फिर से शुरू होगा तो गरीब की रोजी रोटी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई न्यूज पोर्टल्स के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस तरह की खबर शेयर की जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स भी इस दावे को बिना किसी पड़ताल के शेयर कर रहे हैं।
1: देखिए, जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनकी तमाम मांगों को मानते हुए केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया है। उनकी जगह प्रहलाद जोशी की ताजपोशी भी हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया में सीजेपी प्रदर्शन से जुड़े वीडियोस और दावों की बाढ़ सी आई हुई है। उन्हीं में से एक ये दावा भी किया जा रहा है। देखिए, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दे रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर कर रहे थे, उस दौरान एक्टर ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी के जरिए इनका समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था कि फिल्म सुपर 30 की शूटिंग के दौरान उन्होंने छात्रों के दर्द को महसूस किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक शिक्षक का किरदार निभाया था। ऐसे में पहली ही नजर में यह मामला जो है सही नजर आता है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और सीजेपी का छात्र आंदोलन भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में माहौल में अगर ऋतिक रोशन जैसे बड़े एक्टर ने सचमुच अखिलेश यादव के बारे में ऐसा कोई बयान दिया होता तो उसके बारे में सभी जगह ये खबरें जरूर छपी होती, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने तहकीकात शुरू की, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके। लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर उतारा तो पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि देखिए, अगर दावा सच है तो मुख्यधारा की मीडिया एजेंसियों या चैनल्स पर यह जानकारी हमें उपलब्ध क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं ऋतिक रोशन के नाम से गलत बेबुनियाद जानकारी शेयर तो नहीं की जा रही। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
0: अपने सवालों के आधार पर हमने वायरल हो रहे दावे की पड़ताल शुरू की। हमने सबसे पहले वायरल हो रहे दावे को अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तलाश किया, लेकिन हमें इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली। फिर हमारी टीम ने ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया, लेकिन वहां भी हमें इस तरह का कोई बयान या जानकारी नहीं मिली। हालांकि हमें इस दौरान साल 2015 का एक वीडियो जरूर मिला जब ऋतिक रोशन ने सैफई महोत्सव में शिरकत की थी। वो इस वीडियो में स्टेज पर डांस करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इस समारोह में यूपी के तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मौजूद थी। इसके अलावा 12 नवंबर 2016 को पब्लिश हुई एक न्यूज रिपोर्ट भी हमें मिली जिसमें ऋतिक ने अखिलेश की तारीफ की थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में ऋतिक के शिरकत करने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव उनके अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी चाहेंगे ऋतिक वहां जरूर जाएंगे। अब ये साफ हो चुका था कि ऋतिक रोशन के नाम से किया जा रहा वायरल दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। ऋतिक ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है, लिहाजा फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में यह दावा पूरी तरह गलत साबित हुआ। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का, यानी अब देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: बाप बाहर का खाना खाने की जिद करने वाली बच्ची को समझाने के लिए माँ ने ऐसा अनोखा प्रैंक किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग इसे जमकर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटी सी बच्ची बेड पर आराम से लेटी हुई दिखाई देती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जिस पर पेट के अंदर की तस्वीर दिखाई देती है। स्क्रीन पर एक डरावना सा कन खजूरा जैसा कीड़ा नजर आता है और ये देखकर ऐसा महसूस होता है मानो सच में बच्ची के पेट में कोई कीड़ा हो और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हों। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पूरा राज खुल जाता है। असल में ये कोई मेडिकल जांच नहीं बल्कि माँ का एक मजेदार प्रैंक होता है। बच्ची को बाहर का खाना ज्यादा पसंद है और शायद इसी आदत को छुड़ाने के लिए उसकी माँ ने ये अनोखा आइडिया अपनाया। उसने लैपटॉप पर पहले से एक फेक अल्ट्रासाउंड वीडियो चला रखा था। वहीं स्कैनिंग मशीन की जगह कंप्यूटर के माउस का इस्तेमाल किया गया। माँ माउस को बच्ची के पेट पर ऐसे घुमा रही थी जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते समय मशीन चलाते हैं। वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान तो बच्ची के चेहरे पर जाता है। वो पूरे समय बेहद गंभीर नजर आती है और स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को बड़े ध्यान से देखती रहती है। ऐसा लगता है कि उसे सचमुच यकीन हो गया है कि बाहर का खाना खाने की वजह से उसके पेट में कोई कीड़ा पहुंच गया है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, लेकिन इसे देखकर कई लोगों ने कहा कि बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने के लिए कभी कभार ऐसे मजेदार तरीके भी काम आ सकते हैं।
3: अगर मम्मी कभी कहीं चली गई और वापस कभी आएगी नहीं तो आप क्या करोगे?
4: मैं
3: चॉकलेट्स खाऊंगी।
2: ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देखने में ये एक साधारण माँ बेटे की बातचीत लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में ये बातचीत इतनी भावुक हो जाती है कि इंटरनेट पर इसके बारे में खूब चर्चा शुरू हो गई है। वीडियो की शुरुआत एक बेहद सामान्य सवाल से होती है। माँ अपने छोटे से बेटे से पूछती है, अगर मैं कहीं चली जाऊँ और फिर कभी वापस ना आऊँ तो तुम क्या करोगे? बच्चा बिना ज्यादा सोचे मासूमियत से जवाब देता है कि वो अपनी मम्मी की तस्वीर को प्यार करेगा। उसकी ये बात सुनकर पहले तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि जवाब बेहद भोला और प्यारा लगता है।
3: तो फिर क्या करेगा?
4: मैं
3: कभी नहीं आऊंगी।
4: मैं आपको फोटो से प्यार करूंगी।
3: तो रो क्यों रहा है?
2: लेकिन अगले ही पल बच्चे के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे जैसे उसे माँ के सवाल का मतलब समझ आने लगता है, उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो इमोशनल होकर रोने लगता है। उसकी मासूमियत और माँ को खो देने का डर वीडियो देखने वालों का भी दिल छू लेता है। जब माँ उससे पूछती है कि वो रो क्यों रहा है, तब बच्चा कांपती हुई आवाज में सवाल करता है, क्या आप मर जाओगे? ये सुनकर साफ महसूस होता है कि बच्चे ने माँ के सवाल को हमेशा के लिए बिछड़ जाने से जोड़ लिया है। उसकी आंखों में चिंता और आवाज में घबराहट साफ झलकती है। वो आगे कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि उसकी मम्मी जल्द वापस आ जाएं। बच्चे की ये बात उसकी माँ के प्रति गहरे लगाव और प्यार को दर्शाती है। माँ को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसका पूछा गया सवाल बच्चे के मन पर असर डाल चुका है। वो तुरंत उसे प्यार से गले लगाती है और समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
3: तो आप गंदी गंदी बातें करोगे? आप किसी को मारोगे? आप बैड बॉय बनोगे? तो आप क्या करोगे? तो फिर क्या करेगा?
2: माँ का ये अंदाज जिसमें थोड़ी सख्ती और बहुत सारा प्यार था, सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इस मजेदार बातचीत पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं।
5: पैन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है?
2: लोग इस पल को हर भारतीय घर की कहानी बता रहे हैं।
5: पैन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है।
2: दरअसल परीक्षा देने जा रही बेटी को माँ की दी गई ये प्यारी सी नसीहत लोगों को खूब पसंद आ रही है। माँ की कही एक लाइन ने तो परीक्षा के समय की भावनाओं को बखूबी बयां भी कर दिया है।
5: पेन ले लिए, कार्डबोर्ड रख लिया, पानी की बोतल सब रख ली, बस अब इज्जत रख लेना, ठीक है। चलो।
2: असम में इन दिनों लगातार भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कें पानी से भर गई हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ऐसे मुश्किल मौसम में जहां ज्यादातर लोग घरों में रहने की कोशिश करते हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी घंटों सड़क पर खड़े होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी बीच गुवाहाटी में एक शख्स ने ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। गुवाहाटी के रहने वाले लक्ष्मण गोस्वामी ने बारिश में ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की मदद करने का फैसला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज बारिश के बीच एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों के बीचों बीच खड़े होकर वाहनों को नियंत्रित कर रहा था। लगातार हो रही बारिश के बावजूद वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तभी लक्ष्मण गोस्वामी वहां पहुंचे, उनके हाथ में एक रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट थी जिसे उन्होंने खास तौर पर उस पुलिसकर्मी के लिए खरीदा था। रेनकोट देने से पहले लक्ष्मण ने पुलिसकर्मी से कहा कि इस पर पुलिस लिखा हुआ है ताकि ड्यूटी के दौरान कोई भी व्यक्ति उन्हें आम नागरिक न समझे। ये छोटी सी बात इस बात को भी दिखाती है कि उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि पुलिसकर्मी की पहचान और जिम्मेदारी का भी पूरा ख्याल रखा। पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए ये उपहार स्वीकार किया, उनके चेहरे पर खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने तुरंत वही रेनकोट और वाटरप्रूफ पैंट पहनी, जिसके बाद बिना समय गवाए वो फिर से अपनी जगह पर लौटे और पहले की तरह ट्रैफिक संभालने लगे। यूजर्स इस वीडियो पर अपना प्यार खूब लुटा रहे हैं। जिंदगी से उबने से तो बेहतर है कि बादलों के बीच कुछ रोमांचक किया जाए, ये कहना है 97 साल की एक ऐसी जाबाज दादी का जिन्होंने अपनी उम्र और सेहत की हर रुकावट को हवा में ही उड़ा दिया। ब्रिटेन की रहने वाली बेटी ब्रोमेज ने स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी को मात देने के ठीक एक साल बाद उड़ते हुए प्लेन के पंख पर खड़े होकर अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चेल्टनहैम की रहने वाली 97 साल की बेटी ब्रोमेज ने साइरेंस्टर के RFC रेंटकॉम एयरफील्ड में ये साहसिक कारनामा पूरा किया। जब उन्होंने ये उड़ान भरी तब उनकी सटीक आयु
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: बात करेंगे श्रावण मास के इस पवित्र महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर शिवालयों की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इनमें कई शिवभक्त कांवड़िए अपनी अनोखी कांवड़ के लिए चर्चा में लगातार बने हुए। हरिद्वार से लेकर मेरठ और सहारनपुर तक, बागपत से लेकर मुजफ्फरनगर तक एक से बढ़कर एक कांवड़ देखने को मिल रहे हैं।
2: सावन का महीना और सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ आया है। जहां देखो जिधर देखो इस वक्त रंग बिरंगी और अनोखी कांवड़ ही नजर आ रही हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में तो इन दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर अलग ही आस्था और भक्ति के रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी गवाही मेरठ से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जिनमें अलग अलग आकार और थीम पर आधारित कांवड़ लेकर ये शिव भक्त निकले हुए हैं। लग्जरी कार की रेप्लिका पर कांवड़ सजा कर निकला है, कोई सैन्य शक्ति को समर्पित कांवड़ लेकर निकला है और कोई शिव के औघड़ दानी स्वरूप की कांवड़ लेकर निकला हुआ है। यानी जिसको शिव के जिस स्वरूप में आस्था नजर आई वो उसे कांवड़ में ढालकर निकल पड़ा आस्था के पथ परीक्षा देने के लिए।
3: बजरंगबली जी को हमने ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, गणपति बापा को साइड पे बैठाया हुआ है, और भी हमने महाकाल की नंबर प्लेट लगवाई हुई है नीचे, और भी जब रात को चलते तो भोले बाबा की जटाओं में से 20-25 फुट ऊपर गंगा जी विराजमान होती है।
4: अच्छा जी, तो कितने दिन में तैयार हुई है बनकर?
3: हमारी 2-3 महीने के अंदर तैयार हुई।
4: तो खुद ही करिए या किसे करवाई?
3: खुद ही करवाई
4: अपने हाथों से
3: जी।
5: बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, जहाँ पे भी हम रुक रहे हैं भीड़ वहाँ से टूट नहीं रही है, उस देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
2: देवाधिदेव महादेव के कुछ ऐसे ही अनोखे और अलबेले भक्त सहारनपुर के कांवड़ रूट पर भी देखने को मिले। यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि कई ऐसी कांवड़ दिखी जिन्हें आर्टिफिशियल फूलों और लाइट से सजाया गया है। अलग अलग रंगों लाइटिंग और धार्मिक स्वरूपों से सजी ये कांवड़ सहारनपुर की सड़कों पर गुजरते हुए अलग ही नजारा पेश कर रही है। लोग अपने मोबाइल से इन खूबसूरत कांवड़ की वीडियो और फोटोज खींच रहे हैं। अनोखी कांवड़ की तरह ही कुछ ऐसे अनोखे कांवड़ यात्री भी हैं, जो अपनी कठिन कांवड़ यात्रा के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन्हीं में से एक है मंजीत दहिया, जो हरिद्वार से हरियाणा के नाहरी तक करीब 200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान रोजाना करीब 3500 सपाटे मारकर यात्रा कर रहे हैं। मंजीत बताते हैं कि वो ये कांवड़ यात्रा किसी खास मनोकामना के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वो युवाओं को फिटनेस का संदेश देने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हैं।
6: 5 कदम भी 6 भी ऐसे चल के मैं एक अपना सपाटा लगाता हूँ।
7: कितने सपाटे आप लगाते हैं? वैसे बता रहे थे
6: पर डे के हो जाते हैं, 3000 करोड़ हो जाते हैं पर डे के।
7: क्या है इसके पीछे?
6: इसके पीछे यही है भाई, मैं तो युवा के लिए संदेश दे रहा हूँ, भाई फिट रहो, अगर शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ है, ना तो कुछ भी नहीं है।
7: कहाँ से आप अब तक कितने दूर तक का सफर तय कर चुके
6: हैं? हरिद्वार से यहाँ तक देख लो अब कितना हो गया होगा, ये करीबन ये मान के चलो 65-70 के बीच में अभी मेरा गांव रह रहा है।
7: ये सपाटे वाला आइडिया कैसे आया?
6: ये बस मेरे को पिछले साल ही होगा था, मैं अगली बार लेके आऊंगा ऐसे ही लेके आऊंगा, युवा के लिए बढ़िया सोच।
2: शहर शहर निकाली जा रही कांवड़ यात्रा का एक रंग ये भी है कि कई लोग इन कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। कोई खाने पीने का लंगर लगाकर सेवा कर रहा है, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए सेवा में जुटा है। सेवा के इस काम में कोई भी पीछे नहीं है, क्या आम और क्या खास, हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही कांवड़ियों की सेवा में जुटा हुआ है। बागपत के दाहा गांव में एक ऐसा कांवड़ शिविर भी है जहां न चंदा लिया जाता है, न किसी से मदद मांगी जाती है और न ही सेवा के नाम पर कोई दिखावा होता है। यहां अगर कुछ है तो बस श्रद्धा, सेवा और परिवार का समर्पण। 31 साल तक वर्दी पहनकर देश की सेवा करने वाले एक पूर्व फौजी राजकुमार राणा अब अपनी पेंशन से भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं।
8: पहले देश की सेवा करी, अभी मैं भोलों की सेवा करना चाहूँ और अपने पैसे से करता हूँ, ना किसी से कोई दान दक्षिणा किसी से लेता ना मांगता, और घर का ही यूज करता हूँ, आटा बेसन खुद का घर का बनाया हुआ करता हूँ, ना मुझे किसी से लोभ लालच है। मेरे दिल में आई भोलों की सेवा करनी, कि सबसे बड़ा जो दान है भूखे को खाना खिलाना है, जो बेचारे इतनी दूर से कावड़ लेकर आते हैं, इन्हीं के लिए मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँ।
9: तंदूरी रोटी बनाते हैं, दो सब्जी बनाते हैं, कभी मटर पनीर आज ही खुद ही बनाते हैं। नहीं नहीं कोई नहीं है,
10: क्यों आया ये मन में?
9: हाँ, ये मन में आज ही उनकी सेवा करें, पेंशन से ही खुली है, बोले एक साल की पेंशन से मैं दान करूँ।
2: सावन के इस महीने की एक अलग ही छटा इन दिनों बिखरी हुई है। शिवालयों से लेकर इन कांवड़ यात्राओं तक शिव भक्ति के कई रंग नजर आ रहे हैं, जो शिव के प्रति इनके अटूट समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी, सहारनपुर से राहुल कुमार, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
11: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
13: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मेहरबान, दिल्ली NCR में अगले 2-3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में नजर आ रहे भक्ति और आस्था के अनूठे रंग, उज्जैन, काशी, हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल की 4000 किलोमीटर मारक क्षमता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के नाम शानदार उपलब्धि, साथ ही एस्ट्रोनॉट्स जेसिका मीर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर किया स्पेस वॉक। चाइना के सिचुआन प्रांत में मशहूर मशाल उत्सव की रौनक देखने को मिली, बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना, बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते हुए दिखे लोग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
14: आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया, स्वयं गीले में सोई तुम्हें सूखे में सुलाया, स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया वो माँ वहां रहती है न जाने क्या क्या विचार करती होगी, हमारी बिटिया हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा खाएगा हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया इस धरती पर रहकर अपने माता अपने पिता अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है, बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र जागने के लिए, पहला सूत्र संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवाओ। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक और भगवान को प्रभु को मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना, उनको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर की दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, एक घंटा अपने परिवार के लिए निकालते हो। 8 घंटा तुम सोते हो, एक घंटा परिवार के लिए, एक घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का। ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है, हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते। पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया, हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं जागेंगे, क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है। आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता? कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो। संकट मोचन भी तो है, घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का, उनके चरणों

चक्कर में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, जिंदगी जिए जा रहे, पर कभी विचार कर मुड़कर देखना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए रोज सोने के पहले 5 मिनट विचार करो, आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस पर क्रोध किया, किसको प्रेम बांटा और क्या सुधार करना। 5 मिनट आत्म मंथन करो, बाकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हारे लिए अपने सरकार से प्रार्थना करें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और केवल प्रार्थना इसलिए करेंगे कि आपके जीवन में संस्कृति उत्थान उन्नति। हम तो यहाँ आकर के कह भी रहे थे, हमने पूनम बहन को भी कहा कि यहाँ आकर हम अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि दुबई यूएई इसकी खूब उन्नति हो गई, यहाँ रहने वाले लोगों का खूब भला हो गए, सबके जीवन में भक्ति जागे। भैया हम आपको भगाने नहीं, जगाने आए, इसलिए भागना नहीं है। क्या करना है, जोर से तो बोलो, क्या करना है? तो आज का सूत्र किस किस को याद रहेगा, हमें भागना नहीं है, क्या करना है, जागना है। और जागना कैसा, कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए है? या कुछ दिनों के लिए पक्का, पर इतने ज्यादा भी मत जाग जाना कि फिर बोझ हो ही ना। जागना तो है, इतना जागना है जिसमें हमारा आपका आत्म कल्याण हो सके। क्या हो सके, अरे जोर से बोलो, आत्म कल्याण। तो अब जागने के सूत्र कितने हैं, 3। कौन कौन? ध्यान, ज्ञान, स्वयं के अहमता का दान। फिर से सुनो, ध्यान, ज्ञान और स्वयं की अहमता का दान। अहम मतलब ईगो, दुनिया में जितनी भी लड़ाई है ईगो की लड़ाई है, सब ईगो में मरे जा रहे हैं। ईगो हर्ट होता है तुरंत, अरे मुझे ऐसा कहा। अभी कोई बहुत फेमस आदमी आ जाए, उसे बैठने ना पूछो, तुरंत उसकी पूरी अध्यात्म पूरी आस्था बिखर जाएगी। हमें नहीं पूछा, हमें अरे हो गए बागे सो नक्कटा ठटरी के बरे। पूरी दुनिया में लड़ाई अभिमान की है। और याद रखना, दुबई में रहने वाले प्रियजनों, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान से नहीं, भगवान से भरना है, इसलिए अहमता में नहीं। तो 3 सूत्र हैं जागने के, कौन कौन बोलो बोलो, ध्यान, ज्ञान, अहमता का दान। फिर से बोलो, अहमता का। आज से ध्यान कौन कौन करेगा, प्रतिदिन 5 मिनट, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, ज्ञान अर्जित कौन कौन करेगा, अपनी संस्कृति का, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। और तीसरा, अहम को शून्य कौन कौन करके अपने जीवन में शांति पाएगा, पाने की कोशिश करेगा, पक्का। देखो हमारा संकल्प स्पष्ट है, हम भारत में तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपकी अंग्रेजी में कहें तो आई एम बिजी मैन, लेकिन हम भारत से बाहर इसलिए निकले हैं, अब हम भारत के अन्य साथ साथ जितने भी देशों में जा पाएंगे वहां के लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ शांति का सूत्र देंगे। कोई खर्चा नहीं और कोई पर्चा नहीं, केवल हनुमान जी की चर्चा।

हमारा क्या कहना दुनिया वालों। तो एक काम करना है, पूछो क्या। अरे जोर से तो पूछो।

देखो जब विपत्ति आएगी, राम हो कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध। जब संकट आएगा आपके कर्म और आपका ज्ञान और आपका विवेक ही आपको बचाएगा, इसलिए दोनों हाथ उठा करके

इसलिए भैया हमारी बात को नोट कर लो, पूछो क्या। मन मेरा कहना, आप लोग भी तो गाओ ना। मन मेरा कहना नहीं तो क्यों माटी का खिलो। किसमें मिल जाएगा बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो। अरे किसमें मिल जाएगा,

0: भैया हमारी बात को सुन लो, कान खोलकर, भागना सरल है जागना कठिन है। क्या कठिन है? अरे जोर से तो बोलो। तो कौन कौन जागना चाहता है? अच्छा हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। कैसे जागना चाहते, आंख खुलने वाला या अंतर्मन से? अंतर्मन से जागने का उपाय क्या है बताओ? बस और क्या उपाय है अंतर्मन से जागने का? एक ध्यान। क्या? अरे जोर से बोलो, ध्यान। जागने का पहला उपाय है, दूसरा उपाय है ज्ञान। दूसरा उपाय क्या है? ज्ञान का मतलब जान लेना, ध्यान का मतलब देख लेना। तो पहला उपाय है ध्यान, दूसरा उपाय है ज्ञान, और तीसरा उपाय अपने आप का दान।
1: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मेहरबान, दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में नजर आ रहे भक्ति और आस्था के अनूठे रंग, उज्जैन काशी हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल की 4000 किलोमीटर मारक क्षमता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के नाम पर शानदार उपलब्धि दर्ज की गई, साथ ही एस्ट्रोनॉट्स जेसिका मीर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक किया। चाइना के सिचुआन प्रांत में मशहूर मशाल उत्सव की रौनक, बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना, बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते दिखे लोग।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: चाइना के सिचुआन प्रांत में पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है मशहूर टॉर्च फेस्टिवल, इसमें बॉनफायर, लोक नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रमों का लोग जमकर ले रहे हैं आनंद। 19 जुलाई से शुरू हुआ ये उत्सव पूरे त्योहार में कई सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। पर्यटकों को ये समुदाय की अनोखी परंपरा को करीब से देखने का मौका मिला। चाइना की प्राचीन अग्नि संस्कृति को समझ रहे हैं लोग। दिन के समय घुड़दौड़ और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों का भी लिया जा रहा है आनंद। इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। इस साल 17 शहरों में 98 सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित। तो वहीं ठंडे मौसम और रंगारंग आयोजनों की वजह से यहां तेजी से बढ़ रहा है पर्यटन। क्रोएशिया में गर्मी से बचने के लिए समुद्र के अंदर घुड़सवारी कर रहे हैं पर्यटक। ब्रैग द्वीप के सुपेतोर में लोगों ने पानी में घोड़ों के साथ राइडिंग का मजा लिया। भीषण गर्मी के बीच बाल्कन देशों में लोगों का हाल हुआ बेहाल। क्रोएशिया में समुद्र में घुड़सवारी का आइडिया पर्यटकों को आ रहा है खूब पसंद। पश्चिमी यूरोप में जुलाई के महीने में पड़ी रिकॉर्ड गर्मी। मौसम के आंकड़ों के मुताबिक तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। चाइना के चेंगाई प्रांत के जलाशय की खूबसूरत तस्वीरें आई हैं सामने। पहाड़ों के बीच बना ये शांत झील जैसा नजारा पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। कनबुला यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क को 2025 में विश्व धरोहर जियो पार्क का मिला है दर्जा। यहां पर 162 से ज्यादा भूविज्ञान से जुड़े खास स्थल मौजूद हैं। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के नाम पर शानदार उपलब्धि। अपनी साथी जेसिका मीर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर किया स्पेस वॉक। अंतरिक्ष यात्रियों ने नए सोलर पैनल लगाने के लिए स्टेशन की बाहरी सतह तैयार की। ISS को मिलेगी ज्यादा ऊर्जा। चाइना में सबसे ऊंचाई वाले इलाके की हाई स्पीड रेल का ट्रायल हुआ शुरू। इससे हार्बिन से चियून का सफर 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। 318 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से बढ़ेगी रफ्तार। ये चाइना के सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों से होकर गुजरेगी। इस रेलवे लाइन से हार्बिन यिचुन की कनेक्टिविटी होगी बेहतर। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी नई हाई स्पीड ट्रेन। चाइना में ठंडी जगहें, रोबोट और ड्रोन शो विदेशी पर्यटकों को आ रहे हैं खूब पसंद। लोग हाईटेक तकनीक के साथ घूमने का ले रहे हैं नया अनुभव। साल 2026 के पहले 6 महीनों में चाइना में करीब 2.29 करोड़ विदेशी पर्यटक पहुंचे। ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 20% ज्यादा है। चाइना के कई पर्यटन स्थलों पर अब रोबोट बना रहे हैं कॉफी और पैनकेक। वहीं AI गाइडेड अलग अलग भाषाओं में पर्यटकों की कर रहे हैं मदद। चाइना की तेज रफ्तार ट्रेनें और ड्रोन लाइट शो भी पर्यटकों को कर रहे हैं खूब आकर्षित। इससे यात्रा बन रही है आसान और यादगार। चाइना में बेहतर पर्यटन सुविधाओं से बढ़ रही है विदेशी पर्यटकों की संख्या। अब लोग ड्रोन डिलीवरी और सेल्फ ड्राइविंग जैसी नई तकनीक भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। चाइना की रोबोट बनाने वाली कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में। कंपनी 10 अगस्त से अपना खोलेगी IPO। यूनिट्री रोबोटिक्स दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने वाली कंपनियों में शामिल। साल 2025 में कंपनी ने 5,500 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट बेचकर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया। कंपनी करीब 4 करोड़ से ज्यादा नए शेयर जारी करेगी। इस IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल रोबोट बनाने और कारोबार को बढ़ाने में किया जाएगा। चाइना के वुहान शहर में 5 दिन का फिल्म कल्चर कार्निवल हुआ शुरू। यहाँ पर नई फिल्मों की प्रीमियर, फिल्म टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। इस फिल्म कार्निवल का मकसद फिल्म इंडस्ट्री, पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देना। मेले में पारंपरिक कला, स्थानीय खाने और मनोरंजन का भी खास इंतजाम। चाइना के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में शेरनी नवजात बाघ के शावक की देखभाल करती हुई नजर आई। तीनों टाइगर शावक पूरी तरह से बताए गए हैं स्वस्थ। शेरनी ने दिखाया मां जैसा प्यार, टाइगर शावक को किया दुलार। लोगों के लिए चर्चा का विषय बना यह अनोखा रिश्ता। पार्क में अफ्रीकी शेर और साइबेरियन बाघ पिछले 6 से 7 साल से रह रहे हैं साथ। बड़े होने पर टाइगर शावकों को भी इसी साझा बाड़े में रखा जाएगा। चाइना के इनर मंगोलिया में 4 साल बाद फिर दिखे रेड क्राउन क्रेन पक्षी, एक जोड़े के साथ 2 बच्चे भी आए नजर। हॉर्के नेशनल नेचर रिजर्व में दुर्लभ पक्षियों का देखा गया परिवार, इलाके में जैव विविधता लौटने के संकेत। संतानवे साल की ब्रिटिश महिला ने बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर का रिकॉर्ड किया अपने नाम। संतानवे साल की उम्र में ब्रोमेज बेटी ने 6ठी बार विमान के पंखे पर खड़े होकर विंग वॉक किया। उन्होंने अस्पताल की स्ट्रोक यूनिट के लिए फंड जुटाने के लिए किया हवाई करतब। बेटी ब्रोमेज ने 2025 में स्ट्रोक के बाद भी अपना हौसला कायम रखा। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जुनून हो तो कुछ भी संभव है। चाइना के चोंगकिंग में सड़कों पर मिस्ट कूलिंग फैन लगाए गए। फैन से निकल रही ठंडी हवा और पानी के फुहार से लोगों को गर्मी से मिली राहत। पैदल सड़क पर लगे इन फैंस को देखने के लिए रुक रहे हैं लोग। कई लोगों ने ठंडी फुहार का आनंद लिया और तस्वीरें भी खींची। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बोस्निया की वेस्ट्रेनिका गुफा में पहुंच रहे हैं पर्यटक। पूरे साल 11 डिग्री रहता है इस गुफा का तापमान। 40 डिग्री तापमान के बीच बोस्निया की ठंडी गुफा बनी लोगों का सहारा। 7.5 किलोमीटर लंबी इस गुफा को लोगों ने बताया नेचुरल एसी। चाइना के चोंगचिंग में चट्टानों के बीच बनी अनोखी नहर बनी पर्यटकों की पहली पसंद। 20 साल पहले गांव वालों ने हथौड़े और औजारों से पहाड़ को काट कर बनाई थी ये नहर। खड़ी चट्टानों पर बहती है साफ पानी की नहर, अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा है विकसित। चाइना की इस नहर को लोग रेड फ्लैग कैनाल से जोड़कर देख रहे हैं। पहले सिंचाई और पानी के लिए बनी हुई नहर अब घूमने की नई जगह बन गई है। दक्षिण कोरिया में किसानों को हीट वेव से बचाने के लिए आसमान में उतरे ड्रोन। एंडोंग में ड्रोन लाउडस्पीकर से किसानों को दे रहे हैं ठंडा रहने की सलाह। एंडोंग में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच खेतों में ड्रोन से निगरानी। खेतों में रियल टाइम तापमान माप रहे स्मार्ट ड्रोन। बुजुर्ग किसानों की सुरक्षा के लिए एआई ड्रोन की तैनाती। किसानों से पानी पीने, आराम करने और धूप से बचने की सलाह। पांच किलोमीटर दूर तक हीट वेव को लेकर चेतावनी पहुंचा रहे हैं ड्रोन। जलवायु संकट की वजह से रिकॉर्ड गर्मी से फसल भी असर पड़ रही है। दक्षिण कोरिया में भीषण गर्मी से किसानों को अब नया साथी बने ड्रोन। बढ़ते तापमान के बीच टेक्नोलॉजी बनी किसानों की ढाल। दिल्ली में दिव्यांग नितिन ने पूरी की कांवड़ यात्रा, पिता के साथ कांवड़ लेकर पहुंचे नितिन, महादेव के प्रति दिखी अनूठी आस्था। सात साल के नितिन का दूसरा कांवड़ का सफर, पैरों में परेशानी के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भक्ति और हिम्मत की मिसाल बनी कांवड़ यात्रा। कांवड़ियों की सेवा में जुटे लोग, बांटे गए पाइन एप्पल जूस, चाय और आलू चाट, उम्र और मुश्किलें भी नहीं रोक पाई भोले के भक्तों के कदम। 70 साल की आशा देवी की अनोखी आस्था देखने को मिली, 30 साल से अकेले आ रही हैं हरिद्वार से गंगाजल, पति की मृत्यु के बाद शुरू की थी कांवड़ यात्रा। सावन में शिव भक्ति का अद्भुत रंग, हर उम्र के कांवड़िए पहुंच रहे हैं महादेव के दरबार, कांवड़ियों में दिखी आस्था की अलग अलग तस्वीरें। मुंगेर में कच्ची कांवड़िया पथ पर आस्था का अनोखा नजारा, 80 किलो की मां तारा प्रतिमा लेकर निकले शिव भक्त, सावन में भक्ति के रंग दिखे। कोलकाता के 15 शिव भक्तों का जत्था बना आकर्षण का केंद्र, प्रतिमा को कांवड़ में सजाकर जा रहे हैं बाबा धाम, विशाल गणेश कांवड़ ने भी खींचा ध्यान। आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम की यात्रा, शिव भक्त रमेश ने मन्नत पूरी होने तक जारी रखने का लिया संकल्प। भगवान शिव के रूप में सत्यपाल बने आकर्षण का केंद्र, शांति और पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। हर कदम पर दिख रही है आस्था की अनोखी तस्वीर, बोलबम के जयकारों से गूंजा मार्ग, अनोखे अंदाज में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं भक्त। सहारनपुर के सोरना गांव का कांवड़ मेला बना श्रद्धालुओं की पहली पसंद, उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हरिद्वार से लौटते कांवड़ियों का मेले में पड़ाव, सुबह से रात तक जुटती है भारी भीड़, चारों तरफ अद्भुत नजारा। झूलों, खिलौनों, खाने पीने की चीजों ने बढ़ाई रौनक, रंग बिरंगी रोशनी से सजा सोरना कांवड़ मेला, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। 20 साल पुराना सोरना कांवड़ मेला बना शहर की पहचान, आस्था और परंपरा का संगम। कांवड़ियों के विश्राम और अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया, अखंड भंडारी की परंपरा से जुड़ी है मान्यता, दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: क्या राहु चंद्रमा के साथ होने पर मानसिक बीमारियां देता है? क्या राहु मंगल के साथ होने पर दुर्घटना करवाता है? क्या राहु और बृहस्पति का संबंध चरित्र को, स्वभाव को कमजोर करता है? राहु का अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध क्या देता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों के बारे में। सीढ़ियों का आपके भाग्य से क्या संबंध है, घर की सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए और सीढ़ियों को बनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के नजरिए से सीढ़ियों के बारे में। वास्तु शास्त्र में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये सीढ़ियां आपके घर में कहीं भी हों, ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर हैं तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और सीढ़ियां अगर घर के अंदर हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे देखिए, सीढ़ियों का मतलब होता है उतार चढ़ाव, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। अगर आपने गलत तरीके से घर में सीढ़ियां बनाई हैं तो अचानक आपके जीवन में समस्या आ सकती है। इनके कारण बिना वजह के राहु और केतु आपके जीवन में प्रभावित हो जाते हैं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है वहां पर बाथरूम, स्टोर
या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे जो जगह है, भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा। सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं, वहां पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके पढ़ने लिखने की वस्तुएं रख सकते हैं, पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में
0: हम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में चाइना के सिचुआन प्रांत में मशहूर मशाल उत्सव की रौनक देखने को मिली। बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना, बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते हुए दिखे लोग।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: राहु जो एक छाया ग्रह माना जाता है, एक तीव्र ग्रह है, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि राहु का अन्य ग्रहों के साथ किस तरीके से संबंध होता है। अगर कुंडली में राहु का किसी और ग्रह के साथ कंजंक्शन होता है तो इसका आपके जीवन पर किस तरीके से असर पड़ता है, इसे डीकोड करने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र आखिर क्या है।
1: अगर कुंडली में राहु की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसकी वजह से अपयश मिल सकता है या मिल रहा है, तो नियमित रूप से अपने गले में तुलसी की माला धारण करिएगा। तुलसी का सेवन करने से, तुलसी के संपर्क में रहने से राहु की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि राहु का बाकी ग्रहों के साथ किस तरीके से संबंध होता है। और इसी कड़ी में सबसे पहले पंडित जी बात कर लेते हैं राहु और सूर्य के कंजंक्शन के बारे में। अगर सूर्य और राहु एक साथ किसी घर में जाकर बैठ जाते हैं तो जीवन पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि राहु जब अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, राहु और केतु की दृष्टि

0: नहीं होती तो राहु और केतु दृष्टि से संबंध नहीं बनाते। राहु के संबंध का मतलब है कंजंक्शन, यानी राहु और वो ग्रह एक साथ बैठे हुए हों। अगर कुंडली में राहु और सूर्य का संबंध है तो क्या होता है? देखिए, राहु और सूर्य के संबंध को ज्योतिष में ग्रहण योग कहा जाता है। अगर ये कुंडली में है तो इससे स्वास्थ्य, खास तौर से आंखें कमजोर हो जाती हैं। और राहु सूर्य का संबंध हो तो जीवन में अपयश की संभावना बनती है, व्यक्ति को अपयश मिल सकता है। अगर कुंडली में राहु सूर्य का संबंध है तो इस संबंध के होने पर रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु सूर्य के संबंध का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
1: तो चलिए, बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशि फल क्या कुछ कहता है।
0: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, भगवान को लाल फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं राहु और चंद्रमा का संबंध कैसा माना जाता है। अगर ये दोनों एक ही घर में जाकर बैठ जाएं तो इनका कंजक्शन आपकी जिंदगी में किस तरीके से असर डालता है, आइए जानते हैं।
0: अब जानते हैं कि अगर राहु और चंद्र का संबंध हो, राहु और चंद्र अगर एक साथ बैठे हों तो क्या प्रभाव है। देखिए, राहु और चंद्र के संबंध को भी ग्रहण योग माना जाता है। राहु चंद्र का संबंध कुंडली में कहीं भी बने, ये मानसिक रूप से कमजोरी और मानसिक बीमारियां पैदा करता है। मन की स्थितियों में बार बार

0: मानसिक स्थितियां बार बार बिगड़ती हैं, व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है या साइकोलॉजिकल समस्या आ सकती है। अगर कुंडली में राहु चंद्र का संबंध है आपके, तो भगवान शिव की उपासना जरूर करिएगा। शिव जी की जितनी पूजा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु और मंगल के संबंध की, इन दोनों का कंजंक्शन कितना अच्छा कितना बुरा। आइए पंडित जी से जानते हैं इसका किस तरीके से आपके जीवन पर असर पड़ सकता है।
0: अब जानते हैं कि अगर कुंडली में राहु और मंगल का संबंध बने, राहु मंगल का कंजंक्शन हो, तो इसका क्या प्रभाव है। देखिए, राहु और मंगल के संबंध को, कंजंक्शन को अंगारक योग कहा जाता है। और अगर ये कुंडली में है तो जीवन में विस्फोट हो, जीवन में दुर्घटना हो, सर्जरी की ऑपरेशन की नौबत आए, ऐसा जरूर हो सकता है। राहु मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति उग्र हो सकता है, बहुत क्रोधी हो सकता है, ये व्यक्ति का स्वभाव भी खराब कर देता है। इस संबंध के होने पर अगर कुंडली में आपके राहु और मंगल का संबंध है तो हनुमान जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह शाम एक एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो उससे भी आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
0: कर्क राशि, बेवजह के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है। फल का दान अगर कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपके सवाल का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का

0: पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं?
1: जी आज का पहला प्रश्न सयाली घोष ने हमें लिखा है और सयाली हमें मेल लिखती हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से। इनकी जन्म की तारीख है 15 जून 2001, जन्म का समय शाम के 4:55, जन्म स्थान है कोलकाता। सयाली कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाएं, बैंकिंग में जाएं, फाइनेंस में जाएं, तो इन क्षेत्रों में आपका करियर काफी अच्छा हो सकता है और आपकी उम्र लगभग 25 साल होने जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल 2027 में आपको सफलता मिल जाएगी। एक माणिक्य बनवा के पहने रूबी, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल ले लेते हैं। तो पंडित जी, इससे पहले आप हमारे दर्शकों का सवाल लें, उससे पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम को रोज देखते हैं, हमारा ये कार्यक्रम काफी पसंद करते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न ब्रिजमोहन जी ने हमें लिखा है और ब्रिजमोहन जी हमें मथुरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1961, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म स्थान है मथुरा। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि संतान को लेकर समस्याएं बहुत हैं, संतान का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, बेवजह का तनाव बना रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे संतान की तरफ से कष्ट थोड़ा कम हो जाए? ब्रिजमोहन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से संतान को लेकर तनाव मत पालिए, क्योंकि उसमें सुधार होने की संभावना नहीं है और जिस चीज में सुधरने की संभावना ही नहीं है उसमें क्यों अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं? नॉर्मली भजन कीर्तन करिए, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, धार्मिक आदमी हैं आप, उसी रास्ते पे चलिए। मेरे हिसाब से थोड़ी चिंताएं और तनाव आपका कम हो इसके लिए रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा रोज सुबह, और एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं राहु और बुध का संबंध कैसा होता है, इसका कंजंक्शन कितना अच्छा कितना बुरा होता है, आपके जीवन पर किस तरीके से असर ये डाल सकता है, कैसा इसका प्रभाव होता है, आइए जानते हैं।
1: अब जानते हैं कि राहु और बुध का अगर संबंध हो, कंजंक्शन हो, तो ये कैसा होता है। देखिए, राहु और बुध का संबंध वाणी और बुद्धि की समस्या पैदा कर देता है। आदमी ज्यादातर कंफ्यूज होता है, सही निर्णय नहीं ले पाता, इधर उधर भटकता रहता है और इस कंजंक्शन की वजह से, इस संबंध की वजह से कभी कभी त्वचा की समस्या भी हो जाती है। राहु बुध के संबंध का एक फायदा यह है कि ये लोग कभी कभी जबरदस्त इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, स्पेस के इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि भी बन जाते हैं। अगर कुंडली में राहु बुध का संबंध है और इसका बुरा प्रभाव आ रहा है तो तुलसी का प्रयोग करिए, तुलसी की माला पहनिए या तुलसी के पत्तों का सेवन करिए और सूर्य देव को नियमित रूप से जल चढ़ाइए, अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं राहु और बृहस्पति के संबंध के बारे में। राहु और बृहस्पति का संबंध कितना खतरनाक होता है कुंडली में और इसका प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन पर पड़ सकता है, इसके बारे में जानते हैं।
1: अब जानते हैं राहु और बृहस्पति के संबंध के बारे में। देखिए, राहु और बृहस्पति के संबंध को, इनके कंजंक्शन को गुरु चांडाल योग कहा जाता है, जो ज्योतिष के सबसे नकारात्मक योगों में से एक है। अगर राहु गुरु का चांडाल योग है कुंडली में तो इसकी वजह से जीवन में नकारात्मकता छा जाती है, जीवन में निगेटिविटी आ जाती है और राहु गुरु के संबंध की वजह से वैवाहिक जीवन काफी ज्यादा खराब हो जाता है। अगर ये संबंध कुंडली में है और इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो इस संबंध के होने पर सन्मार्ग पर चलिए, अच्छे रास्ते पर चलिए और नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा ही सही भगवत गीता का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृषभ का धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, नौकरी में समस्या दूर होगी, खान पान का ध्यान बनाए रखें, अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा के योग हैं, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं राहु और शुक्र यानी राहु और वीनस का संबंध कैसा माना जाता है, इनका कंजंक्शन आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है।
1: अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में राहु और शुक्र का संबंध हो, राहु और शुक्र का कंजंक्शन हो, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, राहु और शुक्र का संबंध ग्लैमर तो देता है, लेकिन ये योग, ये संबंध चरित्र दोष भी पैदा करता है। इसको चरित्र के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते, और कभी कभी राहु शुक्र का संबंध कम उम्र में भटकाव देता है, कम उम्र में आदमी को भटका सकता है। राहु शुक्र की वजह से चरित्र को लेकर, आचरण को लेकर कभी कभी जीवन पर लांछन भी लग जाता है, जीवन में अपयश भी आ जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु का संबंध है, तो भगवान शिव की आपको नियमित उपासना करनी चाहिए, ताकि इसके दुष्परिणाम से, इसके नकारात्मक प्रभाव से आप बच सके।
0: राहु और शनि का संबंध कैसा माना जाता है, आइए पंडित जी से जानते हैं इसका आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है।
1: अब राहु और शनि का संबंध कैसा माना जाता है, इसका प्रभाव क्या है। देखिए, राहु और शनि के संबंध को, कंजंक्शन को नंदी योग कहा जाता है, यानी राहु और शनि के संबंध को कहीं कहीं पर शाप और पिशाच दोष भी लोग कहते हैं। इसको बहुत नकारात्मक माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु शनि का कंजंक्शन है, राहु शनि अगर एक साथ बैठे हैं, तो ये जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। इसकी वजह से जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, और अक्सर ये करियर में काफी समस्याएं दे देता है। काफी लंबी उम्र बीत जाने के बाद भी आदमी स्टेबल नहीं होता, आदमी के जीवन में, करियर और जीवन में स्थिरता नहीं आती। शनि राहु का संबंध मन में डर, भय, तनाव और चिंता भी पैदा करता है। इस योग के होने पर नियमित रूप से शनि देव की पूजा करिए, शनि मंत्र का रोज शाम को जप करिए, और एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन जरूर धारण करिए।
0: तो बातचीत का सिलसिला पंडित जी के साथ यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, नौकरी में अनुकूलता आएगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज का तीसरा सवाल लेने का। तो पंडित जी, बिना देर किए हमारे दर्शकों का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: जी, अगला प्रश्न सुनीता जी ने हमें लिखा है और सुनीता जी हमें मेल लिखती हैं मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1980। जन्म का समय शाम के 7:30। जन्म का स्थान है देवास, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि पिछले 3-4 सालों से मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या मेरे साथ लगी रहती है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पा रही हूँ। तो मैं कब तक स्वस्थ होंगी और मुझे क्या उपाय करना चाहिए? सुनीता जी, मुख्यतः आपको अपनी हड्डियों की और नसों की समस्या का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हड्डियों की और नसों की समस्या आपको परेशान कर रही है। इसके अलावा मानसिक स्तर में भी तनाव और चिंता की स्थिति बन रही है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। आप दो उपाय करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, चांदी की अंगूठी में बनवाकर बुधवार की शाम को धारण करिएगा। रोज सुबह सूर्यास्त का पाठ करिए। अगर ये दो उपाय करें तो जल्दी सुधार होगा। वैसे ऐसा लग रहा है कि नवंबर 2026 के बाद आपके जीवन में और आपके स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल यानी कि आज का चौथा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं।
1: अंतिम प्रश्न अतुल जी ने हमें लिखा है और अतुल जी हमें महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 मार्च 1965। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है चंद्रपुर, महाराष्ट्र। मेल लिखते हैं मुंबई से। अतुल जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं और मेरे व्यापार में मेरा पैसा बहुत सारी जगह पे ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरे व्यापार की और मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। अतुल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी लगभग जून 2027 के बाद, और आपके फंसे हुए पैसे अगर आप इस समय प्रयत्न करें तो धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन है, आप सभी को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी के लिए आने वाला वर्ष, आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए, करियर में धीरे धीरे स्थिरता आती जाएगी, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का सवाल, यानी कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु की कृपा से जीवन को पूरी तरह बदला जा सकता है। देखिए, अगर वास्तविक गुरु आपको मिले, ईश्वर की कृपा से अगर सद्गुरु आपको मिल जाएं, वास्तविक संत समान गुरु मिले, और आप अपने गुरु के दिशा निर्देशों का पालन करें, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं और अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के कष्टों को काट सकते हैं।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं शुभ पहर, यानी कि अच्छा पहर कौन सा है।
1: शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर कपूर या दीपक जला करके आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी।
0: तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं, जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज की भाग्यशाली राशि, यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है मेष। इनकी शिक्षा में सामान्यतः नॉर्मली थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। अक्सर इनकी पढ़ाई बीच में रुकती है और फिर दोबारा चालू हो पाती है। सूर्य देव को अगर नियमित रूप से जल अर्पित करें तो आपके लिए शिक्षा में सरलता भी होगी और सफलता भी मिलेगी।
0: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में अब पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
1: अगर आप अपनी कुंडली के गड़बड़ राहु को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? अगर आप अपनी कुंडली के राहु को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिव जी की उपासना करिएगा। रोज सुबह स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा और साथ ही साथ सात्विक रहने का प्रयास करिएगा। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अब जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: राजस्थान के थार में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, वहीं पर एक शख्स ने प्रकृति की रक्षा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जैसलमेर के ऊंट पालक सुमेर सिंह भाटी ने सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि घास के मैदानों, ओरण और वन्य जीवों को बचाने की ऐसी मुहिम छेड़ी कि अब उनकी पहचान दुनिया तक पहुंच गई है। प्रकृति के प्रति इसी समर्पण के लिए सुमेर सिंह भाटी को मंगोलिया में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाएगा। कैसे थार का यह साधारण ऊंट पालक पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बना, चलिए इसकी कहानी आपको दिखाते हैं।
9: रेत के अथाह समुद्र के बीच पानी और हरियाली की कीमत क्या हो सकती है, इसे महसूस तो कई लोग कर लेते होंगे, लेकिन इसे सही मायने में न सिर्फ समझा बल्कि अमल में लाया है जैसलमेर के सुमेर सिंह भाटी ने। सुमेर सिंह भाटी ने घास के मैदानों को बचाने की ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने हजारों लोगों और बेजुबानों की उम्मीद को एक नई जिंदगी दे दी। सुमेर सिंह भाटी वैसे तो ऊंट पालक है, लेकिन अब थार की पारंपरिक विरासत ओरंट और गोचर भूमि के सबसे मजबूत प्रहरी बन चुके हैं। सुमेर सिंह की अथक कोशिशों का ही नतीजा है कि देगराय माता ओरंट के 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र आज संरक्षित किए गए हैं, जिससे न सिर्फ पारंपरिक जल स्रोत को नया जीवन मिला है बल्कि हजारों बेजुबानों को खाने पीने के लिए हरा भरा चारागाह भी मिल सका।
10: जैसलमेर के विश्वविख्यात ओरंट देगराय ओरंट के अंदर सचमुच अद्भुत, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरा भरा नजारा, पशु से बाहुल्य क्षेत्र यह है, पीछे इतनी बड़ी मात्रा में जो है ऊंटनियां ऊंट जो है मौजूद है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक पशुपालक, एक जो है ओरण के लिए पूरी अपनी जिंदगी जो है वो हर तरह से नचा वर्चस्व जो है जमीन को बचाए रखने के लिए, ओरण की जमीन को बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा नाम है सुमेर सिंह भाटी, जिनको अभी हाल ही में रेज रैंड रेस्टोरेशन 2026 के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वाकई डिजर्व करते हैं, सचमुच इन्होंने ओरन लैंड बचाने के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। करीब 3 से 4 महीने तक इन्होंने जैसलमेर से जयपुर की यात्रा करी थी, 800 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी ताकि ओरन की जमीन बचे। करीब 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जो है इन्होंने ओरन में दर्ज करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और ये करके बताया।
9: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए सुमेर सिंह भाटी के इस शानदार काम की गूंज अब मंगोलिया की धरती पर भी सुनाई देगी। चंद दिनों बाद 18 अगस्त को मंगोलिया में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD के COP17 सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा।
11: मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अवार्ड मेरा अकेले का नहीं है, संपूर्ण जैसलमेर का है, संपूर्ण आम जन का है, संपूर्ण पशुपालक का है और इन वन्य जीव का है, इन जीव जंतुओं और पशुओं का है और पूरे भारत का है।
9: सुमेर सिंह भाटी का संघर्ष सिर्फ ओरण तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके गोडावन पक्षी को बचाने के लिए भी एक मुहिम छेड़ दी है और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया।
11: अगर इन पशुओं को बचाना है, इन जीव जंतुओं को बचाना है, इस ऊंट को, रेगिस्तान के जहाज को बचाना है, परिश्रम करना बहुत जरूरी है और इनको बचाने के लिए जो कार्य है, योजनाएं हैं, उनको पशुपालक को लाभ दिलाना, ये सब कार्य अगर सरकार करेगी तो ये पशु बच पाएंगे, ये जीव जंतु बच पाएंगे, इसके चारागाह बच पाएंगे, ये ग्रासलैंड जो जैसलमेर के वो बच पाएंगे।
9: थार की रेत से उठी ये कहानी बता रही है कि अगर इरादे मजबूत हो तो एक ऊंट पालक भी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखा सकता है और शायद यही वजह है कि आज सुमेर सिंह भाटी का संघर्ष पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: और चलिए अब आपको मिलवाते हैं साउथ के सुपरस्टार धनुष के उस अंदाज से जिसने लाखों दिलों को जीत लिया है। स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी धनुष अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। हाल ही में वो चेन्नई के उसी स्कूल पहुंचे जहां पर उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी और खास बात यह है कि अपने पुराने स्कूल को उन्होंने 3 मंजिला नई इमारत की सौगात दी है और उसके उद्घाटन के लिए खुद वहां पर पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी इमारत की नहीं बल्कि धनुष के संस्कारों की रही है। स्कूल पहुंचते ही उन्होंने अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। ये नजारा देखकर हर कोई भावुक हो गया।

0: कहते हैं बचपन में मिले संस्कार कभी जाते रहे। सालों बाद साउथ सुपरस्टार धनुष जब अपने पुराने स्कूल पहुंचे तो वहां उनका वही संस्कार नजर आया। धनुष ने अपने गुरुओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। एक सुपरस्टार का अपने गुरुओं के प्रति ये सम्मान हर किसी के लिए नजीर बन गया। चेन्नई के सालीग्रामम में मौजूद ये वही थाई सत्य मैट्रिकुलेशन स्कूल है जहां कभी धनुष ने जिंदगी का ककहरा सीखा था। एलकेजी से लेकर दसवीं क्लास तक की पढ़ाई की थी और अब वर्षों बाद जब धनुष अपने स्कूल पहुंचे तो न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा किया बल्कि अपने स्कूल को एक खास तोहफा भी दिया। धनुष ने स्कूल के लिए अपने खर्च से 3 मंजिला कंक्रीट की इमारत बनवाई है। नई बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर धनुष अपने परिवार, पुराने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौजूद रहे। इसी दौरान धनुष ने अपने टीचर्स के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। गुरुजनों के लिए धनुष के इस सम्मान ने लोगों का दिल जीत लिया। धनुष ने अपने शिक्षकों के साथ तस्वीर खिंचवाई और उनके साथ खाना भी खाया। धनुष ने इस मौके पर कहा कि मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि फिटनेस और मेडिटेशन के प्रति जागरूकता को स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बनाएं। 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी अमल किया जाए, खास तौर पर फिटनेस के लिए जागरूकता। अगर स्कूल ने इसे पहले से ही अपनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है। मेरे कई दोस्त यहाँ मौजूद हैं जो फिटनेस की अहमियत को समझते हैं। स्कूल की इस नई इमारत से धनुष का नाता भी अब हमेशा के लिए जुड़ गया है। नई बिल्डिंग का नाम धनुष ब्लॉक रखा गया है। धनुष ने आगे भी स्कूल की दूसरी इमारतों के नवीनीकरण और नई इमारतें बनाने में मदद करने की बात कही है। अपने बीच स्टार धनुष को पाकर स्कूली बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। धनुष को फूल और बुके देकर उन्होंने प्यार जताया और अपना डांसिंग टैलेंट भी दिखाया। धनुष ने भी बच्चों के साथ डांस कर एहसास दिलाया कि वो भी उन्हीं में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो पीढ़ियां गुजरने के बाद भी कायम रहते हैं। भारत के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ऐसे ही एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बेहद करीब खड़े हैं। एशियन गेम्स 2026 में अगर उनके बल्ले से शतक निकला तो इतिहास बदल सकता है। वैभव का यह शतक उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र का शतक वीर बना सकता है, यानी करीब 30 साल से कायम शाहिद अफरीदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी टूट सकता है।

0: जब युवाओं की उम्र सपने देखने की होती है तब कुछ किशोर इतिहास लिखने निकल पड़ते हैं। क्रिकेट की दुनिया एक ऐसे ही उभरते यंग स्टार की दस्तक महसूस कर रही है जिसकी हर पारी अब रिकॉर्ड बुक का नया पन्ना बनती जा रही है। 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा रहे वैभव सूर्यवंशी अब एक और बड़े इतिहास के मुहाने पर खड़े हैं। अब एशियन गेम्स में वैभव के सामने ऐसा गोल्डन चांस है जो क्रिकेट इतिहास की रिकॉर्ड बुक हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर एशियन गेम्स में वैभव के बल्ले से शतक और निकला तो वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन जाएंगे। 24 सितंबर से जापान में एशियन गेम्स के तहत T20 मुकाबले होंगे और भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी का चयन हो चुका है, यानी अब उनके पास सिर्फ भारत को स्वर्ण पदक दिलाने का ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से क्रिकेट इतिहास का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय शतकवीर बनने का सुनहरा मौका भी होगा। फिलहाल पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। अफरीदी ने 4 अक्टूबर 1996 को श्रीलंका के खिलाफ महज 16 वर्ष 217 दिन की उम्र में वनडे शतक जड़ा था। करीब 3 दशक बीत गए लेकिन कोई भी पुरुष बल्लेबाज इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब वैभव सूर्यवंशी की पहुंच में है। फिलहाल तो ये रिकॉर्ड रवांडा की फेनी के नाम है। उन्होंने मार्च 2026 में महज 15 वर्ष 223 दिन की उम्र में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में शतक जड़ा था। यानी अब वैभव सूर्यवंशी के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है क्योंकि 24 सितंबर को वैभव की उम्र 15 वर्ष 181 दिन होगी। ऐसे में वो फेनी के 15 वर्ष 223 दिन वाले विश्व रिकॉर्ड से 42 दिन छोटे होंगे। यही वजह है कि एशियन गेम्स वैभव के लिए सिर्फ एक मल्टी गेम इवेंट नहीं बल्कि इतिहास की दहलीज साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: अभी तो देखते जाइए आप, बड़ा प्यार नजर आ रहा है ना दोनों के बीच। दीदी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और छोटे भाई ने हाथ ऐसे थाम रखा है मानो भरोसा दिला रहा हो मैं हूँ ना। पर इनका होना कितने काम का है वो तो देख ही रहे हैं आप। दीदी जब भी लड़खड़ा रही हैं संभाल नहीं पा रहे जनाब, बस हौसला अफजाई किए जा रहे हैं। कोई नहीं, अगली बार संभाल लूंगा, पर आखिर कब तक? अब बहुत हो गया, रहने दो, हमें नहीं सीखना तुमसे। एक दूसरे पर खुद से ज्यादा भरोसा, प्यार, नोक झोंक, पल में रूठना, पल में मान जाना, यही तो है जो भाई बहन के रिश्ते को खास बनाता है। वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी, क्या जुगाड़ भिड़ाया है लड़के ने, एक पहिए से दो पहिए वाहन वाली रफ्तार पकड़ी है। देखिए कैसे फर्राटा भरे जा रहा है। रास्ता उबड़ खाबड़ हो या समतल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ्तार तो तभी थमेगी जब ये चाहेंगे। एक बार को तो समझना मुश्किल हो गया कि ये पहिए के सहारे भला कैसे इतनी तेजी से भाग रहा है और ब्रेक कैसे लगेगा भला। लेकिन फिर पता चला कि इसने तो कमाल का जुगाड़ भिड़ाया है, एक पहिए में दो डंडा सेट करके एक पहिए वाली बाइक बना ली है इन्होंने तो। थमना हो तो बस पीछे की तरफ झुकना है, डंडा जमीन से लग कर रफ्तार थाम लेता है ना कमाल। पर इन्हें सीट का कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे भला कहां तक सफर कर पाएंगे, है कि नहीं। जो भी हो, बच्चे का ये जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान है। माँ जैसा कोई नहीं, उसके प्यार में तो मानो जादू होता है। तस्वीर देखिए जरा, नन्हा बच्चा सड़क किनारे जमीन पर ले जाए, माँ की गोद में सर है और उससे बातें करते हुए देखिए कैसे खिलखिला रहे हैं जनाब, मानो जन्नत की सैर पर हूँ। सचमुच माँ के चेहरे में भगवान की सूरत और उसकी हर अदा में मानो चमत्कार हो, जो अभाव में भी भरे पूरे होने का एहसास करा जाती है। माँ बेटे की ये प्यारी तस्वीर लोगों का दिल छू रही है। ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। कहीं सुनसान जगह पर ट्रेन रुकी हुई है, सामने रेलवे ट्रैक पर एक कछुआ उल्टा लेटा हुआ है, मदद के लिए छटपटा रहा है, तभी ट्रेन में बैठे किसी शख्स की नजर उस पर पड़ती है। वो ट्रेन से उतरता है और दौड़कर कछुए की मदद करता है, उसे वापस सीधा कर जंगल की तरफ छोड़ देता है ताकि वो चलकर अपनी राह ढूंढ सके। उस शख्स ने जिस तरह से कछुए की मदद की वो देखकर लोग उसकी दयालुता की तारीफ कर रहे हैं। कोई इधर उधर न हो जाए इसलिए ये इंतजाम है। बच्चे तो बच्चे हैं, जिधर मन करे चल देंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें यूं बांधकर उनके होठों की मुस्कान ही छीन ले। कुछ लोग इनकी टीचर की इस तरकीब को पसंद नहीं कर रहे तो कोई इसे सेफ्टी के लिहाज से सही भी ठहरा रहा है, पर बच्चों का मासूम चेहरा जिस तरह से उतरा हुआ है वो देखकर तो इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मेहरबान, दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट।
12: भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में नजर आ रहे भक्ति और आस्था के अनूठे रंग, उज्जैन, काशी, हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह।
13: जब
11: जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा। कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच यात्रा जारी। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का कमाल। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टूर्नामेंट का जीता खिताब। उज़्बेक खिलाड़ी को दी शानदार मात। दुबई में 28 अगस्त से शुरू होगा महिला एशिया कप। 5 सितंबर को भारत पाकिस्तान में खेला जाएगा मैच। 8 टीमें शामिल होंगी। चीन के सिचुआन प्रांत में मशहूर मशाल उत्सव की रौनक। बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना। बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते दिखे लोग। उम्मीदों भरे पहर की खुशोभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
11: शुभ समाचार की शुरुआत। सावन में कावड़ यात्रा के रंगों के साथ होगी। सावन के महीने में शिव भक्ति की अद्भुत छटा बिखर रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे शिव भक्तों से पूरा कावड़ मार्ग चमक रहा है। मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत तक एक से बढ़कर एक आकर्षक कावड़ दिख रही है। तो सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक लगे कावड़ शिविरों में कावड़ियों का जमकर स्वागत किया जा रहा है। तो ये रंग भी आगे होंगे आपके सामने।
7: तो वहीं शिरडी में साईं बाबा के भक्त ने बाबा को खास तोहफा दिया। भक्त ने सोने का राम शब्द चढ़ाया। करीब 76 ग्राम सोने से बने राम को द्वारका माई में स्थापित किया गया है। आपको बता दें इन्हीं भक्त ने कुछ महीने पहले सोने से ओम साईं शब्द भी बाबा को समर्पित किया था। तो इनकी तस्वीरें भी आगे आपके सामने रखेंगे।
11: इधर पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में ये वीकेंड कूल रहने वाला है। इसके अलावा देश के और हिस्सों में भी बारिश ठंड बढ़ाती रहेगी। तो कहां कैसी रहेगी बारिश आगे आपको बताएंगे।
7: और इसके साथ ही आपको अंतरिक्ष भी लिए चलेंगे। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के नाम शानदार उपलब्धि जुड़ी है। उन्होंने अब साथी एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक किया। तो वहां की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे।
11: तो तस्वीरें चीन के सुचुआन प्रांत से भी शानदार आई हैं। यहां मशहूर मशाल उत्सव सेलिब्रेट किया गया। बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना की गई। इस दौरान लोग बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते भी नजर आए। तो ये भव्य तस्वीरें थोड़ी देर में होंगी आपके सामने, लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौगढ़ न्यूज का।
7: श्रावण मास में हर तरफ शिव भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने के लिए जाते हुए शिव भक्तों से पूरा कांवड़ मार्ग गुलजार है और हर तरफ तरह तरह के आकार और स्वरूप के कांवड़ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जगह जगह पर कांवड़ शिविरों में कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है।
11: सावन के महीने में दिल्ली एनसीआर में जारी है बरसात। आज रिमझिम फुहारों के साथ सुबह की शुरुआत हुई। खुशनुमा मौसम के बीच तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले 3 दिनों बारिश का ही सिलसिला थमने वाला नहीं है।

0: किसी भक्त ने कुछ महीने पहले सोने से बने ओम साईं शब्द भी बाबा को अर्पित किए थे, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए थी।
1: 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल आयोजित होगा। शाम 6 बजे कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा अभ्यास होगा। इस ड्रिल में एनएसजी, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी तैयारियों का जायजा लेंगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्लान लागू कर दी गई है। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।
0: भारत ने ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल टेस्ट किया है और इस मिसाइल के सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को चेक किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। यह टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की निगरानी में किया गया है। यह मिसाइल हाई एक्यूरेसी के साथ 4,000 किलोमीटर की रेंज तक निशाना लगा सकती है।
1: हैंडलूम डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो शेयर किया, जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हैंडलूम डे से पहले लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदने और उनके वीडियो बनाने का आग्रह किया। इसका लक्ष्य बुनकरों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद देना तथा भारतीय हैंडलूम को वैश्विक पहचान दिलाना है।
0: दिल्ली में भारत मंडपम में गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया का आयोजन किया गया, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भविष्य की झलक देखने को मिली है। एक्सपो में 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड्स शामिल हुए हैं।
1: अमित राय की ओ माय गॉड आज सिनेमाघर में रिलीज होगी। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी लीड रोल में है। OMG 2 के बाद अमित राय ने ओ माय डॉग में इंसान और डॉग्स के भावनात्मक रिश्ते को खूबसूरती से उठाया है। कलाकारों में पंकज त्रिपाठी के अलावा राजेश कुमार, पवन मल्होत्रा, गीता अग्रवाल भी शामिल है।
0: चाइना के सिचुआन प्रांत में मशहूर टॉर्च फेस्टिवल पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसमें बॉनफायर, लोक नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रमों का लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। यह उत्सव 19 जुलाई से शुरू हुआ है। पूरे त्योहार में कई सांस्कृतिक और पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिन के समय घुड़दौड़ और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

शुभ समाचार में आज बात कांवड़ यात्रा के रंगों की करेंगे। कांवड़ यात्रा की रौनक अपने चरम पर है। हर तरफ भगवा रंग, हर जुबान पर बम बम भोले और हर कदम शिव भक्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांवड़ मार्गों की दिव्य छटा देखते ही बन रही है। जगह जगह पुष्प वर्षा, भव्य स्वागत द्वार, सेवा शिविर और श्रद्धालुओं के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं आस्था को और ज्यादा भव्य बना रही है। शहर शहर सजे कांवड़ शिविरों में सेवा ही सबसे बड़ी साधना बन गई है। कहीं भोजन का प्रसाद, कहीं इलाज तो कहीं विश्राम की व्यवस्था। भोले के भक्तों की सेवा में हजारों हाथ जुटे हुए हैं। हर हर महादेव और बम बम के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा है। कंधों पर कांवड़ उठाए शिव भक्त भक्ति, अनुशासन और उत्साह के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं शिवालय में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महाआरती के साथ सावन की भक्ति अपने चरम पर है। मानो पूरा देश इस समय एक ही स्वर में गूंज रहा हो। हर हर महादेव, बम बम भोले,

आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं देवों के देव महादेव। सच्चे मन से की गई भक्ति को भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग बताया गया है। इसीलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्तों का जतन इस सावन मास में देखने को मिल रहा है, जो भगवान भोले शंकर का प्रिय मास है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष और रंग बिरंगी कावड़ के साथ शिव भक्त अपनी राह पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर जब कावड़ यात्री निकलते हैं तो रास्ते में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इस कावड़ यात्रा में कोई शिव भक्त 251 तो कोई

0: 551 तो कोई 651 लीटर तो कोई 1001 लीटर गंगा जल की कावड़ लेकर हरिद्वार से यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचा। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी कावड़ देखने को मिल रही है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उन्हीं में से एक कावड़ ये है जो 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस कावड़ की एक विशेष बात ये है कि इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर के अचानक से दर्शन होते हैं। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कावड़ यात्रा में इस बार महिलाओं का जत्था भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहां से महिलाओं का जत्था कई गाड़ियों के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश देते हुए हरियाणा के रोहतक की ओर बढ़ता दिखा। वहीं हरिद्वार से बागपत की सड़कों से गुजर रही एक कावड़ भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस कावड़ के साथ हरियाणा के नाहरी के रहने वाले शिव भक्त मंजीत दहिया फिटनेस का संदेश देते हुए चल रहे हैं। ये पुशअप लगाते हुए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा तय कर रहे हैं। इन कावड़ यात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह शिविर भी लगाए हुए हैं, जहां इनके रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सहारनपुर में पुलिस कर्मी भी कावड़ियों की मदद करते नजर आए। उन्हें खाने पीने का सामान देने के साथ ही उनकी मरहम पट्टी करते भी पुलिस कर्मी दिखते हैं। हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली के रास्ते बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं, जिनकी सुविधा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक शिविर ये है, जहां कावड़ियों का खाने पीने से लेकर हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।
1: वजन उठा के जो है ये भक्त जो है लेकर आया। अच्छा, इनकी कंधे की एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हालत है। भारी कावड़ उठाने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है कि कितना वजन उठा के, लेकिन आस्था का ये एक रूप है जो आपको ये नजर आ जाएगा कि अच्छी खासी संख्या में जो है ये लोग वजन उठा के जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं, जल जो है पवित्र स्थानों से लेकर आते हैं और उसके बाद जो है शिवालय में जो है जलाभिषेक करते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
2: हरिद्वार से।
1: हरिद्वार से लाए? दिल्ली में ही रहते हैं?
2: हाँ जी।
1: दिल्ली में कहाँ रहते हैं?
2: नांगलोई।
1: नांगलोई, तो अभी कितना लंबा सफर और तय करना है?
2: 30 किलोमीटर और
1: करना है।
0: यूपी में प्रयागराज से लेकर रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिखाई पड़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हर दिन श्रद्धालुओं का जत्था झारखंड के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है।
3: तस्वीरें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि दुधमुहे बच्चे को लेकर भी महिलाएं जो है वो बोलबम की तरफ जा रही है, देवघर की तरफ जा रही है। आपका क्या नाम है?
4: सावन।
3: आपका क्या कहना है?
4: चले जाएंगे
3: आप?
0: कांवड़ यात्रा को लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों तक में जिस तरह से जोश दिख रहा है, वो इनकी आस्था और भक्ति के गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, दिल्ली से मनीषा लड्डा, चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। यहां पर हर दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़ मार्ग पर भव्य छटा देखने को मिल रही है। मुंगेर के रास्ते कांवड़ को लेकर देवघर की ओर बढ़ते हुए शिव भक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

0: श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। सुल्तानगंज से जल भरकर यहां बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर जाने के रास्ते में कांवड़ यात्रियों की आस्था और भक्ति के कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुंगेर में असरगंज स्थित कच्ची कांवड़िया पथ से हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। कोलकाता से 15 शिव भक्तों के एक जत्थे ने लोगों का विशेष रूप से अपनी ओर ध्यान खींचा। ये जत्था लगभग 80 किलो वजनी माँ तारा की भव्य प्रतिमा को कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर लेकर बैद्यनाथ जा रहे हैं। 4 शिव भक्त मिलकर इस प्रतिमा को उठाए हुए हैं और पूरा मार्ग बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है।
1: इस बार हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को।
0: देवघर जाने के रास्ते में बोलबम के जयकारे के बीच भगवान शिव के वेश में जा रहा ये शिव भक्त भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुंगेर के ही रहने वाले सत्यपाल हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इसी रूप से सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर बाबा धाम पैदल जाने का संकल्प लिया है।
2: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
0: वहीं मधुबनी के रहने वाले रमेश डाक बम को देखिए, जो कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रमेश पिछले 2 वर्षों से आंखों पर इसी तरह पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ चल रहे साथी रमेश को रास्ता दिखाते हुए बोल बम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रमेश ने संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है और जब तक वो पूरी नहीं होती, ये इसी तरह सावन मास में आंखों पर पट्टी बांधकर बैद्यनाथ धाम जाने की बात कहते हैं। बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ये शिव भक्त वहां भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सावन मास के 8वें दिन भी यहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ी।
3: हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख हैं, क्योंकि यहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है, और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो बाबा पूजा पूरा करते होंगे। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सब की मनोकामना पूरी करते हैं।
0: बैद्यनाथ धाम की विशेष मान्यताओं को लेकर यहां श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता है। विशेषकर सावन मास में यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। इस हफ्ते 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां भगवान भोले का जलाभिषेक कर चुके हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: महाकाल की भस्म आरती, महाकाल का दिव्य अभिषेक और महाकाल की भव्य आरती, सावन की हर सुबह बाबा महाकाल की अलौकिक आराधना के इन दिव्य दृश्यों से शिवमय नजर आती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गूंजते मंत्रोच्चार, जलाभिषेक, भस्म आरती और दीपों से सजी आरती भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति से भर देती है। सावन में महाकाल का ये दिव्य वैभव श्रद्धा और आस्था का अनुपम संगम बन जाता है।

0: सावन के दिनों में महाकाल के दरबार में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया है। इस उत्सव के बीच हमारे सहयोगी नवजोत रंधावा पहुंची और श्रद्धालुओं से बातचीत की। देखिए उज्जैन से नवजोत रंधावा की एक खास रिपोर्ट।
1: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते एक घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई हैं आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से आए हैं यहाँ पे एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे। हाँ। कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा। आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे?
3: लगे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
3: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
1: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: हम पुणे से आए हैं।
1: अच्छा,
4: हम कल से यहाँ आके।
1: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना?
4: बहुत सारी टोली,
1: सारी मैडम्स और सर्स दोनों, सब लोग साथ हो जाएं।
4: श्रद्धालु
1: तो पहले, सबसे पहले जय महाकाल।
5: जय महाकाल।
1: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
5: कर लिए।
1: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
6: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
6: हाँ पूरे हुए।
1: आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
4: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकाल।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
6: बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
6: कली
1: शुरुआत। तो अब महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
6: अभी इंदौर जा रहे हैं हम, ओंकारेश्वर।
1: फिर
7: ओंकारेश्वर जाएंगे।
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं,
8: कोऑर्डिनेटर हैं?
1: अच्छा, कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ हैं। क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
9: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है, पुणे से फ्रेंड सर्कल है और 7 फैमिली है। तो बावदन में हम लोग रहते हैं और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने 3 दिन की 4 दिन की यात्रा की है।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कॉरिडोर आपने देखा, कैसा लगा कॉरिडोर?
7: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
1: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
7: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
1: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
10: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा लगा।
10: हम देख रहे हैं अभी आए इधर,
1: अभी देख रहे हैं आप। बताइए मैडम।
11: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
1: बहुत अच्छा लगा।
6: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
1: आपका अनुभव कैसा है?
12: बहुत बढ़िया रहा, हमें आप पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
1: दर्शन हो गए, आइए आइए देखिए। हाँ
13: एक बात,
1: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे नहीं तो। कहाँ से आए आप?
14: हम धामनुत से आए हैं।
1: अच्छा, दर्शन हो गए
14: जी।
1: हाँ, कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
14: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
1: अच्छा,
14: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनुत चले गए।
1: अच्छा,
14: हाँ जी।
1: तो उसके बाद फिर सावन के दौरान?
14: हाँ जी, हाँ जी, ये मैं 2nd टाइम आ रही हूँ।
1: एक बार हर हर महादेव।
5: हर हर
1: महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और शिरडी में साई बाबा के एक भक्त ने सोने का राम शब्द चढ़ाया है। करीब 76 ग्राम सोने से बने राम को द्वारका माई में स्थापित किया गया। इसी भक्त ने कुछ महीने पहले सोने के ओम साई शब्द भी बाबा को अर्पित किए थे। देखिए रिपोर्ट।

0: साईं बाबा में अपनी अनंत आस्था को इस भक्त ने स्वर्णाक्षरों में सुशोभित कर दिया। दुबई के इस भक्त ने सोने के बने राम शब्द को बाबा को अर्पित किया। कुछ दिनों पहले इस भक्त ने एक मुराद मांगी थी। बाबा के आशीर्वाद से मुराद पूरी हुई तो भक्त ने भी स्वर्णाक्षर अर्पित करने के अपने संकल्प को पूरा किया। इस सुनहरे राम शब्द के निर्माण में 76 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। दरअसल इस भक्त ने कुछ महीने पहले सोने से बने ओम साईं शब्द बाबा को अर्पित किए थे, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए थी। अब सोने के बने राम शब्द के आने से ओम साईं राम का जयघोष पूरा हो गया है।
1: दुबई के एक साई भक्त जो है, उन्होंने 76 ग्राम का सोने का राम अक्षर जो है वो बाबा को अर्पण किया है। उन्होंने ही इसके पहले ओम साई नाम के सोने के अक्षर जो है वो बाबा को अर्पण किए थे। तो ओम साई उन्होंने अर्पण किए थे, लेकिन उनको वो अधूरा अधूरा लगता था, इसलिए ओम साई राम ऐसे 3 सोने के अक्षर जो है उन्होंने अर्पण किए।
0: भक्त के अर्पित किए सोने के ओम साईं राम को द्वारका माई में स्थापित कर दिया गया है। यही वो जगह है जहां साईं बाबा अपना अधिकांश समय बिताते थे। यहीं पर वो भक्तों से मिलते थे और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को बाबा का आशीर्वाद मिलता था। अब एक भक्त की अटूट आस्था इसी द्वारका माई मंदिर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए बुलेटिन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए राजधानी दिल्ली में बादलों का वीकेंड प्लान क्या है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
11: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मेहरबान। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट।
2: भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में नजर आ रहे भक्ति और आस्था के अनूठे रंग। उज्जैन, काशी, हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता। पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह।
11: जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा। कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच यात्रा जारी। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन।
2: बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग।
11: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का कमाल। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टूर्नामेंट का जीता खिताब। उज़्बेक खिलाड़ी को दी शानदार मात।
2: दुबई में 28 अगस्त से शुरू होगा महिला एशिया कप। 5 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मैच। 8 टीमें होंगी शामिल।
11: चीन के सिचुआन प्रांत में मशहूर मशाल उत्सव की रौनक। बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना। बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते दिखे लोग।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुभ समाचार में आप सभी का स्वागत है। बात सावन की हो रही है तो सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के साथ ही अपने सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। आसमान से रिमझिम फुहारे बरसती हैं, गर्मी की तपन में झुलसी जमीन पर हरियाली की एक चादर बिछ जाती है जो आंखों को न केवल सुकून देती है बल्कि मन को मोह भी लेती है। प्रकृति की सुंदरता के साथ ही सावन का महीना लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत देता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर लगातार जारी है। श्रीनगर में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। डल झील में शिकारा की सैर के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे हैं। हर जगह पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है। सुबह की हल्की धुंध और शाम की ठंडी फिजाएं श्रीनगर के मौसम को और भी ज्यादा दिलकश बना रही हैं। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो देखिए क्या खूबसूरत नजारा है और शिकारा राइड का मजा लेते हुए पर्यटक आपको दिखाई देंगे। श्रीनगर में इस वक्त बेहद खूबसूरत मौसम है।
1: और चलिए अब रुख करते हैं श्रीनगर का। सावन की बारिश ने कश्मीर की वादियों की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। झीलों का शहर श्रीनगर इन दिनों हरियाली की चादर ओढ़े हुए है और पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। सुहानी ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती आमद से स्थानीय पर्यटन कारोबार में भी नई रौनक लौट आई है। होटल्स, हाउसबोट, टैक्सी और हस्तशिल्प कारोबार से जुड़े हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। कारोबारियों को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा।
2: बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशनुमा माहौल है और जो वाकई में बोलते हैं कि कश्मीर ही स्वर्ग है वो देख के लगा। मौसम बहुत अच्छा है, एकदम स्प्रिंग टाइम है और ना ठंड ज़्यादा ना गर्मी, बहुत ही अच्छा मौसम है। सब टूरिस्ट के लिए यही मैसेज है कि आप एकदम कश्मीर आएँ, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे और मौसम भी बहुत अच्छा है। ठंड के अलावा भी बहुत अच्छा समय आने का।
3: मौसम अच्छा है, मॉर्निंग में और भी अच्छा था, अभी हल्की सी धूप हो गई है। मैं चाहती हूँ कि बाहर से भी लोग आएँ, कश्मीर देखें, कश्मीर बहुत सुंदर है।
0: पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में ये वीकेंड कूल रहने वाला है।
4: सावन का महीना, ठंडी हवाएं और ये रिमझिम बारिश राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त मौसम मेहरबान है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के लिए ये फुहारे किसी वरदान से कम नहीं है। आसमान में बादलों का डेरा है, आसमान से बरसती ये बूंदे प्यासी जमीन को तरोताजा कर रही है। बात चाहे दिल्ली की हो या फिर राजधानी से सटे गुरुग्राम, मौसम मैदानी इलाकों का हो या फिर पहाड़ों का, आलम एक जैसा है। हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग तक मौसम अपने रंग दिखा रहा है। खुशनुमा मौसम के बीच तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले तीन दिनों तक बारिश का ये सिलसिला थमने वाला नहीं, यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए बादलों ने फुल वीकेंड का प्लान तैयार कर लिया है।
5: देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश का सिलसिला बस कुछ दिन तक जारी रहेगा। आने वाले तीन से चार दिन के बाद वापस से लोगों को उमस से एक बार फिर से परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, सुहाना हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से जो है तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई।
4: जहां एक ओर लोग बारिश का लुत्फ उठाने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने कई जगहों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गुरुग्राम में आलम ये रहा कि कई इलाके पानी से लबालब हो गए। यहां सड़कों पर हुए जलभराव के बीच लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आए। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। नदी नाले उफान पर है जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की करें तो यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का बहाव इतना विकराल हो चुका है कि उसने किनारे पर बसे इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। सावन के महीने में मौसम की ये मनमर्जियां यूं ही जारी रहने वाली है। इस हफ्ते बादलों का वीकेंड प्लान तो तैयार है, लेकिन आप जहां भी रहें सावधानी के साथ बरसात का आनंद लें और खतरे वाली जगह से दूरी बनाए रखें। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुरुग्राम से नीरज श्रीवास्तव और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं इस वीकेंड देश का मौसम कैसा रहने वाला है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक रिमझिम फुहारों का दौर जारी रहेगा।
0: तो जाहिर है बारिश की वजह से राजधानी का पारा गिरा हुआ है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री के बीच रह सकता है।
1: आपको बता दें मॉनसून अब जोर पकड़ चुका है, लिहाजा देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
0: तो उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है।
1: तो वहीं पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है।
0: और अब आपको लिए चलते हैं चीन के सिचुआन, जहां मशहूर मशाल उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। इसमें बॉनफायर, लोक नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रमों का लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। ये उत्सव 19 जुलाई से शुरू हुआ है। इसमें कई सांस्कृतिक और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। घुड़दौड़ और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। ये उत्सव बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना को लेकर मनाया जाता है। यहाँ लोग बोनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते भी नजर आ रहे हैं।
1: क्रोएशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी से राहत पाने का एक उपाय की यहाँ पर खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें यहाँ राहत एक घुड़सवारी से जुड़ी हुई है, लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का यह अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बाल्कन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।
6: Prijatelji dolazili ovako na plažu, osvježiti se s njima kad ne bi mogli.

0: Postavilo se da je ljudima baš zanimljivo.
1: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब आपको लिए चलेंगे सीधे अंतरिक्ष, जहां भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने इतिहास रच दिया। दरअसल नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मीर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरी की। इस दौरान उन्होंने स्टेशन के पावर चैनल के लिए मॉडिफिकेशन किट को असेंबल भी किया। तो देखिए किस तरह से ये स्पेस में इन्होंने कारनामा दिखाया है और भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ दरअसल नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मीर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक पूरी कर ली है। जी हाँ, उन्होंने स्पेस वॉक पूरी की। इस दौरान उन्होंने स्टेशन के पावर चैनल के लिए मॉडिफिकेशन किट को भी असेंबल किया।
3: और अब आपको राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेनिम शो चल रहा है। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में देश विदेश की 700 से ज्यादा ब्रांड्स शिरकत कर रहे हैं। यहां पर बदलते हुए फैशन ट्रेंड की झलक तो देखने को मिल ही रही है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ा उद्योग को नई दिशा देने वाली मशीनें भी मौजूद हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया और डेनिम शो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य नजर आ रहा है। यहां पर एक तरफ नई पीढ़ी की पसंद के डेनिम ट्रेंड्स हैं, तो दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड एक ही छत के नीचे जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं।
4: कहते हैं फैशन कोई भी हो, वो हर 6 महीने में चेंज हो जाता है, लेकिन आजकल हम बात चेंज होते हुए फैशन के साथ साथ नई जनरेशन की कर रहे हैं, जो कि बहुत तेज़ी से बदल रही है, चाहे वो जेंजी हो चाहे वो जेन अल्फा हो। डेनिम शो में हम ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेनिम को लेकर जेंजी और जेन अल्फा की चॉइसेस किस तरह की हैं, वो किस तरह की जीन्स पहनने की कोशिश कर रहे हैं या वो प्रेफर कर रहे हैं उस तरह की जीन्स खरीदने की। मेरे साथ वासुदेव टिपरे जी हैं। सर, थोड़ा सा आइडिया कि जीन्स तो डेनिम तो हम देख रहे हैं कि जनरेशन से लोग पहनते चले आ रहे हैं, अभी जो जनरेशन आई है जेन जी जेन अल्फा, उनका टेस्ट बड़ा अलग है पिछली जनरेशन के हिसाब से। क्या चेंजेस आप लोग देख रहे हैं और कैसी चॉइसेस हैं उनकी आजकल, खासकर डेनिम्स को लेकर?
5: अब फॉर्चुनेटली आप ऐसे मिल से बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल ऑफ इंडिया है, और हम ऑलमोस्ट 30-35 साल से डेनिम बना रहे हैं और हमने डेनिम को इवॉल्व होते हुए देखा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सिर्फ डेनिम एक वज़न के हिसाब से बिकता था, 14.5 औंस 13.5 औंस, ये दो ही क्वालिटी बनती थी और हर लोग यूज़ करते थे डेनिम। एक ज़माने में जब उसकी शुरुआत हुई थी, इसको एक काउबॉय के हिसाब से पहनते थे लोग, एक रफ एंड टफ फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबर या फिर वो घोड़ा चलाने वाले लोग उसके लिए पहनते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेनिम हैज़ इवॉल्व अ लॉट। अभी आप देखिए तो एक अलग टाइप के डेनिम बन रहे हैं। आप डेनिम आजकल लोग ट्रैवलिंग में पहन रहे हैं, ऑफिस में पहन रहे हैं, अपने जब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं उसके लिए पहन रहे हैं, ट्रैवलिंग में पहन रहे हैं, और उसके अलग अलग यूजेस डेनिम के काफ़ी सामने आए हुए हैं। अभी जो नया जनरेशन जिसकी आप स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए, ये लोगों को एक लूज फिट, एक सॉफ्ट हैंड फील और अलग स्टाइलिंग के जीन्स पसंद है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जीन्स है इसका स्टाइलिंग देख लीजिए, ये पूरा लूज फिट है, एक कंफर्ट है, एक रिजिड है। तो इस तरीके के पैटर्न में इस तरह के जीन्स आजकल के जीन्स को बहुत पसंद है।
4: देखिए डेनिम शो में एक बहुत ही शानदार चीज़ हमें मिली है, कहीं भी हम जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कपड़ों में तो उसे बार बार हम लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम पे अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार AI सॉल्यूशन लेकर आए हैं, AI वस्त्रा इनका नाम है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने आपको खड़े होना है, ये आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आप डिज़ाइन चूज़ करते जाइए, आप पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है, वो कपड़ा कैसा लग रहा है, सब कुछ ये बताता चलेगा। मेरे साथ चांद बादशाह जी हैं और गौरी शंकर जी हैं, इन दोनों का ही ये पूरा इनोवेशन है। तो सर शुरू करें, कैसे ये पूरा होता है, एक डेमो अगर हमें मिल जाए। नाम इसका एआई वस्त्रा ही है।
6: वस्त्रा है सर, इसका नाम ये वस्त्रा है। तो बिफोर बाइंग आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं आउटफिट आप पे कैसा दिखेगा। सो अब एक डेमो क्रिएट करके बता रहा हूँ आपको लाइवली। अब ये मेंस वेयर, ये डिवाइस आपको वुमेन वेयर, मेन वेयर, बॉय और गर्ल के लिए
4: चार कैटेगरी
6: है। सो अभी मैं आपको मेन का डेमो बता रहा हूँ, आप जस्ट मेन का क्रिएट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए एंड यू विल सी ऑल कैटेगरी इमेजेस अपलोडेड हियर।
4: क्या ट्राई करना है आपको, टी शर्ट ट्राई करनी है, शर्ट ट्राई करनी है?
6: ये सर हम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
4: ऑप्शंस लगता
6: है अनलिमिटेड ऑप्शंस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स ये एप्लीकेशन के कैटेगरीज क्रिएट होंगे।
4: ये ब्लेजर है, हुडी है, कुर्ता है, जैकेट है, सूट है, पोलो टी शर्ट्स है, या फिर आप जो भी ट्राई करना चाहें, जो भी कस्टमर लेने आ रहा है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर देंगे,
6: कस्टमाइज कर सकते हैं।
4: अगर कोई सिर्फ वेडिंग का काम कर रहा है तो उसमें आप सिर्फ लहंगा और ब्लेजर और शूट सब डाल देंगे।
6: हाँ, वेडिंग के लिए, ट्रेडिशनल वेयर के लिए अलग से एप्लीकेशन है ये पे, आप वही पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करके ट्रेडिशनली चेक कर सकते हैं आप। एंड मैं आपके हमके सूट का ट्रायन और पोलो का ट्रायन बताता हूँ। अभी मैं पोलो पे सेलेक्ट करा
4: एंड पे करते, चलिए
6: सूट पे करेंगे। अभी सूट क्लिक करा, आप एक सूट सेलेक्ट कर दीजिए, आपका कौन सा डिजायर्ड सूट है। You just have to select the suit and आप इधर आ जाइए, एक try on क्लिक करके बताता हूँ लाइवली।
4: अब ये मैंने सूट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या try करना है।
6: तो यहाँ करने के बाद सिंपली आपको start try on बटन क्लिक करने का है। ओके, स्टार्ट बटन क्लिक करो। यहाँ पे फोजेस बता रहे
4: हैं बताया किस तरह खड़े होना
6: है, सर खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद आप रेडी हो गए, आई एम रेडी क्लिक करो। देन आप फोटो अपलोड भी कर सकते हैं फोन से या कैमरा से भी अपलोड कर सकते, कैमरा लेके फोटो ले सकते
4: हैं। ओके, ये देखिए,
6: नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो वेरी रियलिस्टिक ड्रिपिंग आएगा, रियलिस्टिक रहेगा।
4: मतलब आप बार बार जो आप ट्रायल रूम की तरफ भागते थे,
6: yes, sir,
4: उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी।
6: एग्जैक्टली, हाँ, आप कस्टमर का टाइम सेव कर सकते हैं।
2: और भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने एक राउंड बाकी रहते ही सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट जीत लिया है। शानदार जीत के साथ ही प्रज्ञानंद ने दुनिया भर में एक बार फिर से भारत का परचम लहराया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखीर सिंदारोव के खिलाफ बाजी ड्रॉ खेली, जिससे उनका खिताब पर मुहर लग गई। सिंदारोव भारत के प्रज्ञानंद से 1.5 अंक पीछे रह गए। खिताबी जीत के बाद प्रज्ञानंद ने कहा कि जब आप आखिरी स्कोर कार्ड देखते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रज्ञानंद को $50,000 यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 42 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है।
3: और अब पेश है एक किस्सा कामयाबी का। बिहार की बेटी भावना कंठ ने भारतीय वायुसेना में सफलता का नया इतिहास रच दिया है। वो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। उन्होंने 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग को पूरा किया और सेना में महिलाओं की सशक्त भूमिका को और मजबूत कर दिया है।

0: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए कीकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
1: पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे।
2: करते क्या हो बेटा?
3: अंकल हमारा मोमोज का ठेला है।
2: बेटा बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जीवन भर एक गरीब घर में रहे।
3: करेक्ट अंकल, इसीलिए इसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। चले।
4: एक्सक्यूज मी भैया, आपके कितने सेट बाकी हैं?
3: दो और।
4: लेकिन भैया मैं आपसे पहले आया हूँ।
0: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: आपके घर की सीढ़ियों से किस ग्रह का संबंध है? सीढ़ियों के नीचे क्या बाथरूम या पूजा घर बना सकते हैं? और अगर सीढ़ियां गलत तरीके से बन गई हैं तो उन सीढ़ियों की समस्या को कैसे दूर करें? वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में क्या है सीढ़ियों का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
7: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस

वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, बेवजह के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का लाभ होगा, चोट चपेट से बचाव करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो देखिए, सीढ़ियां आपको घर के ऊपर भी ले जाती हैं और सीढ़ियां आपको घर के नीचे भी ले आती हैं। उतार चढ़ाव से संबंध होने की वजह से सीढ़ियों का संबंध आपके जीवन में राहु और केतु के साथ बनता है। अब आपको बताते हैं कि सीढ़ियों के निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए या पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने ईशान कोण यानी पूरब उत्तर के कोने में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व के कोने में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां जितनी सीधी हों, जितनी सरल हों, उतना अच्छा होगा। सीढ़ियां कम घुमावदार होनी चाहिए और सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए।

भूल कर भी वहां पर मंदिर मत बनाइएगा, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम का होना और सीढ़ियों के नीचे मंदिर का होना बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी ना रही हो और आपने अपने घर में गलत तरीके से सीढ़ियां बनवा ली हों। अगर सीढ़ियां आपके घर में गलत बन गई हों तो क्या उपाय करेंगे? सीढ़ियों का रंग सफेद रखें तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, और सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करवा लिया है, सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है तो वहां पर एक तुलसी का पौधा लगाइएगा। सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे प्रकाश की उचित व्यवस्था आपको करनी चाहिए। जिस स्टेप पर सीढ़ियां शुरू हो रही हैं और जिस स्टेप पर सीढ़ियां खत्म हो रही हैं वहां पर एक हरे रंग का डोर मैट रख दीजिएगा। सीढ़ियों के नीचे टेबल लगा करके
पढ़ने लिखने की वस्तु में रख सकते हैं।

पढ़ने लिखने का काम कर सकते हैं या किताब रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे पानी रखना या सीढ़ियों के नीचे पानी रखने की व्यवस्था करना सबसे ज्यादा नकारात्मक माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, अनावश्यक तनाव ना पालें, वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नजदीकी रिश्तों में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की सीढ़ियों के वास्तु और ज्योतिष के साथ कनेक्शन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे पुरुषों को हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए और उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आज तुम बड़े हो गए, विचार करना तुम्हारे माँ ने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाया। स्वयं गीले में सोई, तुम्हें सूखे में सुलाया। स्वयं रोती रही पर तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया, तुम्हारे जीवन को धन्य किया। इसलिए भैया वो माँ वहाँ रहती है, ना जाने क्या क्या विचार करती होगी, हमारी बिटिया हमारा बेटा विदेश गया है, कमाएगा खाएगा हमारा नाम रोशन करेगा। इसलिए भैया इस धरती पर रहकर अपने माता अपने पिता अपने परिवारजन सबको साथ लेकर के चलना, एकता के साथ रहना, सबको अपना मान कर रहना। परदेश की भूमि में हमें सबको अपना मान कर चलना है, बड़ा बनना है तो परिवार को एक करके चलो, अपनी संस्कृति की रक्षा करके चलो। जागना है तो तीसरा सूत्र जागने के लिए, पहला सूत्र संस्कृति का संरक्षण, दूसरा सूत्र परिवार की एकता, और तीसरा सूत्र अपने परिवार में आने वाली पीढ़ियों की ठीक से परवरिश, ठीक से परवरिश करवाओ। बहुत सावधानी पूर्वक याद रखना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। हम जैसी संगत करेंगे हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। संगत को सावधानी पूर्वक और भगवान को प्रभु को मालिक को धन्यवाद देना मत भूलना, उनको धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दो, अपने मालिक को धन्यवाद दो, अपने आराध्य को धन्यवाद दो, अपने माता पिता को धन्यवाद दो। विचार करो, माता पिता ने अगर तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो क्या तुम इस पृथ्वी पर होते? माता पिता का सम्मान करो, मां से बढ़कर की दुनिया में कोई नहीं। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है। बहुत से लोग तरसते हैं मां के सुख के लिए, मां की छाया के लिए, और हम लोग स्टेटस के नाम पर, हम लोग अपनी लाइफ सेटलमेंट के नाम पर, हम लोग फ्यूचर ब्राइट के नाम पर अपने उस प्राचीन परंपरा को, अपनी उस छत्र छाया को, अपनी उस जननी को भूल जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारी मजबूरी है। भैया कितनी भी मजबूरी हो, तुम 24 घंटा अपने लिए निकालते हो, एक घंटा अपने परिवार के लिए निकालो। 8 घंटा तुम सोते हो, एक घंटा परिवार के लिए, एक घंटा अपनी संस्कृति के लिए जरूर निकालो। भैया जीवन में सब कुछ प्राप्त है तुम्हें और सब कुछ मिलेगा, पर टिकेगा तभी जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जब माँ बाप की छत्र छाया होगी तभी टिके। बुरा ना मानना, हम तो बहुत साधारण जगह से हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ना हमारी कोई उतनी योग्यता है, हम तो साधारण जगह से हैं, पर हमारी जो भी सामर्थ्यता है ना, इसमें पूरा का पूरा प्रसाद हमारे माँ बाप और हमारे गुरुदेव का, ये गुरु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि हम कुछ बोलने की सामर्थ्यता है। हम ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा हमारी बुद्धि नहीं है, हम दिमाग से खेल ही नहीं पाते क्योंकि हम सीधा सीधा खेलते, पर भैया वो खुश नसीब होते हैं जिनकी माँ होती है। अपनी मातृभूमि को मत भूलना, अपने माता पिता को मत भूलना, उनके उपकार को मत भूलना। कुछ लोग कहते हैं हम भूले तो नहीं है, पर तुम उनका उपकार चुका भी तो नहीं रहे। आप भूले नहीं हो तो आपने किया क्या? बहुत से बच्चे माता पिता से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या किया, हम आपसे पूछते हैं कि आपने अपने माँ बाप के लिए क्या किया, आपने ऐसा क्या किया माँ बाप के लिए? बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है कि ऐसा नाम कमाए कि वो किसी भी नगर की गली के कोने की नुक्कड़ की पान की दुकान पर तुम्हारा पिता खड़ा हो तो बगल में निकलने वाला ऑटो वाला कह दे ये फलाने का पिता खड़ा हुआ है। जब इस महान विचारधारा के साथ आप अपने जीवन शैली को जिएंगे, तब हम गर्व के साथ कह सकेंगे आप बड़े से बड़े संकटों में भागेंगे नहीं, जागेंगे। क्योंकि आपके पास संकट मोचन भी तो है, आपको संकट से क्या घबराने की आवश्यकता। कौन है आपके पास? जोर से बोलो, जोर से बोलो, संकट मोचन भी तो है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। संकट कटे
1: सब
0: मिटे सब पीड़ा, संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ाने का काम सरकार का, उनके चरणों को पकड़ो। कैसा भी संकट आ जावे घबराना, कैसी भी विपत्ति आ जावे घबराना नहीं। पर भैया, अगर आपको जागना है तो पहले अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करो। आप स्टेटस ऑफ फ्यूचर ब्राइट के चक्कर में भागे जा रहे, दौड़े जा रहे, जिंदगी जिए जा रहे, पर कभी विचार कर मुड़ कर देखना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं या नहीं। इसलिए रोज सोने के पहले 5 मिनट विचार करो, आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किस पर क्रोध किया, किसको प्रेम बांटा, और क्या सुधार करना। 5 मिनट आत्म मंथन करो, बाकी तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, हम तुम्हारे लिए अपने सरकार से प्रार्थना करें, हम अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे, और केवल प्रार्थना इसलिए करेंगे कि आपके जीवन में संस्कृति उत्थान उन्नति। हम तो यहाँ आकर के कह भी रहे थे, हमने पूनम बहन को भी कहा कि यहाँ आकर हम अपने आराध्य हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि दुबई यूएई इसकी खूब उन्नति हो गए, यहाँ रहने वाले लोगों का खूब भला हो गए, सबके जीवन में भक्ति जागे। भैया, हम आपको भगाने नहीं, जगाने आए। इसलिए भागना नहीं है, क्या करना है जोर से तो बोलो, क्या करना है। तो आज का सूत्र किस किस को याद रहेगा, हमें भागना नहीं है, क्या करना है, जागना है। और जागना कैसा, कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए है, या कुछ दिनों के लिए पक्का, पर इतने ज्यादा भी मत जाग जाना कि फिर बोझ हो ही ना। जागना तो है, इतना जागना है जिसमें हमारा आपका आत्म कल्याण हो सके। क्या हो सके, अरे जोर से बोलो, आत्म कल्याण। तो अब जागने के सूत्र कितने हैं, 3। कौन कौन? ध्यान, ज्ञान, स्वयं के अहमता का दान। फिर से सुनो, ध्यान, ज्ञान और स्वयं की अहमता का दान। अहम मतलब ईगो, दुनिया में जितनी भी लड़ाई है ईगो की लड़ाई है, सब ईगो में मरे जा रहे हैं। ईगो हर्ट होता है तुरंत, अरे मुझे ऐसा कहा। अभी कोई बहुत फेमस आदमी आ जाए, उसे बैठने ना पूछो, तुरंत उसकी पूरी अध्यात्म पूरी आस्था बिखर जाएगी। हमें नहीं पूछा, हमें अरे हो गए बागे सो सट नक्कटा ठटरी के बरे। पूरी दुनिया में लड़ाई अभिमान की है। और याद रखना, दुबई में रहने वाले प्रियजनों, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान से नहीं, भगवान से भरना है, इसलिए अहमता में नहीं। तो 3 सूत्र हैं जागने के, कौन कौन बोलो बोलो, ध्यान, ज्ञान, अहमता का दान। फिर से बोलो, अहमता का। आज से ध्यान कौन कौन करेगा, प्रतिदिन 5 मिनट, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। अच्छा, ज्ञान अर्जित कौन कौन करेगा, अपनी संस्कृति का, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। और तीसरा, अहम को शून्य कौन कौन करके अपने जीवन में शांति पाएगा, पाने की कोशिश करेगा, पक्का। देखो, हमारा संकल्प स्पष्ट है, हम भारत में तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपकी अंग्रेजी में कहें तो आई एम बिजी मैन, लेकिन हम भारत से बाहर इसलिए निकले हैं, अब हम भारत के अन्य साथ साथ
1: जितने भी देशों में जा पाएंगे वहां के लोगों को विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ शांति का सूत्र देंगे। कोई खर्चा नहीं और कोई पर्चा नहीं, केवल हनुमान जी की।

भैया हमारा क्या कहना दुनिया वालों। तो एक काम करना है, पूछो क्या। अरे जोर से तो पूछो।

देखो, जब विपत्ति आएगी, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध। जब संकट आएगा, आपके कर्म और आपका ज्ञान और आपका विवेक ही आपको बचाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठा करके

इसलिए भैया हमारी बात को नोट कर लो, पूछो क्या। मन मेरा कहना, आप लोग भी तो गाओ ना। मन मेरा कहना नहीं तो क्यों माटी का खिलो। किसमें मिल जाएगा बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो। अरे किसमें मिल जाएगा,

भैया हमारी बात को सुन लो, कान खोलकर, भागना सरल है जागना कठिन है। क्या कठिन है? अरे जोर से तो बोलो। तो कौन कौन जागना चाहता है? अच्छा हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। कैसे जागना चाहते? आंख खुलने वाला या अंतर्मन से? अंतर्मन से जागने का उपाय क्या है बताओ? बस और क्या उपाय है अंतर्मन से जागने का? एक ध्यान। क्या? अरे जोर से बोलो, ध्यान। जागने का पहला उपाय है, दूसरा उपाय है ज्ञान। दूसरा उपाय क्या है? ज्ञान का मतलब जान लेना, ध्यान का मतलब देख लेना। तो पहला उपाय है ध्यान, दूसरा उपाय है ज्ञान, और तीसरा उपाय अपने आप का दान। संपत्ति का दान नहीं, अपने आप का दान। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना किसी से प्रेम हो ना किसी से दुश्मनी, ऐसी जिंदगी। मिल जाए तो प्रसन्नता नहीं और खो जाए तो गम नहीं, ऐसी जिंदगी जिसमें ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब अपने हैं और सब सपने हैं। सब अपने भी हैं लेकिन सब। तो जागने के तीन उपाय, एक है ध्यान, दूसरा है ज्ञान। अच्छा महाराज जी, ये ज्ञान कौन सा, ज्ञान कौन सा जिससे जागा जा सकता? पीएचडी करने से नहीं कोई जागता है। पीएचडी करनी चाहिए जानकारी की वृद्धि के लिए, पीएचडी पढ़ना, डीएड, बीएड, सीए, वीए, जो भी करना है करो, पर ज्ञान का मतलब है यह सत्य मान लेना और जान लेना कि जो कुछ है सब कुछ नश्वर है, कुछ भी स्थिर रहने वाला, ये ज्ञान। दूसरा, तीसरा उपाय ध्यान है। ये ध्यान का मतलब अपने आप का दान है। ये दान का मतलब क्या है? अपने आप को विलय कर देना। जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो पानी का मूल्य भी दूध के समान हो जाता है, उसी प्रकार मानव, उसी प्रकार मनुष्य, उसी प्रकार यह नर जब नारायण में मिल जाता है तो इसका मूल्य भी बढ़ जाता है। तो जागने के कितने उपाय हैं बोलो? तीन। कितने उपाय? पहला उपाय ध्यान, दूसरा उपाय ज्ञान। पर महाराज ज्ञान कहाँ मिलेगा? जिसके पास ज्ञान होगा वहीं से मिलेगा। किसके पास ज्ञान है?

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: सावन के महीने में शिव भक्ति की अद्भुत छटा बिखर रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने के लिए जाते हुए शिव भक्तों से पूरा कांवड़ मार्ग चमक रहा है। मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत तक में एक से बढ़कर एक आकर्षक कांवड़ दिख रहे हैं, तो सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक लगे कांवड़ शिविरों में कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है।

0: आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं देवों के देव महादेव। सच्चे मन से की गई भक्ति को भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग बताया गया है। इसीलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्तों का जतन इस सावन मास में देखने को मिल रहा है, जो भगवान भोले शंकर का प्रिय मास है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष और रंग बिरंगी कावड़ के साथ शिव भक्त अपनी राह पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर जब कावड़ यात्री निकलते हैं तो रास्ते में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इस कावड़ यात्रा में कोई शिव भक्त 251 तो कोई 551 तो कोई 651 लीटर तो कोई 1001 लीटर गंगा जल की कावड़ लेकर हरिद्वार से यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचा। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी कावड़ देखने को मिल रही है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उन्हीं में से एक कावड़ ये है जो 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस कावड़ की एक विशेष बात ये है कि इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर के अचानक से दर्शन होते हैं। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कावड़ यात्रा में इस बार महिलाओं का जत्था भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ से महिलाओं का जत्था कई गाड़ियों के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश देते हुए हरियाणा के रोहतक की ओर बढ़ता दिखा। वहीं हरिद्वार से बागपत की सड़कों से गुजर रही एक कावड़ भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस कावड़ के साथ हरियाणा के नाहरी के रहने वाले शिव भक्त मंजीत दहिया फिटनेस का संदेश देते हुए चल रहे हैं। ये पुशअप लगाते हुए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा तय कर रहे हैं। इन कावड़ यात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह शिविर भी लगाए हुए हैं, जहां इनके रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सहारनपुर में पुलिसकर्मी भी कावड़ियों की मदद करते नजर आए। उन्हें खाने पीने का सामान देने के साथ ही उनकी मरहम पट्टी करते भी पुलिसकर्मी दिखते हैं। हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली के रास्ते बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं, जिनकी सुविधा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक शिविर ये है, जहां कावड़ियों का खाने पीने से लेकर हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।
1: वजन उठा के जो है ये भक्त जो है लेकर आया। अच्छा, इनकी कंधे की एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हालत है। भारी कावड़ उठाने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है कि कितना वजन उठा के, लेकिन आस्था का ये एक रूप है जो आपको ये नजर आ जाएगा कि अच्छी खासी संख्या में जो है ये लोग वजन उठा के जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं, जल जो है पवित्र स्थानों से लेकर आते हैं और उसके बाद जो है शिवालय में जो है जल अभिषेक करते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
2: हरिद्वार से।
1: हरिद्वार से लाए? दिल्ली में ही रहते हैं?
2: हाँ जी।
1: दिल्ली में कहाँ रहते हैं?
2: नागलोई।
1: नागलोई, तो अभी कितना लंबा सफर और तय करना है?
2: 30 किलोमीटर और
1: करना है।
0: यूपी में प्रयागराज से लेकर रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में कावड़ यात्री दिखाई पड़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हर दिन श्रद्धालुओं का जत्था झारखंड के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है।
3: तस्वीरें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि दुधमुहे बच्चे को लेकर भी महिलाएं जो है वो बोलबम की तरफ जा रही है, देवघर की तरफ जा रही है। आपका क्या नाम है?
4: सावन।
3: आपका क्या कहना है?
4: चले जाएंगे
3: आप।
0: कांवड़ यात्रा को लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों तक में जिस तरह से जोश दिख रहा है, वो इनकी आस्था और भक्ति के गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, दिल्ली से मनीषा लड्डा, चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। यहां हर दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़ मार्ग पर भव्य छटा देखने को मिल रही है। मुंगेर के रास्ते कांवड़ लेकर देवघर की ओर बढ़ते हुए शिव भक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

0: श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। सुल्तानगंज से जल भरकर यहां बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर जाने के रास्ते में कांवड़ यात्रियों की आस्था और भक्ति के कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुंगेर में असरगंज स्थित कच्ची कांवड़िया पथ से हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। कोलकाता से 15 शिव भक्तों के एक जत्थे ने लोगों का विशेष रूप से अपनी ओर ध्यान खींचा। ये जत्था लगभग 80 किलो वजनी माँ तारा की भव्य प्रतिमा को कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर लेकर बैद्यनाथ जा रहे हैं। 4 शिव भक्त मिलकर इस प्रतिमा को उठाए हुए हैं और पूरा मार्ग बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है।
1: इस बार हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को।
0: देवघर जाने के रास्ते में बोलबम के जयकारे के बीच भगवान शिव के वेश में जा रहा ये शिव भक्त भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुंगेर के ही रहने वाले सत्यपाल हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इसी रूप से सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर बाबा धाम पैदल जाने का संकल्प लिया है।
2: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
0: वहीं मधुबनी के रहने वाले रमेश डाक बम को देखिए, जो कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रमेश पिछले 2 वर्षों से आंखों पर इसी तरह पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ चल रहे साथी रमेश को रास्ता दिखाते हुए बोलबम का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रमेश ने संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है और जब तक वो पूरी नहीं होती, ये इसी तरह सावन मास में आंखों पर पट्टी बांधकर बैद्यनाथ धाम जाने की बात कहते हैं। बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ये शिव भक्त वहां भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सावन मास के 8वें दिन भी यहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ी।
3: हमारे बाबा जी प्रमुख हैं, क्योंकि यहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है, और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो बाबा पूजा पूरा करते हो। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा सबों की मनोकामना पूरी करते हैं।
0: बैद्यनाथ धाम की विशेष मान्यताओं को लेकर यहां श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता है। विशेषकर सावन मास में यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। इस हफ्ते 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां भगवान भोले का जलाभिषेक कर चुके हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सावन के पवित्र महीने में बाबा भोले के जयकारों से गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की ऐसी बयार बह रही है मानो धरती का कण कण जीवंत हो, नाच रहा हो। भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ देश दुनिया के करोड़ों मंदिर और शिवालयों में भोले के भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है। इन सब के बीच कांवड़ियों का जोश तो देखते ही बन रहा है। सावन में अब बारी दूसरे सोमवार की है, साथ ही सावन की शिवरात्रि भी आने वाली है। सावन के दूसरे सोमवार के साथ ही शिवरात्रि के पावन अवसर में क्या कुछ संयोग बन रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।

0: सावन के पावन महीने में हर कोई शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शिवालयों में बम भोले की जयकार हो या फिर पवित्र नदियों के तट पर कांवड़ियों का मेला, और फिर चाहे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का रेला हो, भोले की भक्ति में झूमते नाचते गाते इन कांवड़ियों
1: में भोले के भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। इन सब के बीच कांवड़ियों का जोश तो देखते ही बन रहा है। सावन में अब बारी दूसरे सोमवार की है, साथ ही सावन की शिवरात्रि भी आने वाली है। सावन के दूसरे सोमवार के साथ ही शिवरात्रि के पावन अवसर में क्या कुछ संयोग बन रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।

सावन के पावन महीने में हर कोई शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शिवालयों में बम भोले की जयकार हो या फिर पवित्र नदियों के तट पर कांवड़ियों का मेला, और फिर चाहे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का रेला हो, भोले की भक्ति में झूमते नाचते गाते इन कांवड़ियों

साईं बाबा में अपनी अनंत आस्था को इस भक्त ने स्वर्णाक्षरों में सुशोभित कर दिया। दुबई के इस भक्त ने सोने के बने राम शब्द को बाबा को अर्पित किया। कुछ दिनों पहले इस भक्त ने एक मुराद मांगी थी। बाबा के आशीर्वाद से मुराद पूरी हुई तो भक्त ने भी स्वर्णाक्षर अर्पित करने के अपने संकल्प को पूरा किया इस सुनहरे राम शब्द के निर्माण। साईं बाबा में अपनी अनंत आस्था को इस भक्त ने स्वर्णाक्षरों में सुशोभित कर दिया। दुबई के इस भक्त ने सोने के बने राम शब्द को बाबा को अर्पित किया। कुछ दिनों पहले इस भक्त ने एक मुराद मांगी थी।

0: बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास, फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का कमाल देखने को मिला, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टूर्नामेंट का जीता खिताब, उज्बेक खिलाड़ी को शानदार मात दी। दुबई में 28 अगस्त से शुरू होगा महिला एशिया कप, 5 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मुकाबला, 8 टीमें होंगी शामिल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: दिल्ली एनसीआर में शानदार बारिश के साथ वीकेंड का आगाज हुआ, रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। लगातार हुई बारिश, तापमान में आई गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, कहीं कहीं ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, दिन भर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। शिमला में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। लगातार हुई बारिश से शहर की सड़कों पर भरा पानी, ट्रैफिक की थमी रफ्तार, वाहनों की गति पर लगा ब्रेक। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला में 7 और 8 अगस्त को भी बारिश जारी रहने की संभावना, 9, 10 और 11 अगस्त को भारी बारिश की आशंका। बागेश्वर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी, जगह जगह पर मलबा आने से जनपद में 15 सड़कें बंद। लगातार बारिश से ऋषिकेश में अलर्ट, गंगा घाटों और एसडीआरएफ और वाटर पुलिस तैनात की गई, लोगों से नदी से दूर रहने की अपील। लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों में बढ़ाई सतर्कता। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुआ, लगातार बढ़ते जलस्तर से पक्के घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हुई। वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर में भी बाढ़ के पानी में समाया मंदिर, तो वहीं 9 डिग्री के एंगल पर झुका ये मंदिर लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बना। काशी में सावन की पहली बारिश ने खोली व्यवस्थाओं की पोल, शहर की आधा दर्जन कॉलोनीज बनी तालाब। गढ़चिरौली में पुल पानी में बहा, 4 करोड़ की लागत से बने पुल का 3 साल पहले हुआ था उद्घाटन, गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ यातायात ठप। गुरुग्राम में बारिश रुकने के बावजूद दिल्ली रोड पर पुलिस लाइंस के पास जलभराव हुआ, वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। मेवात में हुई झमाझम बारिश, लगातार हुई बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राहत वाली बरसात बरसी, लोगों को मिली उमस और गर्मी से निजात। भुवनेश्वर में हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कोसी बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के 56 में से 34 गेट खोल दिए गए। आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, अगले 4-5 दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। इटावा में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की।

चेतावनी जारी की गई। मोरबी में एक अनोखी घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वीर पर पड़रा गांव में एक कुएं का पानी हिलता हुआ देखा गया। लोगों ने कैमरे में कैद किया ये पूरा नजारा। यूपी के मिर्जापुर में ओवरब्रिज से जुड़ी अप्रोच रोड के किनारे का हिस्सा बारिश में ढहा।

0: राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हैंडलूम डे पर पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह, शहीद परिवारों का होगा सम्मान। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल आयोजन, शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में होगा सुरक्षा अभ्यास। इसराइल में एनएसजी, दिल्ली पुलिस, अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का लेंगे जायजा। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास, फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग। देवभूमि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए मंडी जिले के एक जनप्रतिनिधि की शानदार पहल, शराब मुक्त शादी रचाने पर आयोजक परिवार को 11,000 नगद का इनाम। कटिहार में टीचर बने डीएम आशुतोष द्विवेदी, सरकारी स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाते हुए नजर आए, छात्रों के सवालों के जवाब दिए। स्कूल दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने खेल मैदान में भी आजमाए हाथ, खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल को किक मारकर खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों का बढ़ाया उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा, आज तक करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। कांवड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटे की जोड़ी, संगम नगरी से मध्य प्रदेश तक का पूरा करेंगे सफर। पिछले 5 सालों से लगातार कांवड़ ला रही हैं सोनू, 5 साल पहले भोलेनाथ से मांगी संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होने पर शुरू की पवित्र यात्रा की प्रथा। स्टील के घड़ों में करीब 80 लीटर गंगा जल के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा, भविष्य में पावन यात्रा के लिए बेटे को भी कर रहे हैं ट्रेन। कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम, यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ियों से भी जिलाधिकारी ने मुलाकात की, लिया फीडबैक, श्रद्धालुओं का जाना हाल। मुंगेर में कच्ची कांवड़िया पथ पर आस्था का अनोखा नजारा, 80 किलो की मां तारा प्रतिमा लेकर निकले शिव भक्त, सावन में भक्ति के रंग नजर आए। कोलकाता के 15 शिव भक्तों का जत्था बना आकर्षण का केंद्र, प्रतिमा को कांवड़ से सजाकर जा रहे बाबा धाम, विशाल गणेश कांवड़ ने भी खींचा ध्यान। आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम की यात्रा, शिव भक्त रमेश ने मन्नत पूरी होने तक जारी रखने का लिया संकल्प। भगवान शिव के रूप में सत्यपाल बने आकर्षण का केंद्र, शांति और पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। हर कदम पर दिख रही है आस्था की अनोखी तस्वीर, बोलबम के जयकारों से गूंजा मार्ग, अनोखे अंदाज में कांवड़ यात्रा कर रहे हैं भक्त।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रो

0: रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाई और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली, और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मेहरबान, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। आस्था उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, भारी बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्री के दर्शन, भगवान के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में नजर आ रहे भक्ति और आस्था के अनूठे रंग, उज्जैन काशी हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा, कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच यात्रा जारी, अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास, फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी, 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का कमाल देखने को मिला, सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 टूर्नामेंट का जीता खिताब, उज़्बेक खिलाड़ी को शानदार मात दी। दुबई में 28 अगस्त से शुरू होगा महिला एशिया कप, 5 सितंबर को भारत पाकिस्तान में के बीच खेला जाएगा मैच, 8 टीमें शामिल होंगी।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सावन का पावन महीना चल रहा है और आ रहे हैं दुर्लभ ग्रहण। हम इसी की बात करने जा रहे हैं क्योंकि भोलेनाथ की भक्ति और सावन की पवित्रता के बीच आसमान में बनने जा रहा है दुर्लभ खगोलीय संयोग। इस बार सावन सिर्फ आस्था का महीना नहीं बल्कि खगोल और ज्योतिष दोनों ही नजरियों से बेहद खास बन गया है। एक ओर करोड़ों शिव भक्त व्रत जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के जरिए देवों के देव महादेव की आराधना में लीन हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस पावन महीने में आसमान दो बड़ी खगोलीय घटनाओं का साक्षी बनने जा रहा है। पहले श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या पर साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण, और फिर श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। करीब 18 साल के बाद सावन में फिर वही दुर्लभ संयोग बन रहा है। देखिए आ रहे हैं दुर्लभ ग्रहण।
1: सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने श्रद्धालु व्रत अभिषेक और पूजा पाठ के जरिए महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस साल सावन का महीना और भी खास बन गया है क्योंकि इसी पावन माह में साल 2026 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। यही नहीं, साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी अगस्त महीने में लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र की नज़र से सावन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना बेहद खास है। सावन में अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। 18 साल पहले 2008 में भी सावन माह में ऐसा ही ग्रहण संयोग बना था, तब भी सावन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और सावन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था। 1 अगस्त को श्रावण अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगा था और फिर 15 दिन बाद 17 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था। ठीक वैसा ही संयोग इस साल 2026 में बना है। इस साल भी श्रावण मास की अमावस्या और श्रावण पूर्णिमा पर ग्रहण लगने वाले हैं। 18 साल बाद भगवान शिव के प्रिय माह सावन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। सूर्य ग्रहण सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या को लगेगा, वहीं चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: एक तरफ शिव भक्त महादेव की साधना और जप तप में लीन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सावन महीने में पड़ रहे दो दो ग्रहण वैश्विक प्राकृतिक और ज्योतिषीय हलचलों के बड़े संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें, दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, किस दिन कब से कब तक लगेगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आइए दोनों ग्रहण और उनके असर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

0: साल 2026 की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में शामिल पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को दिखाई देगा। ये साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन पड़ने के कारण इस ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र और खगोल विज्ञान दोनों ही नजरिए से ये सूर्य ग्रहण बेहद खास माना जा रहा है। ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा। इस तरह से जहां पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर होगा वहां दिन में ही अंधेरा छा जाएगा।
1: देखिए जातक खारे सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुणा फलकारी होता है। जब कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा।
0: खगोलीय गणना के मुताबिक 12 अगस्त को लगने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ये मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वहीं यूरोप के अधिकांश देशों, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भागों में ये आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आएगा।
2: इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो रहेगा ग्रीनलैंड में, आइसलैंड, पुर्तगाल, पश्चिमी रूस, स्पेन, अमेरिका, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि देशों में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। अब आप कहेंगे जब इसका प्रभाव रहेगा तो हमारे भारत देश में क्यों बार बार दिखाया जा रहा है। आइए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो लग रहा है ग्रहण वो कर्क राशि में लग रहा है, कर्क राशि के साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है।
0: ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं के अनुसार 12 अगस्त 2026 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। चूंकि ये ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक रात के समय होगा, इसलिए भारत में इसे नहीं देखा जा सकेगा। भारतीय समय के मुताबिक 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण रात 9:04 से लेकर देर रात 1:27 तक लगेगा। इस दौरान रात 11:17 पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा।
2: 12 अगस्त दिन बुधवार को जो ग्रहण लग रहा है वो सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो ग्रहण हमारे देश में नहीं लगेगा क्योंकि उस समय रात्रि काल होगा। और ग्रहण जो लगने का समय है रात्रि को 9:04 पर लगेगा और रात को 1:27 पर समाप्त होने का समय है।
0: भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई न दे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। प्रकृति के साथ साथ सभी राशि के लोगों पर ये अपना असर छोड़ सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं, मौसम बदलाव और वैश्विक राजनीति में उथल पुथल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है और मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। चूंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।
1: देखिए ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि यदि जो है ग्रहण जो है आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में दिखाई ना दे, उसका ना तो सूतक माना जाता है, ना उसका जो है कोई प्रभाव मंदिर इत्यादि के ऊपर पड़ता है, ना किसी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं जिनके ऊपर मानते हैं कि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
0: सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण सुबह में 6:53 पर लगेगा। इसका समापन उसी दिन दोपहर में 12:32 पर होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में और शतभिक्षा नक्षत्र में लगेगा। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के देशों में दिखाई देगा। 28 अगस्त को साल के अंतिम चंद्र ग्रहण पर भी सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। सावन के महीने में लगने वाला सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, सूतक नहीं लगने से पूजा पाठ सामान्य रूप से जारी रहेंगे। धर्माचार्यों के मुताबिक इस दौरान लोग भगवान शिव या अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील खगोलीय घटना माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव मानव जीवन, मन और वैश्विक व्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ता है। सूर्य को आत्मा, पिता, अधिकार, मान सम्मान और स्वास्थ्य का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा को मान, माता, भावनाओं, जल और मानसिक शांति का कारक माना जाता है। और माना जाता है कि ग्रहण काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बाधित होती है, जिससे वो समय भौतिक कार्यों के लिए वर्जित लेकिन आध्यात्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको बताते हैं ज्योतिष के अनुसार क्या है ग्रहणों का महत्व और खास तौर से सूर्य ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है।
4: होने वाली है अद्भुत घटना, लगने वाला है साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। सूर्य सारी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है। ऐसे में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण का जितना असर दूसरे ग्रहों पर होता है, उतना ही इसका प्रभाव धरती और मनुष्यों पर पड़ता है। किसी के लिए ग्रहण अच्छे प्रभाव छोड़ता है तो किसी के लिए ये आफत का सबब बन जाता है। दरअसल सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना भर नहीं है, बल्कि इसका अपना धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। सनातन धर्म के पौराणिक इतिहास में वर्णित कई महत्वपूर्ण और युगांतकारी परिवर्तन लाने वाली घटनाएं सूर्य ग्रहण के दिन ही घटित हुई थी। पुराणों के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। इसी तरह रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने खर दूषण का वध किया था, उस दिन सूर्य ग्रहण था। इसी तरह महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे थे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। तो वहीं महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। इसी तरह कृष्ण की नगरी द्वारका जिस दिन डूबी थी, उस रोज भी सूर्य ग्रहण था। यानी जब जब दुनिया में कोई बड़ी घटना हुई तो सूर्य ग्रहण से उसका कनेक्शन रहा है। लेकिन विज्ञान की नजर में ये एक खगोलीय घटना है, तो वहीं ज्योतिष शास्त्र इसे अलग नजरिए से देखता है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह माना जाता है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो हर कुंडली पर इसका प्रभाव भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: धर्म और ज्योतिष से परे अगर विज्ञान की नजर से देखें तो सूर्य ग्रहण की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक अपने अपने टेलीस्कोप और तमाम उपकरणों के साथ सूरज से जुड़े कई रहस्य खोजने में जुट जाते हैं। सुपर पावरफुल कैमरा से सूरज की अनगिनत तस्वीरें खींची जाती हैं और फिर इन तस्वीरों का महीनों तक या कई बार तो सालों तक विश्लेषण होता है और इस स्टडी से निकल कर आते हैं अंतरिक्ष और खास तौर पर सूरज से जुड़े कई रहस्य।

0: अंतरिक्ष कौतूहल और रहस्य का वो खजाना है जिसे पूरी तरह से जान पाना आज तक इंसान के लिए मुमकिन नहीं हो सका। धरती अगर इंसान का जीवन है तो चंद्रमा और सूर्य उसका परम सत्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के बंधन से बंधी है तो पृथ्वी के चारों ओर घूमना चांद की नियति है। दिन और रात के चक्के पर घूमता जीवन यूं तो अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन जब धरती और सूरज की रोशनी के बीच चांद की छाया आ जाती है तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। तो चलिए पहले आपको समझाते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर है क्या। दरअसल जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जहां ये छाया पड़ती है वहां या तो सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूरज का एक हिस्सा छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, लेकिन जब सूर्य कुछ देर के लिए पूरी तरह चंद्रमा के पीछे छिप जाता है तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। भले ही अंतरिक्ष में सूरज, धरती और चांद के इस अद्भुत संयोग के ज्योतिष या धार्मिक महत्व को आप न मानते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व को कोई खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रहण ही वो समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेक विलक्षण घटनाएं घटती हैं, जिनसे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यों की पहेली सुलझाने में मदद मिलती है। 1968 में लाकेर नाम के वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के मौके पर की गई खोज के सहारे ही सूरज की सतह पर हीलियम गैस की मौजूदगी का पता लगाया था। प्रकाश कणों की गति पर ग्रेविटी के प्रभाव के बारे में आइंस्टीन का नियम भी सूर्य ग्रहण के मौके पर ही सही साबित हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञान की गणना के मुताबिक पूर्ण सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट का ही हो सकता है, लेकिन इन गिनती के मिनटों में ही दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों को कई काम करने पड़ते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ली गई तस्वीरों और जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण कई महीनों तक चलता रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि सूर्य और उसकी किरणों के प्रभाव को सही तरीके से समझ लिया जाए तो हैरतअंगेज परिणाम लाए जा सकते हैं। यही वजह है कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को भले ही धर्म और ज्योतिष विज्ञान अपने अपने नजरिए से देख रहे हों, लेकिन दुनिया भर के स्पेस वैज्ञानिकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अंतरिक्ष के कुछ और राज समझने का एक सुनहरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन में ही इस साल का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण की व्याख्या केवल ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से ही नहीं की जाती, वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंद्र ग्रहण को देखा जाता है। लिहाजा चंद्र ग्रहण के विज्ञान को समझना भी जरूरी है।
2: हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण का बहुत महत्व है। शास्त्रों में ही ग्रहण से जुड़ी कई बातें कही गई है। धर्म के आधार पर चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम पहलू तो हमने आपको बता ही दिए, लेकिन चंद्र ग्रहण का अपना एक विज्ञान है। धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी चंद्र ग्रहण खास होता है। विज्ञान के मुताबिक ग्रहण पूरी तरह खगोलीय घटना है। शास्त्रों के अनुसार भले ही ग्रहण को शुभ और अशुभ की कसौटी पर कसा जाता है, लेकिन विज्ञान में ग्रहण को महज खगोलीय घटना माना जाता है। दरअसल विज्ञान कहता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इस स्थिति को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में ही घटता है। एक साल में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। हमारे देश में ग्रहण को लेकर कई अंधविश्वास भी हैं, जबकि विज्ञान ग्रहण को लेकर किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता। उल्टे वैज्ञानिक तो सलाह देते हैं कि इस खगोलीय घटना का आनंद लें और अंधविश्वास में ना पड़ें। विज्ञान के मुताबिक इस खूबसूरत खगोलीय घटना में एक ही बार चंद्रमा, सुपर मून और लाल रक्त चंद्रमा दिखाई देते हैं। चंद्र ग्रहण के चलते पृथ्वी की छाया चांद की पूरी रोशनी को ढक लेती है। ऐसे में सूर्य की रोशनी पृथ्वी की वायुमंडल से टकराकर जब रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद चमकीला हो जाता है। जब चांद धीरे धीरे धरती के पीछे छुप जाता है तो उसका रंग ज्यादा गहरा हो जाता है और तांबे के रंग जैसा यानी गहरा लाल दिखने लगता है। इस रंग के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इसे खुली आंखों से देखना चाहिए या नहीं। खुली आंखों से देखने से कहीं आंखों की रोशनी कम या फिर खराब तो नहीं हो जाएगी। विज्ञान इस बात को सिरे से नकारता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि खुली आंखों से इसे देखने से कोई नुकसान नहीं होता और ये सूर्य ग्रहण से अलग होता है। चंद्र ग्रहण को देखने के लिए किसी चश्मे या प्रोटेक्टिव फिल्टर्स की जरूरत नहीं होती और खुली आंखों से चांद का दीदार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ अभी के लिए जेएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब रुख करते हैं अंतरिक्ष का, जहां चांद को लेकर एक बार फिर से दुनिया की दिलचस्पी बढ़ गई है। भारत चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटा है। अमेरिका और चाइना भी अपने अपने मून मिशंस को रफ्तार दे रहे हैं। ऐसे में चांद से जुड़ी एक नई खबर ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया है। दरअसल स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चांद की सतह से टकरा गया है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस टक्कर से क्या नई जानकारी सामने आती है और क्या चांद के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठेगा।
2: चांद की सतह से रॉकेट की टक्कर का सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो खुद स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने शेयर किया है। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, लेकिन इसकी अहमियत अंतरिक्ष में हुई उस अनोखी घटना से जुड़ी है जो चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने में मददगार हो सकती है, क्योंकि अब ये पुख्ता हो चुका है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चंद्रमा की सतह से टकरा गया। ये टक्कर भारतीय समय के अनुसार 5 अगस्त 2026 को दोपहर लगभग 12:05 पर हुई। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट को जनवरी 2025 में फ्लोरिडा से अमेरिका और जापान के 2 लूनर लैंडर को अंतरिक्ष में भेजने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का यह हिस्सा अंतरिक्ष में ही रह गया। आखिरकार भटकते हुए वो अब चंद्रमा की सतह से जा टकराया है। चांद की सतह से रॉकेट के उस हिस्से की टक्कर की असली तस्वीरें तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बारे में कुछ बेहद खास और दिलचस्प जानकारियां सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट का जो हिस्सा चंद्रमा से टकराया उसका आकार स्कूल बस के बराबर था। ये भी बताया गया है कि उसका वजन 4000 किलोग्राम था। करीब 8690 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमते हुए वो चांद से जाकर टकरा गया। ये टक्कर चांद के आइंस्टीन क्रेटर के पास हुई। आइंस्टीन क्रेटर चांद के उस हिस्से में है जहां दिन का उजाला रहता है और जो पृथ्वी से दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टक्कर को आम टेलीस्कोप से देख पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त बेहद कम रोशनी थी। बहरहाल जिस स्पीड से ये टक्कर हुई उसको देखते हुए ये चिंता पैदा हो गई कि चांद या अंतरिक्ष के बाकी हिस्से पर उसका कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसी आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है।
3: This poses absolutely no danger to anyone on Earth or any hardware on the moon. And in fact, scientists are eager to study this impact event as it can help us constrain how to track things like this in the future.
2: वैज्ञानिकों की माने तो करीब 1.5 साल से अंतरिक्ष में भटक रहे रॉकेट के इस हिस्से की राह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे बदल गई। लिहाजा वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगा रहे थे कि रॉकेट चांद की ओर जा रहा है और उससे टकरा सकता है।
3: NASA did not purposely plan to have this upper stage impact the moon. However, this is not something we're really concerned about. This is actually a technically accepted and safe method of disposing of hardware in low lunar orbit. And in some cases, mission operators actually choose.
2: धीरे धीरे बदल गई। लिहाजा वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगा रहे थे कि रॉकेट चांद की ओर जा रहा है और उससे टकरा सकता है।
3: NASA did not purposely plan to have this upper stage impact the moon. However, this is not something we're really
2: वैज्ञानिकों की माने तो करीब 1.5 साल से अंतरिक्ष में भटक रहे रॉकेट के इस हिस्से की राह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे बदल गई। लिहाजा वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगा रहे थे कि रॉकेट चांद की ओर जा रहा है और उससे टकरा सकता है।
3: NASA did not purposely plan to have this upper stage impact the moon. However, this is not something we're really concerned about. This is actually a technically accepted and safe method of disposing of hardware in low lunar orbit. And in some cases, mission operators actually choose.
2: धीरे धीरे बदल गई। लिहाजा वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगा रहे थे कि रॉकेट चांद की ओर जा रहा है और उससे टकरा सकता है।

0: नगर में यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज। कांवड़ सेवा शिविर में की कांवड़ियों की सेवा, यात्रियों के दबाए पैर, परोसा भोजन। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 सप्ताह तक चली कठिन ट्रेनिंग। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद कमाल सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टूर्नामेंट का जीता खिताब। उज्बेक खिलाड़ी को दी शानदार मात।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: सच गई है। खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। लंच टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
0: कांवड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटी की जोड़ी। संगम नगरी से मध्य प्रदेश तक का पूरा करेंगे सफर। कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम। यात्रा की सुरक्षा सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, श्रद्धालुओं का जाना हाल। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच दिखा अनोखा नजारा। एसएसपी संग पत्नी और बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते आए नजर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम। बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 सप्ताह तक चली कठिन ट्रेनिंग।
2: दिल्ली एनसीआर में शानदार बारिश के साथ वीकेंड का आगाज हुआ। रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। शिमला में हुई झमाझम बारिश, लोगों को मिली गर्मी से थोड़ी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 9, 10 और 11 अगस्त को भारी बारिश की आशंका। बागेश्वर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी, जगह जगह मलबा आने की वजह से जनपद में 15 सड़कें बंद। लगातार बारिश से ऋषिकेश में अलर्ट, गंगा घाट पर एसडीआरएफ और वाटर पुलिस तैनात की गई। लोगों से नदी से दूर रहने की अपील। वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर में भी बाढ़ के पानी में समाया। 9 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ ये मंदिर लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र रहा।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियन। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए गौरव का पल। मोहम्मद अशफाक ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में बनाई जगह। कोरिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तन्वी शर्मा। प्री क्वार्टर फाइनल में श्रेयांशी को 21-16, 17-21 और 21-13 से भी मात। टीम इंडिया का फिटनेस लेवल सुधारने की पहल के तहत आया नया रूल। अब 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना जरूरी। 1200 मीटर की दौड़ 5.20 मिनट में करनी होगी पूरी। भारतीय विमेंस टीम के साउथ अफ्रीकी दौरे के स्केड्यूल में बदलाव। अब इस दौरे पर एक टेस्ट और 3 वनडे के साथ खेले जाएंगे 3 T20 मैचेस।
2: आज अमित राय की ओ माय डॉग सिनेमा घरों में होगी रिलीज। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का 0 भी आज से रिलीज होगा। इसमें हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सिगल और साथ ही शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स शामिल हैं। आर माधवन की फिल्म जीडी

0: एन होगी रिलीज। जीडी नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रियामणि, जयराम और सत्यराज जैसे स्टार्स आएंगे नजर। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज मैं वापस आऊंगा, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी दिलजीत, वेदांग रैना, शर्वरी वाघ और नसीरुद्दीन शाह की स्टारर फिल्म। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी हो रही है रिलीज, देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है ये सीरीज।
1: चीन के सिचुआन प्रांत में पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है मशहूर टॉर्च फेस्टिवल, इसमें बॉनफायर, लोक नृत्य और पारंपरिक कार्यक्रमों का लोग जमकर ले रहे हैं आनंद। चीन की रोबोट बनाने वाली कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स शेयर बाजार में उतरने की तैयारी में, कंपनी 10 अगस्त से अपना खोलेगी आईपीओ। 97 साल की ब्रिटिश महिला ने बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर का रिकॉर्ड किया अपने नाम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। भगवान शिव के प्रिय सावन महीने में नजर आ रहे हैं भक्ति आस्था के अनूठे रंग। उज्जैन, काशी, हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता। पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा है गजब का उत्साह। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा। कड़ी सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच यात्रा जारी। अब तक करीब 5,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम मेहरबान। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है रिमझिम बारिश। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट।
2: बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 सप्ताह तक चली कठिन ट्रेनिंग।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का कमाल देखने को मिला। दरअसल सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 टूर्नामेंट का जीता उन्होंने खिताब। उज्बेक के खिलाड़ी को दिशानदार मात।

0: और लंच टाइम की करते हैं शुरुआत सावन के साथ। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन यानी देवों के देव महादेव का सबसे पसंदीदा महीना माना जाता है कि सावन में शिव पार्वती का पूजन बहुत ज्यादा फलदायी होता है, इसलिए सावन के महीने का अलग ही महत्व है। तो जैसा कि हर साल सावन के महीने में होता है, देशभर के शिवालय शिव भक्तों की आस्था से गुलजार है। शिवालय से ज्योतिर्लिंग तक हर हर महादेव के जयकारों से हर दिशा गुंजायमान है। उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में भी शिव भक्तों की ऐसी ही अटूट श्रद्धा और समर्पण नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोजाना महाकाल के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सावन के सोमवार को तो आस्था का ये सैलाब और भी ज्यादा विशाल बन जाता है। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 1.25 लाख श्रद्धालु ने महाकाल में दरबार में शीश झुकाया था। मान्यता है कि इस साल भी सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और गुड न्यूज टुडे की टीम भी सावन के शुभ अवसर पर महाकाल के धाम पहुंची है और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस कर रही है। महाकाल के दरबार में शिव भक्तों की भक्ति से भरी ये पूरी तस्वीरें, पूरी बातचीत हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए महाकाल की महिमा पर ये खास रिपोर्ट।
1: महाकाल के दरबार की ऐसी रौनक, ऐसी भव्यता, दिव्यता यूं तो सालों भर रहती है। पूरे साल महाकाल का दरबार शिव भक्तों से गुलजार रहता है। जय महाकाल के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहता है, लेकिन सावन के पावन महीने में इस दरबार की रौनक और बढ़ जाती है। जय महाकाल के साथ बम बम भोली की गूंज से भी पूरा परिसर गुंजायमान हो जाता है। महाकाल के दर्शन के पुराने रिकॉर्ड टूटते हैं और एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। खासतौर पर सावन के हर सोमवार और शनिवार रविवार को भोले के भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पिछले साल पूरे सावन भादो महीने के 39 दिनों में रिकॉर्ड 1,25,00,000 श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इस साल खासतौर पर सावन के हर सोमवार और शनिवार रविवार को भोले के भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। पिछले साल पूरे सावन भादो महीने के 39

0: और जय श्री महाकाल के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो चुका है। तो महाकाल के दरबार में कैसा है भक्ति का उत्सव, किस तरह शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण नजर आ रही है, देखिए गुड न्यूज टुडे संवाददाता नवजोत रंधावा की एक खास रिपोर्ट।
1: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन, समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते एक घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, हम लोग मिलेनियम स्कूल से आए हैं यहाँ पे। एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे। हाँ। कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा। आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे?
3: लगे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे।
3: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
1: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: हम पुणे से आए हैं।
1: अच्छा,
4: हम कल से यहाँ आके।
1: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना?
4: हमारी बहुत सारी टोली,
1: सारी मैडम्स और सर्स दोनों, सब लोग साथ हो जाएं।
4: श्रद्धालु
1: तो पहले, सबसे पहले जय महाकाल।
5: जय महाकाल।
1: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
5: कर लिए।
1: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
6: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
6: हाँ, पूरे हुए।
1: मैं ये जानना चाहूँगी, आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
4: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
6: बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
6: कली
1: शुरुआत। तो अब महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
6: अभी इंदौर जा रहे हैं हम, ओंकारेश्वर।
7: ओंकारेश्वर जाएंगे।
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं
7: कोऑर्डिनेटर?
1: अच्छा, कोऑर्डिनेटर
4: सब करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
6: बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
6: कली
1: शुरुआत। तो अब महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
6: अभी

0: महाकालेश्वर
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
2: बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
2: कल ही
1: शुरुआत की है। तो अब महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
2: अभी इंदौर जा रहे हैं हम, ओंकारेश्वर।
0: ओंकारेश्वर जाएंगे।
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं
3: कोऑर्डिनेटर रहे
1: हैं? अच्छा, कोऑर्डिनेटर।
4: कांवड़ यात्रा की रौनक अपने चरम पर है। हर तरफ भगवा रंग, हर जुबान पर बम बम भोले और हर कदम शिव भक्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांवड़ मार्गों की दिव्य छटा देखते ही बन रही है। जगह जगह पुष्प वर्षा, भव्य स्वागत द्वार, सेवा शिविर और श्रद्धालुओं के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं आस्था को और भव्य बना रही है। शहर शहर सजे कांवड़ शिविरों में सेवा ही सबसे बड़ी साधना बन गई है। कहीं भोजन का प्रसाद है तो कहीं इलाज, तो कहीं विश्राम की व्यवस्था। भोले के भक्तों की सेवा में हजारों हाथ जुटे हुए हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा है। कंधों पर कावड़ उठाए शिव भक्त भक्ति, अनुशासन और उत्साह के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं शिवालय में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और महाआरती के साथ सावन की भक्ति अपने चरम पर है। मानो पूरा देश इस समय एक ही स्वर में गूंज रहा हो, हर हर महादेव, बम बम भोले।

0: आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं देवों के देव महादेव। सच्चे मन से की गई भक्ति को भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे आसान मार्ग बताया गया है, इसीलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए शिव भक्तों का जतन इस सावन मास में देखने को मिल रहा है, जो भगवान भोले शंकर का प्रिय मास है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष और रंग बिरंगी कावड़ के साथ शिव भक्त अपनी राह पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर जब कावड़ यात्री निकलते हैं तो रास्ते में आस्था और भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इस कावड़ यात्रा में कोई शिव भक्त 251 तो कोई 551 तो कोई 651 लीटर तो कोई 1001 लीटर गंगा जल की कावड़ लेकर हरिद्वार से यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचा। मुजफ्फरनगर में कई ऐसी कावड़ देखने को मिल रही है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उन्हीं में से एक कावड़ ये है जो 15 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है। इस कावड़ की एक विशेष बात ये है कि इसमें लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से भगवान शिव शंकर के अचानक से दर्शन होते हैं। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कावड़ यात्रा में इस बार महिलाओं का जत्था भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ से महिलाओं का जत्था कई गाड़ियों के साथ शिव की भक्ति, नारी की शक्ति का संदेश देते हुए हरियाणा के रोहतक की ओर बढ़ता दिखा। वहीं हरिद्वार से बागपत की सड़कों से गुजर रही एक कावड़ भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। इस कावड़ के साथ हरियाणा के नाहरी के रहने वाले शिव भक्त मंजीत दहिया फिटनेस का संदेश देते हुए चल रहे हैं। ये पुशअप लगाते हुए 200 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा तय कर रहे हैं। इन कावड़ यात्रियों के लिए रास्ते में जगह जगह शिविर भी लगाए हुए हैं, जहां इनके रहने खाने से लेकर हर तरह की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। सहारनपुर में पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों की मदद करते नजर आए। उन्हें खाने पीने का सामान देने के साथ ही उनकी मरहम पट्टी करते भी पुलिसकर्मी दिखते हैं। हरिद्वार से जल भरकर दिल्ली के रास्ते बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिनकी सुविधा के लिए जगह जगह शिविर लगाए गए हैं। उन्हीं में से एक शिविर ये है, जहां कांवड़ियों का खाने पीने से लेकर हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है।
1: वजन उठा के जो है ये भक्त जो है लेकर आया। अच्छा, इनकी कंधे की एक बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की हालत है। भारी कावड़ उठाने के बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आती है कि कितना वजन उठा के, लेकिन आस्था का ही एक रूप है जो आपको ये नजर आ जाएगा कि अच्छी खासी संख्या में जो है ये लोग वजन उठा के जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं, जल जो है पवित्र स्थानों से लेकर आते हैं और उसके बाद जो है शिवालय में जो है जल अभिषेक करते हैं। कहाँ से आए हैं आप?
2: हरिद्वार से।
1: हरिद्वार से लाए? दिल्ली में ही रहते हैं?
2: हाँ जी।
1: दिल्ली में कहाँ रहते हैं?
2: नागलोई।
1: नागलोई, तो अभी कितना लंबा सफर और तय करना है?
2: 30 किलोमीटर और
1: करना है।
0: यूपी में प्रयागराज से लेकर रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिखाई पड़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हर दिन श्रद्धालुओं का जत्था झारखंड के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें खासकर महिलाओं और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है।

0: तस्वीरें देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तस्वीरें हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ तक कि दुधमुहे बच्चे को लेकर भी महिलाएं जो है वो बोलबम की तरफ जा रही हैं, देवघर की तरफ जा रही हैं। आपका क्या नाम है?
1: सावन।
0: आपका क्या कहना है?
1: चले जाएंगे
0: आप?
2: कांवड़ यात्रा को लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों तक में जिस तरह से जोश दिख रहा है, वो इनकी आस्था और भक्ति के गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय, दिल्ली से मनीषा लड्डा, चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो वहीं झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़ मार्ग पर भव्य छटा देखने को मिल रही है। मुंगेर के रास्ते कांवड़ लेकर देवघर की ओर बढ़ते शिव भक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

0: श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। सुल्तानगंज से जल भरकर यहां बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर जाने के रास्ते में कांवड़ यात्रियों की आस्था और भक्ति के कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुंगेर में असरगंज स्थित कच्ची कांवड़िया पथ से हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। कोलकाता से 15 शिव भक्तों के एक जत्थे ने लोगों का विशेष रूप से अपनी ओर ध्यान खींचा। ये जत्था लगभग 80 किलो वजनी माँ तारा की भव्य प्रतिमा को कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर लेकर बैद्यनाथ जा रहे हैं। 4 शिव भक्त मिलकर इस प्रतिमा को उठाए हुए हैं और पूरा मार्ग बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है।
1: इस बार हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को।
0: देवघर जाने के रास्ते में बोलबम के जयकारे के बीच भगवान शिव के वेश में जा रहा ये शिव भक्त भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुंगेर के ही रहने वाले सत्यपाल हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इसी रूप से सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर बाबा धाम पैदल जाने का संकल्प लिया है।
2: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
0: वहीं मधुबनी के रहने वाले रमेश डाक बम को देखिए, जो कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रमेश पिछले 2 वर्षों से आंखों पर इसी तरह पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ चल रहे साथी रमेश को रास्ता दिखाते हुए बोल बम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रमेश ने संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है और जब तक वो पूरी नहीं होती, ये इसी तरह सावन मास में आंखों पर पट्टी बांधकर बैद्यनाथ धाम जाने की बात कहते हैं। बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ये शिव भक्त वहां भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सावन मास के 8वें दिन भी यहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ी।
3: जी प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है, और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर श्रावण महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सबों की मनोकामना पूरी करते हैं।
0: बैद्यनाथ धाम की विशेष मान्यताओं को लेकर यहां श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता है। विशेषकर सावन मास में यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। इस हफ्ते 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां भगवान भोले का जलाभिषेक कर चुके हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: शिरडी में साईं बाबा के एक भक्त ने सोने का राम शब्द चढ़ाया है। करीब 76 ग्राम सोने से बने राम को द्वारका माई में स्थापित किया गया। इसी भक्त ने कुछ महीने पहले सोने के ओम साईं शब्द भी बाबा को अर्पित किए थे।

0: साईं बाबा में अपनी अनंत आस्था को इस भक्त ने स्वर्णाक्षरों में सुशोभित कर दिया। दुबई के इस भक्त ने सोने के बने राम शब्द को बाबा को अर्पित किया। कुछ दिनों पहले इस भक्त ने एक मुराद मांगी थी। बाबा के आशीर्वाद से मुराद पूरी हुई तो भक्त ने भी स्वर्णाक्षर अर्पित करने के अपने संकल्प को पूरा किया। इस सुनहरे राम शब्द के निर्माण में 76 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। दरअसल इस भक्त ने कुछ महीने पहले सोने से बने ओम साईं शब्द बाबा को अर्पित किए थे, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए थी। अब सोने के बने राम शब्द के आने से ओम साईं राम का जयघोष पूरा हो गया है।
1: दुबई के एक साई भक्त जो है, उन्होंने 76 ग्राम का सोने का राम अक्षर जो है वो बाबा को अर्पण किया है। उन्होंने इसके पहले ओम साई नाम के सोने के अक्षर जो है वो बाबा को अर्पण किए थे। तो ओम साई उन्होंने अर्पण किए थे, लेकिन उनको वो अधूरा अधूरा लगता था, इसलिए ओम साई राम ऐसे 3 सोने के अक्षर जो है उन्होंने अर्पण किए।
0: भक्त के अर्पित किए सोने के ओम साईं राम को द्वारका माई में स्थापित कर दिया गया है। यही वो जगह है जहां साईं बाबा अपना अधिकांश समय बिताते थे। यहीं पर वो भक्तों से मिलते थे और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को बाबा का आशीर्वाद मिलता था। अब एक भक्त की अटूट आस्था इसी द्वारका माई मंदिर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भक्तों के एक छोटे से ब्रेक का आपका ही मन जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुएं के पानी में उठती हुई लहरें।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए नजारे रिश्तों के सतरंगी रंग के। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: एनसीआर में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट।
3: भीगे मौसम के बीच आस्था, उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।

0: जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का 29वां जत्था अब तक
1: ये मौसम के बीच आस्था उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।
0: जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का 29वां जत्था, अब तक करीब 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन।
1: ये मांग पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर 10,000 बापा की मूर्तियों का किया गया वितरण।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लंच टाइम में। गुजरात के मोरबी जिले लिए चलते हैं आपको, जहां पर एक गांव में मौजूद 18 फीट गहरा एक कुआं इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। पिछले 5 दिनों से वीरपरड़ा गांव में इस कुएं में पानी में लगातार लहरें और तेज हलचल देखी जा रही है। इस अनोखी घटना ने ग्रामीणों के साथ साथ राहगीरों और आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी हैरान कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग इस रहस्यमय नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कुएं में लगातार हो रही हलचल को देखकर लोगों के बीच भूकंप की आशंका भी जताई जाने लगी है। मतलब जितने मुंह उतनी बातें, किसी अनहोनी की आशंका ने गांव वालों को डरा दिया।
3: एक दो दिन पहले शाम को हुआ था, सोमवार को जे, और दृश्य आज मैंने दोपहर को ये देखा था, तो मैंने पहले ये वीडियो बनाया और गांव के लोगों को बुलाया था। जो लोगों बोल रहा था कि वो एआई वाला नहीं है, वो सच है, इसलिए मैंने आज लोगों को बुलाया। पहले मैंने वीडियो उतारा था, जो
4: कुएं का पानी जो हिल रहा है वो हमारे गाँव में ये जाहिद भाई ने देखा था, तो उसने
0: तो कुएं के पानी के हिलने की खबर देखते ही पूरे मोरबी में ये खबर फैल गई। मोरबी जिले के कलेक्टर और भूर्ग भर शास्त्री भी पहुंचे। हालांकि सिस्मोलॉजी संस्थान ने भूकंप की आशंका खारिज की है। प्रारंभिक जांच में भारी बारिश के बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज के दौरान चट्टानों में फंसी हवा के बाहर निकलने को इसकी संभावित वजह बताया गया। मोरबी के डीएम ने भी भूकंप की आशंका को खारिज किया। हालांकि मोरबी कलेक्टर ने इस घटना की विस्तृत जाँच के आदेश भी दिए हैं।
5: आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो जियोलॉजिस्ट की टीम है उनके द्वारा इस स्थल की विजिट की गई। उनके ध्यान पे ये आया है प्राथमिक कि वहाँ पे एयर जो है बिकॉज ऑफ रेन, जो पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई है उसके कारण कुछ एयर नीचे एक्वीफर में ट्रैप हो गई है। जब उस एयर में मूवमेंट होता है तो उस कारण थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट ऊपर के सतह पे भी हमें देखने मिलता है। लोगों का ये डर है, लोगों की ये अफवाह है कि वहाँ शायद कोई सीज़मिक एक्टिविटी, ये भूकंप रिलेटेड कोई प्रश्न है, लेकिन इस बारे में हमने भूकंप जो जहाँ मेजर किया जाता है गुजरात का गांधीनगर में, वहाँ भी पूछताछ की है और पिछले 5-10 दिन में कोई ऐसी सीज़मिक एक्टिविटी अनयूजुअल ध्यान पर नहीं आई है। इसका अर्थ यही है कि ये जो घटना बन रही है वो एक लोकल एरिया, लोकल कोई ट्रैप होने के कारण बन रही है। इसके अलावा भी हमने गुजरात ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम को भी इन्फॉर्म किया है, आने वाले कुछ दिनों में वो भी विजिट करेंगे और हमें इस बारे में ज़्यादा स्पष्टता देंगे।
6: ये लग रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उसकी वजह से जो रॉक में से पोर स्पेसिस आते हैं इसमें से एयर रिलीज होने की वजह से ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ये हैवी रेनफॉल में नॉर्मल है। हम लोगों ने सिस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से परामर्श किया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से या कोई एक्टिव फॉल्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ग्राउंड वाटर स्टाफ को हम लोगों ने इंटीमेट किया है, वो लोग आए। ये लग रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो
1: अब बात कर लेते हैं मौसम की। दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। श्रीनगर में पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। डल झील में शिकारी की सैर के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हर जगह पर्यटकों की रौनक देखने को मिल रही है और सुबह की हल्की धुंध, शाम की ठंडी फिजाएं श्रीनगर के मौसम को और भी दिलकश बना रही है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भुवनेश्वर में बारिश से थोड़ी राहत मिली है वहां के लोगों को। दिल्ली में भी मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। दिल्ली में हर दिन रिमझिम बारिश हो रही है। श्रीनगर में भी शिकारा का लुत्फ उठाते सैलानी नजर आ रहे हैं। एक तरफ फिर से पहाड़ों का रुख सैलानी कर रहे हैं तो मौसम खुशनुमा हो गया है। गर्मी से राहत दिल्ली वासियों को भी मिलती नजर आ रही है।

0: सावन का महीना, ठंडी हवाएं और ये रिमझिम बारिश राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त मौसम मेहरबान है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के लिए ये फुहारे किसी वरदान से कम नहीं है। आसमान में बादलों का डेरा है, आसमान से बरसती ये बूंदे प्यासी जमीन को तरोताजा कर रही है। बात चाहे दिल्ली की हो या फिर राजधानी से सटे गुरुग्राम, मौसम मैदानी इलाकों का हो या फिर पहाड़ों का, आलम एक जैसा है। हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग तक मौसम अपने रंग दिखा रहा है। खुशनुमा मौसम के बीच तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले तीन दिनों तक बारिश का ये सिलसिला थमने वाला नहीं, यानी कि पूरे दिल्ली NCR के लिए बादलों ने फुल वीकेंड का प्लान तैयार कर लिया है।
1: देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश का सिलसिला बस कुछ दिन तक जारी रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन के बाद वापस से लोगों को उमस से एक बार फिर से परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, सुहाना हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से जो है तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई।
0: जहां एक ओर लोग बारिश का लुत्फ उठाने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने कई जगहों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गुरुग्राम में आलम ये रहा कि कई इलाके पानी से लबालब हो गए। यहां सड़कों पर हुए जलभराव के बीच लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आए। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। नदी नाले उफान पर है जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की करें तो यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का बहाव इतना विकराल हो चुका है कि उसने किनारे पर बसे इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। सावन के महीने में मौसम की ये मनमर्जियां यूं ही जारी रहने वाली है। इस हफ्ते बादलों का वीकेंड प्लान तो तैयार है, लेकिन आप जहां भी रहें सावधानी के साथ बरसात का आनंद लें और खतरे वाली जगह से दूरी बनाए रखें। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुरुग्राम से नीरज श्रीवास्तव और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको लिए चलते हैं चीन के सिचुआन, जहां पर मशहूर मशाल उत्सव पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। यहां पर लोक नृत्य, पारंपरिक कार्यक्रमों का लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। ये उत्सव 19 जुलाई से शुरू हुआ, इसमें कई सांस्कृतिक और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दरअसल घुड़दौड़, कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल जिनका आयोजन किया जा रहा है, इन प्रतियोगिताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये उत्सव बुराई पर विजय के साथ अच्छी फसल की कामना को लेकर मनाया जा रहा है। यहाँ लोग बॉनफायर और लोक नृत्य का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उत्सव ही ऐसा गजब है। चीन के सिचुआन प्रांत में ये उत्सव मनाया जाता है, जहां पर मशाल लेकर लोग खड़े हैं और पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं, बॉनफायर भी यहां पर किया गया।
3: क्रोएशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी से राहत पाने का एक उपाय ही यहां खूब चर्चा में बना हुआ है। ये राहत एक घुड़सवारी से जुड़ी है, लेकिन खास बात यह है कि घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में एक खास बात है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए खास रिपोर्ट।
0: घुड़सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बालकन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये

0: formula ढूंढ निकाला।
1: Prijatelj dolazili ovako na plažu, osvežiti se s njima kad ne bi mogli otići na terensko jahanje zbog vrućine. I onda kad smo krenuli sa rančom, smo u principu uveli to kupanje s konjima i postavili se da ljudima baš zanimljivo.
0: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और लंच टाइम में ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब आपको राजधानी के भारत मंडपम लिए चलते हैं, जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेनिम शो चल रहा है। जी हाँ, इस प्रदर्शनी में देश विदेश की 700 से ज्यादा ब्रांड शिरकत कर रही हैं। बदलते फैशन ट्रेंड की झलक तो यहाँ देखने को मिल ही रही है, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ा उद्योग को नई दिशा देने वाली मशीनें भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की रिपोर्ट देखिए।
2: कहते हैं फैशन कोई भी हो वो हर 6 महीने में चेंज हो जाता है, लेकिन आजकल हम बात चेंज होते हुए फैशन के साथ साथ नई जनरेशन की कर रहे हैं, जो कि बहुत तेजी से बदल रही है, चाहे वो जेंजी हो चाहे वो जेन अल्फा हो। डेनिम शो में हम ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेनिम को लेकर जेंजी और जेन अल्फा की चॉइसेस किस तरह की हैं, वो किस तरह की जीन्स पहनने की कोशिश कर रहे हैं या वो प्रेफर कर रहे हैं उस तरह की जीन्स खरीदने की। मेरे साथ वासुदेव टिपरे जी है। सर, थोड़ा सा आइडिया कि जीन्स तो डेनिम तो हम देख रहे हैं कि जनरेशन से लोग पहनते चले आ रहे हैं, अभी जनरेशन आई है जेंजी जेन अल्फा, उनका टेस्ट बड़ा अलग है पिछली जनरेशन के हिसाब से, क्या चेंजेस आप लोग देख रहे हैं और कैसी चॉइसेस हैं उनकी आजकल, खासकर डेनिम्स को लेकर?
3: अब फॉर्चुनेटली आप ऐसे मिल से बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिल ऑफ इंडिया है, और हम ऑलमोस्ट 30-35 साल से डेनिम बना रहे हैं, और हमने डेनिम को इवॉल्व होते हुए देखा है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सिर्फ डेनिम एक वज़न के हिसाब से बिकता था, 14.5
2: के हिसाब से,
3: 14.5 ऑन्स 13.5 ऑन्स से दो ही क्वालिटी बनती थी और हर लोग यूज़ करते थे। डेनिम एक ज़माने में जब उसकी शुरुआत हुई थी, इसको एक काउबॉय के हिसाब से पहनते थे लोग, एक रफ एंड टफ फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबर या फिर वो घोड़ा चलाने वाले लोग उसके लिए पहनते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेनिम हैज़ इवॉल्व अ लॉट। अभी आप देखिए तो एक अलग टाइप के डेनिम बन रहे हैं। आप डेनिम आजकल लोग ट्रैवलिंग में पहन रहे हैं।

0: ऑफिस में पहन रहे हैं, अपने जब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं उसके लिए पहन रहे हैं, ट्रैवलिंग में पहन रहे हैं, और उसके अलग अलग यूजेस डेनिम के काफ़ी सामने आए हुए हैं। अभी जो नया जनरेशन जिसकी आप स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए, ये लोगों को एक लूज फिट, एक सॉफ्ट हैंड फील और अलग स्टाइलिंग के जीन्स पसंद है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जीन्स है इसका स्टाइलिंग देख लीजिए, ये पूरा लूज फिट है, ये कम्फर्ट है, ये एक रिजिड है। तो इस तरीके के पैटर्न में इस तरह के जीन्स आजकल के जींस को बहुत पसंद है।
1: देखिए डेनिम शो में एक बहुत ही शानदार चीज़ हमें मिली है, कहीं भी हम जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कपड़ों में तो उसे बार बार हम लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम पे अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार AI सॉल्यूशन लेकर आए हैं, AI वस्त्रा इनका नाम है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने आपको खड़े होना है, ये आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आप डिज़ाइन चूज करते जाइए, आप पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है, वो कपड़ा कैसा लग रहा है, सब कुछ ये बताता चलेगा। मेरे साथ चांद बादशाह जी हैं और गौरी शंकर जी हैं, इन दोनों का ही ये पूरा इनोवेशन है। तो सर शुरू करें, कैसे ये पूरा होता है, एक डेमो अगर हमें मिल जाए। नाम इसका AI वस्त्रा ही है,
2: वस्त्रा है सर, इसका नाम ये वस्त्रा है। तो बिफोर बाइंग आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं आउटफिट आप पे कैसा दिखेगा। सो अब एक डेमो क्रिएट करके बता रहा हूँ आपको लाइवली। अब ये मेंस वेयर, ये डिवाइस आपको वुमेन वेयर, मेन वेयर, बॉय और गर्ल के लिए
1: चार कैटेगरी
2: है। सो अभी मैं आपको मेन का डेमो बता रहा हूँ, आप जस्ट मेन का क्रिएट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, एंड यू विल सी ऑल कैटेगरी इमेजेस अपलोडेड हियर।
1: क्या ट्राई करना है आपको, टी शर्ट ट्राई करनी है, शर्ट ट्राई करनी है?
2: यस सर, हम पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, अनलिमिटेड ऑप्शन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स ये एप्लीकेशन के कैटेगरीज क्रिएट होंगे।
1: ये ब्लेजर है, हुडी है, कुर्ता है, जैकेट है, सूट है, पोलो टी शर्ट्स है, या फिर आप जो भी ट्राई करना चाहें, जो भी कस्टमर लेने आ रहा है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर देंगे,
2: कस्टमाइज कर सकते हैं।
1: अगर कोई सिर्फ वेडिंग का काम कर रहा है तो उसमें आप सिर्फ आप लहंगा और ब्लेजर और शूट सब डाल देंगे।
2: हाँ, वेडिंग के लिए, ट्रेडिशनल वेयर के लिए अलग से एप्लीकेशन है, ये पे आप वही पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करके ट्रेडिशनली चेक कर सकते हैं आप। एंड मैं आपके आपके सूट का ट्रायन और पोलो का ट्रायन बताता हूँ। अभी मैं पोलो पे सेलेक्ट करा,
1: एंड पे करते चलिए,
2: सूट पे करेंगे, अभी सूट क्लिक करा, आप एक सूट सेलेक्ट कर दीजिए, आपका कौन सा डिजायर्ड सूट है। You just have to select the suit and आप इधर आ जाइए, एक ट्राई ऑन क्लिक करके बताता हूँ लाइव।
1: अब ये मैंने सूट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या ट्राई करना है।
2: तो यहाँ करने के बाद सिंपली आपको स्टार्ट ट्राई ऑन बटन क्लिक करने का है। ओके, स्टार्ट बटन क्लिक करो, यहाँ पे फोजेस बता रहे हैं,
1: पोस्चर बताया किस तरह खड़े होना
2: है, सर खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद आप रेडी हो गए, आई एम रेडी क्लिक करो, देन आप फोटो अपलोड भी कर सकते हैं फोन से या कैमरा से भी अपलोड कर सकते, कैमरा लेके फोटो ले सकते
1: हैं। ओके, ये देखिए,
2: नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो वेरी रियलिस्टिक ड्रिपिंग आएगा, रियलिस्टिक रहेगा,
1: मतलब आप बार बार जो आप ट्रायल रूम की तरफ भागते थे,
2: yes, sir,
1: उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी।
2: एग्जैक्टली, हाँ, आप कस्टमर का टाइम सेव कर सकते हैं।
3: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रच दिया, उन्होंने एक राउंड बाकी रहते ही सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा ने दुनिया भर में एक बार फिर से भारत का परचम लहराया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखीर सिंदारोव के खिलाफ बाजी ड्रॉ खेली, जिससे उनके खिताब पर मुहर लग गई। सिंदारोव भारत के प्रज्ञानंदा से 1.5 अंक पीछे रह गए। खिताबी जीत के बाद प्रज्ञानंदा ने कहा कि जब आप आखिरी स्कोर कार्ड देखते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ प्रज्ञानंदा को $50,000 यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 42 लाख रुपए का पुरस्कार मिला।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
3: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सास बहू और बेटियां में आज देखिए नजारे रिश्तों के सतरंगी रंग के। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: NCR में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। बारिश के मौसम के बीच आस्था उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का 29वां जत्था, अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। मुजफ्फरनगर में यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज, कांवड़ सेवा शिविर में की कांवड़ियों की सेवा, यात्रा के दबाए पैर यात्रियों के लिए परोसा भोजन। देश भर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। राजकोट में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की बढ़ी मांग, पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर 10,000 बप्पा की मूर्तियों का होगा वितरण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सावन के महीने में नजर आ रहे हैं भक्ति और आस्था के अनूठे रंग, पवित्र

कावड़ यात्रा में दिख रहा है गजब का उत्साह। उज्जैन, काशी, हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की विशाल कांवड़ लेकर चल रहा है संभल के रहने वाले 126 कांवड़ियों का जत्था। 11 अगस्त को संभल के श्री कल्की धाम क्षेत्र के में होगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। बुलंदशहर के लिए भी कांवड़ लेकर निकला है शिव भक्तों का एक दल। शिवजी के साथ विराजमान है खाटू श्याम की प्रतिमा। इस कांवड़ दल में महिलाएं भी शामिल। भगवान विष्णु और गरुड़ के स्वरूप की कांवड़ लेकर निकले हैं कई कांवड़िए। भगवान भोलेनाथ के बम बम के नारों से गूंज रहा है पूरा यात्रा मार्ग। पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है बिजनौर। हर तरफ नजर आ रही है अलग अलग रूप और स्वरूप की कांवड़। हापुड़ में नजर आई कलयुग में श्रवण कुमार की अनोखी कांवड़। 95 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले पोते। एक्सीडेंट के कारण खुद यात्रा करने में असमर्थ हैं दादी। यही वजह है कि सोनू और उनके भाई श्रवण कुमार की तरह उन्हें कंधे पर लाद कर ले गए हरिद्वार। करा रही हैं यात्रा। हरिद्वार से सिकंदराबाद लौट रहे हैं सोनू और उनके भाई। दादी की इच्छा और पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना है इस यात्रा का मकसद। सहारनपुर में भोले को मनाने के लिए निकला अनोखा शिव भक्त। भगवान शिव की सवारी नंदी को स्वरूप बैल को ही बना डाला कांवड़। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में नंदी को कराया गंगा स्नान। सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज। शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा में जुटे नजर आए मंत्री। कांवड़ शिविर पहुंचकर सबसे पहले शिवभक्तों का किया स्वागत। थके हुए कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर जाना उनका हालचाल। मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रद्धालुओं को परोसा भोजन। सेवा भाव का दिया संदेश। जीता कांवड़ियों का दिल। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा सहारनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा। शिव भक्त भी कांवड़ खुद अपने कंधों पर उठाकर उसे सुरक्षित साथियों तक पहुंचाया। कांवड़ यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अस्वस्थ अवस्था में लेटे एक शिव भक्त कांवड़िए पर पड़ी पुलिस की नजर। तुरंत उपलब्ध कराई प्राथमिक सहायता। कांवड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटे की जोड़ी। संगम नगरी में से मध्य प्रदेश तक का पूरा करेंगे सफर। पिछले 5 सालों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं सोनू। 5 साल पहले भोलेनाथ से मांगी संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होने पर शुरू की पवित्र यात्रा की प्रथा। स्टील के घड़ों में करीब 80 लीटर गंगाजल के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। भविष्य में पावन यात्रा के लिए बेटे को भी कर रहे हैं ट्रेन। कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम। यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ियों से भी जिला अधिकारी ने की मुलाकात। लिया फीडबैक श्रद्धालुओं का जाना हाल। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच दिखा अनोखा नजारा। एसएसपी के साथ पत्नी और बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए। एसएसपी ने पूरे परिवार के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कांवड़ियों को केले, फ्रूटी, शुद्ध पेयजल और अन्य खाद्य सामग्री बांटी। जीता कांवड़ियों का दिल। इस दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की। श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए। बागपत में आस्था की राह पर नजर आया सुरक्षा का कवच। सुरक्षित कांवड़ मार्ग सुनिश्चित करने के लिए रात भर डटे हुए नजर आए पुलिस ऑफिसर।
हाईवे पर तैनात पुलिस लगातार डाक कावड़ियों की गतिविधियों पर रख रही है नजर। आस्था की इस यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सतर्क है। सावन के महीने में शिव भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए तेजस्वी यादव। हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। हर की पैड़ी पहुंचे तेजस्वी यादव। गंगा में लगाई डुबकी। पवित्र स्नान के बाद विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। कांवड़ में गंगा जल भरकर ऋषिकेश के लिए रवाना हुए हैं तेजस्वी यादव। ऋषिकेश में भजन कीर्तन और सत्संग कार्यक्रम में होंगे शामिल। दस अगस्त को हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पैड़ी से कांवड़ लेकर रवाना होंगे उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक करेंगी यात्रा। करीब 22 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा के साथ करेंगे भगवान शंकर का जलाभिषेक। 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी मिलने की कामना के साथ करेंगी कांवड़ यात्रा।

दिख रहे भक्ति के अद्भुत रंग। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक हर ओर दिखाई दे रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जय बद्री विशाल और हर हर महादेव के जय घोष से भक्तिमय वातावरण में डूबा पूरा धाम। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकूट से गुजरा। अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम, बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हैंडलूम डे पर पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। पंद्रह अगस्त के दिन सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल होगी, तो वहीं शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में होगी सुरक्षा सख्त। इसराइल में एनएसजी, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का जायजा लेंगी। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 हफ्ते तक चली कठिन ट्रेनिंग। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए मंडी जिले के एक प्रतिनिधि की शानदार पहल देखने को मिली। शराब मुक्त शादी रचाने पर आयोजित परिवार को 11,000 नगद का इनाम दिया गया। कटिहार में टीचर बने डीएम आशुतोष द्विवेदी। सरकारी स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाते हुए नजर आए, छात्रों के सवालों के जवाब दिए। स्कूल दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने खेल मैदान में भी आजमाए हाथ। खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल का किक मारकर खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों का बढ़ाया उत्साह। छात्रों के लिए शिक्षा को ज्यादा दिलचस्प बनाना है मकसद, पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी रुचि बढ़ाने पर है जोर। दिल्ली एनसीआर में शानदार बारिश के साथ वीकेंड का आगाज हुआ। रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई, लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, कहीं कहीं ट्रैफिक की रफ्तार हुई सुस्त। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिनभर दिल्ली एनसीआर में मध्यम से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बरसात। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी। शिमला में भी हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 9, 10 और 11 अगस्त को भारी बारिश की आशंका। वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी बाढ़ के पानी में समाया, तो वहीं 9 डिग्री के एंगल पर झुका यह मंदिर लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बना। बागेश्वर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी, जगह जगह पर मलबा आने से जनपद में 15 सड़कें बंद। लगातार बारिश से ऋषिकेश में अलर्ट, गंगा घाटों पर एसडीआरएफ और वाटर पुलिस तैनात, लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। कोसी बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी, बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए बैराज के 56 में से 34 गेट खोल दिए गए।

0: गुरुग्राम में बारिश रुकने के बावजूद दिल्ली रोड पर पुलिस लाइंस के पास हुआ जलभराव, वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही है परेशानी। मेवात में हुई झमाझम बारिश, लगातार हुई बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राहत वाली बरसात, लोगों को मिली उमस और गर्मी से निजात। भुवनेश्वर में हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। कोसी बैराज से छोड़ा गया 2.5 लाख क्यूसेक पानी, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के 56 में से 34 गेट खोल दिए गए। श्रीलंका के दौरे पर वार्म अप मैच के पहले दिन टोटल शुभमन गिल टीम से बाहर हुए, प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ की उंगली में लगी चोट, केएल राहुल कर रहे हैं टीम की कैप्टनसी। बुमराह की जगह जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को पहली बार टेस्ट टीम में किया गया शामिल, सारांश जैन को मिला मौका। टीम इंडिया का फिटनेस लेवल सुधारने की पहल के तहत आया नया रूल, अब 10 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ना जरूरी है, 1200 मीटर की दौड़ 5 मिनट में करनी होगी पूरी। भारतीय विमेंस टीम के साउथ अफ्रीकी दौरे के शेड्यूल में आया बदलाव, अब इस दौरे पर एक टेस्ट और 3 वनडे के साथ खेले जाएंगे 3 T20 मैचेस। विमेंस एशिया कप में 5 सितंबर को खेला जाएगा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जारी किया शेड्यूल, 28 अगस्त को होगी टूर्नामेंट की शुरुआत।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहु और बेटियां में आज देखिए नजारे रिश्तों के सतरंगी रंग के। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
7: अभी तो देखते जाइए आप, बड़ा प्यार नजर आ रहा है ना दोनों के बीच। दीदी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और छोटे भाई ने हाथ ऐसे थाम रखा है मानो भरोसा दिला रहा हो मैं हूँ ना। पर इनका होना कितने काम का है वो तो देख ही रहे हैं आप। दीदी जब भी लड़खड़ा रही हैं, संभाल नहीं पा रहे जनाब, बस हौसला अफजाई किए जा रहे हैं। कोई नहीं, अगली बार संभाल लूंगा, पर आखिर कब तक? अब बहुत हो गया, रहने दो, हमें नहीं सीखना तुमसे। एक दूसरे पर खुद से ज्यादा भरोसा, प्यार, नोक झोंक, पल में रूठना, पल में मान जाना, यही तो है जो भाई बहन के रिश्ते को खास बनाता है। वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दिमाग की दाद तो देनी पड़ेगी, क्या जुगाड़ भिड़ाया है लड़के ने, एक पहिए से दो पहिए वाहन वाली रफ्तार पकड़ी है। देखिए कैसे फर्राटा भरे जा रहा है। रास्ता उबड़ खाबड़ हो या समतल, कोई फर्क नहीं पड़ता, रफ्तार तो तभी थमेगी जब ये चाहेंगे। एक बार को तो समझना मुश्किल हो गया कि ये पहिए के सहारे भला कैसे इतनी तेजी से भाग रहा है और ब्रेक कैसे लगेगा भला। लेकिन फिर पता चला कि इसने तो कमाल का जुगाड़ भिड़ाया है, एक पहिए में दो डंडा सेट करके एक पहिए वाली बाइक बना ली है इन्होंने तो। थमना हो तो बस पीछे की तरफ झुकना है, डंडा जमीन से लग कर रफ्तार थाम लेता है ना कमाल। पर इन्हें सीट का कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे भला कहां तक सफर कर पाएंगे, है कि नहीं। जो भी हो, बच्चे का ये जुगाड़ देखकर हर कोई हैरान है। माँ जैसा कोई नहीं, उसके प्यार में तो मानो जादू होता है। तस्वीर देखिए जरा, नन्हा बच्चा सड़क किनारे जमीन पर लेटा है, माँ की गोद में सर है और उससे बातें करते हुए देखिए कैसे खिलखिला रहे हैं जनाब, मानो जन्नत की सैर पर हूँ। सचमुच माँ के चेहरे में भगवान की सूरत और उसकी हर अदा में मानो चमत्कार हो, जो अभाव में भी भरे पूरे होने का एहसास करा जाती है। माँ बेटे की ये प्यारी तस्वीर लोगों का दिल छू रही है। ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। कहीं सुनसान जगह पर ट्रेन रुकी हुई है, सामने रेलवे ट्रैक पर एक कछुआ उल्टा लेटा हुआ है, मदद के लिए छटपटा रहा है। तभी ट्रेन में बैठे किसी शख्स की नजर उस पर पड़ती है, वो ट्रेन से उतरता है और दौड़कर कछुए की मदद करता है, उसे वापस सीधा कर जंगल की तरफ छोड़ देता है ताकि वो चलकर अपनी राह ढूंढ सके। उस शख्स ने जिस तरह से कछुए की मदद की वो देखकर लोग उसकी दयालुता की तारीफ कर रहे हैं। कोई इधर उधर न हो जाए इसलिए ये इंतजाम है, बच्चे तो बच्चे हैं, जिधर मन करे चल देंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें यूं बांधकर उनके होठों की मुस्कान ही छीन ले। कुछ लोग इनकी टीचर की इस तरकीब को पसंद नहीं कर रहे, तो कोई इसे सेफ्टी के लिहाज से सही भी ठहरा रहा है, पर बच्चों का मासूम चेहरा जिस तरह से उतरा हुआ है वो देखकर तो इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली NCR में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। केरलम में भारी बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया रेड अलर्ट, शिक्षण संस्थानों में छुट्टी। बारिश के मौसम के बीच आस्था, उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का 29वां जत्था, अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। मुजफ्फरनगर में यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज, कांवड़ सेवा शिविर में की कांवड़ियों की सेवा, यात्रियों के दबाए पैर, परोसा उनके लिए भोजन। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज, नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। राजकोट में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की बढ़ी डिमांड, पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर 10,000 बप्पा की मूर्तियों का होगा वितरण।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और फेटिया यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। कहते हैं कि एक अच्छी किताब ना इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती है। वैसे बात तो सही है, एक अच्छी किताब हमें हंसाती है, रुलाती है, सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन कभी कभी जिंदगी जीने का एक नया नजरिया भी दिखा देती है। अब कई लोगों को रहस्य पसंद है, कई लोगों को प्रेम कहानियां, कई लोगों को जीवनी पढ़ना पसंद है, तो कई लोगों को प्रेरणादायक कहानियां। तो आज तो किताबों के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें और उसके साथ साथ मुलाकात करवाएंगे आपके फेवरेट सितारों से जिनकी कहानियां भी किताबों से कम नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का यह सफर हेडलाइंस के साथ।
4: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां में आज देखिए होगा अनु और राजनंदिनी का आमना सामना, साथ ही आएगा मंगलसूत्र का ट्विस्ट। विक्रांत की याददाश्त, खुश होकर गले लगाएगी मन्नत। रियांश और विद्या को बचाने के लिए प्रीत बनेगी मर्दानी, राघव करेगा इनकी रक्षा। अपनी चलेगी चाल, होगा ईशा को शक।

0: माथुर मनाएंगी जीत का जश्न, शामिल होंगे अलायंस के सितारे। और साथ ही परिणीता बोर ठाकुर और मानसी श्रीवास्तव चलाएंगी अपनी आंखों का जादू सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: हल्की फुल्की कहानियां और हास्य भरी किताबें भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आती हैं। वैसे हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर हमेशा मुस्कुराहट रहे सूरज और ईशा के चेहरे पर, लेकिन क्या करें, आते हैं कहानी में ऐसे ट्विस्ट कि हम भी परेशान हो जाते हैं। सोचिए उन पर तो क्या ही बीतती होगी। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर, क्योंकि सुनने में आया है कहानी में कुछ तो होने वाला है नया। लेट्स चेक इट आउट।
0: ईशा अपने की जासूसी, सामने आएगा अवनि का सच।
2: अवनि, अब मुझे सच सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं?
0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज ईशा काफी परेशान है और देखिए कैसे वो अपने कमरे में इस फाइल को ढूंढती है, और जब फाइल उसे मिलती है तो उसका पूरा शक यकीन में बदल जाता है कि इस फाइल के साथ किसी ने छेड़खानी की है और वो कोई और नहीं बल्कि अवनि ही है। ऐसे में सूरज भी ईशा के साथ है और देखिए कैसे आज वो ईशा की बातों पर यकीन कर रहा है। असल में अवनि ताई जी को भी अपने साथ ले गई है, जिस वजह से सूरज और भी ज्यादा परेशान हो गया है।
3: क्या हुआ ईशा जी?
4: मुझे पता लग रहा है कि फाइल के साथ छेड़छाड़ हो गई। Oh no, सूरज, सिक्योरिटी डिटेल वाली पेन ड्राइव भी मिसिंग है।
3: आपके शक को सीरियसली ले लेना चाहिए था ना। मैं अपने को इस घर में लाता हूँ ना, ये सब होता।
4: अपनी बातों का वक्त नहीं है, अपनी बहाना बनाकर ताइवान को बाहर ले लेंगे। अभी हमें उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना है।
3: तो एक खरोच भी आएगा ईशा जी, सच बता रहा हूँ, अपने को छोड़ूंगा नहीं मैं। बड़े, जल्दी से अपने को ढूंढ, ताई माँ के साथ बाहर गई है मार्केट में।
0: ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि अवनि का ही है, जो छुपते छुपाते पहुंच गई थी ईशा के कमरे में। पंद्रह अगस्त को होने वाला है बड़ा प्रोग्राम, जिसमें अवनि कुछ बड़ा करने वाली है, और उसी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो ईशा के कमरे में पहुंची थी। और देखिए कैसे उसने अलमारी की चाबी ढूंढकर फाइल में से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, जिस बात से ईशा भी परेशान है।
3: पंद्रह अगस्त जो आ रहा है तो उससे रिलेटेड ईशा जी, जैसे कि आईपीएस है तो सब बंदोबस्त पे सारी पुलिस जो सुविधाएं हैं वो लगने वाली है, कहाँ कहाँ कितनी सिक्योरिटी होने वाली है, कैसे होने वाली है, तो इसकी सारी जो प्रेजेंटेशन होता है वो आई थिंक पीपीटी में है, सॉरी पेन ड्राइव में है, और वो पेन ड्राइव गायब है और कहीं ना कहीं ईशा जी के फाइल के साथ छेड़खानी की गई है। तो छेड़छाड़ी हुई है तो ईशा जी ये फाइंड आउट कर लेती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें डाउट रहता है, शक रहता है अवनि पे पहले से ही, एंड सूरज बातों को मानता नहीं, लेकिन ये देखने के बाद सूरज को ये शक हो जाता है कि आई थिंक ईशा जी का जो शक था वो सही था, मुझे पहले मान लेना चाहिए था इनकी बात जो थी। एंड ताइमा भी गायब है तो कहीं ना कहीं सूरज गुस्से में आता है, बोलता है अगर ताइमा को कुछ भी हुआ तो अवनि को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाउट जो है 70% आ गया है अवनि पे, कि अवनि कुछ तो षड्यंत्र, यू नो, मन ही मन में ख्याली पुलाव कुछ तो उसका चल रहा है जो हम सभी से नहीं बताई। डाउट तो बहुत बार हुआ लेकिन ईशा जी को हुआ था, और सूरज तो बस ये था कि मैं जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, तो उस चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस गए हैं फिर से सूरज ईशा। सो दैट्स ऑल कि अब सूरज दादा भाई ना हो कि सिर्फ सूरज है, पुराना सूरज है वो भी ईशा जी के लिए।
0: वहीं दूसरी तरफ ईशा और सूरज इससे पहले अवनि को अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा को हो गया था शक कि अवनि प्रेग्नेंट है ही नहीं, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट जो नहीं मिल रही थी।
2: इट्स वेरी स्ट्रेंज, ना ही बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दे रही है और इमेज भी मैप नहीं हो रही है।
3: बच्चा ठीक तो है ना डॉक्टर?
2: अवनि, अब मुझे सच सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं?
0: लेकिन फिर हार्ट बीट मिलती है और ईशा को यकीन हो जाता है कि अवनी प्रेग्नेंट है। खैर ईशा का ये शक तो गलत निकला, लेकिन अवनी कोई गड़बड़ करने वाली है, ये शक अब भी ईशा अवनी पर कर रही है।
3: ईशा जी को जो डाउट है कि अवनी प्रेग्नेंट है या नहीं है, बस उसी के लिए हम लोग मतलब कि दिमाग लगा के लेकर गए हैं, मतलब कि सूरज तो नहीं ईशा जी, एंड वहां पे जाने के बाद ईशा जी को पता चलता है कि या एक्चुअली अवनी प्रेग्नेंट है और ईशा जी का डाउट क्लियर हो जाता है कि मैं शायद से गलत सोच रही थी। तो उनका शक कहीं ना कहीं गलत साबित होता है और सूरज यही बोलता है ईशा जी आप ज्यादा सोचते हैं। तो अब यहाँ आने के बाद जब ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कुछ ही दिन, एक ही दिन के बाद, तो सूरज को लग रहा है मुझे पहले ही आपके शक पे पहल कर लेना चाहिए था, इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए था, बट मैं गलत साबित हुआ ईशा जी।
0: और लगता है कि ईशा का शक बिल्कुल सही है, तभी तो अवनी के खिलाफ मिल गई है ईशा को इन्फॉर्मेशन कि वो आतंकवादी हो सकती है, तभी तो वो पहुंचेगी उसे गिरफ्तार करने।
5: मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ,
2: तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। चुन लो किसे बचाना चाहती है, IPS का फर्स्ट या सूरज के लिए अपना पत्नी था।
3: ईशा जी जो आपका फैसला होगा मैं आपके साथ।
4: मुझे तुम्हें अवनी के बारे में कुछ बताना है, ये देखो सूरज। सूरज
3: क्यों ईशा जी आप इतने घबराए हुए क्या?
4: खुद देख लो।
0: लेकिन अब देखना होगा कि कैसे ईशा अवनी का सच सबके सामने लाती है और उसे गुनहगार साबित करती है। खैर ये तो रही सीरियल की बात, लेकिन बात करें बिहाइंड द सीन तो देख लीजिए सूरज यानी आशीष दीक्षित का एक नया टैलेंट, जहां वो बन गए हैं कैमरामैन। देखिए कैसे कैमरे से वो शूटिंग कर रहे हैं, भाई यही तो है बिहाइंड द सीन फन मोमेंट्स। बिहाइंड द सीन मस्ती तो चलती रहेगी, लेकिन अब देखना होगा कि सीरियल में ईशा कैसे अवनी के सच का खुलासा करती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कई बार ना जिंदगी की खूबसूरत कहानियां यूं अचानक से शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल ऐसी है ये कहानी जिसका नाम है जाने अनजाने हम मिले, यानी हमारी प्यारी सी ये जोड़ी रीत और राघव की, जिनकी कहानी में है अनलिमिटेड ड्रामा। कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा होता ही रहता है जो हमें इस कहानी से बात कर रखता है। तो चलिए फिर फटाफट लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ, गेट सेट गो।
6: रियाज के लिए रीत बनी मर्दानी, रीत के लिए राघव बना रक्षा, बाल बाल बचे बिंदिया और रेयांश, CTV के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में आज रीत ने दिखा दिया है अपना रौद्र रूप, वो भी बदमाशों को। असल में उन बदमाशों ने बिंदिया और रीत के बेटे रियांश को अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे में अपने बच्चे को बचाने के लिए आज रीत ने मर्दानी रूप धारण कर लिया है। जरा देखिए कैसे डंडे से वो सभी बदमाशों की कुटाई कर रही है और रस्सी से बंधी बिंदिया चुपचाप देख रही है।
7: मैं प्लान करती हूँ कि ऐसे जाती हूँ और फिर मुझे ये लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे, बिकॉज ये दोनों लोग रियान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर ढूंढने रीत आती है और बाय चांस की बात है यहाँ पे बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो मुझे घेर लेते हैं, और मैं शॉक कि मेरा प्लान कैसे फ्लॉप हो गया। मैं रीत को बुलाना चाहती थी और यहाँ इतने सारे गुंडे आ गए हैं।
6: असल में ये बदमाश शालिनी के भेजे हुए हैं और इस बात से बिंदिया और रीत दोनों ही अनजान हैं। इससे पहले कि रीत उन बदमाशों को सबक सिखा पाती, एक बदमाश ने रीत पर ही हमला कर दिया, जिसके चलते रीत घायल हो गई है और हो गई है बेहोश।
7: ये तो मेरा प्लान था, बुआ जी के कोई लेना देना नहीं था इस प्लान से। ये तो मेरा अपना प्लान था कि मैं यहाँ आऊंगी, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे लिए भेजे हुए हैं यहाँ।
6: ना सिर्फ बेहोश रीत बदमाशों के कब्जे में आ गई है, बल्कि रीत के साथ जो विराज था उसे भी बदमाशों ने धर दबोचा है, और तो और अब वो रीत को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए जैसे ही वो बदमाश रीत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, वहाँ पर रीत का रक्षक बनकर आ गया राघव, और देखिए कैसे राघव ने अपनी दबंगई दिखाई और उन सभी बदमाशों को सबक सिखा दिया सिर्फ अपनी रीत को बचाने के लिए।
7: इन द एंड रीत मेरे को बचाने आ जाती है एंड राघव जी रीत को बचाने आते हैं, तो पूरा ये खोच है पूरा।
6: राघव ने बदमाशों को मार मार कर ढेर कर दिया और अपनी रीत के पास पहुंच गया उसे होश में लाने के लिए। रीत होश में आते ही सिर्फ रियांश को पुकारती है। ऐसे में राघव रियांश को गोद में उठाकर रीत की गोद में थमा देता है। इसी बीच वहां पर पुलिस भी आ जाती है सभी बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए। खैर अपने रियांश को देखकर रीत बहुत खुश है और तो और राघव के जख्मों पर पट्टी भी लगा रही है। इसी बीच बिंदिया भी राघव और रीत का धन्यवाद कर रही है क्योंकि उन्होंने उसकी जान जो बचा ली। फिलहाल तो राघव अपना कर्तव्य निभाता है और रीत की गोद से बच्चा लेकर बिंदिया की गोद में थमा देता है। ऐसे में बिंदिया को लगता है कि रीत और राघव उसे घर ले जाएंगे, इसलिए वो जाने का नाटक करने लगती है। लेकिन रीत और राघव उसे कुछ नहीं कहते। ऐसे में बिंदिया मुंह भी बनाती है लेकिन तभी रीत के इशारों पर राघव बिंदिया को रोक लेता है।
7: गाइस मेरा एक ही मोटो है कि मैं कैसे भी करके उस घर में जाऊं एंड फाइनली वो मुझे रोकते हैं और मुझे वो घर लेके जाते हैं एंड वापस मैं घर में आ जाती हूँ। अब घर में और सारे ड्रामे देखने मिलेंगे आपको।
6: भाई बिंदिया वापस घर लौट तो आई है लेकिन वो अपनी चाल में फुल स्टॉप लगाना नहीं चाहती। तभी तो देखिए कैसे रीत ने जब फैसला सभी घर वालों को सुनाया कि रियांश को अपने आप से दूर रखने के लिए वो अपना ऑफिस रीजॉइन करेगी, ये सुनकर सभी घर वाले खुश तो होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा खुश होती है बिंदिया क्योंकि अब उसे मौका मिलेगा राघव के और करीब जाने का। ऐसे में जैसे ही रीत चली जाती है तो देखिए कैसे बच्चे के रोते ही वो शुरू कर देती है अपना ड्रामा और दिखाने लगती है कि वो कितनी बेचैन है। इतना ही नहीं रोते हुए रियांश को वो ले जाती है राघव के पास और गुजारिश करती है उसके साथ चलने की।
4: देखिए ना ये कितना रो रहा है, मुझसे तो चुप ही नहीं हो रहा। आप इसको थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी में घुमा देंगे, आपके घर में आते ही ना एकदम शांत हो जाता है।
8: मुझे ऑफिस और अब से रियांश का ध्यान तुम्हारी खत्म करते हैं, तुम्हें अकेले कर और तुझे अकेले नहीं होगा तो तुम्हें चलता रियांश के कैटी पर हाई करता सॉरी।
6: भाई राघव तो इनकार कर वहाँ से चला जाता है और बिंदिया का ये खेल फ्लॉप हो जाता है। ऐसे में बिंदिया भी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब देखना होगा कि बिंदिया के इस खेल में शालिनी कौन सा तड़का लगाएगी। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कभी रोमांस कभी सस्पेंस तो कभी इमोशन, जैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग रंग होते हैं वैसे ही यहाँ पर हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के अलग अलग रंग। चलिए लेकर हाजिर हैं आप सबके लिए हमारी सास बहु और बेटा की एयरलाइन। हम जानते हैं आपको भी होना है इस पर सवाल, तो यहां तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार। आप कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर।
6: जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में संजय पहुंच गया है वृंदा के गांव में और सभी गांव वालों की नजरों से छिपते छिपाते वो पहुंच गया है गांव के अस्पताल में और देखिए कैसे सभी से नजरें चुरा रहा है और अपना चेहरा झुकाए चल रहा है ताकि कोई भी उसे पहचान ना ले। और जैसे तैसे कर उसने मास्क ढूंढा और मास्क पहन भी लिया। असल में वो इस गांव में वृंदा को ढूंढने आया है और उसे पता है कि वृंदा की दादी अस्पताल में थी, इसीलिए वो अस्पताल में तलाशने पहुंचा है। भाई संजय को ना ही पूरे गांव में वृंदा मिली ना ही इस अस्पताल में। ऐसे में संजय अपनी हिम्मत हार ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर हो जाती है गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ और गलती से उसके मास्क की रस्सी भी टूट जाती है जिसके चलते संजय उस बुजुर्ग के सामने आ जाता है और वो बुजुर्ग उसे पहचान लेता है।
9: हमारी बुंदा पेटी कैसी है और वैसे आप यहाँ

0: कैसी है काका? बहुत सालों से मिला नहीं मुझे काका। किससे बात कर रहे? बोले तो दामा जी से।
1: दामा जी से?
0: हाँ
1: कौन दामा जी?
0: अच्छा आप लोग बिंदा के पति
1: चली गई थी।
0: अभी अभी तो मैं उनसे बातें कर रहा था।
1: अरे काका आपको इतने बड़े आदमी है, बताओ गांव में क्यों अपना इलाज कराने आएंगे?
2: भाई गांव में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि संजय यहां आया है। अब देखना होगा कि गांव वालों को पता चल पाएगा संजय के बारे में। दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज जानवी हो गई है कमरे में कैद और हो रही है परेशान। असल में उसे बड़ी नानी ने कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि वो चाहती है कि जानवी की जल्द से जल्द शादी हो। ऐसे में जानवी और भी परेशान हो रही है और बार बार विनती कर रही है दरवाजा खोलने की क्योंकि उसे अपने कॉम्पिटिशन में जो जाना है।
3: बंद करने वाली सिर्फ एक ही हो सकती है और उन सबका नाम आपको पता ही है ना कि कौन हो सकती है। तो बड़ी नानी ने मुझे बंद कर दिया है क्योंकि बड़ी नानी को लग रहा है कि मैं मान नहीं रही हूँ सूट पहनने के लिए। वो चाहती है कि मैं सूट पहनूं। अब जानवी तो सूट पहनने से रही ना, तो जानवी सूट नहीं पहनने वाली है। अब कुछ भी हो जाए जानवी सूट पहनेगी नहीं और वो वहां से भाग रही है। तो बड़ी नानी फोर्स कर रही है उसे कि तू सूट पहन, शादी के लिए तैयार हो जा। तो वो नहीं मानी और बड़ी नानी ने उसे बंद कर दिया।
2: जानवी यहाँ परेशान हो ही रही थी कि तभी उसे रुचिता की आवाज़ सुनाई दे गई और ऐसे में उसने कंपटीशन में जाने का अपना नया प्लान बना लिया और उस प्लान के मुताबिक वो ले आई चादर और देखिए कैसे चादर के जरिए वो खिड़की से भाग निकली है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बड़ी नानी जानवी के कमरे में आती है उसके लिए जूस लेकर, ये देखने के लिए कि जानवी कितनी तैयार है। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है खिड़की पर, ऐसे में उनका गुस्सा भड़क जाता है।

0: Le manque est insolé. Ne tue pas. Tu t'as une énorme avalie. Le qui est si grand qu'il n'y est. Mon Dieu, ce que je n'avais pas d'un au revoir.
1: तो हमारे चुंगल से जो है वो छूटती है जानवी, और जानवी को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने पूरे भतकंडे अपनाए हैं, लेकिन एज यूजुअल जानवी गई है छूट और पूनम गई है रूट। आगे के एपिसोड मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो यंग जेनरेशन है और यंग खून है वो पुराने को चैलेंज करता है और करके दिखाता है कि अब मैं अपने काम में कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। यही इस समय गेम चल रहा है हमारे शो मन सुंदर में कि कैसे जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है नई जनरेशन और उसका जवाब दे रही है पुरानी जनरेशन को, जो कि बहुत ही दिलचस्प है।
2: वजह यही है कि अब मुझे कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना तो मैं डोर ओपन कर सकती हूँ। बड़ी नानी ने क्या किया ना, ताला लगा दिया है। अभी उस ताले की चाबी सिर्फ बड़ी नानी के पास है, और अगर रुचिता ने ताला तोड़ा तो बड़ी नानी उसकी बैंड बजा देगी। तो इसलिए ना तो रुचिता ताला तोड़ सकती है, ना बड़े नानू ताला तोड़ सकते हैं, मामा मामी तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ सकते। तो बेचारी जानवी क्या करे, अब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो उसको भागना पड़ रहा है, वो भी खिड़की से।
3: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में भूमि घबराई हुई सीधा अस्पताल आई है, और उसका पीछा करते हुए आ गया है राज भी। भाई उसे लगता है कि भूमि इस अस्पताल में कुणाल से मिलने आई है, और कुणाल के साथ मिलकर वो अपना एबॉर्शन करवाना चाहती है, लेकिन उसे क्या पता कि अस्पताल में ट्विस्ट कुछ और ही है। असल में भूमि की माँ लक्ष्मी बीमार थी, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती थी, और वो अपनी माँ से मिलने यहाँ पर आई है, लेकिन उसके आने से पहले कुणाल पूरे परिवार की मदद कर चुका है। ऐसे में न सिर्फ लक्ष्मी बल्कि श्रीनिवास भी कुणाल से माफी भी मांगते हैं और उसका धन्यवाद भी करते हैं।
4: बार बार सॉरी कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, जो होना था वो हो गया, वो किसी के बस में नहीं। आई एम सॉरी कि मैं विवेक भैया के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता।
3: खैर, कुणाल को लेकर जो पूरे परिवार को गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है, और भूमि के घर वाले चले भी जाते हैं। लेकिन तभी कुणाल और भूमि की नजरें टकराती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन भूमि कहीं न कहीं उसका धन्यवाद कर रही है, और वहीं दूर से राज दोनों को साथ में देख लेता है और उसका डाउट पक्का हो जाता है। इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जब राज वापस जाने लगता है तो उसकी मुलाकात श्रीनिवास से हो जाती है, और उसे पता चलता है कि इस अस्पताल में लक्ष्मी एडमिट थी।

0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गौतम पहुंच गया है रूहानी के कमरे में उसे उसके बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए। ऐसे में वो सरप्राइज देखकर रूहानी बेहद खुश हो रही है क्योंकि वो गाउन है और गौतम चाहता है कि रूहानी अपने बर्थडे पर वो गाउन ही पहने। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो गाउन पहनने से पहले ही उसकी चेन खराब हो जाती है और रूहानी उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। ये तो ड्रेस बर्बाद हो गई क्योंकि इसे तेजू ने ही बर्बाद किया है क्योंकि वो चाहती ही नहीं कि रूहानी उसके भाई की जिंदगी में आए। वही रूहानी भी परेशान है क्योंकि गुरु ने उसे संकेत दे दिया है कि वो उसके बर्थडे में उससे मिलने आएगा।
1: पता नहीं मिला लेकिन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अपना जन्मदिन मना। पर हाँ, मेरा दिया हुआ तोहफा ही पहनना, हम आएंगे तुम्हें देखने।
0: वहीं दूसरी ओर गौतम भी रूहानी के सपनों में खोया हुआ है और उसे तो लगता है कि रूहानी अपने बर्थडे का गाउन पहनकर उसके सामने आ गई है।

0: कई लोगों के लिए तो छुट्टी का असली साथी होता है एक अच्छी किताब। और यहाँ हम भी जानते हैं कि आपके मूड को किस तरह इमीडिएटली बदलना है। जी हाँ, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए आपका फेवरेट सेगमेंट, जहाँ हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज, क्योंकि ये तो है एंटरटेनमेंट के हैप्पी आवर्स, जो ले आएंगे आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट।
1: आज मेरे को लगता है कि अगर आप लोलो लव दें तो आई एम रेडी टू पिक यू अप।
2: हर्ष देखते क्या होता है,
1: मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ, मैं पुशअप पुशअप, मैंने नए टाइप के पुशअप भी निकाले हैं, ये देखिए।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस।
1: मेरे साथ क्या हुआ, मैं करिश्मा कपूर के सपने देख रहा था और मेरे ऊपर आके बैठ गया करिश्मा गफूर।
4: क्यों रखते हैं सोनी चैनल वाले करिश्मा कपूर, मलाइका उड़ा दो। आप कैसे औरतों के घरों जाने के लिए,
5: दो बच्चों के बाद ना जावे सर, पति अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा लगता है लाइफ में कुछ न्यू होना चाहिए।
6: एक और बच्चा पैदा कर लो।
5: मैं तो चाहती हूँ, लेकिन आपके ये दो दो बैटल के चक्कर में हमारा घर में बैटल नहीं हो पा रहा।
1: अरे यार भारती, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भारती के लिए।
5: क्या पसीने से भरपूर बच्चे।

जिस घर में किताबें होती है ना, उसमें विचार कभी भी खाली नहीं होते, है ना। ये कितनी खूबसूरत पंक्ति। और इसी के साथ साथ अब लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये स्पेशल स्टोरी, जिसे संभाल कर रखा था हमने खास आपके लिए। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या स्पेशल है इसमें, क्या सब कुछ मैं ही बता दूंगी आपको। फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।

0: चाहे वसुधा की चंद्रिका हो या फिर हो लक्ष्मी निवास की रेवती, दोनों अपनी आंखों से खेलती हैं। भाई आंखें हैं कि कटारी, क्योंकि आंखों से ये गोलियां चलाती हैं। सीरियल वसुधा की चंद्रिका इस किरदार को निभा रही हैं परिणीता बोर ठाकुर, जो है तो आसाम की, लेकिन अपनी आंखों से इन्होंने वसुधा की जिंदगी में तूफान ला दिया और इसी वजह से सीरियल नंबर वन बना हुआ है। लेकिन इन बड़ी बड़ी आंखों के पीछे है एक सीक्रेट, और ये सीक्रेट है काजल। जी हाँ, परिणीता की खूबसूरत आंखों के पीछे है ये कचरे की धार जिससे वो अपनी आंखों को संवारती है। वहीं पर लक्ष्य निवास की प्रेवती जायसवाल यानी मानसी श्रीवास्तव की इश्कबाजी भी उनके काजल से है। मानसी की है कंजी बिल्लौरी आंखें, और इन बिल्लौरी आंखों से वो लक्ष्मी निवास में ट्विस्ट लेकर आती हैं, और उनका मेकअप भी खास है, लुक भी खास है। तो आइए टीवी की इन दो कटीली हसीनाओं की आंखों की गुस्ताखियां जानते हैं।
1: तेरे नैना,
0: चंद्रिका की आंखों की गुस्ताखी है उनके कटीले नैन। तो आखिर क्या है इन खूबसूरत आंखों का राज, आइए जानते हैं। और हाँ, अपनी आई मेकअप वो कैसे करती हैं, ये हमें परिणीता बोर ठाकुर ने कुछ शेयर किया।

0: रब की नेमत है तेरी।
1: और फिर जो कॉर्नर्स है वो मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ,
0: उसके
1: और उसके बाद थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आईब्रोज के पास। ओके सो और काजल।
2: परिणीता यानी वसुधा की चंद्रिका ने हमें बताया कि उनकी इन आंखों के पीछे है ये काजल जो उन्हें देता है राइट डायमेंशन और अपनी आंखों से वह अभिनय कर पाती है, तभी तो वसुधा की जिंदगी में तूफान लेकर आती हैं। तो आइए जानते हैं उनसे एक खास मेकअप टिप।
1: काजल को लगा के ना मैं काजल को स्मज कर देती हूँ, ये नीचे से स्मज करके इस तरफ थोड़ा, यहाँ कम यहाँ ज्यादा, सोच लो यहाँ थोड़ा कम और यहाँ ज्यादा, तो उससे ऐसा शेप आता है अच्छा वाला। सो दैट इज द थिंग, दैट इज माय मेन थिंग। लाइनर नहीं लगाती मैं, काजल को ही ऊपरी आंखों में लगा के उसको फिर स्मज कर देती हूँ, और फिर जो कॉर्नर डार्क करती हूँ उसके साथ मर्ज कर देती हूँ।
0: कुछ ना बोलूं चाहे राज।
2: वैसे परिणीता चंद्रिका बनकर आंखों से हंसाती भी है, रुलाती भी है, और साथ साथ बॉलीवुड के गानों पर अपनी आंखों को झुमाने से भी नहीं चूकती। तो जरा सुनते हैं आसाम की इस अभिनेत्री के सुर भी।
1: और क्या करूं, आंखों से नफरत हो जाएगा भी लोगों को ऐसी आंखें। अभी ये देखने के बाद तो

0: बड़ी
1: वो गलत हो गया ना पूरा लिरिक्स. मैं लिरिक्स में बहुत खराब हूँ.

0: लगता है।
1: अब चलते हैं लक्ष्मी निवास की रेवती जायसवाल से मिलने। इस किरदार को निभा रही है मानसी श्रीवास्तव, जो इससे पहले अपनी बिल्लौरी आंखों का जादू इश्कबाज में दिखा चुकी हैं, और इस बार लक्ष्मी निवास में भी इनकी बिल्लौरी आंखों का जादू चल रहा है। लेकिन खूबसूरत आंखों के पीछे है खास मेहनत और मानसी का क्यूट सा अभिनय। तो आज मानसी अपने आई मेकअप रूटीन शेयर कर रही है कि कैसे वो काजल लगाती है, लाइनर लगाती है और उससे अपनी बिल्लौरी आंखों को संवारती है।

आई थिंक काजल सबसे इम्पोर्टेंट होता है. एक्चुअली जब मैं काजल नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है काजल लगाना. जब मैं नहीं लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया है लाइफ से, कुछ यू नो आईज थोड़ी ब्लैंड सी लगती हैं. सो एक हल्का सा टच काजल का बहुत जरूरी होता है. उससे कुछ तो मतलब एक यूनिक सा यूएसपी मिल जाता है, पूरे फीचर्स में एड हो जाता है और आंखें और सुंदर लगती हैं. बट मेक श्योर, स्पेशली अगर मैं ध्यान रखती हूँ कि अगर हम कोई रोने के सीन कर रहे होते हैं तो काजल कम लगाएं ताकि ज्यादा फैले ना और हमें भी ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो सीन करने में. सो एक बस पतला सा काजल का लेयर भी लगाएंगे तो आपका पूरा फेस इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा और एकदम ब्राइट लगेगा दैट यू विल लव योरसेल्फ.

0: वैसे चाहे वसुधा की चंद्रिका हो या फिर रश्मि निवास की रेवती, दोनों अपनी रील्स में अपनी आंखों का अंदाज दिखाने नहीं भूलती। बड़ी चमकर रील्स बनाती हैं, डांस की अपने को स्टार्स की अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे इनकी आंखें बहुत काम आती है। और पर्दे पर जैसे कैमरा ऑन होता है तो दोनों अभिनेत्रियाँ अपने अपने सीरियल्स में ट्विस्ट लेकर आती है। तो इन टीवी की दो अभिनेत्रियों की खास आंखों का राज हमने बताया, जो उनकी गुस्ताखियां हैं, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कहते हैं ये जो पुस्तक होती है ना, ये ज्ञान का ऐसा खजाना होती है जिन्हें जितना बांटो ना उतना ही वो बढ़ता है। जी हाँ, देखिए ज्ञान तो बांटना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान बटेगा तो सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको हमारी इस अगली खबर की ओर, जिसे परोस रहे हैं हम आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी एकदम गर्मा गर्म। अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्या है इसमें गर्मा गर्म? वेल, यहां तो एक हॉट एंड हैपनिंग खबर, लेट्स चेक इट आउट।
2: शुरू हुआ जीत का जश्न, छाई फुल ऑन मस्ती, अलायंस की पार्टी में जमकर नाचे सितारे,

अमेज़न प्राइम का रियलिटी शो अलायंस खत्म हो चुका है और मिनी माथुर के लिए ये जश्न का मौका है। वह अलायंस की विजेता है और तो और अलायंस शो के जरिए मिनी माथुर न सिर्फ अलायंस के प्रतियोगियों की फेवरेट बनी बल्कि घर घर में लोगों ने उन्हें खूब पसंद भी किया है। ऐसे में जीत का सेलिब्रेशन करना तो

इसीलिए मिनी माथुर ने रखी है पार्टी, जहां शो के खत्म होते ही फिर से जमा हो गए हैं शो से जुड़े सभी सितारे और उनके स्वागत में पहुंच गई हैं मिनी माथुर। क्या डेजी, क्या नीति टेलर, क्या सीमा, क्या दिलबर, क्या रूही, क्या कुशाल टंडन और क्या पायल धरे, सभी आज जमकर खुशियां मना रहे हैं। एक साथ मिलकर सभी तस्वीरें खिंचा रहे हैं, जमकर कर रहे हैं मस्ती और इंजॉय कर रहे हैं इस पल को।

the drop. Shake the body, shake the body, shake the body. Shake the body, shake the body, shake the body. भाई इनकी ये मस्ती तो यूं ही जारी रहेगी क्योंकि सेलिब्रेशन का मौका है. वैसे इनके अलावा यहाँ पर कशिश कपूर, अरसलान गोनी, वंशज, दर्शन रावल, जैद दरबार अपनी बीवी गौहर के साथ पहुँचे हैं इस पार्टी में शामिल होने के लिए.

भाई ये तो थे बाहर के नज़ारे, अब चलते हैं सीधा पार्टी के अंदर के नज़ारे देखने के लिए, जहाँ पर सभी एक साथ मिलकर गप हाँक रहे हैं। कुछ तो नाचकर उसका जश्न भी मना रहे हैं और कुछ अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक रियलिटी शो के जरिए इनको अच्छे दोस्त जो मिले हैं।

0: ट्रॉफी। भाई वाकई मिनी माथुर का चेहरा तो ग्लो कर रहा है, क्योंकि एक तो जीत की ट्रॉफी इन्हें मिली है और साथ ही इन्हें मिले हैं ट्रॉफी से भी बढ़कर अच्छे दोस्त। उम्मीद करते हैं कि इनकी दोस्ती सलामत रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: जैसे किसी किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा उसके अगले पन्ने पर होता है ना, वैसे ही होता है हमारी कहानियों के साथ, क्योंकि जैसे ही आते हैं इसमें रोमांचक ट्विस्ट, वैसे ही बदल जाता है कहानी का मोड़। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम ट्विस्ट वो भी एक साथ, क्योंकि हम जानते हैं आपके लिए कहाँ पॉसिबल है हर कहानी के हर ट्विस्ट को देख पाना। दिखा देते हैं आपको ये ट्विस्ट। गेट सेट गो।
2: अनुपमा।
3: Tick tick three, tick tick four, tick tick five, tick tick six, one, tick tick seven.
0: Star Plus के सीरियल अनुपमा में आज कुकिंग प्रतियोगिता में लग गया है सुरों का तड़का। भाई बा और मोटी बा दोनों ही नए प्रतियोगी के तौर पर उस कंपटीशन में शामिल हुई है। ऐसे में नया ट्विस्ट आना तो बनता है, इसलिए वहाँ बैठे सभी जजेस ने दे दिया है नया टास्क, जहाँ पर बा और मोटी बा दोनों को गाना गाते हुए खाना बनाना पड़ेगा। बस फिर क्या, बा शुरू हो जाती है और उनका गाना सुनकर तो सभी हैरान रह जाते हैं।
4: ये कुछ नई डिश तैयार की है गाने की।
5: दिग्विजय सर तो सारे पुराने गाने सुनते, जब उन्होंने नहीं सुना तो मेरा तो सवाल ही नहीं बनता।

0: देखो नीला बेगना चीटिंग कर रही है, ये गाना है ही नहीं, हमने आज तक नहीं सुना, इसलिए अंताक्षरी में ये बहुत लोग करते हैं।
1: क्या हुआ, हमें कुकिंग पे फोकस करने का टाइम मिल रहा है, उस पर फोकस करते हैं, इन्हें जो गाना गाने दीजिए।
2: एग्जैक्टली प्रेम, लेकिन हमें ना इनकी शिकायत करनी चाहिए, ये रॉन्ग है।
1: स्टॉप इट, काम पे ध्यान दीजिए।
2: व्हाट? फिलहाल तो प्रेम अपने काम पर ध्यान देना चाहता है, लेकिन अनुपमा वो पहुंच जाती है बाकू टोकने के लिए, क्योंकि जो वो गाना गा रही है उसका ना तो सिर है ना ही पैर, लेकिन बाग कहाँ सुनने से रही, वो तो गुनगुनाई जा रही है। इसी बीच बारी आती है मोटी बा की, और देखिए कैसे मोटी बा ने भी बाजी मार ली गाना गाकर।
3: ये आइसक्रीम कीजिए और ये फटाफट काट लीजिए वरना गुल जाएगा। आप जब गाना नहीं गा रही होती तो फटाफट काम करती है, तो कीजिए बा, जल्दी जल्दी जल्दी

0: भैया पहला कुकिंग शो देखा है जहाँ पर कुकिंग के अलावा डांस भी होता है, सुरों का तड़का भी लगता है और ढेर सारे ट्विस्ट के साथ साथ मस्ती भी होती है। और आज तो स्वाद की महफिल में सुरों का तड़का लगा है तो बा भी गाए जा रही हैं और मोटी बा भी गाने में रुकने का नाम नहीं ले रही, दोनों टीम जमकर गा रही है।
1: क्या बोलती तू?
2: वाह अच्छा रे, आप उधर ध्यान दो, टाइमर जो टाइमर जो
1: टाइम नहीं है, टाइम नहीं है,
3: अरे घूमे
4: बिना साथ मेरा
2: सुरक्षित।

0: पॉसिबल है? पता नहीं ये कैसे हुआ है. आई मेक श्योर कि ये क्वालिटी इशू मैं खुद हैंडल करूं.
1: यू विल हैव टू. और ये तो तुम्हें पहले से करना चाहिए था.
2: स्टार प्लस के सीरियल तुम देना साथ मेरा में क्या रक्षित, क्या ईरा और क्या विवान तीनों ही बेहद परेशान हैं क्योंकि मार्केट से इनके क्लोथ्स वापस आ गए हैं. उनमें डिफेक्ट जो निकला है, ऐसे में इस डिफेक्ट्स को कैसे संभाला जाए, इसी बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि रक्षित को दरवाजे पर आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो अपराजिता उसकी बाहों में जा गिरती है. दोनों की आंखें टकराती हैं और ये देख ईरा जल रही है.

0: सॉरी,
1: आप यहाँ क्या कर रही हैं?
0: चोरी छुपके हमारी बातें सुन रही थी। चोरी छुपके सुनने वाली कोई बात ही नहीं है। बात अगर ऑफिस की हो रही है, मैं ऑफिस का हिस्सा हूँ।
1: बहुत छोटा सा हिस्सा जिसे नहीं होना चाहिए था। और हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो आपकी पे ग्रेड से कहीं ज्यादा ऊपर है।
2: खैर, अपराजिता तो यहाँ रक्षित की मदद करना चाहती है, लेकिन रक्षित उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है और ये बात ईरा को बहुत पसंद आती है। फिलहाल तो अपराजिता नाराज होकर वहाँ से चली जाती है स्टोर रूम में अरविंद के कंप्यूटर को ऑन करने के लिए लेकर आईटी वाले को, लेकिन आईटी वाले ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। ऐसे में अपराजिता खुद ही वो पुराना कंप्यूटर ऑन करने के लिए आगे बढ़ती है और तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उसे लगता है बिजली का जोरदार झटका और उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है रक्षित को। ऐसे में रक्षित स्टोर रूम में अपराजिता को ढूंढते हुए आता है और सामने अपराजिता को पड़ा हुआ पाता है।
0: अरे इधर, अरे नीचे इधर। कंप्यूटर कनेक्ट करने गई तो बिजली का झटका लगा और गिर गई।
1: दिमाग खराब हो गया आपका? इतने पुराने मशीन को हाथ लगाने की क्या जरूरत है? झटका तो लगेगा ही ना।
0: आप यहीं खड़े खड़े बात करेंगे या मेरी मदद करेंगे? हाथ दीजिए।
3: करंट की वजह से मेरा मसल पुल हो गया है। हाथ दीजिए।

0: अब प्यार तो दोनों एक दूसरे से करते हैं, लेकिन माँ के चलते दोनों एक दूसरे से नाराज भी हैं। तभी तो जब जब अपराजिता रक्षित की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, रक्षित उससे अपने आप को दो कदम दूर कर लेते हैं।
1: ये लीजिए।
2: देखिए, मुझे अरुचि से प्रॉब्लम है, जिसे तुमने छुआ है। नहीं, क्यों नहीं? हमारे बीच में जो कुछ बताना सब खत्म।
1: पहले जिंदगी में बहुत लोग थे, फिर आप आए और सब अपने लगने लगे। आज आप साथ नहीं तो कोई खुशी ही नहीं। क्यों? आपके बिना मैं खुद को ही खो बैठी।
3: थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान।
0: सन नियो के सीरियल थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान में आज अनुप्रिया ने अभिजीत को दे दिया है रोमांटिक सरप्राइज। जरा देखिए कैसे उसने पूरे कमरे को सजाया है, और तो और घुटनों के बल बैठकर वो अभिजीत को प्रपोज भी कर रही है। ये देख अभिजीत बहुत खुश है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनुप्रिया की नज़र उसके हाथ में लगी मेहंदी पर पड़ती है और वो उससे सवाल जवाब करने लगती है। ऐसे में अभिजीत बना देता है बहाने कि घर वालों ने उसे जबरदस्ती मेहंदी लगाने के लिए मजबूर किया था।
2: तो सब लोग जिद करने लगे कि मेहंदी लगवाओ, मेहंदी लगवाओ। सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे तो मैं क्या करता, तो मुझे भी मेहंदी लगवानी पड़ी। पर तुम्हें पता है सबसे खास बात क्या है? कि मैंने तुम्हारे नाम का ए लिखवाया है।
1: चेहरे अभी
2: ऑफ कोर्स। अच्छा चलो, मेरी इस मेहंदी में अपना नाम ढूंढो।

0: भाई अभिजीत तो डबल गेमर निकला। कितनी आसानी से उसने अनुप्रिया को बुद्धू बना दिया और अनुप्रिया उसके प्यार में पागल उससे शादी के लिए प्रपोज कर रही है। जरा देखिए कैसे उसने अभिजीत को अंगूठी दिखाते हुए उससे प्रपोज करने की हामी मांगी और फिर से घुटनों के बल बैठकर उसे अंगूठी पहनाने लगी और अभिजीत उसे अपनी और वैदेही की शादी के नजारे दिखाई देने लगे और हैरान है कि आखिर उसे ये सब क्यों नजर आ रहा है।
1: उसकी कोई मायने नहीं।

0: कुछ किताबों का अंत हमें एकदम से चौंका देता है और कुछ खबरें भी ऐसी होती हैं जो लेकर आती हैं हमारे लिए शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एक ऐसा ही सेगमेंट जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग। आप तो समझ ही गए होंगे मेरा इशारा। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। देख लीजिए रॉकिंग प्रोमो स्टार्स की सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का, जिसमें हो गई है तृप्ति की एंट्री और उसने ठान ली है कि वो तुलसी के घर को बिखेर कर रख देगी।
2: अब होगा असली खेल शुरू। हर किसी परिवार में कोई ना कोई कमजोर कड़ी जरूर होती है और वीरानी परिवार की कमजोर कड़ी है समायरा। उसके बाद ये गया करण, फिर गोमजी, तुलसी मैया की आंखों के सामने अपना सारा परिवार बिखरते देखा।
3: सालों से शांति निकेतन की ढाल बनकर खड़े हूँ तृप्ति, देखते हैं इस बार कौन जीतेगा, तुम या मैं।
1: लॉकअप 2 के खत्म होने के बाद शिल्पा शिंदे पहुंच गई है अपने ओल्ड एज होम में। वहां पर मौजूद सभी औरतें कर रही हैं शिल्पा का स्वागत, वो भी फूल बरसाकर और फूलों की माला पहनाकर। इतना ही नहीं, शिल्पा तो सभी का आशीर्वाद भी ले रही है और सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर भी कर रही है।

जी टीवी का सीरियल जाने अनजाने हम मिले दर्शकों से विदा ले चुका है। ऐसे में सीरियल में स्मिता का किरदार निभाने वाली नेवा मलिक ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर उसने अपनी यादें ताज़ा की हैं।

देख लीजिए स्टार प्लस के नए सीरियल ये फितूर तेरा का एक BTS वीडियो जहां पर जीत और सौम्या दोनों अपने नए गाने पर जमकर थिरक रहे हैं।

नेटफ्लिक्स पर जल्द ही प्रीमियर होगा एक शो जिसका नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। ऐसे में शान और उनकी पूरी टीम अपने सुर छेड़ रही है और देश प्रेम से जुड़े सभी गीत गुनगुना रहे हैं।

किताबें ना अक्सर दो तरीके की होती हैं, एक फिक्शन जो कल्पना पर आधारित होती है, एक नॉन फिक्शन जो सच्चाई पर आधारित होती है। लेकिन यहां तो है आपके लिए एंटरटेनमेंट की किताब। जी हाँ, हमारी ये अगली खबर जिसमें लेकर चलेंगे हम आपको आपकी फेवरेट कहानी की ओर, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है। इसमें एक नया मोड़ जो लेकर आ रहा है कहानी में आपके लिए, मच नीडेड ड्रामा। तो चलिए लेट्स चेक इट आउट।

और राजनंदिनी का आमना सामना। आया मंगलसूत्र का ट्विस्ट।

0: अनु का डर। अनु के सुहाग पर किसकी है बुरी नजर? टीवी के सीरियल तुम से तुम तक में काला अष्टमी आने वाली है, जिसको लेकर अनु बेहद परेशान चल रही है। और तो और, उसे डाउट है कि उसके सुहाग पर खतरा भी मंडरा रहा है और उसको उसके संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कभी अंगूठी गायब हो जाती है तो कभी उसके हाथ से मंगलसूत्र की डिबिया नीचे गिर जाती है। ऐसे में अनु का डर बढ़ता जा रहा है कि इसी बीच अनु के सामने आ जाता है एक और ट्विस्ट। जब अनु अपने कमरे में राजनंदिनी की तस्वीर तलाशती है तो उसकी नजर पड़ जाती है अपने आईने पर, और आईने में जो लिखा है अनु वो देखकर डर जाती है। अनु को क्या पता कि ये सारा किया धारा मानसी का है, जो मीरा के साथ मिलकर अनु को डरा रही है। खैर, अनु का डर लाजमी है क्योंकि कहीं न कहीं राजनंदिनी का राज अब भी उससे छिपा हुआ है। ऐसे में उसने जो किया है उस बात की माफी मांगने के लिए वो पहुंच जाती है अपनी सासू माँ के कमरे में। वो न सिर्फ अपनी सासू माँ से माफी मांगती है बल्कि उसकी सासू माँ उसे बताती है कि राजनंदिनी का व्यवहार कैसा था।
1: अरे, उसके दो छोटे भाई जब भी कोई बदमाशी करते थे तो उसको डांटना भी नहीं आता था, हमेशा उन्हें प्यार से समझाती थी, कभी किसी पर गुस्सा नहीं होती थी। देखो बेटा, इस घर में तुमने राजनंदिनी की जगह नहीं दी है, तुमने अपनी जगह बनाई है बेटा। देखो, ये बात घर में किसी को नहीं मालूम, सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि राजनंदिनी इस घर की बहू नहीं, बेटी थी, मेरी बेटी थी, तो मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है।
2: इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे आपकी बेटी को लेकर उसे शक नहीं करना चाहिए।
1: नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं बेटा, राजनंदिनी की तरह तुम भी तो मेरी बेटी हो।
0: भाई, यहाँ तो सासू माँ अपनी बहुरानी अनु पर प्यार जता रही है तो वहीं दरवाजे पर खड़ी मीरा अपनी चाले चल रही है, क्योंकि उसने तो तय कर लिया है कि वो अपने आर्या को अनु से छीन कर रहेगी। खैर, अगले ही दिन आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अनु को आ जाता है एक फोन कॉल, और वो फोन कॉल किसी और का नहीं बल्कि राजनंदिनी का होता है। असल में मानसी राजनंदिनी बनकर अनु को डराने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी होती है। अनु का डर उस पर हावी होने लगता है कि तभी उसके सामने खुद राजनंदिनी प्रकट हो जाती है। ऐसे में वो राजनंदिनी को देखकर हैरान होती है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सोच पाती, राजनंदिनी ने कपबोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। बस फिर क्या, उसके इशारे देखकर अनु सीधा पहुंच जाती है कपबोर्ड को हटाकर देखने के लिए, और देखते ही देखते उसके हाथों में आ जाता है राजनंदिनी का मंगलसूत्र। ऐसे में वो मंगलसूत्र उठाती है और राजनंदिनी को देने के लिए आगे ही बढ़ती है कि तभी राजनंदिनी वहां से गायब हो जाती है। बस फिर क्या, ये सोचकर अनु और भी डर गई है। और देखिए कैसे वो मंगलसूत्र लेकर पहुंच गई है अपनी सासू माँ के पास। और सासू माँ जैसे ही वो मंगलसूत्र देखती है तो उन्हें राजनंदिनी की याद आ जाती है।
3: देखा अनु, इसका मतलब ये है कि राजनंदिनी ने तुम्हारे और आर्य के रिश्ते पे मोहर लगा दी है। वो चाहती है कि ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले की शोभा बने। ये मंगलसूत्र तुम्हें यूं ही नहीं मिला है बेटा, बल्कि राजनंदिनी ने खुद तुम तक पहुंचाया है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी राजनंदिनी बहुत प्यारी थी, वो दिल की बहुत अच्छी थी, उसे किसी के लिए भी जलन या कड़वाहट नहीं थी, वो सबको अपना बना देती थी। शायद राजनंदिनी ने तुम्हें भी अपना लिया है। हो सकता है वो यही कहीं हो हमारे आसपास, शायद हमें देख रही हो, हमारी बातें सुन रही हो। आज मेरी राजनंदिनी बहुत खुश होगी क्योंकि वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, जिसकी मुस्कुराहट से वो बहुत खुश हो जाती थी, आज तुमने उसके जीवन में प्यार की रोशनी भर दी है।
0: वही अन्नू के हाथों में वो मंगलसूत्र थमाकर न सिर्फ अन्नू की बेचैनी को दूर कर रही है, बल्कि अन्नू उसे भी विश्वास हो गया है कि राजनंदिनी जहाँ भी है वो अन्नू और आर्या के रिश्ते से बहुत खुश है। लेकिन अब उसे क्या पता कि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी है, क्योंकि जिस तरह राजनंदिनी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, हो सकता है अन्नू की जिंदगी पर भी वैसा ही खतरा मंडरा रहा हो। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हर कहानी ना एक नई उम्मीद से शुरू होती है, और देखिए हर नई उम्मीद में होता है एक नया सपना, एक मन्नत। अब लेकर चलते हैं आपको मन्नत के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है मन्नत और विक्रांत की इस कहानी में आज। वेल, क्या ही हो रहा होगा, फिर से आई होगी मन्नत के सामने कोई ना कोई नई परेशानी, टूट पड़ा होगा इन पर मुसीबतों का पहाड़। लेकिन हमें है हमारी मन्नत पर पूरा विश्वास, कर ही लेती है वो हर सिचुएशन का सामना। लेकर चलते हैं आपको फटाफट यहाँ।
5: सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल।
0: लौटी विक्रांत की याददाश्त,
5: गुजारा
0: एक हुए मन्नत और विक्रांत,
5: तू मेरा खुदा।
0: फिर शुरू हुआ विक्रांत का नकली ड्रामा,
5: दुआ
0: बजेगी धैर्य की बैंड। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत अपने विक्रांत के लिए बेहद परेशान है, क्योंकि विक्रांत को अब तक होश नहीं आया है। ऐसे में मन्नत विक्रांत का हाथ थामे हो रही है इमोशनल कि तभी आ जाता है विक्रांत को होश, और उसके होश में आते ही देखिए कैसे मन्नत उसे याद दिलाने की कोशिश में लग जाती है।

0: हमें प्रार्थना किया है और प्रार्थना की उनकी सलामती के लिए, क्योंकि हमें पता था वो हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते।
1: भाई दुआ का वीडियो देखने के बाद भी विक्रांत ने कोई हलचल नहीं की। ऐसे में मन्नत को लगता है कि अब भी उसकी याददाश्त नहीं लौटी है, बस फिर क्या। ऐसे में दुआ उसके सामने विनती करने लगती है कि कुछ दिनों के लिए वो उसका विक्रांत बन जाए, ताकि वो असली गुनहगार को सजा दे सके।
0: मुझे मेरे विक्रांत को नहीं सुना देना। उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और एक इंसान का सच सबके सामने लाने और सिर्फ आप मदद कर सकते हैं।
1: भाई मन्नत ने तो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी, कैसे वो विक्रांत से मिली, कैसे उन्हें प्यार हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे कई सारे ट्विस्ट आए। ये सारी कहानियाँ बताते बताते जब वो धैर्य के नाम पर पहुँची तो उसे आने लगा गुस्सा, क्योंकि उसे तो धैर्य के बारे में सब पता है।
0: धैर्य नहीं टिका कि वो मुंबई छोड़ के चले जाएंगे, पर वो समझना, वो मानना, वो सब दिखावा था। और विक्रांत ये बात जान गए थे और नीतू माँ को तो शुरू से ही शक था। इतनी माँ नीतू माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की थी, पर मैंने उनकी एक बार भी बात नहीं मानी। अगर मैंने नीतू माँ ये बात मान ली होती तो मेरी शादी की रात मेरी जिंदगी की सबसे काली रात नहीं होती। विक्रांत को धैर्य ने एक सुनसान जगह बोला और फिर विक्रांत की आंखों के सामने नीतू माँ को गोली मार दी और विक्रांत को ब्रिज से गहरी नदी में फेंक दिया।
2: मन्नत को पता है धैर्य इज वेरी श्रूड एंड कोल्ड हार्टेड मर्डरर एक्सेट्रा, तो उसको एक्सपेक्टेड था यार, ऐसे सरप्राइज नहीं हुई वो उनका रिएक्शन देखिए। वो कभी तो मन्नत और विक्रांत एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहते हैं इन कैचिंग धैर्य।
1: अभी मन्नत की धुंधली यादें अब विक्रांत की नजरों के सामने साफ साफ हो गई, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ गया। और उसके ये हाव भाव देखकर मन्नत भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये बातें काम कर गई हैं। और देखिए कैसे विक्रांत ने उत्ते के साथ ही अपने दिल की बात बतानी शुरू कर दी, जो उसने आंखों से देखा था।
3: हाथ नहीं कांप रहे थे उसके, उस दिल उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने जब बंदूक पकड़ी थी हाथ नहीं कांप रहे थे। खून है मेरा भाई, बड़ा भाई मेरा, पर मुझे मारने से पहले उसके हाथ नहीं कांपे। और मॉम को मारा उसने, उसने मॉम को मारा है, उसने मॉम को गोली मारी उसने। कब से क्या?
0: एक साल तीन महीने।
3: नहीं, एक सेकंड। तो डैड डैड को कुछ हुआ क्या? नहीं। और दुआ कुछ हुआ? दुआ को कुछ, किसी उसने किसी और को कुछ भी किया है? उसने नहीं किया ना कुछ भी किसी और को।
2: विक्रांत के दिल की बात ऐसे हुई जैसे दो लैला मजनू मिल गए हों, हीर रांझा मिल गए हों, कबूतर कबूतरी मिल गए हों। दो कबूतर कबूतरी अलग अलग देश पहुंच गए थे, अब वो मिल गए हैं पड़पड़ाते हुए अपने विंग्स, एकदम लिपटा लिपटी और रोना रोई सब कर दिया उन्होंने, एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी।
1: ऐसे में विक्रांत भी मन्नत को समझाता है और तो और खुद भी माफी मांगता है, क्योंकि उसे वो भी याद आ गया है कि कैसे जब उसकी याददाश्त चली गई थी उसने कैसे मन्नत और बाकी बच्चों को इग्नोर किया था।
3: I'm so sorry, उस सारी बातों के लिए जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। नहीं, तुम्हारे दर्द में मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा है। गल्ला तेरी आंखों में आंसू लाने के लिए सिर्फ तुम्हारा नहीं, माय गॉड, मेरी छोटी, मेरी बच्ची, मेरी दुआ का दिल तोड़ा मैंने अंदर।
2: आई वॉज सो हैप्पी फॉर मन्नत, लाइक आयशा वॉज सो हैप्पी फॉर मन्नत कि जब ये प्रिटेंड वाला सीन जो हमने अभी किया है वो हमें करना था, वेयर धैर्य कम्स एंड मन्नत इज प्रिटेंडिंग एंड यू नो वो प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे, मुझे दुखी नहीं हो रहा था, मैं खुश थी। भाई देखो साढ़े मुंडे की तो याददाश्त आ गई, आप लोगों को नहीं पता है बट कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, तो मन्नत तो खुशी है। So yeah, I was kind of happy for both of them.
1: खैर अब दोनों एक तो हो गए हैं, लेकिन विक्रांत उसके अंदर तो गुस्सा बरकरार है क्योंकि वो धैर्य को सजा देना चाहता है। ऐसे में वो गुस्से में उठता भी है ताकि धैर्य को सबक सिखा सके, लेकिन मन्नत उसे रोक लेती है क्योंकि उसे पता है कि धैर्य चार कदम आगे है। तभी तो मन्नत ने अपने वकील मिस्टर सूरी को भी फोन लगा दिया ताकि उनसे उसे कुछ मदद मिल सके।
0: अब वो हमें मिले एक साल बाद, अब उनकी याददाश्त वापस आई है, हम तेरे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे हैं, मतलब हम उन्हें जेल भेजना चाह रहे हैं, सजा देना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आप बताइए हमें आगे क्या करना चाहिए?
4: देखिए पुलिस के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तेरे के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं।
3: अरे कैसी बातें कर रहे हो आप मिस्टर सूरी? अरे आपने सुना नहीं उन्होंने क्या? सुनिए मैं हूँ चश्मदीद गवाह, ओके, उस रात मैं था वहाँ, उसने मेरे पर हमला किया है, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी मौत को मारा है। अरे कोर्ट तो लेके जाएंगे उनको, मैं दूंगा गवाही उनके खिलाफ। अरे कुछ तो करिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बनाओ उसे अरेस्ट तो करवाइए।
0: मिस्टर सूरी देखिए विक्रांत ठीक है, वो चश्मदीद गवाह है, उनके सामने सब कुछ हुआ है तो वो सबूत हुए ना, वही तो है सबूत, जीता जागता सबूत।
4: सबूत है लेकिन याददाश्त चली गई है, इन्हें एक साल तक अमनेशिया था और यही इस बात का फायदा उठा के आसानी से मेंटली अनस्टेबल साबित करके बच जाएगा, इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले धैर्य के खिलाफ कोई ऐसा सबूत चाहिए जिससे धैर्य भी नकार ना पाए।
2: गुड न्यूज टुडे में आज देखेंगे आपके विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है और मन्नत खुशी से पागल हो चुकी है, भले भले शावा शावा। और आपको देखिए देखने को मिलेगा अभिमन्यु का नाटक थोड़ा सा, और क्योंकि धैर्य को वो रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, वो कबूलनामा लिखवाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं धैर्य के हाथों, तो अपने मिस्टर एडवोकेट सूरी के कहने पर मन्नत और विक्रांत चल रहे हैं ये चाल। तालिया।
1: मन्नत और विक्रांत को खुशी एक पल के लिए मिली थी, अगले ही पल गम के बादल छा गए क्योंकि उन्हें धैर्य के खिलाफ कोई सबूत जो नहीं मिल रहे। ऐसे में अब विक्रांत ने फैसला किया है कि वो फिर से अभिमन्यु बनेगा और सम्राज्ञी मान्यता के पास जाएगा ताकि धैर्य खुद को भूल सके। ऐसे में ये सुनकर मन्नत हैरान रह जाती है, वो नहीं चाहती कि उसका विक्रांत वापस सम्राज्ञी के पास जाए क्योंकि वो बेहद ही खतरनाक है। खैर विक्रांत मन्नत को दिलासा देता है लेकिन अगले ही पल आ जाता है ट्विस्ट, विक्रांत फिर से बिस्तर पर बेसुध होकर लेट जाता है क्योंकि उसे धैर्य के आने का एहसास होता है। और जैसे ही धैर्य की कमरे में एंट्री होती है तो विक्रांत होश में आने का नाटक करना शुरू कर देता है।
3: हाँ फिर से आगे तू क्यों आया हो, कहा है यार सम्राज्ञी दी, कहा है तू, सीधा करेगी तुम सबको।
0: मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप अपने भाई से पूछ लीजिए, आपके बड़े भाई हैं उनसे पूछिए ना, आप कहे ना वहाँ पर जब हमारी शादी हुई, आप कहे ना वहाँ पर जब हम दोनों अलग हुए, मेरा मतलब है फिर रात भर ढूंढने में मेहनत की ना उसने विक्रांत को, तो बताइए ना।
3: हाँ तो बता रहा हूँ, शादी हुई है हाँ, और मैं तो अपने मिशन पे दिल्ली जा रहा था जब मुझे पता लगा कि तू लापता हो गया, तो मैं सब कुछ छोड़ के वापस आया तुझे ढूंढने के लिए। झूठ बात कर रहे हैं, मैं कैसे झूठ बोलूंगा बता,
0: वो आप प्लीज जानना चाहिए।
3: ओए सुन, बस मैं ना सच बोल रहा हूँ, ये आदमी ना एक एक एक नंबर का झूठा है, और ओए ओए तू कब नहीं है, धोखे से शादी की तूने, और तू चाहे मैं तुझ पे यकीन करूं, मैं यहां किसी भी बंदे पे भरोसा नहीं करूंगा।
0: ठीक है, डीएनए टेस्ट पे तो करेंगे ना भरोसा। डीएनए टेस्ट करवाते आपको पता चल जाएगा कौन।
5: अरे रहने दे यार तू। अरे शादी में दुल्हन बदल दी तूने, रिपोर्ट बदलना बड़ी बात होगी। सुन तू खून नाल भी लिख के दे देगी ना, मैं बेवकूफ नहीं बना पाएगी।
6: विक्रांत इसने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, उस राजवंश परिवार ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बहुत चालाक है वो लोग, धोखेबाज है वो लोग। अरे उन्होंने ही तुम्हें और मन्नत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तभी तो धैर्य ने साम्राज्ञी को अरेस्ट करवाया है।
5: तेरी हिम्मत कैसे, तेरी हिम्मत कैसे साम्राज्ञी जी को जेल भेजने के लिए हो गया तू।
7: रॉनी के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है ये, और थोड़ा सा सैड भी हो जाता है वो ये देखे कि विक्रांत को अभी तक कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर भी मन्नत आइडिया देती है कि विक्रांत को कन्विंस करो कुछ भी करके 7 दिन हमारे साथ रुकने के लिए। तो रॉनी जैसे तैसे करके उसको कन्विंस करता है, तो उस बात पे रॉनी और मन्नत दोनों को बहुत खुशी होती है कि चलो फाइनली 1 साल बाद विक्रांत अपने घर वापस लौटेगा।
1: खैर अब देखना होगा कि मन्नत और विक्रांत का ये नाटक कब तक चलेगा, क्या धैर्य को पता चल पाएगा या धैर्य गुमराह होकर खुद ही अपनी सारी सच्चाई इनके सामने ले आएगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
8: वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी पुस्तक को उसके कवर से ना जांचिए ना पहचानिए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कभी कभी हमारी खबरों के साथ। हमें दिखता कुछ और है लेकिन सच्चाई होती है कुछ और। तभी तो लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग खबरें, यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग, रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: कलर्स के सीरियल जूही मुई का प्रोमो देख लीजिए, जहां पर जूही तैयार है अपना केस लड़ने के लिए, लेकिन वहां पर उसे सामना करना पड़ेगा मुश्किलों का।
9: हाय मैं हूँ जूही, जूही सूरी। बचपन से लोग मुझे पागल बुलाते थे क्योंकि मैं ऑटिस्टिक हूँ, पर पापा कहते थे दुनिया से आंख मिलाकर जीना। और आज मैं हूँ एडवोकेट जूही सूरी एंड आई एम ऑटिस्टिक।
10: कोर्ट में सिर्फ दिमाग ही नहीं जबान भी चलानी पड़ती है।
11: देखिए एक ऑटिस्टिक लड़की की कोर्टरूम जर्नी।
1: दंगल टीवी के सीरियल कैसी है दिल्लगी के सभी कलाकार एक साथ मिलकर पहुंच गए हैं डिनर करने के लिए, और ऐसे में वहां से वीडियो बनाकर वो अपने फैंस के लिए शेयर कर रहे हैं। भाई ये नजारा है पैकअप के बाद का।

दीपिका कक्कर के जन्मदिन के मौके पर उनके पति शोहेब ने शेयर किया है एक बर्थडे पोस्ट, जहां पर उन्होंने न सिर्फ दीपिका को बर्थडे की बधाई दी है बल्कि उनकी तारीफ भी की है।

0: स्टार प्लस और हॉटस्टार पर आने वाले नए रियलिटी शो टॉप 1% कब प्रीमियर होने वाला है, इसकी डेट सामने आ गई है। ये शो 5 सितंबर को दर्शकों के सामने आएगा, जिसे होस्ट करते हुए नजर आएंगे अनिल कपूर।
1: आप लोग यहाँ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के सारे खूबसूरत लोग मेरे सामने आ गए। बस मैं दिल से कह रहा हूँ थैंक यू सो मच।
2: इंडिया का टॉप 1%।
1: आपको बता दूं, हर सवाल का जवाब सोचने के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट, लो जॉन, गेम ऑन, टाइमर। देखते हैं पहला मजेदार सवाल। प्लीज सवाल रिवील कीजिए। विच एक्टर नेम डू दिस पिक्चर्स क्लू मेक। आपके पास हैं 30 सेकंड्स। किसी ने जवाब सोचा?
3: थैंक यू। सो द आंसर इज करीना, एंड एज यू सेड कि व्हाई नॉट कैटरीना, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इमेज इज द कार एंड नॉट अ कैट।
1: क्या बात है,

की रात हुई फिल्म ओह माई डॉग की स्क्रीनिंग, जहां पर इस फिल्म से जुड़े कलाकार पंकज त्रिपाठी, राजेश कुमार, रूही सिंह और वरुण बड़ोला मौजूद रहे। अपनी आने वाली फिल्म को देखने के लिए इनके अलावा वहां पहुंची हैं आप सभी की प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली भी। साथ ही नजर आए गौतम रोड़े, जो आए हैं अपनी बीवी पंखुड़ी अवस्थी के साथ, और देखिए कैसे राजेश कुमार के साथ मिलकर ये अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेटेड जो है

0: रमेश तौरानी, क्रांति प्रकाश झा, अर्शी खान, भूषण कुमार, तापसी पन्नू और भी कई सितारे पहुंचे हैं। इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को देने ढेर सारी बधाइयां। देख लीजिए कलर्स के सीरियल तू जूलियट जेट्टी का ये प्रोमो, जहां पर नवाब ने फैसला कर लिया है कि वो हीर को ही अपना मानेगा, और ऐसे में हीर के सामने मुश्किलें आन खड़ी हुई हैं। क्या हीर उसके प्यार को कबूल करेगी?
1: बस एक हफ्ता और इस मंदिर से दूर रहना मेरी बच्ची।
2: राजनंदिनी,
3: कहानी ऐसी जिसका आप सबको है इंतजार।
1: गुरुदेव की भविष्यवाणी सच तो नहीं?
0: सन नियो पर आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है राजनंदिनी। देख लीजिए इस सीरियल का नया प्रोमो।
3: नागों का वास है जो उसे अपनी ओर खींच रहे हैं।
4: इस सिंहासन की नई नागरानी हमें मिल गई है।
1: इस पर उसे यहाँ लेकर आ रही है।
5: हमें राजनंदिनी से नागमणि हासिल करके उसके फन को कुचलना होगा।
1: यहाँ उसे उसका भाग्य नहीं, काल लेके आया है।
3: यदि उसे रोका नहीं गया तो राजनंदिनी को नागिन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
6: नहीं, नहीं। कौन है जी ये राजनंदिनी?

0: आ रही है राजनंदनी।
1: किताबें सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं है, ये तो अनुभव है, ये सीख है, कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली प्रेरणा भी है। तभी तो कहा जाता है कि अच्छी किताबें पढ़ना यानी बीते हुए कुछ महान लोगों से बातचीत करना जैसा है। तो आप भी रोजाना कुछ वक्त निकालिए, एक अच्छी किताब पढ़िए, क्योंकि एक किताब अपने साथ रोजाना एक नई जिंदगी का अनुभव लेकर आती है। बस अब इसी पर लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट, यानी खुलेगी आपके लिए फिर एक बार एंटरटेनमेंट की किताब। तब तक आप रखिए अपने अच्छे से ख्याल, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: दिल्ली NCR में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के कई जिलों में जारी किया तेज बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। मॉनसून की फुहारों के बीच आस्था, उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सहारनपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, पुलिस ने कांवड़ियों का किया भव्य स्वागत, हर हर महादेव का जय घोष। पंजाब के फरीदकोट में महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, माता रानी के जयकारे के साथ निकाली गई मनमोहक झांकियां। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी की मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। करनाल में कमांडोज की ओर से निकाली गई बाइक तिरंगा रैली, तिरंगे से प्यार और उसके सम्मान के लिए आम लोगों को प्रेरित करने की पहल।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: फरीदकोट में सावन मेले पर निकाली गई महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने किए दर्शन। पनवर्षों पुरानी परंपरा के साथ निकाली गई भव्य झंडा शोभा यात्रा, देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने पेश की मनमोहक झांकियां। माता रानी की अति सुंदर और अलौकिक पालकी रही यात्रा का मुख्य आकर्षण। शोभा यात्रा में कई तरह की सुंदर झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक मलवई गिद्दा ने खींचा सबका ध्यान। फरीदकोट के ऐतिहासिक किला मुबारक चौक से हुआ महामाई का विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ। शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए वापस किला मुबारक पहुंची यात्रा। माता चिंतपूर्णी के दरबार को झंडा ले जाने में असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई थी इस यात्रा की शुरुआत। इसमें धार्मिक मंडलियों को सौंपे जाते हैं पवित्र झंडे, जो भव्य झंडों को शोभा यात्रा के साथ माता चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचाती है। सावन के महीने में नजर आ रहे भक्ति आस्था के अनूठे रंग, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा है गजब का उत्साह। भगवान भोलेनाथ की विशाल कांवड़ लेकर चल रहा है संभल के रहने वाले 126 कांवड़ियों का जत्था। 11 अगस्त को संभल के श्री कल्कि धाम क्षेत्र में होगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। बुलंदशहर के लिए भी कांवड़ लेकर निकला है शिव भक्तों का एक दल। शिवजी के साथ विराजमान है खाटू श्याम की प्रतिमा। भगवान विष्णु और गरुड़ के स्वरूप की कांवड़ लेकर निकले हैं कई कांवड़िए। भगवान भोलेनाथ के बम बम भोले के जयकारों के साथ गूंज रहा है पूरा यात्रा मार्ग। पूरी तरह शिवमय में नजर आ रहा है बिजनौर, हर तरफ नजर आ रही है अलग अलग रूप और स्वरूप की कांवड़। हापुड़ में नजर आई कलयुग के श्रवण कुमार की अनोखी कांवड़। 95 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले पोते। एक्सीडेंट के कारण खुद यात्रा करने में असमर्थ है दादी, यही वजह है कि सोनू और उनके भाई श्रवण कुमार की तरह उनके कंधे पर लादकर हरिद्वार करा रहे हैं यात्रा। हरिद्वार से सिकंदराबाद लौट रहे हैं सोनू और उनके भाई। दादी की इच्छा और पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना है इस यात्रा का मकसद। सहारनपुर में भोले को मनाने निकला अनोखा शिव भक्त। भगवान शिव की सवारी नंदी को स्वरूप बैल को ही बना डाला कांवड़। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में नंदी को कराया गंगा स्नान। सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज। शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए मंत्री। कांवड़ शिविर पहुंचकर सबसे पहले शिवभक्तों का किया स्वागत। थके हुए कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर जाना उनका हालचाल। मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रद्धालुओं को परोसा भोजन। सेवा भाव का दिया संदेश, जीता कांवड़ियों का दिल। कांवड़ यात्रा के दौरान देखा सहारनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा। शिवभक्त की कांवड़ खुद अपने कंधों पर उठाकर उसे सुरक्षित साथियों तक पहुंचाया। कांवड़ यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अस्वस्थ अवस्था में लेटे हुए शिवभक्त कांवड़िए पर पड़ी पुलिस की नजर, तुरंत उपलब्ध कराई प्राथमिक सहायता। कांवड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटी की जोड़ी। संगन मगरी से मध्य प्रदेश तक का पूरा करेंगे सफर। पिछले 5 सालों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं सोनू। 5 साल पहले भोलेनाथ से मांगी संतान प्राप्ति की मुराद, पूरी होने पर शुरू की पवित्र यात्रा की प्रथा। स्टील के घड़ों में करीब 80 लीटर गंगा जल के साथ कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। भविष्य में पावन यात्रा के लिए बेटे को भी कर रहे हैं ट्रेन। कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम। यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ियों से भी जिलाधिकारियों ने की मुलाकात, लिया फीडबैक, श्रद्धालुओं का जाना हाल। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच दिखा अनोखा नजारा। एसएसपी संग पत्नी और बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते आए नजर। एसएसपी ने परिवार सहित श्रद्धालुओं का किया स्वागत। कांवड़ियों को केले, फ्रूटी, शुद्ध पेयजल और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की, जीता कांवड़ियों का दिल। इस दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी की बातचीत। श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के दिए निर्देश। बागपत में आशा गिरा पर नजर आया सुरक्षा का कवच। सुरक्षित कांवड़ मार्ग सुनिश्चित करने के लिए रातभर डटे नजर आए पुलिस अफसर। हाईवे पर तैनात पुलिस लगातार डाक कांवड़ियों की गतिविधियों पर रख रही है नजर। आस्था की इस यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए सतर्क। सावन के महीने में शिव भक्ति में रंगे नजर आए तेजस्वी सूर्या। हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर फूल बरसाकर किया उनका स्वागत। हरकी पैड़ी पहुंचे तेजस्वी, गंगा में लगाई डुबकी। पवित्र स्नान के बाद विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। कांवड़ में गंगा जल भरकर ऋषिकेश के लिए हुए रवाना। ऋषिकेश में भजन कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम में होंगे शामिल। 10 अगस्त को हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पैड़ी से कावड़ लेकर रवाना होगी उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक करेंगी यात्रा। करीब 22 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा के साथ करेंगे भगवान शंकर का जलाभिषेक। 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी मिलने की कामना के साथ करेंगे कावड़ यात्रा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मानसून और सावन में धाम में दिख रहे हैं भक्ति के अद्भुत रंग। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक हर ओर दिखाई दे रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जय बद्री विशाल और हर हर महादेव के जय घोषों से भक्ति में वातावरण में डूबा पूरा धाम। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी। डाक से भेजने की है तैयारी। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक। सुरक्षा कारणों से रोकी गई है यात्रा। खराब मौसम के चलते लगाई गई है यात्रा पर रोक। कुछ दिन पहले उफंती नदी में बह गया था मोरखंडा नदी में बनाया गया लकड़ी का पुल। करनाल में सेना ने जवानों ने बुलेट बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी सड़कें। डीएसपी ने तिरंगे यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ यात्रा का आयोजन। इस यात्रा में 150 के करीब जवान शामिल हुए। साथ ही प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम। बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात। हैंडलूम डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया वीडियो जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस पर अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। 15 अगस्त पर सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल आयोजित। शाम 6 बजे के बाद कई संवेदनशील इलाकों में होगा सुरक्षा अभ्यास। इस ड्रिल में एनएसजी दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी तैयारियों का लेंगे जायजा। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। 20 सप्ताह तक चली कठिन ट्रेनिंग। देवभूमि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए मंडी जिला के एक जन प्रतिनिधित्व की शानदार पहल। खराब शराब मुक्त शादी रचाने पर आयोजित परिवार को 11,000 नकद का इनाम दिया। कटिहार में टीचर बने डीएम आशुतोष द्विवेदी। सरकारी स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाते आए नजर छात्रों के सवालों के दिए जवाब। स्कूल दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने खेल मैदान में भी आजमाया हाथ। खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल को किक मारकर खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों का बढ़ाया उत्साह। छात्रों के लिए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बनाना है मकसद। पढ़ा

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे,
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूँ। इस उम्र में जहाँ लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूँ। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि

0: गिरी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे, और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है? जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी धीरे पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेल पर्ण। इसको तेल पर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेल पर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: दिल्ली एनसीआर में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। मौसम विभाग ने केरलम के कई जिलों में जारी किया तेज बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। मॉनसून की फुहारों के बीच आस्था, उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सहारनपुर में शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा, पुलिस ने कांवड़ियों का किया भव्य स्वागत, हर हर महादेव का जय घोष। पंजाब के फरीदकोट में महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, माता रानी के जयकारे के साथ निकाली गई मनमोहक झांकियां। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसी की मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। करनाल में कमांडोज की ओर से निकाली गई बाइक तिरंगा रैली, तिरंगे से प्यार और उसके सम्मान के लिए आम लोगों को प्रेरित करना पहल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो प्रार्थना हो स्वीकार। देव आदिदेव महादेव जो आपके जीवन की हर कमी को पूर्ण कर सकते हैं, माना जाता है कि सावन महीने में छिपी है आपके भाग्योदय की कुंजी। वैसे तो सावन का हर दिन ही शुभ और कल्याणकारी है, ज्योतिषी कहते हैं कि सावन में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपाय फलकारी होते हैं और इसीलिए आज हम आपको सावन में धन और समृद्धि पाने के प्रयोग बताएंगे। आइए जानते हैं सावन में किए जाने वाले वो ज्योतिषीय उपाय क्या हैं।

0: सावन में दूर होगी धन की समस्या। महादेव की विधि विधान से करें तपस्या। सावन में बनेंगे समृद्धि के योग। बदल जाएगा आपका भाग्य, कीजिए महाप्रयोग। शिव की साधना दिखाएगी चमत्कार। सावन में छोटे छोटे उपायों से खुल जाएगा किस्मत का द्वार। माना जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा करने से धन समृद्धि और सुख शांति मिलती है, और तो और इस महीने में शिव की आराधना से कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है।
1: सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का सबसे उत्तम समय माना गया है। मान्यता यहाँ यह है कि माता लक्ष्मी स्थिर होकर के यहाँ पृथ्वी पर निवास करती हैं, इसलिए श्रावण मास में की गई पूजा पाठ दान जप व्रत ये सब धन और ऐश्वर्य सुख और समृद्धि प्राप्त करने का सर्वोत्तम मास माना जाता है।
0: तो आइए जानते हैं शिव उपासना के सावन का धन और समृद्धि से क्या संबंध है। महादेव की कृपा वाले सावन में कैसे पूरा होगा आपका समृद्ध होने का सपना।

0: सावन के महीने में हर तरह की ऊर्जा का स्तर घट जाता है, जिससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस महीने लगभग हर व्यक्ति को धन और सेहत की समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए इस महीने में धन समृद्धि के उपाय करना जरूरी हो जाता है। सावन महीने के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं। इस महीने में शिव उपासना से जीवन में धन की सारी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यहाँ तक कि विशेष प्रयोगों से दरिद्र योग भी नष्ट किया जा सकता है।
1: सोमवार को शिव मंदिर में जा करके बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, पुष्प अर्पित करें। शाम के समय घर में पूजा स्थान में दीपक जला करके लक्ष्मी और भगवान शिव की स्तुति बैठ करके पूजन करें, इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
0: ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सावन में किसी भी दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और शिवजी की कृपा से कुंडली के दोष भी दूर हो सकते हैं और भाग्य भी प्रबल होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आपके भाग्य को चमका सकता है ये सावन।
1: श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूर्योदय के पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ धुला हुआ घर का धुला हुआ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग भगवान के देव मंदिर में, देवालय में या अपने घर में जो शिवलिंग स्थापित हैं उनकी पूजा करें, उनको पंचामृत दूध दही चीनी शहद घी से अभिषेक करें, स्नान कराएं और बिल पत्र भगवान को बेल का फल और बेल का पत्ता भगवान शंकर जल से और बिल पत्र चढ़ा देने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य की मनोकामना जो होती है वो तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
0: सावन का महीना भगवान शिव का महीना है। सावन का महीना जल तत्व का महीना है। इस महीने में शुक्र और चंद्र दोनों ही मजबूत होते हैं। ये दोनों ही ग्रह सरलता से सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इन दोनों को मजबूत करके आसानी से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। धन और ऐश्वर्य के लिए शुक्र और चंद्र के साथ शिव जी की उपासना करना बहुत लाभकारी हो सकता है।

0: सावन महीने में भाग्य को मजबूत करने के लिए कई महा उपाय बताए गए हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। और साथ ही साथ अगर आपने पीपल और बरगद के पौधे लगा दिए तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होना तय है।
1: उसके साथ साथ भी 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिख करके या राम राम लिख करके भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उसके साथ साथ एक माला 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। एक माला नहीं कर सकते तो कम से कम चलते फिरते 11 बार ही जप कर लें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ण पूर्ति होती है।

0: शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सुगंध अर्पित की जाए। यथाशक्ति नमः शिवाय का जाप करें। रोज शिव पुराण का पाठ या अध्ययन जरूर करें। शिवलिंग पर स्पर्श कराकर रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला धारण करें और शिव जी के प्रति अपनी संपूर्ण निष्ठा बनाए रखें। तो देखा आपने, सावन महीना क्यों है इतना चमत्कारी। इस दिन विशेष प्रयोगों से जीवन में धन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। धन प्राप्ति के अचूक उपाय हम आपको आगे बताएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
1: शास्त्रों में माँ महालक्ष्मी को धन की देवी माना गया है, तो भोलेनाथ को सहज ही प्रसन्न होने वाला। और ज्योतिष के जानकार ये कहते हैं कि सावन में भगवान शंकर की कृपा तो रहती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आपकी धन की स्थिति बहुत खराब है तो इसके लिए आपको ज्योतिषीय महा उपाय कर सकते हैं। देखिए कैसे।

0: जब न टिके जेब में पैसा, रहती हो पैसों की तंगी, घर की तिजोरी भी रहती हो खाली, छाई रहती हो जीवन में बदहाली, तो सावन के शुक्रवार को केवल एक उपाय से बदल जाएगा आपके जीवन का हाल। आज हम आपको बताने वाले हैं वो चमत्कारी मंत्र जो आपको बहुत जल्द ही बना देंगे समृद्ध। तो अब बस सच्चे मन से समृद्धि के उपाय करें और धन की हर चिंता से आजाद हो जाएं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माली हालत उत्तम बनाए रखने के सामान्य उपाय। ये उपाय उनके लिए हैं जिन्हें अपनी आमदनी के पैसे कम तो नहीं पड़ते लेकिन बचते भी नहीं हैं। गौर से ये ज्योतिषीय महा उपाय देखिए।
1: सावन महीने में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम दिन शुक्रवार का दिन माना गया है, जिसमें माता लक्ष्मी कमल का फूल और खीर का भोग लगाएं और श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जप करें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन देती हैं।

0: शाम को मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं बैठकर शिव के पंचाक्षर मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय। फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मये नमः। शाम को पहले शिव जी की आरती करें, फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारें, फिर महादेव और माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस उपाय से बहुत जल्द ही आपकी तरक्की होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास एक समय में बहुत सारा धन रहता है और दूसरे ही पल में कंगाली छा जाती है, यानी धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना ही रहता है। तो जीवन में धन का संतुलन बनाए रखने के लिए आज शाम करें ये उपाय।
1: सावन के प्रत्येक सोमवार को घर में घर के मुख्य द्वार पर आम का अशोक के पत्ते का तोरण लगाएं और अपनी तिजोरी में जो घर की तिजोरी होती है जहां धन रुपया रखा जाता है वहां आप लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और एक चांदी का सिक्का रखें, उससे धन की प्राप्ति होती है।
0: धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो तो शाम को शिवजी को जल और बेलपत्र अर्पित किया जाए। शिवजी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें। पहले शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें, फिर माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है महालक्ष्मी च विद्मये विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर भोग का प्रसाद सभी में बांटे और खुद भी खाएं। सावन के शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर बेल का पौधा लगाएं। धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। अगर आपकी भी धन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो और आमदनी के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों, तो आज शाम पूरे विधि विधान से करें ये उपाय।
1: जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को, जिनकी भूखे हैं, प्यासे हैं, जिनको अपनी रुपया पैसा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बहुत असहाय हैं, उनको वस्त्र का दान करें, अन्न का दान करें, फल फूल दें और उनकी यथाशक्ति मदद करें, उससे लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होती है।
0: अगर धन की स्थिति बहुत खराब हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर शिवलिंग पर सफेद चंदन का टीका लगाएं, महादेव को मदार का फूल और माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। रोज रात को शिव जी के सामने घी का दिया जलाएं। दीपक जलाने के बाद भी स्तोत्र का पाठ करें और तांबे का एक छल्ला या कड़ा धारण करें। इस उपाय से आपके जीवन में धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी बढ़ेगी और देखते ही देखते आप पैसों की तंगी से उबर जाएंगे, क्योंकि ये शुक्रवार माँ लक्ष्मी संग महादेव की कृपा भी लेकर आया है।
2: ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि सावन का संबंध धन धान्य और समृद्धि से है। अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं या फिर आपकी माली हालत ठीक नहीं है तो आप इस सावन के महीने में एक छोटा सा उपाय करके जीवन से संकटों को खत्म कर सकते हैं। गौर से देखिए कर्ज से छुटकारा पाने का महाप्रयोग।

0: पैसों की तंगी कर रही है परेशान। कर्ज के बढ़ते बोझ से आप हैं हैरान। कर्जों से मुक्ति पाने का सबसे उत्तम वार, शुक्रवार को महादेव करेंगे कर्जों से उद्धार। कर्ज एक ऐसी समस्या जो इंसान का सुकून तक छीन लेती है और हर दिन के साथ इसका बोझ बढ़ता ही जाता है। कई बार तो कर्ज का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके नीचे दब के रह जाता है इंसान। अगर आप भी बढ़ते कर्जों से परेशान हैं, तो सावन महीने के इस शुक्रवार को करें ये उपाय।
1: इसमें काले तिल मिले हुए जल से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। उसके साथ साथ ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ये मंत्र ऐसा है जिसकी एक माला कम से कम जप करने से ऋण की मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को भोजन कराएं, आवश्यक वस्तु दें और भगवान से प्रार्थना करें तो आपकी ऋण जो होता है, कर्जा जो होता है, उससे मुक्ति मिलती है।
0: रोजाना शिवलिंग पर लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग को जल अर्पित करें। फिर मां लक्ष्मी को लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और मीठे पकवान का भोग लगाएं। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें और दोनों देवी देवता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। कर्जों से मुक्ति के उपाय के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो छोटा मगर दिव्य प्रयोग, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी की तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हल हो जाएंगी।
1: पति पत्नी को दाम्पत्य जीवन को ठीक रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि बाबा विश्वनाथ, शंकर और पार्वती का पूजन करें। उससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। साथ में अभिषेक करें और श्री गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जप करें। ऐसी मान्यता है कि इस तरह से शंकर पार्वती, शिव पार्वती की पूजा करने और जप करने से उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम व्यतीत होने लगता है।

0: सावन में शिव जी को पीले फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस छोटे से उपाय से आप भी सवार लीजिए अपने सबसे प्यारे रिश्ते की जिंदगी, क्योंकि महादेव और माँ लक्ष्मी की कृपा एक साथ रोज रोज नहीं मिलती।
1: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात गणपति बप्पा की। अगले महीने शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर भी जगह जगह तैयारियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के पाली में एक दंपति बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटा है। पति पत्नी मिलकर यहाँ गोबर से इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाते हैं, जिनकी मांग विदेशों तक है।

0: गणेश उत्सव को लेकर मूर्तियों को आकार देने वाले कलाकार अपने काम में जुटे हुए हैं। राजस्थान के पाली में एक दंपति भी गणपति प्रतिमाओं को आकार देने में जुटा है। खास बात यह है कि पति पत्नी मिलकर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार करते हैं। ये गाय के गोबर से इन्हें बनाते हैं। इसके लिए 7 महीने पहले से ये गौशाले से गोबर लाकर उसे सुखाने लगते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं और उसके बाद पेस्ट बनाकर अलग अलग आकार के डाई में उस पेस्ट को डालकर प्रतिमा तैयार करते हैं।
1: हम लोग गोबर लाते हैं, जो गीला गोबर होता है, ताजा गोबर मतलब, फिर हम लोग उनको सुखाते हैं गोबर को, फिर सुखाने के बाद में जैसे ही वो प्रॉपर ढंग से पूरा सूख जाता है उसके बाद में हम उसको मतलब पाउडर फॉर्म में करते हैं, पीसते हैं, मतलब कम से कम 100 GM मतलब ऐसा बारीक करते हैं ताकि मूर्ति में वो रेसे नजर नहीं आए। फिर सुखाने के बाद में, पाउडर बनने के बाद में हम लोग उसमें प्राकृतिक कुछ चीजें हैं जो बाउंडिंग का काम करती है वो हम डालते हैं, जैसे प्रीमिक्स हो गया मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, वो डालते हैं, फिर उसके बाद में हम उसका मिश्रण करते हैं।
0: गोबर को गूंथकर डाई से प्रतिमा को आकार देने के बाद उसे बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। फिर मनोहर लाल और उनकी पत्नी दीपिका उसे इको फ्रेंडली रंग से सजाते हैं। बहुत ही बारीकी से मुकुट, सिंहासन से लेकर आंख, दांत और जनेऊ सब उकेरते हैं। गोबर से प्रतिमाओं को बनाने के पीछे इस दंपत्ति का अहम मकसद पर्यावरण की रक्षा है। इन इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं की डिमांड भी खूब है, यहाँ तक कि ये प्रतिमाएं विदेश तक जाती हैं।
1: पर इस मूर्ति में पर्यावरण में जीव जंतु को किसी को कोई नुकसान नहीं है, और एक आप मूर्ति लेके जाओ घर पे बिठाओ, 9 दिन इनकी पूजा करो और उसके बाद में आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। उसको आप हाथ से मेल्ट कर दो थोड़ा सा और उसको आप अपने गमलों में पौधों में डाल दो तो वो फर्टिलाइजर का भी काम करेगी।
2: तो मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी बनाए तो ये गणपति जी अपने प्रदूषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मूर्तियां बाहर भी जाती है और पिछले साल भी मैंने पाली में बहुत अच्छी की तरह से, मैंने एक दो तरह दुकानें लगाई थी तो मेरे बहुत अच्छी तरह से सेल हुई है।
0: मनोहर लाल और उनकी पत्नी पूरे भक्तिभाव से गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। भजन बजाते हुए अपने मन में गणपति की स्थापना कर ये प्रतिमा तैयार करते हैं, यानी भक्ति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: शिरडी में साईं बाबा के एक भक्त ने सोने का राम शब्द बाबा को चढ़ाया। करीब 76 ग्राम सोने से बने राम को द्वारका माई में स्थापित किया गया। इसी भक्त ने कुछ महीने पहले सोने के ओम साईं शब्द भी बाबा को अर्पित किए थे।

0: साईं बाबा में अपनी अनंत आस्था को इस भक्त ने स्वर्णाक्षरों में सुशोभित कर दिया। दुबई के इस भक्त ने सोने के बने राम शब्द को बाबा को अर्पित किया। कुछ दिनों पहले इस भक्त ने एक मुराद मांगी थी। बाबा के आशीर्वाद से मुराद पूरी हुई तो भक्त ने भी स्वर्णाक्षर अर्पित करने के अपने संकल्प को पूरा किया। इस सुनहरे राम शब्द के निर्माण में 76 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है। इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। दरअसल इस भक्त ने कुछ महीने पहले सोने से बने ओम साईं शब्द बाबा को अर्पित किए थे, जिसकी कीमत 24 लाख रुपए थी। अब सोने के बने राम शब्द के आने से ओम साईं राम का जय घोष पूरा हो गया है।
1: दुबई के एक साई भक्त जो है, उन्होंने 76 ग्राम का सोने का राम अक्षर जो है वो बाबा को अर्पण किया है। उन्होंने ही इसके पहले ओम साई नाम के सोने के अक्षर जो है वो बाबा को अर्पण किए थे। तो ओम साई उन्होंने अर्पण किए थे, लेकिन उनको वो अधूरा अधूरा लगता था, इसलिए ओम साई राम ऐसे 3 सोने के अक्षर जो है उन्होंने अर्पण किए।
0: भक्त के अर्पित किए सोने के ओम साईं राम को द्वारका माई में स्थापित कर दिया गया है। यही वो जगह है जहां साईं बाबा अपना अधिकांश समय बिताते थे। यहीं पर वो भक्तों से मिलते थे और दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को बाबा का आशीर्वाद मिलता था। अब एक भक्त की अटूट आस्था इसी द्वारका माई मंदिर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
7: दिल्ली NCR में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया केरलम के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, अलर्ट को देखते हुए एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। मानसून की रिमझिम बरसात के बीच उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत, महादेव के जयकारों से गूंज रहा यात्रा मार्ग। पंजाब के फरीदकोट में महंगाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, महामाई की माता रानी के जयकारों के साथ निकाली गई मनमोहक झांकियां। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। हरियाणा के करनाल में कमांडोज ने निकाली बाइक तिरंगा रैली, तिरंगे से प्यार और उसके सम्मान के लिए आम लोगों को प्रेरित करने की पहल।

0: लोकगीतों में मालवीय लोकगीतों की एक अलग पहचान रही है, जहां पर संस्कृति, धर्म, परंपरा की एक झलक एक साथ मिलती है। आप पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन पिछले 30 वर्षों से हमारी इस लोक परंपराओं को समेटे हुए हैं, हमारे लोकगीतों को समेटे हुए हैं, उन्हें युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सम्मानों से इनको नवाजा जा चुका है। हाल फिलहाल में राष्ट्रीय गौरव गुजरात सम्मान से आपको नवाजा गया है। अपने गीतों की शुरुआत इन्होंने अपनी माताजी को देखते हुए ही शुरू की थी, और मेरे ख्याल से गलत नहीं हूं तो सर शायद वही आपकी गुरु भी हैं। बिल्कुल, माँ से बड़ा वैसे भी कहा जाता है कि कोई गुरु होता नहीं है, सब कुछ हम वहीं से सीखते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। उन्हीं को सुनते हुए आज आप यहां पर मौजूद हैं और इतनी महारत आपने हासिल की है, तो पहली गुरु माँ और उज्जैन में आज हम लोग मौजूद हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आज तक धर्म संसद की शुरुआत हम आप ही से कर रहे हैं। लोक कला को समेटे तमाम लोकगीत तो हम सुनेंगे, अब क्योंकि सर सावन चल रहा है, शिव की महिमा को लेकर भी चर्चा करनी है, आप शुरुआत कीजिएगा। लेकिन मेरे एक प्रश्न, क्योंकि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं महाकाल की नगरी में
1: जी,
0: क्या संबंध है, महाकाल क्या है, क्या सिर्फ भगवान तक जाना या भगवान को पाना? हम अक्सर जब मंदिर जाते हैं हम कहते हैं कि हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं, लेकिन क्या हमें भगवान से कुछ मांगना है, क्या हमें महाकाल से कुछ मांगना है, क्या हमें शिव से कुछ मांगना है, या हमें शिव को मांगना चाहिए?
1: मांगने का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, आपकी श्रद्धा जो है तो वो तो बाबा भोले बाबा, उनका नाम ही भोले बाबा है, वो इतने भोले कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही दे देते हैं। आपके भीतर में उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, वो सब कुछ देते हैं, बिन मांगे देते हैं। ये तो बाबा का दरबार है, यहाँ जो आता है उसको खाली कभी नहीं जाता है।
0: और कहते हैं कि इतने भोले कि एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं।
1: हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, और हमारा सौभाग्य कि हम बाबा महाकाल की नगरी में निवास करते हैं। हमारा पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य फल है ये जो हम यहाँ मतलब बाबा की शरणागति में हम।
0: यकीनन आज हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम यहाँ पर इस पवित्र पावन धरती पर मौजूद हैं, महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं। चलिए बिना वक्त गवाए सर मंच आपका।
1: आज हमारा सौभाग्य है कि आज तक का धर्म संसद की इस पुण्य और बहुत ही ये कहें कि इस धर्म संसद में यहां हमारे गुरुवर विराजमान हैं, और यहां आज तक की पूरी टीम है, आप सबको हम नमन करते हैं और बाबा के श्री चरणों में कुछ उनके गुणगान उनकी चरणों में अर्पित करते हैं।

हम बाबा के श्री चरणों में गणेश जी और भैरवनाथ जी और बाबा स्वयं भोलेनाथ जी देखिए उनके उसमें एक शिव है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को, जो खुद एक पेंटर हैं, पोएट हैं, कथा वाचक भी हैं, और धर्म को मानने से ज्यादा उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रभक्त हैं। धर्म के जरिए कैसे राष्ट्रभक्ति को दिखाया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ करेंगे आज अपनी पेंटिंग्स के जरिए। भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक भी हैं और अपनी कला, कविताओं और भारत माता की आरती के माध्यम से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण का कार्य ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इनका जन्म हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ललित कला में स्वर्ण पदक प्राप्त इन्होंने किया। इसके अलावा चित्रकला के अलावा व्यंगात्मक गायन, मंच संचालन में सदस्य हैं, और प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की अगर हम इनकी बात करें तो अनेकों अनेक किताबें, 25 किताबें जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट आई है प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्र और संस्कृति पर आधारित हैं। और अभी तक इन्होंने आंकड़ा गलत हो सकता है, आप सर करेक्ट कर सकते हैं, 1500 से ज्यादा शायद प्रस्तुतियां दी, और मेरे ख्याल से अनगिनत समय आप अमेरिका जा चुके हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सत्यनारायण मौर्य जी। आरती के साथ जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला और ये शब्द भी आप ही के श्रीमुख से मैंने सुना था कि धर्म को मानते तो हम सब लोग हैं, हम रोज सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन क्या वाकई हम धर्म को जानते हैं? उस धर्म को जानना कितना जरूरी है? ये सवाल सर आज की तारीख में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब छोटे बच्चे हम किसी को कहें कि जाइए बेटा आज सावन सोमवार है तो जल चढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर आपके लिए पाठ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यही सवाल करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं क्यों ये पाठ करूं, मैं क्यों ये जल चढ़ाऊं। तो जानने के लिए मेरे ख्याल से आपसे बेहतर माध्यम कोई होगा नहीं, कैसे धर्म को जाना जाएगा?
7: मूलतः जिसको हम धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन है। जब भी बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो वास्तव में धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन शब्दों का रिलीजन वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन भारत में हम जिसको कहते हैं सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़े, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां अथा तो है अतः स्टार्ट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है हम कहते हैं नेति नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। कुरान के हिसाब से अंत है, बाइबल के हिसाब से अंत है, किसी पंथ के हिसाब से अंत है, लेकिन हिंदुत्व के हिसाब से परमात्मा को जानने की चीज का अंत नहीं है। और कहा गया जानो, जैसे कोई बाप संपत्ति कमाता है और उसके बाद बेटे से ये नहीं कहता कि इतनी संपत्ति में संतोष करना है, बाप कहता मेरे से ज्यादा कमाना मुझे संतोष होगा। हमारे भारत के जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते मैंने यहां तक कमाया है, तुम इसके आगे जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। मानने के बाद तो बात खत्म हो जाती है, जो पंथ मान लेते हैं वे सड़ जाते हैं। इसी बात को मैं संगीत की भाषा में कहता हूं, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है।

0: अभी सिंहस्थ लगने वाला है। जब सिंहस्थ लगेगा अलग अलग प्रकार के झंडे लगेंगे, कोई लाल रंग के, कोई पीले रंग के। जितने संत आएंगे काले रंग का पहन के आएंगे, पीले रंग के कपड़े पहन के आएंगे, सफेद रंग के कपड़े पहन के आएंगे। सफेद क्यों पहना जाए, इनके पीछे विज्ञान था। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, आजकल जब हम बात करते हैं भारत ने क्या किया, तो मैं तो दुनिया भर में चैलेंज करता हूं, आज दुनिया में मंगल के बारे में पूछा जाए, पाथ फाइंडर भेजा, उसने लौट कर बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। मैं इनका कमाल है, हमारे गांव की बिना पढ़ी लिखी बुढ़िया से पूछ लो मंगल की प्रॉब्लम में कौन से रंग की अंगूठी पहनूं, बिना पढ़ा लिखा उज्जैन का पंडित बता देगा सड़क किनारे लाल रंग की अंगूठी पहन। हमारी दादी माँ जो बिना पढ़ी लिखी है वो जानती गुरु का रंग पीला है, साइंस ने अब कहा, हमारे यहां तब से कहा गुरुवार का व्रत है पीले रंग के कपड़े पहन। ये मैं आपसे एक बात कहता हूं, भारत को तो विज्ञान था जिसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, इसका नाम था त्रिकोणमिति। जिसको कहते हैं ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री नहीं था, इसका नाम था ज्यामिति। मैंने जानने की बात की है, हमको जानना नहीं सिखाया गया। मान लो बिंदी क्यों लगाई, मैं अमेरिका में था जब बिंदी लगाने की बात हुई, बोले हम क्यों बिंदी लगाएं, वाई वी टुक दिस रेड स्पॉट। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, उनको समझाया आज्ञा चक्र होता है, वो बोलते वी डोंट नो आज्ञा चक्र। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट नो आज्ञा चक्र ओपन द बुक ऑफ एनाटॉमी एंड सर्च, दिस प्लेस इज रिलेटेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जहां पर हम चोटी रखते हैं पीनियल ग्लैंड होती है। ये महिलाएं मांग भरती हैं, भाई पूछना क्या गलत है, महिलाएं मांग भरती हैं, कुंवारी लड़कियां मांग क्यों नहीं भरती, विधवा मांग क्यों नहीं भरती, ये हिंदू धर्म है, यहां प्रश्न पूछना बुरा नहीं। सर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध करके बताया है जहां पर महिलाएं मांग भरती है ये स्थान महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक कोमल होता है, और इस बीच के स्थान पर अगर असली सिंदूर, मतलब नकली सिंदूर नहीं, नकली भक्ति नहीं, असली सिंदूर लगाया जाएगा तो ये महिला के प्रजनन के समय जो हार्मोन्स में बदलाव होता है उसमें फायदा करता है। इसलिए केवल सुहागिन महिलाएं सिंदूर लगाती, विधवा सिंदूर नहीं लगाती, बच्चियां सिंदूर नहीं लगाती। हमारे एक एक कारण ये, जैसा आपने कहा ना, थोड़े से समय में जितना बात कर पाए।
1: बिल्कुल, और इसीलिए धर्म को मानने से ज्यादा उसको जानना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आप अपने धर्म को जान जाएंगे तो शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप
0: एक बार में तो नहीं जान सकते,
1: नहीं जा, एक उम्र बहुत कम
0: जाती है। एक बार में इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि जिसको कहते हैं ज्ञान और विज्ञान, हम बचपन से पढ़ते आए ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है, बाइबिल की विज्ञान से लड़ाई है। गैलीलियो ने कहा था पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, उठा के जेल में डाल दिया गया था। कोपरनिकस को सूर्य पर लटका दिया गया, ब्रूनो को खड़ा करके जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने कहा था पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, बाइबिल ने नहीं माना। लेकिन हमारे यहां तो पूरा विज्ञान ही है। और जानो, इतना सा अंतर बता दूं ज्ञान में और विज्ञान में, पानी गिरता है सबको ज्ञान है, अगर बरसात हो रही है कुत्ते को भी ज्ञान है पानी गिर रहा है, लेकिन कैसे गिर रहा है इसकी टेक्निक विज्ञान है।

लेकिन समझे, आपके बच्चे पूछेंगे कि ये मतलब क्या है, आप ये चूहे की पूजा क्यों कर रहे हो, इतने मोटे गणेश चूहे पर क्यों बैठे हुए हैं, शंकर को भस्म क्यों लगाई, हम भस्म नहीं लगाना चाहते, इनका मतलब समझ ले, वरना रोज परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी की नहीं पटती, पुलिस वाले को बच्चों को कूट रहे हैं, बच्चे पुलिस वालों पर पत्थर फेंक रहे हैं, नेता जनता को गाली दे रही है, जनता अधिकारियों को बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है हम में आपस में सामंजस्य नहीं है। कितनी ही भगवान शंकर की पूजा कर लेना, अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से देश की समस्या का समाधान होता तो आज देश में लड़ाई नहीं होती। अर्थ समझ ले, भगवान शंकर का परिवार भगवान शंकर सन्यासी, भगवान शंकर सन्यासी और उनकी पत्नी राजकुमारी, आजकल जितने परिवार टूट रहे हैं इसी बात पे टूट रहे हैं, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते, कहां से विचार मिलेंगे, एक बिल्कुल धनी घर की लड़की, एक सन्यासी, उनके दो बच्चे, पहले गणेश, पहले कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर, और गणेश का वाहन क्या है, जोर से बोलो, और शंकर जी के गले में क्या है, तो जरा सोच कर देखो,

मैं भी अभी आया हूँ ह्यूस्टन से, अमेरिका में लोग मुझको बोल रहे थे ये यज्ञ करते हो इतना घी इतना तिल इतना जो ये सब आग में डाल देते हो, गरीब बच्चों को बांट देना चाहिए। आपको भी लगता होगा मेरे जैन जी कि गरीबों में बांट देना चाहिए, घी को आग में क्यों डाल दिया। मैंने भी उनसे कहा यू वांट प्रैक्टिकल आंसर और थ्योरिकल आंसर, उन्होंने कहा वी नीड प्रैक्टिकल आंसर। मैं इनकी दो मिर्च लेके आओ, वो दो मिर्च लेके आए तीन चार सूखी मिर्च। मैंने कहा एक मिर्च को एक आदमी खाओ, एक आदमी ने मिर्च खाई उसका मुंह जलने लगा, वो कहने लगा माई माउथ इज बर्निंग। मैंने कितने लोगों का मुंह जल रहा है, बोले एक मिर्च मैंने खाई मेरा मुंह जल रहा है। मैंने कहा एक काम करो दूसरी मिर्च को आग में डाल दो। जब दूसरी मिर्च आग में डाली गई सारे लोग खांसने लगे। मैंने कहा खांस क्यों रहे हो, बोले आग में मिर्च डाल दी। मैंने कहा एक मिर्च खाने पर एक आदमी का मुंह जल रहा है लेकिन आग में डालने पर सब क्यों खांस रहे हो, बोले सबको असर कर रही है। मैंने कहा बेटा यही कारण है, एक मिर्च एक व्यक्ति खाएगा एक पर असर करेगी लेकिन वही मिर्च अग्नि में डाल दी जाए तो सूक्ष्म होकर पूरे वायुमंडल में सबको असर करेगी। बोले इसका मतलब क्या, फिर घी असर क्यों नहीं करता। मैंने कहा दारू का असर जल्दी होता घी का असर जल्दी, ये बहुत आसान है कहना। ये बच्चे ये दिल्ली में हम बोलते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे की गलती नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं राम की बात करें शिव की बात करें लेकिन एक बात सोचे राम की तो बात करें लेकिन अपने बच्चों को गुरुकुल भेजने को तैयार है। मेरा बच्चा तो अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए और मैं आपसे कहना चाहता हूं रंधावा जी मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा और मैं आपसे भी कहता हूं अंग्रेजी केवल भाषा है, अंग्रेजी का मतलब ज्ञान नहीं है। अमेरिका में अंग्रेज भी अंग्रेजी में ही भीख मांगता है। तो मैं तो एक बात कहूंगा आपसे, एक ये भी बात है जब भगवान शंकर की बात करें तो भगवान शंकर किससे संबंधित हैं, भारत का कला भारत की कला भगवान शंकर से संबंधित है, नटराज कलाओं के देवता हैं। भारत का विज्ञान भगवान शिव से संबंधित है, भारत की कृषि शिव से संबंधित है और भारत का व्याकरण शिव से संबंधित है। जो पाणिनि की व्याकरण है, अब आज तो मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं सब मेरे से वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं तो मैं चाहूंगा एक बार आप भी समझ लें, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं जानता लेकिन जब अंग्रेज बोलता हूं तो अंग्रेज को दिक्कत नहीं होती क्योंकि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं, कितने 26, हिंदी में कितने होते हैं, हिंदी में 52, तालियां बजाइए डबल अक्षर होते हैं। इसलिए जो शिव तांडव स्तोत्र आप पढ़ सकते अंग्रेज नहीं पढ़ सकते। हमने गीत रटाया था अमेरिका में वेस्ट इंडीज में गीत सिखाया संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, आपने तो गाया है संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। मनोज जी वो अमेरिका के लोग बोलते हैं संगठन गधे चलो क्योंकि उनमें ठा और टा अलग अलग नहीं है, वो टमाटर को टमाटर बोलेंगे टमाटर को टमाटर बोलेंगे। ये शिव तांडव स्तोत्र पूरी दुनिया के लिए, ये पाणिनि की व्याकरण जो भगवान शिव का दिया हुआ है पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आप लोग भी तालियां बजाते हुए एक भगवान शिव की आराधना करें।

0: पड़ता तो समय ही कम पड़ता है। और मैं आप सबसे भी कहूंगा, जब तक व्यक्ति जीने लायक होता है तब तक वापस जाने का टाइम आ जाता है। अब आप ताली बजाने लगे तब तक समय घोषणा कर रहा, चल दो। तो मैं चाहूंगा, सावन का महीना है या नहीं, हाँ या नहीं, ये हाथ उठाओ जोरदार तरीके से ऐसे, और ऐसे खींच के रखो जरा हाथ ये, क्योंकि ऐसे हाथ रखे आपको सर्वाइकल नहीं होगा। ये सर्वाइकल और स्लिप डिस्क सबसे बड़ी बीमारियां हैं। हम दिन भर हाथ यूं रखते हैं जबकि यूं होना चाहिए, कमर यूं होना चाहिए, लेकिन दिन भर कमर झुका के रहते हैं। अभी तो एक काम करो, सावन का महीना आ रहा है, कितनी ही कांवड़ निकाल लेना। और निकलती है कांवड़, पर क्या देश में दुश्मनी की आग कम हो गई? ये कांवड़ पहले भी निकलती थी, व्यक्ति चार धाम जाता था। आपसे बात हुई थी, आपके बहुत प्रश्न हैं, लेकिन
1: एक प्रश्नों की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत कुछ बता दे रहे हैं। लेकिन मुख्य प्रश्न जिसका उत्तर आज कम से कम यहाँ आज तक इस धर्म संसद से सबको जाना चाहिए कि धर्म को मानने से ज्यादा उसको जानना समझना जरूरी है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से आप बताइए,
0: जो आपने बताया धर्म को जानना, एक बात समझ लो, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, कितने लोग देख पा रहे हैं? अच्छा, अब हाथ नीचे करो, मैं कहां दिख रहा हूं? सामने, ये मैं हूं क्या? ये मेरा पैर है, मैं नहीं हूं। ये मैं हूं क्या? ये मेरा कुर्ता है, मैं नहीं हूं। ये मैं हूं क्या? ये मेरे बाल है, ये मैं नहीं हूं। ये मेरा पैर है, ये मैं नहीं हूं। जब कुछ भी नहीं है, अंदर से काट के देख लेना, मेरा खून मिलेगा लेकिन मैं नहीं मिलूंगा, मेरी हड्डी मिलेगी लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। और मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप सबकी इच्छा है दुनिया मुझे जान ले, पर क्या आप अपने आप को जानते हैं कि कौन है, कहां से आए हैं और कहां चले जाएंगे? पता है, और सब जगह सर्च कर सकते हैं। ये देश में भगवान शिव को मानना है, उज्जैन भी चले जाओ, फिर केदारनाथ जाने की जरूरत क्या है? जब भगवान शिव कण कण में है तो केदारनाथ क्यों जाना, सोमनाथ क्यों जाना? अरे बेटा, शंकर को मानता है तो पूरे देश की परिक्रमा कर क्या? देश के कोने कोने में शिवलिंग बने हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग बने हैं। अगर भगवान शंकर को नहीं मानता, माँ दुर्गा को मानता है तो भी जाके आ, 51 शक्तिपीठ है। अगर विष्णु को मानता है तो भी आ, और सिंहस्थ भी क्या है? मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, सरकार भी कोशिश कर रही है, बड़े बड़े साधु संत कोशिश कर रहे हैं, पर क्या सिंहस्थ के लिए, क्या परमात्मा को जानने के लिए? परमात्मा को जानने के लिए बड़े बड़े स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं है। आधा सिंहस्थ ट्रेड फेयर है जिसमें बड़े बड़े साधु संत अपनी दुकानें चलाते हैं। असली सिंहस्थ देखना है, असली सिंहस्थ देखना है जो एक महीने के लिए अपने घर से अपने रोटी दाल सिर पर रखकर आते हैं बैठना, या देखना तो कभी जाकर देखना विरक्त के पास में। पूरी दुनिया के लोग, भारत के लोग, उत्तर की बीमारी का दवा दक्षिण में कैसे मालूम? जो मंत्र उत्तर में पढ़ा जा रहा है वही मंत्र कामाख्या में है, वही मंत्र केरला में है, कैसे पहुंचा? तालियां बजाई, इन सिंहस्थ की परंपरा से पहुंचा। या तो हम तीर्थों पर जाएं या तीर्थ हमारे घर पर आए, पर अभी तो केवल एक। मैं चाहूंगा समापन के समय सब तैयार हो ताली बजाने के लिए, कितने लोग? और गाने के लिए तैयार हो? सभी गाइए।

0: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। वीकेंड है, बाहर है और बाहर रिमझिम बारिशों का है, मौसम
4: अंधेरा हो चुका है, मन कर रहा है बस गाड़ी उठाइए और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाइए,
3: बुलेटिन कर ले।
4: हाँ, ये करने के चलिएगा मुझे।
3: हाँ, शायद अगर मुझे छुट्टी मिल जाए तो, क्योंकि पूरी इवनिंग शिफ्ट भी संभालनी है, ठीक है,
4: फिर तो मुश्किल है।
3: लेकिन अभी का मिजाज आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है, कल से ही जैसा कि हम आपको बता रहे थे रुक रुक कर बारिश हो रही थी और आज भी वैसे ही बारिश हो रही है,
4: कुछ दिन और भी वीकेंड अच्छा होगा,
3: यानी वीकेंड बहुत अच्छा रहने वाला है। आज हमारे पास क्या आया है?
4: चाय है, चाय हम पीने वाले हैं और भेलपुरी
3: अमेजिंग। देखिए, चाय समोसा का तो अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन भेलपुरी का भी अपना ही मजा है जो हम लेंगे थोड़ी देर के बाद चटकारे के साथ। खबरें भी आपको हम बताएंगे, तो रिमझिम बारिश हो रही है और हमारे पास खबरें भी वैसी ही है। आपको बता दें, कहीं मानसून की फुहारें शहरों को तरबतर कर रही है, तो कहीं कांवड़ यात्रा के रंग आस्था की नई तस्वीर बना रहे हैं। गुजरात के मोरबी में एक रहस्यमयी कुआं इन दिनों हर किसी की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है, अगर उसके पानी में लगातार हलचल क्यों है, ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे।
4: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, यही नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भी खास बातचीत होगी। साथ ही बिहार के एक डीएम की अनोखी पहल भी आपको दिखाएंगे, जो स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के आत्मविश्वास और मुस्कान को एक नई उड़ान दे रहे हैं। ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत अभी हेडलाइंस के साथ।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
3: उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। दिल्ली एनसीआर में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत, महादेव के जयकारों से गूंज रहा यात्रा मार्ग। पंजाब के फरीदकोट में महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, माता रानी के जयकारों के साथ निकाली गई मनमोहन यात्रा। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल, चाक चौबंद इंतजाम की हुई परख। हरियाणा के करनाल में कमांडोज ने निकाली बाइक तिरंगा रैली, तिरंगे से प्यार और उसके सम्मान के लिए आम लोगों को प्रेरित करने की पहल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़।
4: तो चाय पर चर्चा की शुरुआत करते एक इंटरेस्टिंग खबर के साथ, कुएं का पानी और उसमें एक उबाल, जिसे देखकर हर कोई ठिठक जाए। आपको हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है। पानी किसी ने छेड़ा नहीं है, फिर भी लगातार थरथरा रहा है, मानो कुएं के भीतर कोई अदृश्य हलचल चल रही हो। गुजरात के मोरबी जिले के वीरपड़रा गांव का एक कुआं इन दिनों लोगों के लिए सबसे बड़ा कोतूहल बन गया है। जैसे जैसे वीडियो फैल रहा है वैसे वैसे आसपास के गांव से लोग भी इस अनोखे नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई इसे कुदरत का करिश्मा बता रहा है तो कोई अपने अपने अंदाज में इसकी अलग अलग कहानियां सुना रहा है। कुल मिलाकर इस कुएं के इर्द गिर्द रहस्य, रोमांच और चर्चाओं का दौर लगातार जारी है।
7: दिलचस्प बात यह है कि यह हलचल हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। कभी पानी बिल्कुल शांत दिखाई देता है और फिर अचानक इस तरह हिलने लगता है कि देखने वालों की भीड़ जुट जाती है। लोग देर तक कुएं के किनारे खड़े होकर इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपने अपने अंदाज में इसके मायने निकाल रहे हैं। गांव में इस वक्त बस इसी कुएं की चर्चा है। आखिर पानी इस तरह क्यों हिल रहा है, इसका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये रहस्यमय नजारा हर आने जाने वाले को कुछ पल के लिए रुककर देखने को जरूर मजबूर कर रहा है। तो क्या सचमुच इसके पीछे कोई रहस्यमय ताकत है या फिर इसका जवाब विज्ञान के पास है? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस अनोखे नजारे के पीछे क्या वजह हो सकती है और साइंस इस पूरी घटना को किस तरह समझाता है।
4: यानी पहली नजर में ये घटना जितनी रहस्यमय दिखाई देती है उसके पीछे प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं को अंधविश्वास से नहीं बल्कि विज्ञान की नजर से समझना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि अब इस अनोखी घटना को लेकर वैज्ञानिक पहलुओं पर भी चर्चा तेज हो गई है।
8: जरा इस कुएं को ध्यान से देखिए, न कोई पत्थर फेंका गया है, न तेज हवा चल रही है, फिर भी पानी की सतह पर लगातार लहरें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुएं के अंदर कोई ताकत तेजी से पानी को हिला रही हो। गुजरात की मोरबी जिले के वीरपरड़ा गांव की तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तब से लोगों की भीड़ मौके पर इस हिलते पानी को देखने के लिए उमड़ रही है। कुएं में डोलते इस पानी को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हैं। कोई इसे चमत्कार बता रहा है, कोई इस घटना को भूकंप आने का संकेत मान रहा है।
9: हमने गांव वालों ने दो दिन पहले वहां पर बताया कि सदस्य जी ऐसे देखो तो इधर क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पर अलग अलग गांव वाले सब लोगों देखने के लिए कि इकट्ठा इधर होते हैं। और हमने गांव वालों ने बताया कि दो दिन पहले यहां से ज़्यादा पानी हिल रहा था और बीच में रुक गया और अभी आज के दिन वो ज़्यादा फिर हिलने लगा है, क्योंकि सबकी मान्यता अलग अलग होती है कि क्या ये भूत प्रेत का छाया है, क्या है क्या नहीं। इसलिए हमने यहां का जो तंत्र है ना उसको जानकारी दी है।
8: ऐसे में सवाल है कि कुएं में उठ रही इन लहरों के पीछे आखिर वजह क्या है और इन लहरों ने लोगों को क्यों हैरान किया हुआ है। फिलहाल तो तरह तरह की बातों का बाजार गर्म है।
10: ये कुएं का पानी जो हिल रहा है वो हमारे गांव में जाहिद भाई ने देखा था, तो उसने वीडियो बना के फिर गांव में सबको भेजा और फोन किया और मुझे भी बुलाया और गांव में मैंने सब लोगों को बोला, फिर इधर आए तो देखा तो देखते ही चकित हो गए, क्योंकि दो दिन पहले भी ऐसा ही हो रहा था और आज फिर से भी ऐसा ही होने लगा है और तब से लेके आज तक अभी तक रुका ही नहीं, मेरे पीछे ही हुआ है आप देख सकते हो।
11: ऐसा आपने कभी पहले देखा हुआ?
10: नहीं, आज से पहले कभी नहीं देखा है।
11: कुछ लोग ऐसे कह रहे थे जो हवा तेज चल रही है उसकी वजह से ये हो रहा है, आपको लग रहा है?
10: नहीं, हवा की वजह से ये नहीं हो सकता है। देखो बगल में दूसरा भी कुआ है खेत में, उधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसके साथ ही वो कुआ भी बना है।
12: आज दोपहर को मैं 3 बजे जो मेरा काम था ना, इसलिए मैं दूसरे गांव जा रहा था अजनाड़ी से, मैं वापस आया तो 3:12 हुई थी, तब ये मैंने दृश्य देखा था, ये पानी का जो कुएं में जो हो रहा था
13: पानी अभी इधर से उधर हिल रहा है।
11: लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं?
13: हर बात तो कोई बोलता है कि भूकंप का आने वाला है, ऐसा बोलता है अपने अपने हिसाब से, बाकी तो क्या है तो वो तो विज्ञान वाला जान सके।
8: हालांकि कुएं में उठती लहरों को लेकर कोई गलत बात आगे न बढ़े और इसके पीछे का विज्ञान लोगों को समझ में आए, इसके लिए जिला प्रशासन और भू वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और शुरुआती जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि इस घटना का भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद जमीन के नीचे मौजूद जलस्तर तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बारिश का पानी चट्टानों की परतों के बीच पहुंचा है और वहां फंसी हवा का दबाव इस पानी पर पड़ा है। यही हवा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से कुएं के पानी में लगातार हलचल दिखाई दे रही है।
14: इस बारे में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से परामर्श किया था, तो यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी या फिर एक्टिव फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है। प्राइमरी ये लग रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, उसकी वजह से जो रॉक में से पोर स्पेसिस आते हैं, इसमें से एयर रिलीज होने की वजह से एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ये हैवी रेनफॉल में नॉर्मल है।
8: जाहिर है वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया मान रहे हैं। गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने भी साफ किया है कि इस इलाके में न कोई भूकंप आया है और न ही कोई सक्रिय फॉल्ट लाइन मौजूद है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह आश्वस्त होने से पहले हर पहलू की जांच कराना चाहता है। गुजरात सरकार के निर्देश पर एक्सपर्ट की एक टीम अब इस कुएं का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।
15: आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो जियोलॉजिस्ट की टीम है उनके द्वारा इस स्थल की विजिट की गई। उनके ध्यान पे ये आया है प्राथमिक कि वहाँ पे एयर जो है बिकॉज ऑफ रेन, जो पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई है उसके कारण कुछ एयर नीचे एक्वीफर में ट्रैप हो गई है। जब उस एयर में मूवमेंट होता है तो उस कारण थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट ऊपर के सतह पे भी हमें देखने मिलता है। लोगों का ये डर है, लोगों की ये अफवाह है कि वहाँ शायद कोई सीज़मिक एक्टिविटी, ये भूकंप रिलेटेड कोई प्रश्न है, लेकिन इस बारे में हमने भूकंप जो जहाँ मेजर किया जाता है गुजरात का गांधीनगर में, वहाँ भी पूछताछ की है और पिछले 5-10 दिन में कोई ऐसी सीज़मिक एक्टिविटी अनयूजुअल ध्यान पर नहीं आई है। इसका अर्थ यही है कि ये जो घटना बन रही है वो एक लोकल एरिया, लोकल कोई ट्रैप होने के कारण बन रही है। इसके अलावा भी हमने गुजरात ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम को भी इन्फॉर्म किया है, आने वाले कुछ दिनों में वो भी विजिट करेंगे और हमें इस बारे में ज़्यादा स्पष्टता देंगे।
8: फिलहाल शुरुआती जांच में ये साफ है कि कुएं का हिलता डुलता ये पानी किसी चमत्कार या भूकंप का संकेत नहीं है, बल्कि भारी बारिश के बाद भूजल में आए बदलाव का असर है। लेकिन इस रहस्यमय कुएं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति के पास ऐसे कई राज हैं जो पहली नजर में चौंकाते जरूर हैं, और इन्हें समझने के लिए ही हमें बार बार विज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: सोचिए दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाए, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे और कुछ पल के लिए ऐसा लगे जैसे रात ने दिन को अपने आगोश में ले लिया हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। महज एक मिनट से कुछ ज्यादा समय के लिए बनने वाला ये दृश्य दुनिया भर के खगोल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा।
7: बिल्कुल, आपको हम बता दें कि यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में इस ग्रहण को देखने की खास तैयारियां चल रही है। होटल पहले से बुक हो चुके हैं, टूर कंपनियों ने स्पेशल इक्लिप्स टूर शुरू कर दिया है, वेदशालाएं और साइंस सेंटर लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और हजारों फोटोग्राफर अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर कैद करने की तैयारी में जुटे हैं।

वो घड़ी नजदीक आ रही है जब दुनिया के बड़े हिस्से में एक बार फिर से लोग अंतरिक्ष में घटने जा रही अद्भुत खगोलीय घटना का दीदार करेंगे। कुछ वक्त के लिए दुनिया भर के खगोलविदों, वैज्ञानिकों और ज्योतिषविदों की निगाहें आसमान में होने जा रही उस अनोखी घटना को देखने के लिए ठहर जाएंगी। आज से ठीक 5 दिनों के बाद 12 अगस्त को इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तब वो अनोखा पल आएगा जब एक बार फिर से सूरज और धरती के बीच आ जाएगा चंद्रमा, तब सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा और धरती तक नहीं पहुंच सकेगी सूरज की रोशनी, तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा।

0: and the moon casts a shadow. So if you're lucky to be right in that path, then you will see a very, very dark coin that is the moon covering the sun. A partial eclipse is when we are not located right in the center of that moon's shadow. So for example, here in England, in August 2026, we will see a partial eclipse. So we will still see part of the sun, but the moon will be covering a very good fraction of it.
1: बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 12 अगस्त को जिन इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा उनमें शामिल हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस का उत्तरी हिस्सा, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल का एक छोटा सा भाग, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अमेरिका के उत्तरी राज्यों और कनाडा के ज्यादातर भागों में भी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण का दीदार हो सकेगा, जबकि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अधिकांश मध्य और दक्षिणी हिस्से और अंटार्कटिका में ये सूर्य ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। खगोल शास्त्रियों और जानकारों के अनुसार भले ही सूर्य का आकार और व्यास चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ा है, लेकिन चंद्रमा के धरती के करीब होने के कारण ऐसा लगता है जैसे उसने सूर्य को ढक लिया है। बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कई चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण में पूर्ण सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से शुरू होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरना शुरू करता है। इससे सूर्य आंशिक तौर पर ढक जाता है और अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। बेलीज बेड्स वाले अगले चरण में चंद्रमा की आकृति के कारण सूर्य के किरणें चंद्रमा के किनारों पर पड़ती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे मोती चमक रहे हों। इसके बाद डायमंड रिंग फेज आता है, जिसमें सूर्य की दिखाई देने वाली सतह का अंतिम चमकीला हिस्सा धुंधले सौर कोरोना के बगल में दिखाई देता है। ये चरण पूर्ण ग्रहण से ठीक पहले और पूर्ण ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर से घटित होता है। जानकार कहते हैं कि इंसान के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से सीधे देखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मामले में खास सावधानी बरतने की जरूरत है।
0: In the moments before the total solar eclipse, you should only wear solar eclipse approved sunglasses. And then, during the moment of the total eclipse, you can take them off, but then put them again. As the moon is moving away from the sun. And if you don't have solar eclipse approved sunglasses, then you can use, for example, a colander that you might have at home with holes, and then you can project the shadows on a white piece of paper, or you can actually drill holes on a sheet of paper and put that against the sun and look down on the floor and see the shadows. There are many different options.
1: इस बार लगने जा रहे साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता बनी हुई है। स्पेन के एक छोटे से गांव में रहने वाले शौकिया एस्ट्रोनॉमर जोआकिन टेपियोलिस इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि 1912 के बाद पहली बार इस इलाके में पूर्ण सूर्य ग्रहण का दीदार होगा। 67 साल के जोआकिन को अपने जीवन काल में घटने जा रही इस अनोखी खगोलीय घटना का बेसब्री से इंतजार है।
2: Mi ilusión sería que poder observar con la gente el eclipse y ayudar y tal, pero me conozco y sé que si viene gente al observatorio voy a estar más pendiente de que lo vean los demás y yo me lo voy a perder y ese día no me lo quiero perder y por eso ese día lo voy a ver en familia desde el observatorio.
1: जोआकिन ने गांव में अपनी वेधशाला बनाई है, जहां से वो दूरबीन के जरिए 12 अगस्त को होने वाले सूर्य ग्रहण को देखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका बचपन का सपना साकार होने वाला है, जिसकी वो परसों से प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, बारिश की खबरें तो हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन असल मायने में दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अब बारिश आई है। नहीं,
4: बिल्कुल, अब प्रॉपर लगा है कि हर दिन बारिश दिख रही है। ये नहीं है कि आज बारिश है कल धूप है, लगातार मैं देख रही हूँ सुबह से ही बारिश हो रही है और मैंने घूमने का प्लान बना लिया है। बिल्कुल,
3: मुझे मालूम है मैं उसमें शामिल नहीं हूँ,
4: लेकिन आपको तो काम करना होगा ना, तो मैं आपको पिक्चर्स भेजूंगी बारिश की,
3: ताकि मैं यहाँ बैठे बैठे जेलस फील करूँ ना।
4: नहीं,

0: वीकेंड तो आप भी जा सकती हैं.
1: एग्जैक्टली. देखिए जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के वो तमाम इलाके. हाँ, ट्रैफिक जाम वो एक जरूर दिक्कत हो जाती है, समस्या हो जाती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कई जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है और लोगों को दिन में ही हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. और जैसा कि अभी दीपिका ने भी बताया कि भाई बाहर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा सा, दिन में ही अंधेरा, इसलिए हेडलाइट लगा चलाकर आपको गाड़ी चलाना पड़ रहा है, ये है. लेकिन इस वक्त जो मौसम है, जो हरियाली है, वो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स. नहीं,
0: बिल्कुल, क्योंकि आपको हर तरफ, चारों तरफ हरियाली दिखेगी और वो मिट्टी की खुशबू भी आती है.
1: Exactly.
0: जो हमें अमूमन नहीं मिलती है दिल्ली एनसीआर में, तो बड़ा ही अच्छा मौसम है.
1: बिल्कुल, तो बेहद खूबसूरत मौसम है, तस्वीरों में हम आपको दिखा ही रहे हैं और लोग खूब आनंद भी ले रहे हैं और साथ ही साथ प्लानिंग भी बना चुके हैं कई लोग वीकेंड में बाहर जाने का, और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करेंगे, तो आप वो भी जाइएगा और जरूर देखिएगा.
2: अड़के सुबह दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई बारिश अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश पर ब्रेक ही नहीं लग रहा है. बादल कुछ देर के लिए विश्राम करते भी हैं तो तुरंत छोटे से ब्रेक के बाद वापस से सावधान की मुद्रा में आकर वो बादल को बरसाना शुरू कर देते हैं, फिर से बारिश शुरू हो जाती है. हफ्ते के दो दिन लगभग ऐसे ही निकल गए. जो लोग ऑफिस जाते हैं वो पूरे रास्ते भर स्ट्रगल करते रहे, जाम से जूझते रहे इस बारिश के चक्कर में. कहीं बारिश होती, कभी रुक जाती, तो कभी बहुत तेज़ होती और चारों तरफ जाम लग जाता. लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो वीकेंड पर ही बारिश के मज़े ले पाते हैं. तो उनके लिए हम ये खुशखबरी लेकर आए हैं कि इस पूरे वीकेंड भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा, इसी तरह का सुहावना मौसम रहेगा और बारिश लगातार होती रहेगी रुक रुक कर. आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, टेम्परेचर जैसा अभी है वैसा मेंटेन रहेगा, गर्मी का एहसास आपको इस वीकेंड पर नहीं होने वाला है. मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाली 12 तारीख तक, 12 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. बारिश हालांकि वीकेंड पर या सैटरडे और संडे को रुक रुक कर होगी, बीच में ब्रेक लगेगा, लेकिन मौसम इसी तरह का बना रहेगा. काले बादल आसमान में छाए रहेंगे और सोमवार से फिर से एक बार जिस तरह से भारी बारिश अभी हो रही है मध्यम गति से, वो बारिश दोबारा से शुरू हो सकती है और 12 तारीख तक ये साइकिल लगातार चलता रहेगा. तो जिन लोगों ने वीकडेज में इस बारिश का मज़ा नहीं लिया है बल्कि उसके जाम से जूझे हैं, परेशान हुए हैं, उनके पास ही मौका है कि इस वीकेंड को वो आराम से अपने घर में बैठें, बारिश का मज़ा लें, चाय पकौड़े का मज़ा लें और इन्जॉय करें इस मानसून को, क्योंकि ये शायद बहुत दिनों बाद है कि जब वीकेंड पर भी मौसम सुहावना रहने वाला है. कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली.
3: तपती गर्मी के लिए जाने जाने वाला प्रदेश अभी फिलहाल अपने सुहाने मानसून वाले मौसम के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है. लगातार यहाँ पे बारिश आ रही है पिछले कुछ दिनों से, और बादलों की एक बार मैं खूबसूरती आपको दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से पूरे आसमान में ये काले घने बादल छाए हुए हैं. पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश दर्ज की गई है, जिसमें भरतपुर, जयपुर, डीग, धौलपुर, करौली संभाग जो है वहां कुछ जगह पे भारी, कुछ जगह पे अति भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है. और ऐसे में सबसे ज्यादा बारिश 158 mm पहाड़ी डीग में दर्ज की गई है. मौसम विभाग का ये कहना है कि ये बारिश सिर्फ अभी नहीं रहने वाली है, आने वाले कुछ दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. ऐसे में क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है तो उम्मीद की जा रही है सुहाने मौसम के साथ में पर्यटकों की जो आवाजाही है वो भी बढ़ जाएगी. यहाँ पे शनिवार और रविवार की छुट्टी में जो भी आसपास रहने वाले टूरिस्ट हैं वो अपना वीकेंड प्लान करने के लिए जयपुर और जयपुर के आसपास का जो एरिया है वहां अपने जो प्लान्स हैं वो बना सकते हैं. एक आपका जो हैप्पी वीकेंड है वो हो सकता है. बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जहां इस समय पर क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो झरने बहने लग जाते हैं, आसपास के जो डैम्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, तो वो जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत अब होने जा रहा है. मौसम विभाग का ये भी कहना है क्योंकि हर साल 15 अगस्त को बारिश दर्ज की जाती है, पर उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार कंपैरेटिवली कम बारिश 15 अगस्त को दर्ज की जाएगी, पर यह भी है कि 8 से 10 अगस्त तक जो पश्चिमी राजस्थान का एरिया है यानी कि जोधपुर बीकानेर संभाग जो है वहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है इसकी वजह से करीबन 6 डिग्री टेम्परेचर्स में जो गिरावट है वो पूरे प्रदेश में दर्ज की गई है। और ये कहा जा रहा है कि ऐसे ही जो गिरावट है अगर वो बरकरार रही तो फिर मौसम और सुहाना हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में धूप देखने के आसार कम नजर आ रहे हैं और ये जो मौसम जो सुहाना है वो एक एक पर्यटक को अभी इनवाइट कर रहा है कि आइए इस समय पे राजस्थान में, क्योंकि ये जो मौसम है ये झरने लेके आया है, खुले डैम्स लेके आया है, खूबसूरत व्यूज लेके आया है। तो ये समय है सभी का इस समय पे राजस्थान घूमने का। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे जयपुर।
0: देखिए दिल्ली और जयपुर से हमने आपको मौसम का हाल बता ही दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरे उत्तर भारत में इस वीकेंड मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। मतलब पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वीकेंड सुहाना और कूल रहने की उम्मीद जताई जा रही है।
1: बिल्कुल, तो वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आसपास के कई इलाकों में भी बादलों की मेहरबानी बनी रह सकती है। यानी कि इस वीकेंड मौसम आपके साथ रहेगा और बारिश की फुहारें आपके छुट्टी के मूड को और भी शानदार बना सकती है।
4: सावन का महीना, ठंडी हवाएं और ये रिमझिम बारिश राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम हिस्सों में इस वक्त मौसम मेहरबान है। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों के लिए ये फुहारे किसी वरदान से कम नहीं है। आसमान में बादलों का डेरा है, आसमान से बरसती ये बूंदे प्यासी जमीन को तरोताजा कर रही हैं। बात चाहे दिल्ली की हो या फिर राजधानी से सटे गुरुग्राम, मौसम मैदानी इलाकों का हो या फिर पहाड़ों का, आलम एक जैसा है। हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग तक मौसम अपने रंग दिखा रहा है। खुशनुमा मौसम के बीच तापमान में अच्छी खासी गिरावट आई है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले 3 दिनों तक बारिश का ये सिलसिला थमने वाला नहीं। यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए बादलों ने फुल वीकेंड का प्लान तैयार कर लिया है।
5: देश के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पे बारिश का सिलसिला बस कुछ दिन तक जारी रहेगा। आने वाले 3 से 4 दिन के बाद वापस से लोगों को उमस से एक बार फिर से परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, सुहाना हो चुका है और लगातार बारिश की वजह से जो है तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई।
4: जहां एक ओर लोग बारिश का लुत्फ उठाने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने कई जगहों पर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। गुरुग्राम में आलम ये रहा कि कई इलाके पानी से लबालब हो गए। यहां सड़कों पर हुए जलभराव के बीच लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आए। मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ों पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है। बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की करें तो यहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी का बहाव इतना विकराल हो चुका है कि उसने किनारे पर बसे इलाकों को अपनी जद में ले लिया है। सावन के महीने में मौसम की ये मनमर्जियां यूं ही जारी रहने वाली है। इस हफ्ते बादलों का वीकेंड प्लान तो तैयार है, लेकिन आप जहां भी रहें सावधानी के साथ बरसात का आनंद लें और खतरे वाली जगह से दूरी बनाए रखें। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुरुग्राम से नीरज श्रीवास्तव और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन का वो रंग तो आपने देख लिया जिसमें रिमझिम बारिश ने धरती को हरियाली की चादर ओढ़ा दी, लेकिन अब जरा सावन का वो रंग देखिए जो कि दिल को भक्ति से सराबोर कर देता है। क्योंकि सावन सिर्फ मौसम नहीं, महादेव की आराधना का महापर्व है। मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं।
0: और कोई नंगे पांव चलकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है तो कोई कठिन व्रत और तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा है। आस्था ऐसी कि थकान भी हार मान जाए और भक्ति ऐसी कि हर कदम महादेव के नाम की जय हो जाए। तो अब आपको दिखाते हैं सावन की भक्ति की 2 ऐसी अद्भुत तस्वीरें जहां श्रद्धा सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है।
5: तो यहाँ पर अलग अलग पवित्र स्थानों से जो है लोग जल लेकर आए हैं। आपको यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो है पुरुष दिख जाएंगे, भोले दिख जाएंगे जो जल लेकर आए। लेकिन ये 70 साल की आशा जी भी हमारे साथ है, जो बिना किसी साथी के साथ जो है वो अकेले यहाँ पर जो है वो चलकर दिल्ली पहुंची है। आशा जी, इतनी हिम्मत आई कैसे आप में कि अकेले, मतलब लोग अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर सफर तय कर कर आते हैं, आप अकेले आ गए?
6: अकेले आती हूँ, बोले ना, भोले लेके आता है, बस ऐसे चली आती हूँ।
5: कितने सालों से आप जल लेकर जो है आ रहे हो?
6: पति मरे थे, 30 साल हो गई। अच्छा। पति मरने के बाद ही मैं कांवड़ उठा ली मैंने। मेरे 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, मेरे पालने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा भोले बाबा इन्हें सबको आप पालोगे, सब पढ़ लिख के अच्छे हो गए। लड़का मेरा एक फौजी है, एक लड़का सीए है, और एक है ना फर्नीचर करता है, एक है ना वो दर्जी का सूट बनाता है।
5: तो 30 साल हो चुका है आपको?
6: हाँ, 30 साल हो गए। बोले मैं है ना चल रही हूँ और अब भी जीऊंगी जब तक लाऊंगी।
5: तो किसी तरीके की कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा हो?
6: कुछ नहीं। हाँ। चली आती हूँ मैं,
5: चले आती हूँ।
6: मुझे कोई तुम्हारी जैसी बेटी भोली मुझे है ना जरूरत पड़ती है तो नहीं उठ पाऊंगी तो कहूंगी भोली पानी ला दो जरा।
5: अच्छा, बस थोड़ी बहुत मदद है। अच्छा, कितना जल आप जो है वहाँ से लेकर आए?
6: मैं कम से कम भी 5 किलो जल।
5: 5 किलो का वजन, 70 साल की उम्र में 5 किलो का वजन जो है आशा जी खुद वहाँ से अकेले उठाकर यहाँ पर लेकर आई है, और ये अपने आप में बहुत ही हिम्मत की बात है। हर कोई जो है यहाँ पर परिवार के साथ, साथी के साथ दिख जाएगा, लेकिन बात जब हिम्मत की हो, बात जब भक्ति की हो, बात जब भोले की प्यार की हो, तो वो ताकत अपने आप ही आ जाती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आशा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो लंबा सफर तय कर हरिद्वार से दिल्ली आ पहुंची है।
0: तो कांवड़ यात्रा की अद्भुत तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं उस नगरी में जहां सावन सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि हर सांस में महादेव का नाम बसता है। यह है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां सावन का हर दिन शिवमय है। हर गली में हर हर महादेव का जय घोष है और हर भक्त की आंखों में अपने आराध्य के दर्शन की आस है।
1: बिल्कुल, हमारी सहयोगी नवजोत वहां पर पहुंची है, तो आइए आपको दिखाते हैं सावन में कैसी है महाकाल की नगरी की भक्ति, कैसी है आस्था की अलौकिक छटा और कैसे शिव भक्ति में डूबा है पूरा उज्जैन।
7: देखिए, सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
8: हाँ जी बिल्कुल।
7: कैसे हुए दर्शन, समय कितना लगा?
8: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है, तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
7: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई हैं आप?
8: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, हम लोग मिलेनियम स्कूल से आए हैं यहाँ पे, एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
7: सावन की वजह से देखिए भीड़, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
9: गोरखपुर से।
7: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
9: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
7: कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
9: अभी हम आधा घंटा हो गया।
7: आधा घंटा। आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
9: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
7: 5 बजे, और तब से आप लाइन में लगे?
9: लगे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन किए ना,
7: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
9: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
7: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
10: हम पुणे से आए हैं।
7: अच्छा,
10: हम कल से यहाँ आके।
7: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना?
10: हमारी बहुत सारी टोली,
7: सारी मैडम्स और सर्स दोनों, सब लोग साथ हो जाएं। तो पहले, सबसे पहले जय महाकाल।
11: जय महाकाल।
7: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
11: कर लिए।
7: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
12: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
7: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
12: हाँ, पूरे हुए।
7: आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
10: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकाल।
7: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
12: बहुत अच्छा लगा,
7: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
12: कल ही,
7: कल ही शुरुआत की। तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
12: अभी इंदौर ही जा रहे हैं हम, ओंकारेश्वर।
13: ओंकारेश्वर जाएंगे।
7: मुझे ये बताइए, कॉरिडोर आपने देखा, कैसा लगा कॉरिडोर?
13: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। बहुत
7: इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
13: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
7: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
13: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
7: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
14: बहुत अच्छा,
7: बहुत अच्छा लगा।
14: आप देख रहे हैं, अभी अभी आए इधर,
7: अभी देख रहे हैं आप बताइए मैडम,
11: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
14: बहुत अच्छा लगा।
12: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
11: आपका अनुभव कैसा है?
15: बहुत बढ़िया रहा, हमें आप पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
11: तो कहाँ से आए आप?
16: हम धामनूत से आए हैं।
11: अच्छा, दर्शन हो गए
16: जी?
11: हाँ, कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
16: बहुत अच्छा रहा जी, मैं वैसे ही हाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
11: अच्छा,
16: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनूत चले गए।
11: अच्छा,
16: हाँ जी।
11: तो उसके बाद फिर सावन के दौरान?
16: हाँ जी, हाँ जी, ये मैं सेकेंड टाइम आ रही हूँ।
11: ये सेकेंड टाइम?
16: हाँ।
11: कैसा लगा यहाँ?
16: बहुत अच्छा,
11: बहुत अच्छा लगा। दर्शन हो गए,
17: शानदार।
11: क्या क्या सोच के आए थे, वो मन की मुराद सब पूरी हुई के नहीं?
17: हमारी मनोकामना ये थी कि पहली बार जा रहे और आरती में दर्शन हो, तो पहली बार आए और आरती में दर्शन हुए।
11: आप भी कुछ बोलना चाहेंगी?
18: हाँ।
11: कहाँ से आई आप?
18: उत्तर प्रदेश।
11: उत्तर प्रदेश से? तो आपने दर्शन कर लिए?
18: हाँ।
11: आप आई कहाँ पे, ये कौन सी जगह पता?
18: महाकाल कॉरिडोर।
11: वेरी गुड। और ये किसका मंदिर है?
18: शिव जी का।
11: तो देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप जिधर जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो 2400 घंटे, खास तौर पर अगर हम सावन की बात करें 2400 घंटे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैमरापर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा उज्जैन महाकाल से।
0: तो यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे हकीकत बनने के और कितना करीब है उड़ने वाली कार।
19: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार। रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। दिल्ली एनसीआर में आज भी रिमझिम बारिश, पूरे वीकेंड मौसम खुशगवार बने रहने के आसार। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच उत्साह और उमंग के साथ बद्रीनाथ धाम यात्रा जारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सोचिए अगर आप सुबह घर से निकले और सड़क पर ट्रैफिक में फंसने के बजाय सीधे हवा में उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, यानी कि उड़ने वाली कार, ये तो मेरी ड्रीम कार होगी अगर ऐसी मुझे मिल जाए तो।
3: दीपिका, अभी मैं आपको ब्रेक में बता रही थी कि आज ही मुझे कितना मुश्किल हो गया, मतलब 10 मिनट का रास्ता था ऑफिस पहुंचने में, लेकिन उस ट्रैफिक, उस जैम की वजह से मैं इरिटेट हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी। ये खबर इस वक्त तो मुझे लग रहा है मेरे लिए, काश ऐसा हो जाए उड़ने वाली कारों कि आप जहां कहीं से चाहें, आप जहां भी हैं, आप उड़ करके आप सीधे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं।
1: मैं खुद भी सुबह 2 घंटे में ऑफिस पहुंची हूँ।
3: ओह गॉड,
1: तो सच में ये देखिए ड्रीम कार नजर आ रही है हवा में उड़ती हुई। सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक युवा ने इस सपने को हकीकत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के काफली खान गांव के रहने वाले रवि टमटा ने एक इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है। अच्छी बात यह है कि इसका पहला प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया भी जा चुका है।
3: क्या बात है, तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे कि कितने अच्छे तरीके से रवि जो है इस कार को उड़ा भी रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से बिजली से चलता है, यानी इसमें पेट्रोल या फिर डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही इससे धुआं निकलता है। अगर भविष्य में ये आम लोगों तक पहुंचता है तो सफर सस्ता, पर्यावरण के लिए बेहतर और पहले से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है। हालांकि अभी यह सिर्फ प्रोटोटाइप है, यानी इसे आम लोगों के इस्तेमाल के लिए आने में अभी समय लगेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा से जुड़े कई परीक्षण, सरकारी मंजूरी और बड़े स्तर पर उत्पादन जैसी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही ये बाजार में आ पाएगा।

0: 15 अगस्त से पहले देश की राजधानी दिल्ली एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। हर सड़क पर चौकसी, हर चौराहे पर निगरानी और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं, लिहाजा आज दिल्ली के कई सबसे संवेदनशील इलाके में एक साथ हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल की गई। कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस और दिल्ली सचिवालय जैसे अहम ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे ऑपरेशन का रियल टाइम अभ्यास किया। कुछ देर के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखा जा सके।
1: और पूरी मॉक ड्रिल की शुरुआत एक इमरजेंसी कॉल से हुई, जिसमें दावा किया गया कि अलग अलग इलाकों में संदिग्ध वस्तुएं मौजूद हैं। बस इसी एक कॉल के बाद पूरा सुरक्षा तंत्र एक्शन मोड में आ गया। दिल्ली पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और NSG ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और हर कदम पर अपने रिस्पॉन्स टाइम और तैयारियों की जांच की। साफ संदेश है, 15 अगस्त पर किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। राजधानी की सुरक्षा में जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है।
2: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है और 15 अगस्त से कुल एक हफ्ते पहले एक बार फिर से NSG और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस के जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है। इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मौजूद है और इसके साथ NSG के जवान भी जो है वो भी मौजूद है जो आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मॉक ड्रिल जो है इस वक्त कनॉट प्लेस इलाके में कराया जा रहा है। वहीं अगर आपको दूसरी तरफ मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो अगर आप इस तरफ देखें तो इस तरफ पूरी तरीके से जो है रास्ता बंद कर रखा है और सामने देखें सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब अंदर पहुंच रही है। तो देखें आप कि किस तरीके से इतना बड़ा ऑपरेशन जो है दिल्ली पुलिस और NSG करवा रही है ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर किसी तरह की अनहोनी हो जाए, अगर कोई घटना घट जाए तो किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया जा सकता है ताकि कम से कम समय में रिस्पॉन्स हो सके और ज्यादा से ज्यादा जाने बचाई जा सके। तो 15 अगस्त तक जो सिक्योरिटी अलर्ट है उसके तहत ही इस तरह के जो तैयारियां हैं ये मॉक ड्रिल्स हैं ये कराए जा रहे हैं। इस वक्त आप देखें ये एम्बुलेंस यहां से अब निकल रही है और इसके निकलते ही दूसरी एम्बुलेंस की अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा कॉल जाएगा, दूसरे कॉल के बाद एम्बुलेंस स्टार्ट होगी और एम्बुलेंस यहां पहुंचेगी। तो पूरा जो SOP जो होगा कि अगर कोई हादसा हो जाए तो उसमें जो पूरा SOP होगा वो SOP किस तरीके से फॉलो होगी वो SOP जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस और NSG मिलकर के उस SOP का पालन करके उसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर रही है ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आ सके और ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आने की वजह से ज्यादा जाने भी बच सके। ये बस एक मॉक ड्रिल है। अगर एक सिचुएशन या केस ऐसा बनता है जहां अनहोनी हो जाए तो उस अनहोनी के समय किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी दिल्ली पुलिस और NSG जो सिक्योरिटी एजेंसीज यहां मौजूद हैं, इसको लेकर के एक बहुत व्यापक रूप से जो प्लानिंग है वो की जा रही है। आप देखें आउटर जो रेडियस बनाया गया है उस आउटर रेडियस में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी दिखेंगे जो कहीं ना कहीं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए यहां लगाए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे जो ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पूरा इलाका है वो खाली रहे। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट और जो अन्य इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पहुंच सकती है, जल्दी से जल्दी पहुंच सकती है, इसकी भी रूट मैपिंग जो है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस और NSG ये जानना चाहती है कि वो कौन से रूट हो सकते हैं जहां से इमरजेंसी के समय पे जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके और वहां पर जो अपना काम है वो शुरू किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने जो है वो बच सके। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा मॉक ड्रिल चल रहा है ये कितना सफल हो पाता है। ये देखना होगा कि या ऐसे मॉक ड्रिल आने वाले दिनों में और भी होंगे या फिर दिल्ली पुलिस इस मॉक ड्रिल के बाद ही ये सुनिश्चित कर लेगी कि वो कौन से रूट हो सकते हैं और वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे इमरजेंसी में रिस्पॉन्स दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके।
1: भारतीय वायुसेना में महिलाओं की उड़ान अब सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, अब वो लड़ाकू अभियानों की अगुवाई करने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। बिहार के दरभंगा की रहने वाली भावना भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बन गई हैं। उन्होंने एयरफोर्स का सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाने वाला फाइटर कॉम्बैट लीडर फोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया है।
0: बिल्कुल, आपको बता दें कि भावना कंठ की ये उपलब्धि सिर्फ उनका व्यक्तिगत मुकाम नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट अब और बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि भावना की इस उपलब्धि को इतना खास क्यों माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि भावना कंठ ने ग्वालियर में 20 हफ्तों का फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा किया। ये कोर्स एयरफोर्स के सबसे मुश्किल और प्रतिष्ठित ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गिना जाता है। इसमें सिखाया जाता है कि बड़े हवाई ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे की जाए और लड़ाकू मिशन की कमान कैसे संभाली जाए, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले जैसे एडवांस कॉम्बैट रणनीतियों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स के बाद पायलट बड़े और जटिल एयर ऑपरेशन लीड करने के लिए तैयार माना जाता है।
1: भावना कंठ 2016 में भारतीय वायुसेना में कमीशन हुई थी। वो देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलटों के बैच का हिस्सा थी, जिसमें अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह भी शामिल थी। 2019 में भावना दिन में फाइटर कॉम्बैट मिशन उड़ाने की मंजूरी पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने MiG-21 बाइसन उड़ाया और बाद में Sukhoi-30 MKI भी उड़ाया। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी और 2024 में फ्लाई पास्ट में भी फाइटर जेट उड़ाया।
3: स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारत की पहली फाइटर कॉम्बैट लीडर बन चुकी हैं और उन्होंने इतिहास पहली बार नहीं रचा है। भावना कंठ भारत की उन पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक हैं जिन्होंने 2019 में पहली बार फाइटर जेट्स उड़ाए और उसके बाद 2021 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में महिला फाइटर होकर नेतृत्व किया। 2016 में कमीशन हुई भारत की पहली महिला पायलट्स में से एक भावना कंठ अब पहली ऐसी रणनीतिकार बन गई हैं जिन्हें भारत का टॉप गन कहा जाता है। ग्वालियर के टैगडी एस्टैब्लिशमेंट में कोर्स करने वाली पहली महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ उन चुनिंदा पायलट्स में से हैं जो रणनीति और किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक में प्लानिंग का हिस्सा बन चुकी हैं। यानी भारतीय वायुसेना में महिला पायलट्स अब आगे बढ़ रही हैं और उनकी भूमिकाएं रणनीतिकार की बन रही हैं। इन्हें टॉप गन भी कहा जाता है और भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी है और पूरे देश को भावना कंठ पर नाज है। भावना कंठ की तरह तमाम दूसरी फाइटर पायलट्स भारतीय वायुसेना में दूसरे फाइटर्स उड़ा रही हैं, अलग अलग कॉम्बैट रोल्स में अपनी प्रतिभा भी दिखा रही हैं और बता रही हैं कि भारत की सैन्य क्षमताएं अब महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बराबर हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से।
0: कहते हैं ईमानदारी की उम्र नहीं होती और नेक इरादों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब बात एक ऐसी घटना की जिसे सुनकर शायद आपका भी इंसानियत पर भरोसा और मजबूत हो जाए। सोचिए अगर आपकी मेहनत की कमाई कहीं खो जाए और 2 साल तक उसका कोई पता ना चले तो क्या आपको उम्मीद होगी कि वो पैसे कभी भी वापस मिलेंगे?
1: एक बुजुर्ग महिला ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। बस में सफर के दौरान उनकी गलती से हजारों रुपए वहीं छूट गए। वक्त बीतता गया, दिन महीने और फिर पूरे 2 साल गुजर गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी ईमानदारी का वादा निभाने में जुटा हुआ था। एक बस कंडक्टर जो उन पैसों को उनकी असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश में लगा रहा और फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि 2 साल बाद दोनों आमने सामने थे और बुजुर्ग महिला की आंखों में खुशी के आंसू थे।
4: कल्पना कीजिए अगर आपका कोई सामान सालों पहले गुम हुआ हो जिसके लिए आप बहुत परेशान हुए होंगे और वो अचानक एक दिन मिल जाए तो आपके आश्चर्य और खुशी संभाली नहीं संभलेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही घटना सामने आई है महाराष्ट्र के वाशिम जिले से। घटना 2024 के अप्रैल महीने की है जब संभाजीनगर से वाशिम जाने वाली बस में एक वृद्ध महिला अपने बीमार पति के साथ संभाजीनगर से बैठी। महिला ने वाशिम जिले के मालेगांव के लिए 2 टिकट लिए। 4 घंटे के सफर के बाद बस मालेगांव पहुंची, जहां महिला अपने पति के साथ बस से उतर गई। बस अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो कंडक्टर ने बस की चेकिंग की तो उसे एक पर्स मिला जिसमें 24,000 रुपए और एक पर्ची थी। कंडक्टर राजू वाणी ने पर्ची पर मौजूद नंबर पर फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। महिला के बारे में कुछ पता नहीं चलने पर कंडक्टर ने महिला का पर्स बस डिपो में जमा कर दिया।
5: मेरे बस में पहले 2 साल पहले एक वृद्ध महिला बस में सफर कर रही थी, उस महिला का पर्स मेरे बस में रह गया था और वो पर्स और दवाखाने के कागज पत्र मैंने तुरंत ही डिपो में जमा कर दिए। तो हमने वो वृद्ध महिला का शोध लेने के लिए बहुत प्रयास किया, उनको फोन लगाया, दवाखाने में फोन लगाए, गांव का नाम ढूंढने की कोशिश की मगर नहीं मिली।
4: इस घटना को दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, यहां तक कि 2 साल गुजर गए, लेकिन पैसों के बारे में कोई पूछने नहीं आया। लेकिन अचानक एक दिन कंडक्टर राजू की ड्यूटी अकोला से वाशिम के बस पर लगी थी। उसी बस में एक महिला आकर बैठी। महिला ने मालेगांव का टिकट मांगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 75 साल के लोगों के लिए बस यात्रा फ्री कर रखी है, इसलिए कंडक्टर राजू ने वृद्ध महिला से आधार कार्ड मांगा ताकि उसकी उम्र का पता चल सके। आधार कार्ड पर नाम लिखा था कासाबाई गायकवाड़। नाम पढ़ते ही कंडक्टर ने उस महिला से पूछताछ की। बातों बातों में महिला ने पैसे गुम होने की बात बताई तो महिला को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
5: जब मैं अपना से वाशिम आ रहा था तो वो महिला, वृद्ध महिला मेरे बस में आ गई, तो मैंने आधार कार्ड की मांग करने के बाद, सब लोगों को आधार कार्ड की मांग करने के बाद वो महिला का आधार कार्ड देखा तो वो आधार कार्ड पे महिला का नाम कासाबाई जीजीबा गायकवाड़ ऐसा दिख गया। तो मैंने उसको, वृद्ध महिला को पूछा कि अजी आपने मेरे बस में पहले 2 साल पहले आपका पर्स और कागज पत्र कोई गुम हो गए थे क्या? तो अजी ने बोला हाँ। तो मैंने वृद्ध महिला को, अजी को डिपो में जाके उनके पैसे जमा किए थे रोक रकम 24,000 रुपए वो आजी को सुपुर्द कर दिया।
4: बस कंडक्टर राजू वानी वृद्ध महिला को लेकर वाशिम के बस डिपो गए और अधिकारियों की मौजूदगी में महिला को पैसे दिलवाए। महिला को 2 साल बाद पैसे मिले तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने बतौर इनाम कंडक्टर को 1100 रुपए भी दिए। वाशिम से जका खान, गुड न्यूज टुडे।
0: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आगे आपको मिलवाएंगे एक ऐसे डीएम से जो कि स्कूल में पढ़ाई के साथ बच्चों को आत्मविश्वास की नई उड़ान दे रहे हैं।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: अक्सर जब हम किसी जिलाधिकारी की तस्वीर देखते हैं तो सामने मीटिंग, फाइलें या फिर निरीक्षण की तस्वीर होती है, लेकिन बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीर कुछ अलग है। यहाँ एक डीएम कुर्सी पर नहीं बल्कि बच्चों के बीच जमीन पर बैठा दिखाई देता है। वो सिर्फ स्कूल का निरीक्षण करने नहीं पहुंचे, बल्कि बच्चों की दुनिया को समझने, उनकी बातें सुनने और उनके सपनों को महसूस करने पहुंचे।
7: कहा जाता है कि अच्छी ब्यूरोक्रेसी वही होती है जो जनता से दूर नहीं बल्कि भरोसे का रिश्ता बनाए। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की ये पहल उसी सोच की तस्वीर है। बच्चों के साथ बैठकर संवाद करना, उनकी जरूरतों को समझना और पढ़ाई के साथ खेल, आत्मविश्वास और खुलकर सीखने के माहौल पर जोर देना।
8: बिहार के कटिहार में डीएम साहब का अंदाज थोड़ा जुदा है। फाइल्स और दफ्तर की चार दीवारी से बाहर निकलकर जब डीएम बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। मौका मिलते ही मैदान में बच्चों के साथ खेलते नजर आते हैं। कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी खेलों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का अहम हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि बच्चों की पढ़ाई को और बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए वो लगातार कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए डीएम साहब जब स्कूल्स के निरीक्षण पर निकलते हैं तो वहाँ भी उनका अंदाज कुछ अलग ही नजर आता है। हाल ही में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एक सरस्वती विद्या निकेतन पहुँचे। ये इलाके का मॉडल स्कूल है। स्कूल पहुँचते ही डीएम सीधे क्लासरूम में गए, वो बच्चों के बीच बैठे और शिक्षक की भूमिका में उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया।

0: डीएम साहब ने बच्चों से सवाल पूछे तो बच्चों ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। किसी ने सवालों के जवाब जुबानी दिए तो कुछ बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर मैथ के सवाल हल कर अपनी काबिलियत दिखाई।
1: हम लोगों ने मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया है कि किस तरह की उनकी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। और हम लोग ये भी अब शुरू करा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका रिवीजन रेगुलर होता रहे। साप्ताहिक रूप से सभी स्कूलों में शाम को थोड़ी देर के लिए ही शनिवार को साप्ताहिक के जो भी तीन हेडमास्टर चुने पिछले हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसका एक तरीके से छोटा सा 2-3 क्वेश्चन का एग्जाम हो, रिवीजन हो।
0: बच्चों से संवाद के बाद डीएम ने स्कूल के शिक्षकों और अधिकारियों के साथ भी बैठक की। डीएम साहब की ये कोशिश स्कूल्स में बदलाव की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
3: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: तो चलिए अब आपको दो लड़कियों की गजब गायकी सुनाते हैं। आपने 90s के दशक में आई बॉलीवुड फिल्म आशिकी का धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना ये गाना तो सुना ही होगा। बाद में इसका रीमेक भी हिंदी में ही आया, लेकिन अब आप सुनिए इसका संस्कृत वर्जन।
2: क्या बात है, तो देखिए कैसे इंटरेस्टिंग लिरिक्स और सिंगिंग के साथ इन दोनों लड़कियों ने यही गाना गाया, जिसे सोशल मीडिया पर खासतौर से इंस्टाग्राम पर काफी पसंद किया जा रहा है।
3: तब मम मम तब एक प्राण।

0: देखिए कहते हैं ना फ्राइडे वाली फीलिंग, आज पूरी फ्राइडे वाली फीलिंग आ रही है, छुट्टी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ऑसम हुआ हुआ है। तो आप लोग अपना वीकेंड बहुत ही अच्छे से, बारिश का मजा लीजिए और अच्छे से वीकेंड अपना गुजारिए। मुलाकात होगी आपसे सोमवार को ठीक 5 बजे चाय पर चर्चा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: चीजों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। रिमझिम बरसात ने दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को दी डबल गुड न्यूज, खुशगवार मौसम के साथ मिली साफ सांसों की सौगात, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत, महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ यात्रा मार्ग। हरियाणा के करनाल में कमांडोज ने निकाली बाइक तिरंगा रैली, तिरंगे से प्यार और उसके सम्मान के लिए आम लोगों को प्रेरित करने की पहल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस नगर की जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वे, जिनसे काल भी भयभीत रहता है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है, श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विराजे हैं भगवान महाकालेश्वर और आज उन्हीं महाकाल की नगरी में पहुंचा है जीएनटी। आज दोपहर से जीएनटी पर हम आपको लगातार महाकाल की नगरी से खास पेशकश दिखा रहे हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी में जीएनटी के मंच पर धर्मगुरु, विचारक और कलाकार जुटे हैं। शिप्रा के किनारे शिव संस्कृति का मंथन चल रहा है। महादेव के नाम, रूप, आयाम कोई गा कर सुना रहा है, कोई चित्रों से बता रहा है। महाकाल की नगरी में आस्था का सावन बरस रहा है। इस सावन को फुहारों में भीगने आपको भी हम लिए चलेंगे उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी उन महाकाल की जिन्होंने अपने प्राकट्य के लिए शिप्रा के आंगन में बसे उज्जैन को चुना। आखिर उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल?

दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवादिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है।

0: शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्यु लोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्यु लोक यानी इस संसार के स्वामी महाकाल ही हैं।
1: ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्यु लोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखारविंद है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पर भगवान महाकाल का नियंत्रण है, इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है।
0: माना जाता है कि एक समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में एक वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। इस तरह बाबा महाकाल की नगरी हर युग में नारायण से जुड़ी रही।
1: उसको दुष्यंत उसका नाम था। उसका भगवान ने आत्मस्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे, जो जहाँ आज हम शिवलिंग देख रहे हैं, यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है, उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
0: अवंती में महाकाल की उत्पत्ति की कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार अवंती यानी उज्जैन नगरी में दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उसने ऋषियों और भक्तों पर अत्याचार किए तो भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार किया। चूँकि दूषण को लोग काल कहते थे, इसलिए उसके वध के बाद शिव जी को महाकाल कहा जाने लगा, यानी कालों के काल। दूषण वध के बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने महाकाल के नाम से ही उसी स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना भी स्वीकार किया। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसकी तांत्रिक और पौराणिक महत्ता अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मानी गई है। महाकालेश्वर के नाम में महा का अर्थ महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में रहता है उसके जीवन से मृत्यु और समय का भय समाप्त हो जाता है। महाकाल के रौद्र रूप से ये पता चलता है कि समय के चक्र में सब कुछ नश्वर है। शिवजी का ये रूप उनके रौद्र शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है।
2: महाकाल
0: आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है। हर रोज सूर्योदय से 90 मिनट पहले इस पवित्र भस्म से महाकाल का भस्म आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन मृत्यु चक्र का प्रतीक माना जाता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्ति पीठों में से एक हर सिद्धि शक्ति पीठ भी स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद हजारों भक्तों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी को राजसी अंदाज में शिप्रा नदी के घाट तक ले जाया जाता है।

वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजाधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं।

इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमय हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सब से अनछुए भी हैं। पर लोक जीवन में महादेव भोले भाले मस्त मौला देव के रूप में रचे बसे हैं, उनके भक्त भी उन्हीं की तरह मतवाले हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही मतवालों का मंच सजा। उज्जैन में जेएनटी की धर्म संसद में आज धर्म गुरुओं के साथ ही कई कलाकारों ने भक्ति रस बिखेरा। इन्हीं में शुमार थी मुस्कुरा के टोली। मुस्कुरा के हास्य कलाकारों का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश में बीते चार दशकों से हास्य और भक्ति रस में सराबोर नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब जेएनटी के मंच पर ये टोली उतरी तो सबको अपनी मस्ती के रंग में रंग दिया। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे उज्जैन से हमारी ये खास पेशकश।

0: देखिए परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के खिलखिला के क्या संदेश है, इसके पीछे आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए, हाँ। एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।

0: महाकाल के दरबार में आमतौर पर सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन का तो यूं समझिए कि हर दिन ही सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को रोज पहुंच रहे हैं। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन में शीश झुकाया था। माना जा रहा है कि इस साल सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। गुड न्यूज टुडे की टीम भी महाकाल के धाम पहुंची और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए, सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो, और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से हैं यहाँ पे, एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए? हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे? कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा? आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे, और तब से आप लाइन में लगे?
3: लगे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
3: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
1: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: हम पुणे से आए हैं।
1: अच्छा,
4: हम कल से यहाँ आके।
1: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना? सारी मैडम्स और सर दोनों, सब लोग साथ हो जाएं।
5: श्रद्धालु
1: तो पहले, सबसे पहले जय महाकाल।
6: जय महाकाल।
1: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
7: कर लिए।
1: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? सामने देखिए।
8: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
8: हाँ, पूरे हुए।
1: मैं ये जानना चाहूंगी, आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
4: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए। संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए, कैसा अनुभव है आपका?
8: बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
8: कल ही।
1: कल ही शुरुआत? तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
8: अभी इंदौर जा रहे हैं हम, ओंकारेश्वर।
1: फिर
9: ओंकारेश्वर जाएंगे?
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं?
10: कोऑर्डिनेटर हैं।
1: अच्छा, कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ हैं। क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
11: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है, पुणे से फ्रेंड सर्कल है और 7 फैमिली है। तो बावदन में हम लोग रहते हैं और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है। और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने 3 दिन की 4 दिन की यात्रा की है।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए, कॉरिडोर आपने देखा, कैसा लगा कॉरिडोर?
12: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। बहुत
1: इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
12: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
1: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
12: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
1: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
13: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा लगा।
13: हम देख रहे हैं, अभी अभी आए इधर,
1: अभी देख रहे हैं। आप बताइए मैडम?
8: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
1: बहुत अच्छा लगा।
8: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे। बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
1: आपका अनुभव कैसा है?
14: बहुत बढ़िया रहा, हम यहाँ पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
1: दर्शन हो गए? आइए आइए, देखिए।
11: एक बात,
1: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे नहीं तो। कहाँ से आए आप?
15: हम धामनुत से आए हैं।
1: अच्छा, दर्शन हो गए
15: जी?
1: हाँ, कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
15: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
1: अच्छा,
15: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनुत चले गए।
1: अच्छा,
15: हाँ जी।
1: बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में, आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो, 2400 घंटे। खास तौर पर अगर हम सावन की बात करें, 2400 घंटे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैमरापर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा, उज्जैन महाकाल से।
0: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है।
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: उत्तराखंड के युवक कमाल अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार। रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। रिमझिम बरसात ने दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को दी डबल गुड न्यूज। खुशगवार मौसम के साथ मिली साफ सांसों की सौगात। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश। पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत। महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ यात्रा मार्ग। हरियाणा के करनाल में कमांडोज ने निकाली बाइक तिरंगा रैली। तिरंगे से प्यार और उसके सम्मान के लिए आम लोगों को प्रेरित करने की पहल।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: फरीदकोट में सावन मेले पर निकाली गई महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने किए दर्शन। करीब 53 वर्षों पुरानी परंपरा के साथ निकाली गई भव्य झंडा शोभा यात्रा, देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने पेश की मनमोहक झांकियां। माता रानी के अति सुंदर और अलौकिक पालकी रही यात्रा का मुख्य आकर्षण। शोभा यात्रा में कई तरह की सुंदर झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक मलवई गिद्दा ने खींचा सबका ध्यान। फरीदकोट के ऐतिहासिक किला मुबारक चौक से हुआ महामाई की विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ, शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए वापस किला मुबारक पहुंची यात्रा। माता चिंतपूर्णी के दरबार खुद झंडा ले जाने में असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई इस यात्रा की शुरुआत, इसमें धार्मिक मंडलियों को सौंपे जाते हैं।

0: पवित्र झंडे जो भव्य उन झंडों को शोभा यात्रा के साथ माता चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचाती। सावन के महीने में नजर आ रहे भक्ति आस्था के अनूठे रंग, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह, उज्जैन, काशी, हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की विशाल कांवड़ लेकर चल रहा है संभल के रहने वाले 126 कांवड़ियों का जत्था। 11 अगस्त को संभल के श्री कल्की धाम क्षेत्र में होगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। बुलंदशहर के लिए भी कांवड़ लेकर निकला है शिव भक्तों का एक दल। शिव जी के साथ विराजमान है खाटू श्याम की प्रतिमा। इस कांवड़ दल में महिलाएं भी शामिल। भगवान विष्णु और गरुण के स्वरूप की कांवड़ लेकर निकले हैं कई कांवड़िए। भगवान भोलेनाथ के बम बम भोले के नारों से गूंज रहा पूरा यात्रा मार्ग। पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है बिजनौर। हर तरफ नजर आ रही है अलग अलग रूप और स्वरूप की कांवड़। हापुड़ में नजर आई कलयुग के श्रवण कुमार की अनोखी कांवड़। 95 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले पोते। एक्सीडेंट के कारण खुद यात्रा करने में असमर्थ है दादी। यही वजह है कि सोनू और उनके भाई श्रवण कुमार की तरह उन्हें कंधे पर लाद कर ले गए हरिद्वार करा रहे यात्रा। हरिद्वार से सिकंदराबाद लौट रहे सोनू और उनके भाई, दादी की इच्छा और पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना है इस यात्रा का मकसद। सहारनपुर में भोले को मनाने निकला अनोखा शिव भक्त। भगवान शिव की सवारी नंदी को स्वरूप बैल को ही बना डाला है कांवड़। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में नंदी को कराया गंगा स्नान। मुजफ्फरनगर में शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का दिखा रंग। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बने कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान। ब्रिटिश सिपाही के साथ निकली देशभक्ति थीम वाली अनोखी कांवड़। हरिद्वार से दिल्ली तक क्रांतिकारियों को समर्पित कांवड़ यात्रा। शिवचौक पर देशभक्ति वाली कांवड़ देखने उमड़ी लोगों की भीड़। युवाओं में शहीदों की याद जगाने निकाली गई ये अनोखी कांवड़ यात्रा। रस्सियों में बंधे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बने आकर्षण का केंद्र। 25 किलोमीटर रोज पैदल चलकर दिल्ली पहुंचाएंगे गंगा जल। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं के कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में गंगा जल लेकर निकली दो मुस्लिम महिलाएं कांवड़ यात्रा में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द के मिसाल। सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज। शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में जुटे नजर आए मंत्री। कांवड़ शिविर पहुंचकर सबसे पहले शिव भक्तों का किया स्वागत। थके हुए कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर जाना उनका हालचाल। मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रद्धालुओं को परोसा भोजन। सेवा भाव का दिया संदेश जीता कांवड़ियों का दिल। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा सहारनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा। शिव भक्त की कांवड़ खुद अपने कंधों पर उठाकर उसे सुरक्षित उसके साथियों तक पहुंचाया। कांवड़ यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अस्वस्थ अवस्था में लेटे हुए शिवभक्त कांवड़िए पर पड़ी पुलिस की नजर। तुरंत उपलब्ध कराई प्राथमिक सहायता। कांवड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटी की जोड़ी। संगम नगरी से मध्य प्रदेश तक पूरा करेंगे सफर। पिछले 5 सालों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं सोनू। 5 साल पहले भोलेनाथ से मांगी संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होने पर शुरू की पवित्र यात्रा की प्रथा। स्टील के घड़ों में करीब 80 लीटर गंगा जल के साथ कर रहे कांवड़ यात्रा। भविष्य में पावन यात्रा के लिए बेटे को भी कर रहे ट्रेन। कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम। यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ियों से भी जिलाधिकारी ने की मुलाकात, लिया फीडबैक। श्रद्धालुओं का जाना हाल। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच दिखानों का नजारा। एसएसपी संघ पत्नी और बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते आए नजर। एसएसपी ने परिवार से श्रद्धालुओं का किया स्वागत। कांवड़ियों को केले, फ्रूटी, शुद्ध पेयजल और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की। चीता कांवड़ियों का दिन। इस दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी की बातचीत। श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के दिए निर्देश। बागपत में आस्था की राह पर नजर आया सुरक्षा का कवच। सुरक्षित कांवड़ मार्ग सुनिश्चित करने के लिए रात भर डटे रहे पुलिस अफसर। हाईवे पर तैनात पुलिस लगातार डाक कांवड़ियों की गतिविधियों पर रख रही नजर। आस्था की इस यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सतर्क। सावन के महीने में शिव भक्ति के रंग में रंगे नजर आए तेजस्वी सूर्य। हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर फूल बरसाकर किया उनका स्वागत। हर की पैड़ी पहुंचे तेजस्वी, गंगा में लगाई डुबकी। पवित्र स्नान के बाद विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। कांवड़ में गंगा जल भरकर ऋषिकेश के लिए हुए रवाना। ऋषिकेश में भजन कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम में होंगे शामिल। 10 अगस्त को हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पैड़ी से कांवड़ लेकर रवाना होंगी उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक करेंगी यात्रा। करीब 22 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा के साथ करेंगे भगवान शंकर का जलाभिषेक। 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी मिलने की कमान के साथ करेंगी कांवड़ यात्रा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मॉनसून और सावन में धाम में दिख रहे भक्ति के अद्भुत रंग। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक हर ओर दिखाई दे रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जय बद्री विशाल और हर हर महादेव के जय घोषों से भक्तिमय वातावरण में डूबा पूरा धाम। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारियां। द्वितीय केदार मधमहेश्वर धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक, सुरक्षा कारणों से रोकी गई यात्रा। खराब मौसम को कारण बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले उफंती नदी में बह गया था मोरखंडा नदी में बनाया गया लकड़ी का पुल। करनाल में सेना के जवानों ने बुलेट बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी सड़कें। डीएसपी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ यात्रा का आयोजन। इस यात्रा में 150 के करीब जवान हुए शामिल। साथ ही प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस यात्रा में लिया हिस्सा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर सीएम योगी का बड़ा कार्यक्रम। बुनकरों को सम्मान और 706 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हैंडलूम डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया वीडियो जिसमें स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत यूपी के 75 जिलों में होगा तिरंगा संगीत समारोह। शहीद परिवारों का होगा सम्मान। 15 अगस्त सुरक्षा को लेकर आज दिल्ली में एनएसजी का बड़ा मॉक ड्रिल। कई संवेदनशील इलाकों में हो रहा सुरक्षा अभ्यास। इस ड्रिल में एनएसजी, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों का ले रही है जायजा। लाल किले के कार्यक्रम में करीब 24,000 मेजबानों की सुरक्षा के लिए 12,000 पुलिसकर्मी तैनात। बिहार की बेटी भावना कंठ ने रचा नया इतिहास। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। 20 सप्ताह तक चली कठिन ट्रेनिंग। देवभूमि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए मंडी जिला के एक जन प्रतिनिधि की शानदार पहल। शराब मुक्त शादी रचाने पर आयोजक परिवार को 11,000 नकद का इनाम। कटिहार में टीचर बने डीएम आशुतोष द्विवेदी। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया गणित, छात्रों ने सवालों के दिए जवाब। स्कूल दौरे के दौरान जिलाधिकारी ने खेल मैदान में भी आजमाए हाथ। खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल का किक मारकर खिलाड़ियों और उपस्थित लोगों का बढ़ाया उत्साह। छात्रों के लिए शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बनाना है मकसद। पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी रुचि बढ़ाने पर जोर। दिल्ली एनसीआर में शानदार बारिश के बाद वीकेंड का आगाज। रिमझिम फुहारों के साथ हुई सुबह की शुरुआत। लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश का मौसम। कहीं कहीं ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिन भर दिल्ली एनसीआर में मध्य से भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना। दिल्ली एनसीआर में अगले दो से तीन दिनों तक यूं ही जारी रह सकती है रिमझिम बारिश। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास, बने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियन। ब्लिट्स के एक राउंड बाकी रहते जीता खिताब। रैपिड राउंड के बाद पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थे प्रज्ञानंदा। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए गौरव का पल। मोहम्मद अशफाक ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में बनाई जगह। मोहम्मद अशफाक ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी किया कायम। हीट्स में 45.81 सेकंड का शानदार समय निकालकर बनाया था नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड। कोरिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तन्वी शर्मा। प्री क्वार्टर फाइनल में श्रेयांशी को 21-16, 17-21, 21-13 से दी मात। अजमित राय की ओ माई डॉग सिनेमाघरों में हुई रिलीज। इस फिल्म में लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का जीरो भी सिनेमाघरों में दी दस्तक। इसमें हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सेगल, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार शामिल। आर माधवन की फिल्म जीडीएन रिलीज। जीडी नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रियामणि, जयराम और सत्यराज जैसे स्टार्स। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज मैं वापस आऊंगा। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम दिलजीत, वेदांग रैना, शर्वरी वाघ और नसरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म। जिमी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी रिलीज। देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड ये सीरीज। चीन के युआनान में टॉर्च फेस्टिवल की धूम। पारंपरिक नृत्य और लोक संस्कृति का दिखा अद्भुत रंग। अलाव के चारों ओर थिरके लोग, ताइवानी सैलानी भी हुए शामिल। ये समुदाय ने मनाया टॉर्च फेस्टिवल। आग की पूजा और टॉर्च फेस्टिवल बने आकर्षण का केंद्र। अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की। चीन के सिचुआन में धूमधाम से मना टॉर्च फेस्टिवल। हजारों लोगों ने एक साथ मशाले जलाकर मनाया पारंपरिक उत्सव। गीत संगीत और लोक नृत्य के रंग में रंगा टॉर्च फेस्टिवल। पारंपरिक मशाल जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। 12 अगस्त को दुनिया देखेगी 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण। स्पेस, ग्रीनलैंड और आइसलैंड समेत कई देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कुछ मिनटों के लिए दिन में ही छा जाएगा अंधेरा। दिखेगा सूर्य का कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रोमांच। कई देशों में खास तैयारियां। सूर्य की बाहरी परत कोरोना होगी साफ दिखाई। पाथ ऑफ टोटैलिटी में दिखेगा सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य। चंद्रमा पूरी तरह ढकेगा सूर्य, बनेगा दुर्लभ नजारा। आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ लाइट जैसा अद्भुत नजारा। दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों में उत्साह। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने रचा इतिहास। आईएसएस के बाहर एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर के साथ किया अपना पहला स्पेस वॉक।
1: नाउ ऑन एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर विद द रेड स्ट्राइप।
0: अनिल मेनन ने करीब कुछ घंटे वहां पर स्पेस वॉक किया। जेसिका मीर के साथ स्पेस स्टेशन में लगाया सोलर पैनल का फ्रेम। 30% बढ़ेगी बिजली सप्लाई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यूएस स्पेस वॉक 96 सफलतापूर्वक संपन्न। जेसिका मीर अपने करियर का 6th स्पेस वॉक कर रही थी। दोनों ने मिलकर आईएसएस की बिजली प्रणाली को किया अपग्रेड। अंतरिक्ष स्टेशन के 3B पावर चैनल पर नया हार्डवेयर किया इंस्टॉल। साल के अंत तक आईएसएस पर लगाए जाएंगे नए रोल आउट सोलर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगाए जाने हैं कुल 8 नए सोलर पैनल। चीन के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में शेरनी नवजात बाघ के शावक की देखभाल करती दिखी। तीनों टाइगर शावक पूरी तरह बताए गए स्वस्थ। शेरनी ने दिखाया मां जैसा प्यार, टाइगर शावक को किया दुलार, लोगों के लिए चर्चा का विषय बना यह अनोखा रिश्ता। पार्क में अफ्रीकी शेर और साइबेरियन बाघ पिछले 6 से 7 साल से रह रहे हैं। साथ बड़े होने पर टाइगर शावकों को भी इसी साझा बाड़े में रखा जाएगा। चीन के इनर मंगोलिया में 4 साल बाद फिर दिखे रेड क्राउन क्रेन पक्षी, एक जोड़े के साथ 2 बच्चे भी आए नजर। ऑर्किड नेशनल नेचर रिजर्व में दुर्लभ पक्षियों का देखा गया परिवार, इलाके में जैव विविधता लौटने के संकेत। 97 साल की ब्रिटिश महिला ने बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर का रिकॉर्ड किया अपने नाम। संतानवे साल की उम्र में ब्रोमेज बेटी ने 6ठी बार विमान के पंखे पर खड़े होकर विंग वॉक किया। उन्होंने अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट के लिए फंड जुटाने के लिए किया हवाई करतब। बेटी ब्रोमेज ने 2025 में स्ट्रोक के बाद भी अपना हौसला कायम रखा। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जुनून हो तो कुछ भी संभव है। चीन के चोंकिंग में सड़कों पर मिस्ट कूलिंग फैन लगाए गए, फैन से निकल रही ठंडी हवा और पानी की फुहार से लोगों को गर्मी से मिल रही राहत। पैदल सड़क पर लगे इन फैन को देखने के लिए रुक रहे हैं लोग। कई लोगों ने ठंडी फुहार का आनंद लिया और तस्वीरें भी खींची।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
0: बात उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई उस प्रेरणादायक तस्वीर की, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद का नया दरवाजा खोल रहा है। यहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि रहने, कोचिंग और लाइब्रेरी जैसी हर जरूरी सुविधा पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है।

0: बदायूं का ये छात्रवास छात्रों के सपनों को उड़ान देने के साथ साथ उनके सुनहरे भविष्य की बुनियाद बन गया है। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ये लोधी छात्रवास किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ सभी छात्रों को बिना किसी शुल्क के कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी और हॉस्टल की सुविधा भी दी जा रही है।
1: मेरे पीछे की ये इमारत आपको किसी बड़े शहर का कोई निजी कोचिंग संस्थान महसूस होता होगा, लेकिन यह है अवंतीबाई लोधी चैरिटेबल शिक्षा संस्थान। यहाँ पर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क सुविधा दी जा रही है। सुविधा भी ऐसी कि आपको देख के लगेगा कि ये किसी बड़े शहर का एक कोई महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
0: इस छात्रावास की शुरुआत करीब 16 महीने पहले हुई थी। अब बदायूं और आसपास के करीब 15 जिलों के बच्चे इस छात्रावास का लाभ उठा रहे हैं। छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस छात्रावास में बेहतर करियर की आस लिए पहुंच रही हैं।
2: घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मेरे और मेरे भाइयों की पढ़ाई छूट गई। कहते हैं कि ये छात्रावास मेरे जैसे बच्चों के लिए तो एकदम वरदान ही सिद्ध हुआ है।
3: यहाँ पर सर एक दिवसीय एग्जाम से लेकर और पीसीएस लेवल तक की सिविल सर्विस तक की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है।
4: फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है उतनी, तो मतलब प्राइवेट लाइब्रेरी में अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ आया तो यहाँ इतनी सुविधाएं मिल रही है, किसी को पैसे पे करके भी नहीं।
0: यहाँ छात्रों को सिविल सर्विसेज के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। छात्रावास की लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हजारों किताबें मौजूद हैं। छात्र परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म्स भी यहीं से भर सकते हैं। परीक्षाओं से पहले ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू भी यहीं कराया जाता है।
5: अवंतीबाई लोधी संस्थान खोलने का विचार, मैंने जिस तरह से बचपन से मैंने शिक्षा में संघर्ष किया और मैंने गरीबी भी देखी है और बदायूं की शिक्षा में क्या क्या बच्चों को झेलना पड़ता है मैंने देखा है, तब विचार किया कि एक इस प्रकार का संस्थान जो सर्व समाज के लिए रहे और निःशुल्क को चले और उसी को ध्यान में रख करके कि आने वाले समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े और अच्छी सुविधाओं के साथ शिक्षा उनको बदायूं में मिले।
0: छात्रावास में किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही छात्रों को सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पढ़ाई की सुविधा के साथ साथ करियर से जुड़ी गाइडेंस भी यहां मिल रही है। बदायूं और आसपास के इलाकों के छात्रों को ये छात्रावास सुनहरे भविष्य की राह दिखा रहा है। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी, गुड न्यूज टुडे।
6: तस्वीर दिखाते हैं अंतरिक्ष की, जहां पर भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने इतिहास रच दिया। दरअसल नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मीर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन के पावर चैनल के लिए मॉडिफिकेशन किट को असेंबल किया।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
10: अविश्वास में विश्वास बसता है।
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में किया नमन। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत, महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ यात्रा मार्ग। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। रिमझिम बरसात ने दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को दी डबल गुड न्यूज, खुशगवार मौसम के साथ मिली साफ सांसों की सौगात, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।
6: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इस कांवड़ यात्रा में सेवा, श्रद्धा और भक्ति भाव के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल लेकर जा रहा है, तो कोई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गंगा जल ला रहे हैं और अपने अपने गंतव्य के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, शहर शहर कांवड़ियों का स्वागत। शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 12 अगस्त को महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाना है और इस तारीख तक सभी शिव भक्त अपने अपने गंतव्य तक पहुंच जाना चाहते हैं।

0: कावड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम के साथ बोलबम का जयघोष है। हर तरफ आस्था के रंग बिखरे हैं। शिव भक्तों का उत्साह देखने लायक है। कंधों पर कई लीटर जल उठाए भोले शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। भार कितना भी हो लेकिन चेहरे और दिल में भाव एक ही है, हर हर महादेव। सहारनपुर में हर दिन एक से बढ़कर एक कावड़ गुजर रही है। इस बीच एक कावड़िए की कावड़ खूब चर्चा में है। ये है हरियाणा के रहने वाले रोशन लाल सेवादार, जो इस साल भगवान शिव की सवारी नंदी को ही कावड़ का स्वरूप देकर करीब 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। परिवार और बच्चों के साथ हरिद्वार पहुंचे रोशन लाल ने पहले नंदी स्वरूप कावड़ को गंगा स्नान कराया और फिर शिव का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा का आरंभ किया। ये अनोखी कावड़ श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: हल्की बोड़ी से उठाई है, इसका स्नान कराया, इसको बच्चे ने स्नान कराया, सबको भोले की लगन लगी हुई है। हमारे शुरू के बचपन के बच्चे बच्चे के भोले के साथ हम भोला हमारी इच्छा पूरी करता है, हम भी भोले की इच्छा पूरी करते है। नंदी का साथ लेके हमारी तमन्ना थी, हम ले चले नंदी साड़े को लेके आया, हम इसके लेके जाएंगे।
0: प्रयागराज में आस्था और विश्वास का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ से हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रहने वाले ये सोनू हैं, जिनकी भोलेनाथ ने मनोकामना पूरी की तो भगवान शिव के प्रति इनका विश्वास और बढ़ गया और ये अब कावड़ की परंपरा को अपने बेटे को बताने के लिए ही 5 साल के बेटे के साथ भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं।
2: शिव भक्त ऐसे हैं जो 50 किलो का कावड़ उठाकर शिवालय जाएंगे, वो भी कहाँ, बनारस। सबसे खास बात, इनके बेटे 5 साल के इनके साथ, और ये इसलिए बेटे को लेकर आए कि बेटे को भी भारतीय संस्कृति बता सके। क्या आखिरकार आपके साथ क्यों चल रहा है?
3: बस हो गया, मेरे लालच में उन्हें भी जा रहे हैं कि पापा में भी जाएंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे।
4: लेकिन बच्चा बहुत छोटा है, नहीं लगता आप? लेकिन
3: उनको कुछ नहीं भावत है, हम साथ में तो उनको कोई भावत नहीं।
4: क्या बताना चाहते बच्चों, क्या सिखा?
3: बच्चा के ये सिखा रहे हैं कि अगली पीढ़ी में आप भी ऐसे संस्कारी बनो।
0: प्रयागराज से जल लेकर निकले कांवड़िया पूरे उत्साह और उल्लास के साथ कांवड़ यात्रा पर हैं। प्रयागराज से काशी तक की लगभग 125 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा में भदोही जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख मार्ग बन गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ही हाईवे की एक लेन लगभग 85 किलोमीटर तक पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई है, जहां केवल कांवड़िए और उनके सहयोगी वाहन ही चल रहे हैं। कई श्रद्धालु लगातार 5 से 6 दिनों तक पैदल चलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं। इनमें ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो पिछले 30 वर्षों से हर सावन ये यात्रा कर रहे हैं। कई परिवार पति पत्नी बच्चों के साथ भी इस पवित्र यात्रा में शामिल हैं।
5: सुमेर घाट से जल लेकर बाबा की नगरी काशी जा रहा हूँ। बोल बात,
6: आपके लिए जो कांवड़ यात्रा है उसकी क्या मान्यता है?
5: मेरी मान्यता ये है, बस अपने लिए जा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जा रहा हूँ, सब लोग खुशी रहे, अच्छे रहे, मगन रहे। और क्या
6: कितने वर्षों से
5: मैं दूसरी बार जा रहा हूँ?
6: अभी आप प्रयागराज से काफी कितना जा रहा हूँ?
7: पहली बार जा रहे हैं? किसके पहले भी जाए?
6: पहले भी जा चुका हूँ।
7: कैसा लग रहा है आपको?
6: अच्छा लग रहा है, बस भोलेनाथ के दर्शन हो जाए।
0: शिव भक्तों की सेवा के लिए नेता भी शिविरों में पहुंच रहे हैं और भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे और शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा की, उनके पैरों की मालिश की, भोजन परोसा और श्रद्धालुओं के साथ गीतों पर खूब नृत्य भी किया। सावन महादेव की भक्ति का पावन पर्व है, जिसमें शहर शहर शिव भक्ति के रंग बिखरते हैं। सावन के पवित्र महीने में पंजाब के फरीदकोट में महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा पूरे धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भी हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और गीतों से पूरा शहर ही भक्तिमय माहौल में रंग गया। फरीदकोट से प्रेम पासी, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, बागपत से मनुदेव उपाध्याय और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस कांवड़ यात्रा पर पूरी नजर बनाए हुए है। यात्रियों की सुरक्षा से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कोई अधिकारी खुद शिविर में निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहा है तो कोई पुलिस वाला कांवड़ उठाकर कांवड़ियों की मदद कर रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है आस्था की राह पर सुरक्षा कवच। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की भूमिका सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, जगह जगह पुलिसकर्मी कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे हैं और थके हुए श्रद्धालुओं की कांवड़ उठाकर उनका सहारा बन रहे हैं।

0: सावन में कांवड़िये शिव स्वरूप माने जाते हैं। कांवड़ियों की सेवा को भी शिव सेवा का ही रूप माना जाता है। यही वजह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान आम से लेकर खास तक सभी कांवड़ियों की सेवा करते हैं। कहीं कांवड़ियों के लिए शिविर लगते हैं तो कहीं उनका भव्य स्वागत होता है। पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा ही नहीं बल्कि सेवा भाव के साथ भी श्रद्धालुओं के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और जब शिव स्वरूप भक्तों का स्वागत फूलों की वर्षा से हो तो आस्था का ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर देता है। जब कोई कांवड़िया थक जाता है तो पुलिसकर्मी उसकी कांवड़ अपने कंधों पर उठाकर कुछ दूर तक साथ सहारा बन जाते हैं। वर्दी में सेवा और संवेदना का ये स्वरूप श्रद्धालुओं का दिल जीत रहा है। ये नजारा बता रहा है कि कांवड़ यात्रा केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि सेवा सम्मान और मानवीय संवेदनाओं का भी महापर्व है। यूपी के सहारनपुर में आस्था का ऐसा अद्भुत रूप देखने को मिल रहा है। शहर के घंटाघर चौराहे पर सहारनपुर पुलिस ने कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। यहां कांवड़ियों पर पहले पुलिस वालों ने पुष्प वर्षा की और उनका भव्य अभिनंदन किया। पुलिस के सम्मान से शिव भक्तों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने भी हर हर महादेव के जय घोष के साथ अभिवादन स्वीकार किया। भोलेनाथ के जयकारों के बीच कांवड़ियों को ठंडा पानी, फ्रूटी और बिस्किट भी बांटा गया ताकि लंबी यात्रा के दौरान उन्हें एनर्जी मिल सके। पुलिस वालों के मानवीयता की एक तस्वीर भी भक्तों की दिल जीत रही है। सहारनपुर में देर रात पुलिस वाले कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे। इस बीच उनकी नजर सड़क किनारे अस्वस्थ अवस्था में लेटे एक शिव भक्त कांवड़िये पर पड़ी। इस दौरान उन्होंने बिना देर किए वाहन रुकवाया और कांवड़िये से उसकी तबीयत का हाल जाना, उसे पानी पिलाया और प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई। पुलिस की इस तत्परता से शिव भक्त को तुरंत राहत मिली। इसके बाद थाना प्रभारी और उनके साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने सेवा और समर्पण की अनूठी मिसाल पेश करते हुए शिव भक्ति कांवड़ खुद अपने कंधों पर उठाई और उसे सुरक्षित उसके साथियों तक पहुंचाया ताकि वो दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर सके। सहारनपुर पुलिस लगातार सेवा, सुरक्षा और समर्पण के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए नजर आ रही है। पुलिस वालों और अधिकारियों की मानवीयता की ये तस्वीरें पूरे यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिल रही है। शिव भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुलिस वाले चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी से तैनात हैं। कांवड़ शिविरों की लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
1: परंपरागत रूप से यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गण, राजनीतिक गण ये आते हैं और आके वो स्वागत करते हैं, जो स्वागत लगातार हो रहा है। सभी लोग शिविर बनाए हुए हैं, शिविर पे स्वागत किया जा रहा है। वहाँ पे पर्याप्त प्रशासन तरफ से प्रकाश व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई है, आराम की व्यवस्था की गई है। लोग दो दो से तीन तीन सौ किलोमीटर चल के आ रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस पर प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सभी लोग साथ लग के इस पर काम कर रहे हैं।
0: मेरठ में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सड़क की स्थिति, लाइटिंग, जल निकासी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल शौचालय, महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य शिविरों और बाइक एम्बुलेंस की उपलब्धता और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था को हर समय दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सहारनपुर से राहुल कुमार, मेरठ से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर और पहले से कहीं ज्यादा सशक्त बन रहा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश लगातार अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में ओडिशा के चांदीपुर तट से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया, जिसने भारत की रणनीतिक ताकत और स्वदेशी रक्षा तकनीक पर एक बार फिर मुहर लगा दी है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है और वो है अग्नि प्रहार 4000 किलोमीटर दूर दुश्मन तबाह। बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में नियमित यूजर ट्रायल के तहत किया गया, जिसमें मिसाइल के सभी तकनीकी और परिचालन मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि हुई। अग्नि-4 भारत की परमाणु क्षमता से लैस मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर है। मिसाइल में अत्याधुनिक रिंग लेजर गायरो आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, आधुनिक एवियोनिक्स और कई स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी सटीकता और विश्वसनीयता काफी बढ़ जाती है। अग्नि-4 का यह सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक, रणनीतिक क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि है। यह परीक्षण दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत अपनी सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को लगातार आधुनिक और सशक्त बना रहा है।
3: दुनिया भर में बढ़ते हुए संघर्ष के बीच भारत अपनी न्यूक्लियर क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में DRDO द्वारा बनाई गई अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और ये अग्नि-4 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, जिसका स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने एक बार फिर सफल परीक्षण किया। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड यानी वो कमांड जिसके पास सभी न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइल का नियंत्रण है, वो लगातार अपनी क्षमताओं को परखता और बढ़ाता है और इसी कड़ी में अग्नि-4 जिसकी

0: कि भारत न्यूक्लियर की क्षमताओं के लिहाज से कभी भी फर्स्ट यूज को मना करता है, यानी कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी।
1: स्वतंत्रता दिवस आने वाली है, ऐसे में राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। इस ड्रिल के जरिए सुरक्षा तैयारियों और आपात स्थिति के दौरान इन एजेंसियों के रिस्पॉन्स को परखा गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है दिल्ली के दिल में मॉक ड्रिल। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल किया। वहां मौजूद थे हमारे संवाददाता अंशुल सिंह।
2: 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी सिक्योरिटी अलर्ट है और 15 अगस्त से कुल एक हफ्ते पहले एक बार फिर से एनएसजी और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़ा मॉक ड्रिल जो है कनॉट प्लेस में हो रहा है। इस मॉक ड्रिल का थीम बेसिकली ये रखा गया है कि अगर कनॉट प्लेस में किसी भी तरह का आतंकी हमला हो जाता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और पुलिस की टीम है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये जो पूरा इलाका है इनर सर्कल का कनॉट प्लेस में, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए इस वक्त, और हर जगह अलग अलग जगह बैरिकेड लगा करके और ये डू नॉट क्रॉस दिल्ली पुलिस के जो टेप्स हैं ये लगा करके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से एक के बाद एक एम्बुलेंसेस पहुंच रही हैं और जो कथित तौर पे घायल होंगे जो लोग ऐसे हमले में, उन्हें किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा और कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें सही समय पर उपचार मिल सके, इन चीजों की डिटेल में तैयारी की जा रही है। इसमें नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मौजूद है और इसके साथ एनएसजी के जवान भी जो है वो भी मौजूद है जो आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा मॉक ड्रिल जो है इस वक्त कनॉट प्लेस इलाके में कराया जा रहा है। कनॉट प्लेस के अलावा दिल्ली के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह के मॉक ड्रिल कराए जा रहे हैं ताकि जो अफसर हैं जो ऑन ग्राउंड ड्यूटी पर रहते हैं उन्हें यह पता लगे कि किस तरीके से उन्हें एक्ट करना है, किस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्स करना है। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ये जानना चाहती है कि वो कौन से रूट हो सकते हैं जहां से इमरजेंसी के समय पे जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके और वहां पर जो अपना काम है वो शुरू किया जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जाने जो है वो बच सके। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा मॉक ड्रिल चल रहा है ये कितना सफल हो पाता है, लेकिन काफी बड़ा मॉक ड्रिल आज दिल्ली पुलिस और एनएसजी द्वारा कराया गया है। सीपी का 10 बजे के आसपास सीपी में पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद करना खुद में ये बताता है कि कितनी सीरियसली जो है ये पूरा मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। और आज ये मॉक ड्रिल हुआ है यहाँ दिल्ली में और दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी ये मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि यह ऐसे मॉक ड्रिल आने वाले दिनों में और भी होंगे या फिर दिल्ली पुलिस इस मॉक ड्रिल के बाद ही ये सुनिश्चित कर लेगी कि वो कौन से रूट हो सकते हैं और वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे इमरजेंसी में रिस्पॉन्स दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके।
1: बिहार के कटिहार में सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने की पहल अब जमीन पर भी दिखाई देने लगी है। स्कूल का जायजा लेने जब जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी अचानक आजम नगर प्रखंड के सरस्वती विद्यानिकेतन मॉडल स्कूल पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ निरीक्षण ही नहीं किया बल्कि खुद बच्चों को गणित पढ़ाकर एक शिक्षक की भूमिका भी निभाई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सरकारी स्कूल में डीएम की पाठशाला। जी हाँ, कटिहार के सरकारी स्कूल में डीएम आशुतोष द्विवेदी पहुंचे तो सीधे क्लास में पढ़ाई का स्तर परखा। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे, उनके जवाब सुने और जिन छात्रों ने हाथ उठाया उन्हें ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर सवाल हल करवाया। बच्चों के मन में जो भी शंकाएं थी उसका समाधान भी उन्होंने खुद किया।

बिहार के कटिहार में डीएम साहब का अंदाज थोड़ा जुदा है। फाइल्स और दफ्तर की चार दीवारी से बाहर निकलकर जब डीएम बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो बच्चे बन जाते हैं। मौका मिलते ही मैदान में बच्चों के साथ खेलते नजर आते हैं। कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी खेलों को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शिक्षा का अहम हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि बच्चों की पढ़ाई को और बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए वो लगातार कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए डीएम साहब जब स्कूल्स के निरीक्षण पर निकलते हैं तो वहाँ भी उनका अंदाज कुछ अलग ही नजर आता है। हाल ही में जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी एक सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे। ये इलाके का मॉडल स्कूल है। स्कूल पहुंचते ही डीएम सीधे क्लासरूम में गए। वो बच्चों के बीच बैठे और शिक्षक की भूमिका में उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया।

0: डीएम साहब ने बच्चों से सवाल पूछे तो बच्चों ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। किसी ने सवालों के जवाब जुबानी दिए तो कुछ बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर मैथ के सवाल हल कर अपनी काबिलियत दिखाई।
1: हम लोगों ने मॉडल स्कूल का निरीक्षण किया है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया है कि किस तरह की उनकी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। और हम लोग ये भी अब शुरू करा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका रिवीजन रेगुलर होता रहे। साप्ताहिक रूप से सभी स्कूलों में शाम को थोड़ी देर के लिए ही शनिवार को साप्ताहिक जो भी तीन हेडमास्टर चुने पिछले हफ्ते जो पढ़ाया गया है उसका एक तरीके से छोटा सा 2-3 क्वेश्चन का एग्जाम हो, रिवीजन हो।
0: बच्चों से संवाद के बाद डीएम ने स्कूल के शिक्षकों और अधिकारियों के साथ भी बैठक की। डीएम साहब की ये कोशिश स्कूल्स में बदलाव की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया और डेनिम शो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें डेनिम ट्रेंड्स को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ा उद्योग को नई दिशा देने वाली मशीनें भी मौजूद है। ऐसे में हमारी आज की जो अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। दिल्ली के डेनिम शो में जेन जी फैशन की धूम। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से अधिक ब्रांड एक ही छत के नीचे जुटे जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई दिशा दे रही है।
3: दिल्ली के भारत मंडपम में डेनिम शो चल रहा है जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया के इस प्रदर्शनी में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड एक ही छत के नीचे अपने उत्पादों को लेकर जुटे हैं। इस खास प्रदर्शनी में गारमेंट मशीनरी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, नीटिंग और डेनिम सेक्टर की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस एक्सपो में करीब 1200 प्रोडक्ट्स और 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान जेन जी और जेन अल्फा पर दिया जा रहा है।
4: काफी ब्रांड्स जेन जी और जेन अल्फा को लेके काफी फिट्स और बेसिकली फिट्स में खेल रहे हैं। अभी एक WGS ने प्रेजेंटेशन भी दिया था जिसमें जेन जी और जेन अल्फा को लेके उन्होंने किस तरह ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह जेन जी जेन अल्फा की रिक्वायरमेंट है, पैच वर्क, बैगी फिट्स, लूज जीन्स, उन सबको लेके कंफर्ट वेयर जो एक कैजुअल है, आजकल स्ट्रीट वेयर का बहुत ट्रेंड है जेन जी जेन अल्फा में, उनको ध्यान रखते हुए उन्होंने सारी अपनी लाइंस रेडी कर दी है।
3: देश की युवा पीढ़ी और फैशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। कंपनियों के मुताबिक अब युवाओं की पहली पसंद बैगी फिट, रिलैक्स्ड फिट, कार्गो स्टाइल, वाइड लेग और सस्टेनेबल डेनिम बन रही है। रिसाइकल्ड फैब्रिक और कम पानी में तैयार होने वाली डेनिम की मांग भी लगातार बढ़ रही है।
5: ये जो जीन्स है इसका स्टाइलिंग देख लीजिए, ये पूरा लूज फिट है, ये कम्फर्ट है, ये एक रिजिड है, तो इस तरीके के पैटर्न में इस तरह के जीन्स आजकल के जींस को बहुत पसंद है और इस वजह से हमने एक सेल का साइकिल वापस रिवाइव होते देखा हुआ। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिस तरह से पूरा घूमता है, अब हम देख रहे हैं कि एक लूज फिट, उसमें अलग अलग फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर हो गया, ऑल क्लाइमा हो गया, यू नो, ये सब चीजें काफी मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं।
3: इस प्रदर्शनी का एक बड़ा आकर्षण AI वस्त्र है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसा समाधान है जिसमें कपड़े ट्राई करने के लिए आपको ट्रायल रूम जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मशीन आपकी सिर्फ एक फोटो क्लिक करती है और उसी तस्वीर पर कुछ ही सेकंड में सैकड़ों अलग अलग ड्रेस, रंग और डिजाइन वर्चुअली दिखा देती है। इससे ग्राहकों के लिए खरीदारी आसान हो जाती है और फैशन ब्रांड्स को भी अपने उत्पाद बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का विकल्प मिलता है।
6: डेनिम शो में एक बहुत ही शानदार चीज़ हमें मिली है। कहीं भी हम जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कपड़ों में तो उसे बार बार हम लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम पे अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार AI सॉल्यूशन लेकर आए हैं, AI वस्त्रा इनका नाम है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने आपको खड़े होना है, ये आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आप डिज़ाइन चूज़ करते जाइए, आप पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है, वो कपड़ा कैसा लग रहा है, सब कुछ ये बताता चला।
3: टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब सस्टेनेबिलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में ऐसी आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया गया है जो कम पानी, कम बिजली और कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अधिक और बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन करने में सक्षम है। इन तकनीकों का उद्देश्य उत्पादन लागत कम करने के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी घटाना है।
7: आज की तारीख के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर गारमेंट एक्सपोर्ट हाउसेस और जितने भी वॉशिंग एरियाज हैं उसके अंदर उभर के आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जिसके लिए सबको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पिछले 5 साल में काफ़ी तरक्की करी है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी।
3: डेनिम के बदलते ट्रेंड, AI आधारित वर्चुअल ट्रायल और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी, ये संकेत दे रही है कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये इंडस्ट्री इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के दम पर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाएगी।
6: पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और जो चीज़ें हम उससे ले रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनें आज देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी हद तक ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
2: पंजाब के फरीदकोट जिले का एक युवा लोगों को AI और डिजिटल स्किल्स सिखा रहा है। प्रभजोत नाम का ये युवा वॉलंटियर्स की टीम के साथ जरूरतमंद छात्रों को ऑनलाइन स्किल्स सिखा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, युवाओं को मुफ्त मिल रही है AI शिक्षा। प्रभजोत को लॉकडाउन के दौरान महसूस हुआ कि हजारों विद्यार्थी केवल संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महंगे थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उनके परिवार फीस वहन नहीं कर सकते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 2020 में ब्रिलियंट पी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना था। आज ब्रिलियंट पी केवल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि वॉलंटियर्स और विद्यार्थियों का एक सक्रिय शिक्षा समुदाय बन चुका है। यहाँ पाइथन, जावा, AI, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सहित कई विशेष विषयों के निशुल्क कोर्स संचालित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि लाइव मेंटरशिप, प्रतियोगिताओं, इंटर्नशिप और करियर मार्गदर्शन का अवसर भी मिलता है।
8: होनी चाहिए। सो मैंने क्या किया कि वहाँ से मैंने फिर स्टार्ट किया ना कि ब्रिलियंट पी नाम रख लेते हैं ना। सो उस वक्त कोई ChatGPT नहीं था, मतलब ये खुद का माइंड से आया हुआ एक वर्ड था जिसको ये रखा। सो मतलब ब्रिलियंट पी की फिर तब एक मिशन से स्टार्ट किया था कि अब करना क्या है कि जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं ना, कि जो टेक्निकल कोर्सेज एफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनकी हेल्प करनी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में हेल्प करनी है। कि क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज अगर हम बात करें ना आज के टाइम पे, लाइक AI मशीन लर्निंग है, जावा है, पाइथन है, या जिन कोर्सेज की डिमांड है वो बहुत ही पेड कोर्सेज होते हैं, मतलब इतना एक्सपेंस होता है कि एक स्टूडेंट एफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब कि जो नीडी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो हमारे ब्रिलियंट पी में क्या है कि हम वो सभी कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, कि हमारी पूरी टीम बनी हुई है। सो टीम क्या है, हमारे सारे वॉलंटियर्स है, लाइक दे आर नॉट पेड एम्प्लॉयज, कोई पेड एम्प्लॉई नहीं यहाँ पर, सारे वॉलंटियर्स है। और वॉलंटियर्स भी कौन है, वो कोई एक्सपर्ट, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब जिनकी अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन हुई है या फिर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बिकॉज स्किल्स मेरे ख्याल से ना, अगर हम बात करें तो स्किल्स ज़्यादा आजकल, मतलब स्किल्स की सारी गेम बन गई है।
2: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: शिव भक्तों के आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में किया नमन। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर भी की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत, महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ यात्रा मार्ग। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। रिमझिम बरसात ने दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को दी डबल गुड न्यूज, खुशगवार मौसम के साथ मिली साफ सांसों की सौगात, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है, और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें और अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहां हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना एक तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो कि असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा किया जा रहा है कि 4 अगस्त को जब थाईलैंड में दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस के चपेट में आ गई थी। ये उसी का वीडियो है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई बताएंगे आपको। साथ ही हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
8: 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई जिससे कि 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स घायल हो गए। अब इसी हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि जब थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी, ये उसी का वीडियो है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
9: थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 4 अगस्त को एक तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज हवा के झटकों में फंसा विमान अचानक करीब 300 फीट तक नीचे आ गया। इस घटना में क्रू मेंबर्स समेत कई यात्री घायल हो गए। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो इसी फ्लाइट के अंदर का है और टर्बुलेंस के दौरान का है। इसमें किसी हवाई जहाज के अंदर बैठे कुछ यात्री रोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विमान के एक विंडो की अंदर की लेयर भी निकली हुई दिखाई दे रही है। कुछ न्यूज वेबसाइट्स ने भी हालिया विमान टर्बुलेंस की खबर में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
8: दरअसल एयर इंडिया के फुकेट दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस का बताकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फ्लाइट के अंदर खिड़की के किनारे बैठी रोती हुई एक बुजुर्ग महिला बेहद परेशान नजर आ रही है। वीडियो में महिला के पास वाली खिड़की उखड़ गई है जिसे एक दूसरी महिला यात्री फिर से लगाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। इस दौरान पीले कपड़ों में मौजूद महिला बुजुर्ग महिला को ढांढस दे रही है और उन्हें चुप कराती नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो 4 अगस्त का है जब थाईलैंड से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट टर्बुलेंस के चपेट में आ गई थी। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। अब ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। इस दौरान हमें हादसे के दौरान जो वीडियो जारी किया गया था वो वीडियो मिला। जब हमने इसे गौर से देखा और इसकी तुलना वायरल हो रही वीडियो से की तो अंतर साफ मिल गया। मतलब ये कि हाल फिलहाल का वीडियो ये नहीं हो सकता था और इसके अलावा सर्च के दौरान भी हमें दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, लिहाजा इसे हमने वायरल वीडियो के सवालों की कसौटी पर कसा। तो जो पहला सवाल हमारे जहन में आया, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है। दूसरा सवाल जो आया वो कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इन सवालों का जवाब जो हमने जाना वो जानकर एक बार के लिए आप भी चौंक जाएंगे। देखिए
9: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक न्यूज चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 22 अप्रैल 2018 को पोस्ट किया गया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये पुराना वीडियो है और 4 अगस्त की घटना से संबंधित नहीं हो सकता है। पोस्ट में ये जानकारी दी गई कि ये वीडियो एयर इंडिया के एक प्लेन के अंदर मौजूद यात्री ने शूट किया था। ये फ्लाइट अमृतसर से दिल्ली जा रही थी। प्लेन एक तेज टर्बुलेंस में फंस गया था जिससे विंडो पैनल के अंदर का हिस्सा निकलकर अलग हो गया और ऊपर के कुछ ऑक्सीजन मास्क भी नीचे गिर गए थे। सर्च के दौरान हमें एक YouTube चैनल पर 22 अप्रैल 2018 को अपलोड की गई वीडियो रिपोर्ट भी मिली जिसमें वायरल वीडियो भी देखने को मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 अप्रैल को अमृतसर से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को उड़ान के दौरान भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। टर्बुलेंस इतना तेज था कि विमान की एक यात्री खिड़की का अंदरूनी पैनल निकलकर गिर गया। वहीं एक यात्री हवा में उछल गई और उसका सिर विमान के केबिन से जा टकराया। 22 अप्रैल 2018 को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल को अमृतसर से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान को उड़ान के दौरान भीषण टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस घटना में 3 यात्री घायल हो गए। टर्बुलेंस के चलते विमान की एक खिड़की का पैनल निकल गया और कुछ ओवरहेड ऑक्सीजन मास्क भी बाहर आ गए। विमान ने 8000 फीट से 21000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ाई के दौरान लगभग 10 से 15 मिनट तक भारी टर्बुलेंस का सामना किया। इस रिपोर्ट में भी वायरल वीडियो वाले दृश्य मौजूद थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वायरल वीडियो 19 अप्रैल 2018 को अमृतसर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में हुए टर्बुलेंस का है। अब ये वीडियो एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली फ्लाइट में आए टर्बुलेंस का बताकर शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक नवजात लावारिस बच्ची नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में एक दंपत्ति ने अपनी मासूम सी बच्ची को सिर्फ इसलिए लावारिस हालत में छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
9: मुस्कुराती हुई छोटी बच्ची का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें इमोशनल म्यूजिक भी है। इसे शेयर करने वाले ज्यादातर लोग भावुक कर देने वाले कैप्शंस के साथ लिख रहे हैं कि इस बच्ची के माता पिता ने उसे लावारिस हालात में छोड़ दिया है। इस वीडियो के जरिए कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि यह मामला महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां एक दंपत्ति ने अपनी मासूम सी बच्ची को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की है और उन्हें बेटे की चाहत थी। वीडियो इतना ज्यादा वायरल है कि कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इसे शेयर कर दिया। कुछ ने तो इसे नासिक की घटना बताते हुए इसके बारे में खबरें तक छाप दी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि ये मामला महाराष्ट्र के नासिक का है, जहां पर एक दंपत्ति ने अपनी मासूम सी बच्ची को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो एक लड़की है और उन्हें बेटी की चाहत थी। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि जमीन पर नवजात को देखकर आप देख सकते हैं कि हर किसी के कदम रुक गए। हर कोई वहां खड़े होकर बच्ची को पुचकार रहा है, उसे दुलार रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी से मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल हो रहे हैं कि वीडियो का सच झूठ क्या है। फैक्ट चेक की टीम ने वायरल वीडियो की जांच की। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले फैक्ट चेक की टीम ने वायरल हो रहे वीडियो को हर फ्रेम को गौर से देखा। वीडियो के बैकग्राउंड में एक इमोशनल म्यूजिक भी डाला गया है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर मौजूद लोगों की बातें सुनाई नहीं दे, इसके लिए ये इमोशनल म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो के आखिरी हिस्से में चंद सेकंड के एक फ्रेम में एक कैमरा भी नजर आ रहा है। ये देखकर हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। माहौल इमोशनल है। मासूम बच्ची को देखकर लोगों के कदम रुक गए हैं, तो फिर यहां कैमरा क्या कर रहा है? एक शख्स के हाथ में पेपर और पेन भी दिख रहा है। इससे ये इशारा मिल रहा है कि ये सीन किसी शूटिंग का हिस्सा हो सकती है। वीडियो को आधा अधूरा वायरल किया गया है ताकि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा व्यूज हासिल किया जा सके। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसे कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिले जिससे कि वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर कोई ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में खबर होती और उसके बारे में डिटेल खबर कहीं ना कहीं तो जरूर छपी होती या मिल जाती देखने सुनने को। लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा और जो पहला सवाल हमारे जहन में इस वीडियो को देखने के बाद आया वो कि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली है, ये एक बड़ी बात। और साथ ही साथ जो दूसरा सवाल हमारे जहन में आया, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों के बीच भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की और जो जवाब हमें मिला आप भी देखिए।
9: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला। यहाँ इसे 4 जुलाई को शेयर किया गया था। वीडियो के कैप्शन में साफ लिखा गया है कि ये नया साल नाम की एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का वीडियो है। लंबे वर्जन वाले इस वीडियो के आखिर में कैमरामैन भी दिखाई देता है। इसके अलावा शूटिंग लाइट्स भी दिखाई देती हैं। इस अकाउंट पर इस शूटिंग का एक और वीडियो भी मौजूद है। इसमें बकायदा एक्शन बोलने के साथ शूटिंग शुरू होती है।
10: एक्शन, बच्चे क्या आवाज आती है, बच्चे देखो, जाओ जाओ, गुड गोइंग गुड गोइंग।
9: एक एक्टर बच्ची को उठाकर रोने की एक्टिंग भी करता हुआ नजर आता है।
10: एक्शन, बच्चे क्या आवाज आती है, बच्चे देखो, जाओ जाओ।
9: सीन कैसे शूट करना है ये समझाते हुए एक आदमी डायरेक्शन देता हुआ भी दिखता है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये महज एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का वीडियो है, ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
8: हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वायरल वर्ल्ड में और क्या क्या हो रहा है, तो बने रहें हमारे साथ यानी गुड न्यूज टुडे के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
8: तो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
7: बचपन और बच्चों की मासूमियत में अलग ही जादू होता है। उनकी छोटी छोटी हरकतें, भोले सवाल और दिल से निकली बातें पल भर में चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। कई बार उनकी एक प्यारी सी अदा पूरे दिन की थकान मिटा देती है। इन दिनों एक छोटी सी बच्ची का स्कूल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है,
11: ठीक है? मम्मा को पूछेंगे कि दूसरा वाला दे देना।
7: जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे।
11: आज खा लो।
7: इस वीडियो में बच्ची का मासूम गुस्सा और उसका ड्रामा लोगों के दिलों को जीत रहा है। वीडियो में एक छोटी सी मासूम बच्ची स्कूल के क्लासरूम में नजर आ रही है। अमूमन बच्चे स्कूल में टिफिन खोलने को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन इस बच्ची के साथ कुछ अलग ही खेल हो गया। जब इस बच्ची ने अपनी टिफिन को खोला तो उसके होश उड़ गए। एकदम से उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। टिफिन के अंदर एक बार फिर से उसके दुश्मन यानी आलू की सब्जी रखी हुई थी। रोज रोज टिफिन में वही पुरानी आलू की सब्जी देखकर बच्ची बोर हो चुकी थी।
9: उसे इतना तेज गुस्सा आया कि उसने ना आओ देखा ना ताओ सीधे क्लासरूम के फर्श पर जाकर बैठ गई। तभी उसके टीचर की नजर उस पर पड़ी और उसका रुआंसा चेहरा देख टीचर ने उसका ये क्यूट और दर्द भरा गुस्सा कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। टीचर ने बड़े ही प्यार से और दुलार के साथ बच्ची को चुप कराने की कोशिश भी की। टीचर ने उनसे कहा कि बेटा आलू की सब्जी बहुत अच्छी होती है, इसे खाने से शरीर को ताकत मिलती है और इंसान मजबूत बनता है। लेकिन गुस्से से भरी उस बच्ची पर टीचर की इन समझदारी भरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में अपना टिफिन भी जमीन पर रख दिया और फफक कर रोने लगी।

0: अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियों और कोहरे से ढके शानदार नजारों के बीच ये बहनें अपने संगीत का जादू बिखेरती नजर आती हैं। सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती का यह संगम ही लोगों को बार बार इनका वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा है। बेटियां पापा की राजकुमारी क्यों होती हैं? इसका अंदाजा आप ये वीडियो देखकर बखूबी लगा सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मासूम बेटी पिता से बाल बंधवा रही है। इस दौरान वो ना कोई नखरा कर रही है, ना ही कोई बदमाशी, वो चुपचाप अपना काम करवा रही है। इसी दौरान वहाँ पर बच्ची की माँ पहुँचती है। माँ पूछती है क्या हो रहा है, बच्ची बोलती है रबर बैंड दो। इस पर माँ बोलती है कि क्या मैं बाल बना दूँ। पापा भी कहते हैं कि माँ से बनवा लो, लेकिन बच्ची साफ इनकार कर देती है। साफ साफ कह देती है कि बाल तो पापा के हाथों ही बनवाना है। यूजर्स बाप बेटी के इस प्यार भरे पल को खूब इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। पिता वो शख्स होते हैं जो बच्चों के साथ चट्टान बनकर खड़े रहते हैं। कई बार बच्चे की हर छोटी बड़ी सफलता में खुश होते हैं, लेकिन माँ की तरह इसे खुलकर जताते नहीं हैं। इन दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पिता का बेहद इमोशनल रूप दिख रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ऑडियंस के बीच खड़ा है और उनका बच्चा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। वो अपने बच्चे को देखकर खुश और इमोशनल दोनों हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो अब रो पड़ेंगे, तो अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है। कभी वो ताली बजाते हैं तो कभी वो गंभीरता के साथ अपने बच्चे के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। पूरे वीडियो में ऐसा भी पल आता है जब वो वाकई रोने लगते हैं। बच्चे में फोन की आदत से अब ज्यादातर पेरेंट्स परेशान हैं। मानो मोबाइल देखे बिना बच्चों का दिन पूरा ही नहीं होता। मगर कुशीनगर के एक स्कूल ने बच्चों की ये आदत छुड़ाने का मजेदार तरीका ढूंढ निकाला है। ये तरीका पेरेंट्स के काम का है और वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चे की आंखों से खून आता दिखाया जाता है, जो पट्टी को रंग से लाल करके दिखाया गया है। एक टीचर बच्चे से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो बताता है कि मैं फोन बहुत देखता था। इसके बाद थोड़े बड़े बच्चे को नन्हे बच्चों के पास ले जाया जाता है, उनसे पूरी बात बताई जाती है। और इस दौरान चोट का नाटक कर रहा बच्चा रोता जा रहा था, आंखों में दर्द की शिकायत कर रहा था। टीचर बच्चों से कहते हैं कि ये देख लो इनकी आंख में क्या हुआ है। इसके बाद टीचर बच्चों के पास जाकर मोबाइल देते हैं, कहते हैं कि लो फोन चला लो, मगर बच्चे रोने लगते हैं लेकिन फोन हाथ में नहीं लेते हैं। आगे से फोन न चलाने का वादा भी करते हैं। बच्चों को फोन से दूर रखने का ये तरीका यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है।
1: Picking up this cutie pie in a BMW 340i.
2: प्राची लैंड कर रहे थे एक फ्लाइट से और मैंने
0: पायलट वाइफ लंबी फ्लाइट के बाद वापस आ रही थी। सामने मुस्कुराता हुआ पति इंतजार कर रहा था। इससे अच्छा सरप्राइज क्या ही हो सकता है।
1: पहुंच गया एयरपोर्ट एंड देयर शी वाज, मैं एक्साइटेड।
0: पति और पत्नी का प्यार भरा मोमेंट इस वक्त इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: एनीवेज फाइनली द मोमेंट वाज
3: हियर।
0: लोग जमकर इस वीडियो पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। होटल का एक्सिस कार्ड पहली बार इस्तेमाल करती दादी का मासूम वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में पोती अपनी दादी को होटल के कमरे का एक्सिस कार्ड देती है और कहती है कमरा खोलो। दादी कार्ड को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है और पूछती है कि किससे खोलूं। इस पर पोती जवाब देती है चाबी से। दादी फिर पूछती है कहाँ है चाबी। तब पोती कार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहती है यही तो है। इसके बाद भी दादी पूरी तरह समझ नहीं पाती और पूछती हैं ये कैसे होता है। फिर पोती बड़े प्यार के साथ उन्हें दिखाती है कि कार्ड को दरवाजे के लॉक के सामने टैप करना होता है। पोती के समझाने के बाद दादी भी वही तरीका अपनाती हैं और आखिरकार होटल के कमरे का दरवाजा खुल जाता है। दादी के चेहरे की खुशी और नई चीज सीखने का उत्साह लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो के अंदर ही एक छोटा और सुंदर पंडाल बनाया है, जहां उसने बहुत प्यार और श्रद्धा के साथ गणपति जी को स्थापित किया है। दरअसल इस शख्स के लिए ऑटो सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उनकी आस्था का एक खास स्थान भी बन गया है। ये सुंदर पल दिखाता है कि श्रद्धा कहीं भी मिल सकती है। प्रार्थना करने के लिए आपको किसी बड़े मंदिर या भव्य स्थान की जरूरत नहीं है। प्यार से भरी होने पर एक छोटी सी जगह भी खास बन जाती है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चल।
4: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए। ऐसे ही अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि सावन के महीने में आस्था के अलग अलग रंग, साथ ही पग पग पर शिव भक्तों का स्वागत सत्कार जारी है। वहीं गुजरात मोरबी के कुएं में छिपा है समंदर, कुएं में हिलने वाले पानी का राज जानिए। साथ ही दिल्ली में सजी है डेनिम की दुनिया, जिसकी वजह से जेन जी जेन अल्फा के लिए सिर्फ 6 महीने में बदल जाता है फैशन ट्रेंड। तो ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। यूपी के सहारनपुर में शिव भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, पुलिस ने किया कांवड़ियों का स्वागत, महादेव के जयकारों से गूंजा कांवड़ यात्रा मार्ग। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु। रिमझिम बरसात ने दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को दी डबल गुड न्यूज। खुशगवार मौसम के साथ मिली साफ सांसों की सौगात। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार। रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। राष्ट्रपति भवन में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित। हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जारी। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा की। श्रावण मास के इस पवित्र महीने में इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िये जल भरकर शिवालयों की ओर जा रहे हैं, जिनके सुगम और सुरक्षित कांवड़ यात्रा के लिए मंत्री से लेकर अफसर तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से लेकर यूपी तक, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक और बिहार से लेकर झारखंड तक कांवड़ यात्रा के कई अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त पूरा माहौल शिवमय हो चुका है।
10: कांधे पर कांवड़ और बोल बम का जयकारा लगाते हुए ये कांवड़िये शिव भक्ति में मग्न शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका मकसद है देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करना। भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इन शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को अनोखे रंग और आकार में ढाला है, जिसके चलते ये कांवड़ इन दिनों शहर शहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिजनौर और सहारनपुर से आई तस्वीरें शिव भक्ति के इन्हीं अनोखे रंगों को समेटे हुए हैं। इनमें किसी ने कांवड़ पर शिवलिंग स्थापित किया है, किसी ने खाटू श्याम बाबा को ही कांवड़ पर विराजमान कर दिया है और कोई कांधे पर भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। बिजनौर की तरह सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रियों का उत्साह और उमंग पूरे चरम पर है। हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िये गंगा जल लेकर सहारनपुर से गुजर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हरियाणा के रहने वाले रोशनलाल सेवादार, जो भगवान शिव की सवारी को लेकर करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। लोगों के बीच रोशनलाल की ये अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
14: गंगा जल लेके जा रहे हैं, नदी लेके जा रहे हैं, मनोत्री कोसी पहुँच जाएगी।
15: इस बार कावड़ में आप अपने साथ नंदी को भी दर्शन करा रहे हैं, कावड़ मार्ग का भी?
14: हाँ जी, लेके जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसी दुनिया दे विच ऐड लाना चाहते हैं भी काम करो तो एक बार ही कर दो, तो मुड़ के बार बार ना करो। जो किसी ने परेशानी हो या आपको परेशानी हो भी काम एक बार ही बहुत होता कर ऐसी कावड़ चको जाके दुखी ना हो, आप ना दुखी हो।
10: सावन में शिव भक्ति का एक रंग कावड़ यात्रियों की सेवा करना भी है, इसलिए कहीं इनके लिए खाने पीने के लंगर है, कहीं आराम करने के लिए शिविर बनाए गए हैं और कहीं कांवड़ियों का स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। सहारनपुर में तो इन दिनों न सिर्फ कांवड़ रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हो रहा है, बल्कि पुलिस के आला अफसर परिवार संग कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। उधर मेरठ के जिलाधिकारी वीके सिंह कांवड़ मार्ग पर लगे शिविरों में पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शिविर में रुके कांवड़ यात्रियों से बातचीत भी की। इसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों को दिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा के इस पुण्य काम में मंत्री भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहां योगी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों के शिविर में पहुंचे और वहां आराम कर रहे कांवड़ियों के पैरों की मालिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन भी कराया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना ही भगवान शिव की सेवा के समान है और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है।
16: मैं जिला प्रशासन का, पुलिस का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, चाहे नगर पालिका के हों, जिला पंचायत के हों, चाहे अन्य ग्राम सभाओं के हों, उनका ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी जिनके परिवार होने के बाद 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ड्यूटियां लगातार दे रही है, और कांवड़ सेवा शिविरों का उन दानदाताओं का जिन्होंने भरपूर दान देकर के सबके भोजन की रहने की आवास की व्यवस्था की। लगातार बारिश हो रही है लेकिन वाटर प्रूफ टेंट लगाने का काम किया। पानीपत से शिव प्रतिवर्ष आता है 1 करोड़ रुपए खर्च करता, 150 लोगों के लेकर गया। मैं शिव में गया वहाँ छपार के अंदर 150 सेवादार भोजन के लिए और 150 सेवादार सेवा करने के लिए। और ये एक उदाहरण है, बाकी समय इसी प्रकार से लोग लगे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर पूरा शिव में है। मुजफ्फरनगर प्रत्येक बालक चाहे नौजवान हो चाहे बच्चा हो चाहे महिला हो चाहे बालिका हो, आप देख रहे हैं सब लोग कावड़ियों की सेवा में पूरे तत्पर हैं।
10: श्रावण मास में चल रही ये कावड़ यात्रा केवल शारीरिक श्रम या पदयात्रा नहीं है, बल्कि ये अटूट शिव भक्ति, कठोर संयम, आत्मशुद्धि और मानसिक दृढ़ता का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें कदम कदम पर शिव का स्मरण और आस्था की असली परीक्षा होती है। बिजनौर से संजीव शर्मा, सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
17: और अगली खबर गुजरात के मोरबी से है, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। खबर यह है कि मोरबी के विरपाड़ा गांव के एक खेत में मौजूद कुआं पूरे इलाके में बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुएं का पानी हिलने से लोगों में भूकंप का डर फैल गया। उन्हें लगा कि यह हलचल भूकंपीय गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन जिला अधिकारियों ने भूकंप से जुड़ी आशंका को खारिज कर दिया और शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया कि ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

0: पानी से लबालब भरा कुआं और कुएं में मौजूद पानी का जोर जोर से हिलना इन दिनों मोरबी के वीर पाड़रा गांव के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से ये खबर इलाके में आग की तरह फैली है, लोग दूर दूर से कुएं के पानी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कुएं के आसपास लोगों की ये भीड़ इसी वजह से लगी है। बताया गया कि पहली बार रविवार और सोमवार को कुएं का पानी हिलता हुआ देखा गया था, फिर मंगलवार को पानी पूरी तरह से हिलना बंद हो गया, लेकिन बुधवार और गुरुवार को फिर से कुएं का पानी हिलने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में भूकंप का डर फैल गया। उन्हें लगा कि यह हलचल भूकंपीय गतिविधि से जुड़ी हो सकती है।
1: मैं वहाँ का तालुका सदस्य हूँ और ये गांव हमारे में आता है, तो हमने गांव वालों ने दो दिन पहले वहाँ पर बताया कि सदस्य जी ऐसे देखो तो इधर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गांव वाले सब लोगों देखने के लिए कि इकट्ठा हुए इधर होते हैं। और हमने गांव वालों ने बताया कि दो दिन पहले यहाँ से ज़्यादा पानी हिल रहा था और बीच में रुक गया और अभी आज के दिन ज़्यादा फिर हिलने लगा है।
2: ये कुएं का पानी जो हिल रहा है वो हमारे गाँव में ये जाए भाई ने देखा था, तो उसने वीडियो बना के फिर गांव में सबको भेजा और फोन किया और मुझे भी बुलाया और गांव में मैंने सब लोगों को बोला, फिर इधर आए तो देखा तो देखते ही चकित हो गए, क्योंकि दो दिन पहले भी ऐसा ही हो रहा था और आज फिर से भी ऐसा ही होने लगा है और तब से लेके आज अभी तक रुका ही नहीं, मेरे पीछे ही हुआ है, आप देख सकते हो।
3: ऐसा आपने कभी पहले देखा हुआ?
2: नहीं, आज से पहले कभी नहीं देखा है।
0: कुएं को लेकर इलाके में अटकलों का बाजार गर्म हुआ तो प्रशासन फौरन हरकत में आया और जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम मौके पर भेजी गई, जिसमें शामिल भू वैज्ञानिक जेएस बढ़ेर ने साफ किया कि यह घटना किसी भी प्रकार की भूकंपीय गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारी बारिश के कारण ग्राउंड वाटर तेजी से रिचार्ज हुआ है, इस दौरान जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों की दरारों में फंसी हवा बाहर निकल रही है, जिससे कुएं के पानी में लगातार हलचल और लहरें पैदा हो रही हैं। जेएस वढ़ेर ने यह भी बताया कि इस मामले में गांधीनगर में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से भी बात की गई है, जिसमें आईएसआर ने भूकंप से जुड़ी अटकलों को खारिज किया है।
4: इस बारे में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से परामर्श किया था, तो यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी या फिर एक्टिव फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है। प्राइमरी ये लग रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उसकी वजह से जो रॉक में से पोर स्पेसिस आते हैं इसमें से एयर रिलीज होने की वजह से एक्टिविटी दिखने को मिल रही है। ये हैवी रेनफॉल में नॉर्मल है।
5: अभी लोगों में काफ़ी सारी वो भय का माहौल है कि अभी कुछ भूकंप आने वाला है या कुछ और है, तो ये इसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे?
4: नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने सिस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से परामर्श किया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से या कोई एक्टिव फॉल्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
0: मोरबी के कलेक्टर स्वप्निल खरे ने इस घटना के बारे में सरकार को जानकारी दे दी है और बताया है कि सरकार के निर्देश पर गांधीनगर से विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी, ताकि वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके।
6: इस बारे में ज़्यादा तपास के लिए हमने गुजरात जो ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्हें भी हम जान कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भी विजिट करेंगे और उसके बाद हमें एक डिटेल रिपोर्ट इस बारे में सबमिट करेंगे।
0: इस अनोखी घटना ने ग्रामीणों के साथ साथ राहगीरों और आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी हैरान कर दिया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है।
6: प्राथमिक अभी यही हमारे ध्यान पे आया है, जो लोगों के मन में शंका थी कि इसमें कुछ सीज़मिक एक्टिविटी है या इससे रिलेटेड ये घटना है, उसके लिए हमने गुजरात में जहाँ सीज़मिक एक्टिविटी मेजर होती है वहाँ भी पाया था। पिछले 5-10 दिन में कोई भी अनयूजुअल घटना अभी तक उनके ध्यान पे आई नहीं है, इसलिए लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से या किसी भी तरह की ऐसी जो डर फैलाने वाली न्यूज़ है उससे दूर रहना चाहिए।
0: ये पहली बार नहीं है जब किसी कुएं या जल स्रोत में ऐसी रहस्यमयी हलचल देखने को मिली हो। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में भी इसी तरह कुओं और तालाबों में लहरें उठने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शुरुआती दौर में इन्हें चमत्कार बताया गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिक जांच में इनके पीछे प्राकृतिक कारण पाए गए, जैसा कि मोरबी की घटना में भी दावा किया जा रहा है। मोरबी से राजेश अम्बालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात करते हैं डेनिम की दुनिया की, जो कि दिल्ली के भारत मंडपम में सजी है। गार्टेक्स टेक्स पोसेस इंडिया के बैनर तले डेनिम शो में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भविष्य दिखाई दे रहा है। यहां एक तरफ नई पीढ़ी की पसंद के डेनिम ट्रेंड्स हैं, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ा उद्योग को नई दिशा देने वाली मशीनें भी मौजूद हैं। एक ही छत के नीचे जुटे देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से अधिक ब्रांड्स जेन जी और जेन अल्फा पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। करीब 1200 प्रोडक्ट्स और 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च इस एक्सपो का हिस्सा है।

0: दिल्ली के भारत मंडपम में डेनिम की दुनिया सजी है, जहां पारंपरिक नीली या काली नहीं बल्कि रंग बिरंगी डेनिम नजर आ रही है। देश दुनिया में डेनिम जींस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। युवाओं से लेकर कामकाजी पेशेवरों तक ये रोजमर्रा के पहनावे का मुख्य हिस्सा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डेनिम उत्पादकों में से एक है और इसका बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि डेनिम और जींस से जुड़ा व्यापारिक मेला दी डेनिम शो 8 अगस्त तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी गार्टेज टेक्सो प्रोसेस इंडिया का हिस्सा है।
1: कहते हैं फैशन कोई भी हो वो हर 6 महीने में चेंज हो जाता है, लेकिन आजकल हम बात चेंज होते हुए फैशन के साथ साथ नई जनरेशन की कर रहे हैं, जो कि बहुत तेजी से बदल रही है, चाहे वो जेंजी हो चाहे वो जेन अल्फा हो। डेनिम शो में हम ये देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेनिम को लेकर जेंजी और जेन अल्फा की चॉइसेस किस तरह की हैं, वो किस तरह की जीन्स पहनने की कोशिश कर रहे हैं या वो प्रेफर कर रहे हैं उस तरह की जीन्स खरीदने की।
0: डेनिम सबसे पहले 17वीं सदी में इटली के जेनेवा शहर के नाविकों और कामगारों के लिए बनाई गई थी। बाद में ये 19वीं सदी में अमेरिका के खानों में काम करने वाले खनिकों, किसानों और चरवाहों के बीच मजबूत और टिकाऊ वर्किंग कपड़ों के तौर पर मशहूर हो गया। लेकिन ये गुजरे जमाने की बात है। वक्त गुजरा तो डेनिम आधुनिक परिधान में शामिल हो गया। अब इसे रोजमर्रा के कामों से लेकर ऑफिस, पार्टी और सफर के दौरान आराम से पहना जाता है। पहले सिर्फ वजन के आधार पर बिकने वाले डेनिम का ट्रेंड अब हर 6 महीने में बदल जाता है। ऐसे में डेनिम फैब्रिक से कपड़े बनाने वाली कंपनियों का पूरा फोकस जेन जी और जेन अल्फा है। उन्हीं को ध्यान में रखकर डेनिम से कपड़े बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसाइकिल कॉटन से बनी जीन्स की डिमांड सबसे ज्यादा है।
2: अभी जो नया जनरेशन जिसकी आप स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, जेन जी के लिए, जेन अल्फा के लिए, ये लोगों को एक लूज फिट, एक सॉफ्ट हैंड फील और अलग स्टाइलिंग के जीन्स पसंद है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो जीन्स है इसका स्टाइलिंग देख लीजिए, ये पूरा लूज फिट है, ये कम्फर्ट है, ये एक रिजिड है। तो इस तरीके के पैटर्न में इस तरह के जीन्स आजकल के जींस को बहुत पसंद है और इस वजह से हमने एक सेल का साइकिल वापस रिवाइव होते देखा।

0: उसको कोई रिसाइकल दे, ये भी चीज़ें बहुत लोगों को पसंद आती है। ये एक स्ट्रेट फिट है जो आजकल के नए जनरेशन को काफ़ी पसंद है, और इसमें कोई शर्ट्स भी है जो अभी मेरे पास नहीं होगे दिखाने के लिए। ये एक नया वेराइटीज़ है, ये लोगों को बहुत पसंद है। ये श्रिंक टू फिट है, मतलब ये आप दुकान से लेने के बाद आप जब वॉश करते हो तो आपके साइज से फिट होती है। तो ये आजकल के टाइम में बहुत फेमस है। इसका एक अलग इफेक्ट भी आता है इसका, देखो ये थोड़ा सा मार्बली इफेक्ट आता है जो उसको कस्टमर्स को बहुत, यंग जनरेशन को खास करके बहुत पसंद है। इसमें सब रिसाइकल कॉटन यूज़ हुआ है और ये सब चीज़ें बहुत लोगों को पसंद है। फिर हम उसमें रिसाइकल पॉली भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, और अलग अलग टाइप के जो वॉशेज यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी वाटर कंजम्पशन लेस होता है, अलग टाइप का डाइंग होता है, वो सब लोगों को बहुत पसंद है आज के दौर। जैसे भी ये जैकेट है, ये यंग जनरेशन के एकदम पसंद का है। ये इसके अंदर आप टी शर्ट डाल लो, इसके ऊपर जैकेट पहन लो तो बहुत पसंद आता है यंग जनरेशन।
1: ये भी इतना हल्का बनने लगा है कि शायद वो वेदर का वेट नहीं करते हैं।
0: हाँ, जैसा मैं बोल रहा था, पहले सिर्फ लोग उसको रफ एंड टफ के लिए यूज़ करते थे, अभी तो ऑफिस में पहनते हैं, मूवीज जाने के लिए पहनते हैं, बाहर घूमने जाने के लिए पहनते हैं, ट्रैवलिंग में पहनते हैं, इसकी मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं आज के तरह।
2: रिटेल और ई कॉमर्स की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल ट्राई ऑन तकनीक क्रांतिकारी बदलाव की ओर दिख रही है। इसकी वजह से कपड़े ट्रायल करने के लिए ट्रायल रूम जाने की जरूरत नहीं।
1: देखिए, डेनिम शो में एक बहुत ही शानदार चीज हमें मिली है। कहीं भी हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं कपड़ों में, तो उसे बार बार हम लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम पे अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार AI सॉल्यूशन लेकर आए हैं, AI वस्त्रा इनका नाम है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने आपको खड़े होना है, ये आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आप डिज़ाइंस चूज़ करते जाइए, आप पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है, वो कपड़ा कैसा लग रहा है, सब कुछ ये बताता चलाएगा। मेरे साथ चांद बादशाह जी हैं,
3: इसका नाम ये वस्त्रा है। तो बिफोर बाइंग आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं आउटफिट आप पे कैसा दिखेगा। सो अब एक डेमो क्रिएट करके बता रहा हूँ आपको लाइवली। अब ये मेंस वेयर, ये डिवाइस आपको वुमेन वेयर, मेन वेयर, बॉय और गर्ल के लिए
1: चार कैटेगरी
3: है। सो अभी मैं आपको मेन का डेमो बता रहा हूँ, आप जस्ट मेन का क्रिएट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, एंड यू विल सी ऑल कैटेगरी इमेजेस अपलोडेड हियर।
1: क्या ट्राई करना है आपको, टी शर्ट ट्राई करनी है, शर्ट ट्राई करनी है?
3: यस सर, हम पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अनलिमिटेड ऑप्शंस, अच्छा, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स ये एप्लीकेशन के कैटेगरीज क्रिएट होंगे।
1: ये ब्लेजर है, हुडी है, कुर्ता है, जैकेट है, सूट है, पोलो टी शर्ट है, या फिर आप जो भी ट्राई करना चाहें, जो भी कस्टमर लेने आ रहा है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज कर देंगे,
3: कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड मैं अभी हमके सूट का ट्राई ऑन और पोलो का ट्राई ऑन बताता हूँ। अभी मैं पोलो पे सेलेक्ट करा, एंड
1: पे करते चलिए,
3: सूट पे करेंगे। अभी सूट क्लिक करा, आप एक सूट सेलेक्ट कर दीजिए, आपका कौन सा डिजायर्ड सूट है। यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द सूट एंड आप इधर आ जाइए, एक ट्राई ऑन क्लिक करके बताता हूँ लाइव।
1: अब ये मैंने सूट सेलेक्ट कर लिया, मुझे क्या ट्राई करना है?
3: तो यहाँ करने के बाद सिंपली आपको स्टार्ट ट्राई ऑन बटन क्लिक करने का है। ओके, स्टार्ट बटन क्लिक करो, यहाँ पे फोजेस बता रहे हैं,
1: पोस्चर बताया किस तरह खड़े होना,
3: कैसा खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद आप रेडी हो गए, आई एम रेडी क्लिक करो, देन आप फोटो अपलोड भी कर सकते हैं फोन से या कैमरा से भी अपलोड कर सकते, कैमरा लेके फोटो ले सकते हैं। ओके, मैं डायरेक्ट फोटो ले रहा हूँ अभी।
1: क्या कितना टाइम लेता है
3: ये? 20 सेकंड में क्रिएट हो जाएगा, बट यहाँ पे इंटरनेट इश्यू है, इससे वजह से थोड़ा टाइम ले रहा।
1: यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है,
3: ये प्रोसेस हो गया। अभी ओके कर दीजिए,
1: अगर आपका वाईफाई ठीक ठाक है तो 20 सेकंड में प्रोसेस कर देगा,
3: प्रोसेस हो जाएगा।
1: ओके, ये देखिए,
3: नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो वेरी रियलिस्टिक ड्रिपिंग आएगा, रियलिस्टिक रहेगा।
2: 175,000 में AI वस्त्र नाम की ये वर्चुअल ट्राई ऑन डिवाइस मिल जाती है। हालांकि सब्सक्रिप्शन के तौर पर 30,000 चुकाने होंगे, जिसमें ट्रायल रूम के बाहर लगने वाली लंबी कतारें खत्म हो जाती हैं, जिससे कम समय में ज्यादा ग्राहक खरीदारी और व्यापारी कारोबार कर पाते हैं। गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया के बैनर के तहत इस प्रदर्शनी में फैब केयर मशीनें दिख रही हैं, जिनका इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर कपड़े धोने, ड्राई क्लीनिंग और टेक्सटाइल ट्रीटमेंट के लिए होता है।
1: कितने कम टाइम पर, कितने कम पानी पर आप लोग लेकर आए, कितने कम बिजली खपत कर रहे हैं, पहले क्या होता था, अभी क्या है, ये मशीन कितना आगे ले जा पा रही है?
4: देखिए, पहले जो नॉन
1: है, क्या पहले तो इसमें क्या होता है,
4: इस मशीन को हम लोग एक स्पेशल रेजिनेटर मशीन कहते हैं, जिसके अंदर पहले वॉशिंग मशीन के अंदर जब किसी कपड़े को हमने वॉश करना है, एक सॉफ्ट लुक देनी है, तो हम पानी

0: ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अमूमन आप मान के चलें कि 1 किलो कपड़ा 10 से 12 लीटर पानी ले लेता था, तो अगर 30 किलो का काम हो रहा है तो उसमें 300 से 350 लीटर का पानी की खपत रहती थी। मगर जब हमें सॉफ्ट फील देनी है, एक फिनिशिंग टच देनी है, तो हम लोगों ने एक स्पेशल मशीन ईजाद करी जिसके अंदर एक सिर्फ सरफेस फिनिशिंग की ज़रूरत है। अब इस मशीन के ज़रिए हम 1 किलो कपड़े के ऊपर सिर्फ 1 लीटर पानी ही इस्तेमाल करते हैं।
1: भारत मंडपम में लगा ये एक्सपो साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के दम पर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाने की ओर बढ़ रही है।
2: टेक्नोलॉजी की जब हम पहले बात करते थे, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर जुड़ती थी कि प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा किया जाए और उसकी कॉस्टिंग भी कम आए। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब हम कम से कम जो भी इंडस्ट्री है वो इस बारे में सोच रही है कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे और जो चीज़ें हम उससे ले रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनें आज देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी हद तक ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज पथ।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
5: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम। लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अगस्त 2026, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:51 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं और घर की शुभता अशुभता का प्रभाव क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभ तरंगे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और अगर मकान में अशुभता ज्यादा हो गई है तो ऐसे अशुभ मकान में रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। और आपका मकान शुभ है या अशुभ है इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और मकान में थोड़ा ध्यान देने पर आपको मकान की अशुभता महसूस हो सकती है। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कोई मकान शुभ है या अशुभ है उसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा, दिशाओं से, डायरेक्शन से कोई मकान शुभ या अशुभ किस तरीके से होता है। आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं, पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनकी अलग अलग शुभता होती है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि अलग अलग दिशाओं के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए, अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए, अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरण पर ध्यान दीजिए, और अगर दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन और गंदगी का विशेष ध्यान दें। यानी अलग अलग दिशा के मकान भी शुभ होते हैं, आपको उस दिशा के अनुसार काम करना होगा और उस दिशा के अनुसार आपको रहना होगा तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में सूर्य का प्रकाश, जो घर में बहुत सारी शुभता पैदा करता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह अशुभता पैदा होती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में नहीं आता तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य बिगड़ने की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो शीशे की सहायता से या खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा के सुधार करिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए और रोज सुबह पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। देखिए, आपके घर की तरंगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है रंगों का। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? घर में अगर आप गलत रंग का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। गाढ़े रंग जैसे लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग अगर आप अपने घर में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा, लाल, गाढ़ा हरा रंग या काला रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्या देगा। और इसमें भी भूरा रंग अगर आप अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें तो जीवन दरिद्रता की तरफ जाएगा। घर में लाइट शेड के हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए और घर में जो छत है उसका रंग अगर हमेशा सफेद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग या क्रीम कलर का प्रयोग करना सबसे बेहतर होगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, घर के जो लोग हैं और घर में घटने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे भी जीवन में अशुभता पैदा होती है। घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों या बुरी आदत के लोग हैं, घर में क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, नशा ये सब होता है तो घर अशुभ होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग किया जाता हो, घर में गलत तरीके से अर्जित पैसा आता हो तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। गलत और बुरे काम बिल्कुल मत करिए, वरना उसका प्रभाव आपके घर पर आएगा। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन ना कमाएं और एक महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करें तो घर की अशुभता कम होगी। और घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र या भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और संतान के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है या घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या करेंगे? बच्चा जब भी नहाए उसके नहाने के पानी में गुलाब जल एक ढक्कन दो ढक्कन डालिएगा। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सवेरे पहनाइएगा और बच्चे की माता बच्चे के नाम से रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें छोटा बच्चा बार बार बीमार होता हो तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बात उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई उस प्रेरणादायक तस्वीर की, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद का नया दरवाजा खोल रहा है। यहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि रहने, कोचिंग और लाइब्रेरी जैसी हर जरूरी सुविधा पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है।

0: बदायूं का ये छात्रवास छात्रों के सपनों को उड़ान देने के साथ साथ उनके सुनहरे भविष्य की बुनियाद बन गया है। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ये लोधी छात्रवास किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ सभी छात्रों को बिना किसी शुल्क के कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी और हॉस्टल की सुविधा भी दी जा रही है।
1: मेरे पीछे की ये इमारत आपको किसी बड़े शहर का कोई निजी कोचिंग संस्थान महसूस होता होगा, लेकिन यह है अवंतीबाई लोधी चैरिटेबल शिक्षा संस्थान। यहाँ पर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क सुविधा दी जा रही है। सुविधा भी ऐसी कि आपको देख के लगेगा कि ये किसी बड़े शहर का एक कोई महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
0: इस छात्रावास की शुरुआत करीब 16 महीने पहले हुई थी। अब बदायूं और आसपास के करीब 15 जिलों के बच्चे इस छात्रावास का लाभ उठा रहे हैं। छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस छात्रावास में बेहतर करियर की आस लिए पहुंच रही हैं।
2: घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मेरे और मेरे भाइयों की पढ़ाई छूट गई। कहते हैं कि ये छात्रावास मेरे जैसे बच्चों के लिए तो एकदम वरदान ही सिद्ध हुआ है।
3: यहाँ पर सर एक दिवसीय एग्जाम से लेकर और पीसीएस लेवल तक की सिविल सर्विस तक की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है।
4: फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है उतनी, तो मतलब प्राइवेट का लाइब्रेरी में अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ आया तो यहाँ इतनी सुविधाएं मिल रही है, किसी को पैसे पे करके भी नहीं।
0: यहाँ छात्रों को सिविल सर्विसेज के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। छात्रावास की लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हजारों किताबें मौजूद हैं। छात्र परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म्स भी यहीं से भर सकते हैं। परीक्षाओं से पहले ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू भी यहीं कराया जाता है।
5: अवंतीबाई लोधी संस्थान खोलने का विचार, मैंने जिस तरह से बचपन से मैंने शिक्षा में संघर्ष किया और मैंने गरीबी भी देखी है और बदायूं की शिक्षा में क्या क्या बच्चों को झेलना पड़ता है मैंने देखा है, तब विचार किया कि एक इस प्रकार का संस्थान जो सर्व समाज के लिए रहे और निःशुल्क को चले और उसी को ध्यान में रखकर के आने वाले समय में बच्चों को बहुत ज्यादा संघर्ष न करना पड़े और अच्छी सुविधाओं के साथ शिक्षा उनको बदायूं में मिले।
0: छात्रावास में किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही छात्रों को सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। पढ़ाई की सुविधा के साथ साथ करियर से जुड़ी गाइडेंस भी यहां मिल रही है। बदायूं और आसपास के इलाकों के छात्रों को ये छात्रावास सुनहरे भविष्य की राह दिखा रहा है। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
8: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब। एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप।

शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली। देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे लोग नमन। मानसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु।

0: रिमझिम बरसात ने दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को दी डबल गुड न्यूज। खुशगवार मौसम के साथ मिली साफ सांसों की सौगात। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार। रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित। हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में चार स्मारक डाक टिकट भी किए जा रहे। आइए शुरू करते हैं न्यूज पत्र सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेदा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा महाराष्ट्र के वाशिम की बुजुर्ग महिला की भी है जो सफर में 2 साल पहले खोए अपने पैसों के मिलने की उम्मीद भी खो चुकी थी लेकिन उन्हें खुशी मिलनी थी सो मिल गई।
1: सफर में कोई चीज खो जाए तो अक्सर उसके मिलने की उम्मीद भी खो जाती है। महाराष्ट्र के वाशिम की इस बुजुर्ग महिला ने भी खो दी थी, पैसे भी और उम्मीद भी। लेकिन चमत्कार हुआ, पूरे 2 साल बाद उनके पैसे सही सलामत मिल गए। कहानी कुछ ऐसी है कि 2 साल पहले अप्रैल 2024 में संभाजीनगर से वाशिम जाने वाली बस में ये बुजुर्ग महिला जिनका नाम कासाबाई गायकवाड़ है अपने पति के साथ बस में चढ़ी। कंडक्टर राजू वाणे से मालेगांव के 2 टिकट लिए और स्टैंड आने पर पति के साथ उतर गई। डिपो पहुंचकर जब कंडक्टर राजू ने खाली बस चेक किया तो वहां उन्हें नोटों से भरी एक थैली मिली जिसमें पूरे 24,000 रुपए थे। साथ में एक मेडिकल पर्ची भी थी जिसमें नाम लिखा था कासाबाई गायकवाड़। राजू ने महिला का इंतजार किया लेकिन वो पैसे ढूंढते हुए वहां तक नहीं पहुंची। फिर राजू ने उसे डिपो में जमा करा दिया। इत्तेफाक देखिए, पूरे 2 साल बाद दोनों की मुलाकात फिर बस में हुई और महिला के आधार कार्ड में लिखे उनके नाम से घटना एक बार फिर ताजा हो गई। राजू की ईमानदारी देखिए, महिला को वो फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास ले गया और उनके पैसे उन्हें वापस मिल गए। राजू की ईमानदारी की चर्चा अब पूरे जिले में हो रही है। बुजुर्ग महिला ने भी उसे 1100 रुपए के साथ ढेर सारी दुआएं दी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक सामाजिक पहल चर्चा में है। असल में यहाँ के एक जनप्रतिनिधि ने शराब मुक्त शादी संपन्न होने पर आयोजक परिवार को 11,000 रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। ये जनप्रतिनिधि हैं मंडी जिला के जोगिंदर नगर के टिकरू से बीडीसी सदस्य दिलीप सिंह। उन्होंने ये ऐलान हाल ही में मेड़ भरोला पंचायत में आयोजित ग्राम सभा की बैठक के दौरान किया। बड़ी बात यह है कि वो ये इनाम राशि अपनी पेंशन से देने जा रहे हैं। दिलीप सिंह भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके हैं। दिलीप सिंह के मुताबिक उनके इलाके में पिछले कुछ समय से नशे का प्रचलन बढ़ गया है। शादी समारोह में शराब परोसना आम बात हो गई है जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसी को कम करने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए उन्होंने शराब मुक्त शादियों का संकल्प लिया है। बिहार में कटिहार के डीएम आशुतोष द्विवेदी उस वक्त चर्चा में आ गए जब वो एक स्कूल में टीचर की भूमिका में नजर आए। असल में डीएम आशुतोष वहां आजमनगर प्रखंड के एक सरकारी स्कूल सरस्वती विद्या निकेतन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। ऐसे में उन्होंने न सिर्फ हर क्लास में जाकर बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया बल्कि बच्चों को खुद गणित पढ़ाते भी दिखे। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब भी किए और उनकी हौसला अफजाई भी की। डीएम ने यहां खेल के मैदान में फुटबॉल पर किक मारकर खिलाड़ियों और बच्चों का उत्साह भी बढ़ाया। गुजरात के गिर और उसके आसपास के इलाकों में अब सिर्फ रात ही नहीं बल्कि दिन में भी शेरों को सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है। गिर सोमनाथ जिले से आई ये तस्वीर देखिए, दिन में भी कैसे आराम से सड़क पार कर रहे हैं, मानो उन्हें इंसानों का खौफ नहीं। सड़क से गुजर रहे लोगों ने भी शेर के परिवार को देखकर अपनी अपनी गाड़ियां रोक दी ताकि वो आराम से सड़क पार कर सके। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर कुछ समय के लिए यातायात रोक दिया ताकि शेरों को बिना किसी व्यवधान और खतरे के सुरक्षित सड़क पार कराया जा सके। पंजाब के फरीदकोट में ये सावन मेले पर महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा की रौनक है जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने मनमोहक झांकियां पेश की। यात्रा का मुख्य आकर्षण माता रानी की सुंदर और अलौकिक पालकी रही। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक मलवई गिद्दा ने सबका ध्यान खींचा। ये शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस किला मुबारक पहुंची।
0: और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की। दिल्ली एनसीआर में पिछले दो दिनों से जमकर बारिश हो रही है, कभी रुक रुक कर तो कभी जोरदार बारिश राजधानी सहित एनसीआर को भी भिगो रही है। हालांकि कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला और बारिश का ये सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं, बल्कि आने वाले वीकेंड भी भीगी भीगी फुहारों और ठंडी हवाओं के नाम रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 10 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना भी जताई है।

0: दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि सुबह रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही थी, राजधानी में हो रही बारिश से गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। वहीं सुबह ऑफिस आवर के दौरान बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि कई इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला।
1: आज सुबह से दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश एक बार फिर से दिल्ली वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या है जो है वो सामने आई है, कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या जो है वो सामने आई है। मैं इस वक्त ITU पर मौजूद हूँ और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो हालांकि यहाँ पे इस वक्त जो ट्रैफिक है वो सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो अभी भी काफी स्लो है। बारिश की वजह से जो ट्रैफिक है वो स्लो हुआ है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, जो खराब तस्वीरें आ रही हैं, वो एक बार फिर से गुरुग्राम से आ रही हैं, जहां पर फिर से बारिश की वजह से कई ऐसे रास्ते हैं जो पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, कई ऐसे अंडरपासेस हैं जो पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं, और जो पुलिस कर्मचारी हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं ट्रैफिक को चलाने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो ट्रैफिक है वो ज्यादा देर तक ना रुके और ज्यादा लंबा जाम ना लगे। लेकिन इसके अलावा IMD का ये कहना है कि आज देर रात तक और कल सुबह से जो है थोड़ी राहत मिल सकती है, मौसम खुल सकता है, लेकिन आज दिन भर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। तो अब ये देखना होगा कि प्रशासन जो है वो किस तरह ये सुनिश्चित करेगा कि आम जनता को ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि कावड़ का भी समय है, कई ऐसे रास्ते पहले ही ऐसे हैं जो कावड़ यात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं, ट्रैफिक का जो इनफ्लो है वो कुछ सड़कों पर ही कन्वर्ट कर दिया गया है, और उन सड़कों पर भी पानी भर जाने की वजह से जो आम जनता है उसे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन ग्राउंड पर है, ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, पानी का जो रिसाव है वो धीरे हो रहा है, तो अब ये देखना होगा कि और ऐसे कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आम जनता को कम से कम दिक्कत हो। लेकिन जिस तरीके से मौसम अभी बना हुआ है ये काफी निश्चिंत है कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
0: शुक्रवार तड़के से कभी रुक रुक कर और कभी तेज बारिश हो रही है। हालांकि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, तेज बारिश आनी तो अभी बाकी है। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है और दिल्ली में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में 8 और 9 अगस्त को यानी वीकेंड पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा। राहत की खबर ये है कि आने वाले सप्ताह में भारी बारिश होने की संभावना कम ही है, जिससे जलभराव जैसी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी और ट्रैफिक जाम का खतरा भी कम रहेगा।
2: तड़के सुबह दिल्ली NCR में शुरू हुई बारिश अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बारिश पर ब्रेक ही नहीं लग रहा है। बादल कुछ देर के लिए विश्राम करते भी हैं तो तुरंत छोटे से ब्रेक के बाद वापस से सावधान की मुद्रा में आकर वो बादल को बरसाना शुरू कर देते हैं, फिर से बारिश शुरू हो जाती है। हफ्ते के दो दिन लगभग ऐसे ही निकल गए। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो पूरे रास्ते भर स्ट्रगल करते रहे, जाम से जूझते रहे इस बारिश के चक्कर में। कहीं बारिश होती, कभी रुक जाती, तो कभी बहुत तेज़ होती और चारों तरफ जाम लग जाता। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो वीकेंड पर ही बारिश के मज़े ले पाते हैं, तो उनके लिए हम ये खुशखबरी लेकर आए हैं कि इस पूरे वीकेंड भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा, इसी तरह का सुहावना मौसम रहेगा और बारिश लगातार होती रहेगी रुक रुक कर। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, टेम्परेचर जैसा अभी है वैसा मेंटेन रहेगा, गर्मी का एहसास आपको इस वीकेंड पर नहीं होने वाला है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाली 12 तारीख तक, 12 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। बारिश हालांकि वीकेंड पर या सैटरडे और संडे को रुक रुक कर होगी, बीच में ब्रेक लगेगा, लेकिन मौसम इसी तरह का बना रहेगा, काले बादल आसमान में छाए रहेंगे और सोमवार से फिर से एक बार जिस तरह से भारी बारिश अभी हो रही है मध्यम गति से, वो बारिश दोबारा से शुरू हो सकती है और 12 तारीख तक ये साइकिल लगातार चलता रहेगा।
0: वहीं गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से वाहनों के आने जाने में परेशानी हो रही है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव, ट्रैफिक में रुकावट और कहीं कहीं बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं राजस्थान में मॉनसून की मेहर बरस रही है। जयपुर में गुरुवार रात से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रुक रुक कर आज भी जारी है। कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में जलजमाव हो गया। बारिश और तेज हवा के कारण राजधानी के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बारिश के चलते कुछ राहत मिली है। हालांकि लगातार बारिश ने शहर में जलभराव की समस्या भी बढ़ा दी है। निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
3: तपती गर्मी के लिए जाने जाने वाला प्रदेश अभी फिलहाल अपने सुहाने मॉनसून वाले मौसम के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। लगातार यहाँ पे बारिश आ रही है पिछले कुछ दिनों से, और बादलों की एक बार मैं खूबसूरती आपको दिखाना चाहूंगी। किस तरीके से पूरे आसमान में ये काले घने बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश दर्ज की गई है, जिसमें भरतपुर, जयपुर, डीग, धौलपुर, करौली संभाग जो है वहाँ कुछ जगह पे भारी, कुछ जगह पे अति भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और ऐसे में सबसे ज्यादा बारिश 158 mm पहाड़ी डीग में दर्ज की गई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये बारिश सिर्फ अभी नहीं रहने वाली, आने वाले कुछ दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है, तो उम्मीद की जा रही है सुहाने मौसम के साथ में पर्यटकों की जो आवाजाही है वो भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे शनिवार और रविवार की छुट्टी में जो भी आसपास रहने वाले टूरिस्ट हैं वो अपना वीकेंड प्लान करने के लिए जयपुर और जयपुर के आसपास का जो एरिया है वहाँ अपने जो प्लान्स हैं वो बना सकते हैं। एक आपका जो हैप्पी वीकेंड है वो हो सकता है। बहुत सारी टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ इस समय पर क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो झरने बहने लग जाते हैं, आसपास के जो डैम्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, तो वो जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत अब होने जा रहा है।
0: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसून ट्रफ के सक्रिय होने से 10 अगस्त तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का दौर जारी रह सकता है। जयपुर से रितम जैन, दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे।
4: 15 अगस्त से पहले आज दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा की परीक्षा हुई। दिल्ली पुलिस और एनएसजी संघ तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों को परखा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: दिल्ली में कई संवेदनशील इलाकों में एक साथ हाई इंटेंसिटी मॉक ड्रिल की गई। कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस और दिल्ली सचिवालय जैसे अहम ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे ऑपरेशन का रियल टाइम अभ्यास किया। कुछ देर के लिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को परखा जा सके। मॉक ड्रिल की शुरुआत एक इमरजेंसी कॉल से हुई, जिसमें दावा किया गया कि अलग अलग इलाकों में संदिग्ध वस्तुएं मौजूद हैं। बस इसी एक कॉल के बाद पूरा सुरक्षा तंत्र एक्शन मोड में आ गया। दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एनएसजी ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया और हर कदम पर अपने रिस्पांस टाइम और तैयारियों की जांच की।
5: आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे।
0: आज देश भर में नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से अपने पसंदीदा हैंडलूम कपड़ों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील की। पीएम की अपील के बाद रवि किशन, संबित पात्रा, किरेन रिजिजू सहित कई नेताओं ने आज अपने स्वदेशी परिधान के साथ एक्सपर फोटो और वीडियो शेयर की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर राज्य स्तरीय हैंडलूम पुरस्कार बांटे और कहा कि हथकरघा हमारी सांस्कृतिक पहचान है। राजस्थान से दक्षिण भारत दर्शन की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। IRCTC ने राजस्थान से दक्षिण भारत दर्शन यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन 21 अक्टूबर को सीकर जंक्शन से रवाना होगी। 12 दिनों के इस स्पेशल टूर में रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन का मौका मिलेगा। ये ट्रेन जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से होते हुए जाएगी। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। IAF की पहली महिला टॉपगन बनी भावना इस स्पेशल ट्रेनिंग को पूरा करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के काफली खान गांव के रहने वाले रवि टमटा ने एक इलेक्ट्रिक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है। इसका पहला प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक उड़ाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फ्लाइंग कार पूरी तरह बिजली से चलती है।

0: प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही ये बाजार में आ पाएगी।
1: और अब बात सावन में कांवड़ यात्रा के रंग की। सावन के पावन महीने में शिव भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हुए कांवड़ लेकर निकल पड़े। महादेव के करोड़ों भक्त गंगा का पवित्र जल लेकर उनका जलाभिषेक करने के लिए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कोई नंगे पांव चलकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है, तो कोई कठिन व्रत और तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा है। और मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं।

0: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम पर बोलबम का जय घोष है। भोले भक्तों की भक्ति है और हर ओर आस्था के बिखरे अनेक रंग हैं। कंधों पर पवित्र गंगा जल की कांवड़ लिए शिव भक्त शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवड़ियों का मेला लगा है। इस बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस कांवड़ मेले में शामिल होने हरिद्वार में हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद गंगा में पवित्र डुबकी लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की।
1: इतना ही आग्रह है, श्रावण के जो महीना होता है उसमें कांवड़ यात्रा के दौरान जो संयम हम रखते हैं, जो डिसिप्लिन हम रखते हैं, ये सिर्फ सावन महीने तक ये सीमित ना हो, ये पूरे साल इसी संयम के साथ, इसी डिसिप्लिन के साथ, इसी फिजिकल फिटनेस के साथ, इसी अच्छे काम करने के इरादा के साथ हम अपने जीवन को जिए। भोले नाथ के आशीर्वाद और गंगा मैया के आशीर्वाद हम सब के ऊपर हमेशा बने रहे।
0: वहीं सहारनपुर में हर दिन एक से बढ़कर एक कांवड़ गुजर रही है। इस बीच एक कांवड़िए की कांवड़ खूब चर्चा में है। ये है हरियाणा के रहने वाले रोशन लाल सेवादार, जो इस साल भगवान शिव की सवारी नंदी को ही कांवड़ का स्वरूप देकर करीब 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। परिवार और बच्चों के साथ हरिद्वार पहुंचे रोशन लाल ने पहले नंदी स्वरूप कांवड़ को गंगा स्नान कराया। और फिर शिव का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू की। यह अनोखी कांवड़ श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
2: असली कांवड़ तो जी गंगा जल ही लेके जा रहे हैं, जो कांवड़ तो कांवड़ ही होती है जी, चाहे कुछ भी आएगा, गंगा जल तो गंगा जल, चाहे थोड़ा ले चाहे बड़ा ले, जो गंगा जल लेके जा रहे हैं आते नदी लेके जा रहे हैं, मनोत्री को भी पहुंच जाएगी।
3: हल्की बोड़ी से ठाई है, इसका स्नान कराया, जिसको बच्चे ने स्नान कराया, सबको भोले की लगन लगी हुई है हमारी। शुरू के बचपन के बच्चे बच्चे के भोले के साथ हम भोला हमारी इच्छा पूरी करता, हम भी भोले की इच्छा पूरी करते है। नंदी का साथ लेके हमारी तमन्ना थी, हम ले चले नंदी साड़े को लेके आया, हम इसके लेके जाएंगे।
0: सहारनपुर में ही पुलिसकर्मियों ने शिव भक्तों पर पीला गुलाल उड़ाकर स्वागत किया, साथ ही मिठाइयां भी दी। कांवड़ लेकर पैदल चल रहे कांवड़ियों के लिए ये बड़ी राहत और सुकून देने वाला पल रहा। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ सेवा शिविर में पहुंचे और शिवभक्त कांवड़ियों की पूरे मनोयोग से सेवा की, उनके पैरों की मालिश की, भोजन परोसा और श्रद्धालुओं के साथ गीतों पर जमकर थिरके भी। प्रयागराज से गंगा जल लेकर शिव भक्त बाबा विश्वनाथ के नगरी काशी के लिए निकल पड़े हैं। प्रयागराज से काशी तक की लगभग 125 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा में भदोही जिले से होकर गुजरने वाला नेशनल हाईवे श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख मार्ग बना हुआ है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हाईवे की एक लेन को रिजर्व कर दिया गया है। इस लेन पर कांवड़िए और उसके वाहन ही चल रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो 5 से 6 दिनों तक पैदल चलकर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचते हैं। इनमें ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो पिछले 30 वर्षों से हर सावन में कांवड़ यात्रा करते हैं और कई परिवार पति पत्नी और बच्चों सहित इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं।
4: उनका पवित्र महीना चल रहा है और हजारों की संख्या में कांवड़िया प्रयागराज संगम से जल लेकर काशी विश्वनाथ बाबा का जलाभिषेक करने के लिए गुजर रहे हैं। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 19 पर

0: मौजूद हूँ जो प्रयाग को काशी से जोड़ता है, और यहाँ का जो नेशनल हाईवे 19 है उसका एक लेन जो है वो कांवरियों के लिए हर बार की तरह इस बार भी रिजर्व कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं इस समय जो नेशनल हाईवे 19 का यह लेन है यह पूरा कांवरियों से केसरिया रंग से जो है रंगा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ कांवरिया है जो कि प्रयाग से काशी विश्वनाथ के लिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका?
1: नीलेश कुमार ताजेपुर।
0: नीलेश जी कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं?
1: तो जिला रीवा का रहने वाला हूँ, अभी हम प्रयागराज से काशी विश्वनाथ धाम जा रहा हूँ।
0: पहली बार जा रहे हैं कि इसके पहले
1: भी जाए? पहले भी जा चुका हूँ।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: ओके, अच्छा लग रहा है, भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। प्रयागराज दशाश्वमेध घाट से जल लेकर बाबा की नगरी काशी जा रहा हूँ। बोल बात,
0: आपके लिए जो कांवड़ यात्रा है इसकी क्या मान्यता है?
1: मेरी मान्यता ये है, बस अपने लिए जा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए जा रहा हूँ, सब लोग खुशी रहे, अच्छे रहे, मगन रहे। और क्या
0: कितने वर्षों से जा रहे
1: हैं? मैं दूसरी बार जा रहा हूँ, इस बार बाबा बुलाएंगे हमेशा जाऊँगा।
2: हरिद्वार से जल लेकर कांवड़िया दिल्ली के शिवालय पहुँचते हैं और भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। इस दौरान जगह जगह पर कांवड़ियों के रुकने के लिए दिल्ली सरकार ने टेंट लगाए हैं, जहां उनके भोजन और आराम करने के इंतजाम किए गए हैं।
3: अप्सरा बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रही हूं, वहां के ही शिविर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां पर किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूं। आप देख सकते हैं कि आपको शिविर दिख जाएगा, और उसके अंदर सबसे पहले तो यहां पर आपको इस तरीके का एक स्टॉल दिखेगा, जहां पर आप जो है आकर जूस पी सकते हैं। और मैं जूस भी दिखा दूंगी आपको कि किस तरीके से जो जूस है वो यहां पर लगातार अनानास का जूस जो है वो यहां पर बनाया जा रहा है। मौसमी और अनानास का जूस जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और इसमें बर्फ भी है ताकि जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान होके थकान में यहाँ पर पहुंचे तो उनको आनंद मिल सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आते ही जो है जो भी यहाँ पर भोले हैं वो यहाँ पर आकर जो है जूस जो है वो पी सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बोला कि व्रत भी जो है बहुत लोगों ने रखा है, तो उनके लिए खास तौर पर जो है यहाँ पर आलू चाट जो है वो तैयार की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से साफ सुथरे ढंग से जो है यहाँ पर आलू चाट जो है भोले के भक्तों के लिए जो है वो तैयार की जा रही है, और हर कोई जो है इसका आनंद भी उठा रहा है, सबको जो है राहत भी मिल रही है कि लंबा सफर तय करके जो है वो यहाँ पहुंचे। और ये इनकी देख रेख में आपको जो है वो ये लोग नजर आ जाएंगे, भोले के जितने भी भक्त यहाँ आ रहे हैं आप उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। कैसा मन को कितनी सुकून मिल रही है?
4: बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही है, हम लोग ये सेवा करीब 10 साल से कर रहे हैं और हमें बहुत सुकून मिलता है, इनकी सेवा करके बड़ा आनंद आता है।
2: सावन महादेव की भक्ति का पावन पर्व है, जिसमें शहर शहर शिव भक्ति के रंग देखने को मिलते हैं। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी, सहारनपुर से राहुल कुमार, भदोही से महेश जायसवाल के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
2: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 65 अंक नीचे फिसला, ये गिरकर 24,571 पर आ गया। सोने की कीमतों में तेजी जारी है, शुक्रवार को सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,54,000 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,34,800 रुपए पर स्थिर है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली, रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 20 पैसे हो गई। बजाज ऑटो ने अपनी पॉपुलर बाइक पल्सर के दो नए मॉडल पल्सर N160S और पल्सर N160SS भारत में लॉन्च किए हैं। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें 164.5 सीसी का 4 वाल्व इंजन दिया गया है, जो ज्यादा पावर जनरेट करता है। इसके अलावा 4 राइडिंग मोड्स और गूगल मैप्स नेविगेशन और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। पल्सर N160S की शुरुआती कीमत 1,33,511 रुपए रखी गई है, वहीं पल्सर N160SS की कीमत 1,42,585 रुपए है।
5: बंटवारा 1947 और आवारापन 2 का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। 14 अगस्त को रिलीज होने वाली दोनों फिल्मों का फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले दो बड़ी फिल्में बंटवारा 1947 आवारापन 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। छुट्टियों वाले इस वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की संभावना है। अगर फिल्म का कंटेंट उम्मीदों पर खरा उतरता है तो दोनों फिल्मों के सुपरहिट होने के पूरे चांस हैं। खास बात यह है कि दोनों प्रोडक्शन हाउस ने एक खास रणनीति बनाई है। निर्माताओं ने जानबूझकर अपने प्रमोशनल मटेरियल के जरिए ज्यादा जानकारी नहीं दी है, जिससे लोगों में उत्सुकता बनी रहे। उतनी ही जरूरी बात यह है कि वो मार्केटिंग पर जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिल्मों के थिएटर में आने के बाद उनके कंटेंट को ही खुद अपनी बात कहने देने का फैसला किया गया है।
6: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर
2: एनी सजीवन और सजीवन पीके द्वारा प्रोड्यूस की गई फ्रेग्रेंट नेचर फिल्म क्रिएशंस की फिल्म हाफ को प्रतिष्ठित TIFF 2026 के मिडनाइट मैडनेस सेक्शन के लिए चुना गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म्स इसे उत्तर भारत में रिलीज करेंगे। दोनों इसे प्रेजेंटर और डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर रिलीज करेंगे और दुनिया भर में हिंदी रिलीज के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। साउथ सुपरस्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने 14 अगस्त को रिलीज होने से पहले तेलुगु फिल्म पल्ला बुरुसु के ट्रेलर का अनावरण कर दिया है। नागार्जुन अक्किनेनी ने अन्नपूर्णा स्टूडियो और EPIC स्टूडियोज आदित्य पिट्टी और विवेक कृष्णानी की तेलुगु पारिवारिक ड्रामा फिल्म को खुद जारी किया। उदय चौहान की लिखित और निर्देशित इस फिल्म में सुधाकर रेड्डी, मुरलीधर गौड़, गोमती, प्रज्वल यादमा और सुजाता है।
7: Lord Vishnu has taken an avatar in order to protect it.
2: सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल मार्केट में 50,000 स्क्रीन पर रामायण को रिलीज करेगा। फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है। इतने स्क्रीन पर रिलीज किया जाना किसी भारतीय फिल्म के लिए एक बड़ी ग्लोबल रिलीज होगी। ये भारत के सबसे महान महाकाव्य को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नमित मल्होत्रा की प्रोड्यूस और नितेश तिवारी की डायरेक्ट की गई रामायण दो हिस्सों में रिलीज होगी। पहला हिस्सा 6 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में आएगा और दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 में रिलीज होगा। सुपरस्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज का हिंदी टीजर आ गया है। ये 24 सितंबर को रिलीज होगी। दशहरा की सुपरहिट तिकड़ी नानी डायरेक्टर श्रीकांत उड़ेला और प्रोड्यूसर सुधाकर चेरुकुरी द पैराडाइज के लिए फिर से साथ आ रहे हैं। इसका म्यूजिक अनिरुद्ध ने दिया है, इसे ईशान सक्सेना ने प्रोड्यूस किया है। द पैराडाइज इसी साल गुरुवार 24 सितंबर को कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
5: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखे श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। मॉनसून की रिमझिम बरसात के बीच पूरी आस्था और उल्लास के साथ जारी है बद्रीनाथ धाम की यात्रा, मुश्किल मौसम के बाद भी आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त।

0: न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में कमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: मोबाइल से दूर खेल के मैदान में बच्चों का अनोखा बैलेंस टेस्ट। सिर के बीच गेंद रखकर फिनिश लाइन पार करनी है, जहां संतुलन, धैर्य और टीम वर्क तीनों की परीक्षा हो रही है। किसी की गेंद गिर गई तो किसी ने आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन खास बात ये रही कि हार मानने के बजाय हर बच्चे ने दोबारा कोशिश की। खेल खेल में ये बच्चे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार प्रयास करते रहना।

हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है।

0: एक लाइन, लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल। एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है, वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छुपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि नन्हे बच्चों का कमाल का हुनर है। तीनों बच्चे जिस शानदार संतुलन के साथ खड़े हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बेहतरीन बैलेंस, मानो लंबे अभ्यास का नतीजा हो। वीडियो देखने वाले भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे। बच्चों ने साबित कर दिया कि लगन, अभ्यास और आत्मविश्वास हो तो छोटी उम्र भी बड़े हुनर की पहचान बन सकती है। खेल के साथ साथ योग भी, और वो भी पूरे उत्साह के साथ। स्कूल में बच्चे बिना किसी दबाव के गोले में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। खेल खेल में किया गया योग उनके शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलन सुधारता है और मन को एकाग्र रखने में मदद करता है। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुस्कुराते चेहरों के साथ योग करते ये बच्चे स्वस्थ और अनुशासित भविष्य की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं।
1: पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा पर लगे भारी जुर्माने की। ये जुर्माना युवाओं की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के एवज में लगा है। आपको बता दें कि अमेरिका में न्यू मैक्सिको की अदालत ने इंस्टाग्राम फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर दो चरणों में कुल $942 मिलियन यानी कि लगभग 9,030 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी कोर्ट ने कहा है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से युवाओं की मेंटल हेल्थ को बड़ा नुकसान पहुंचा है। जुर्माने की रकम में से $420 मिलियन यानी कि करीब 3,953 करोड़ रुपए युवाओं के इलाज पर खर्च होंगे। बाकी की रकम अगले 5 साल में अवेयरनेस, प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग सर्विस पर खर्च होगी। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर्स ने मेटा में बुनियादी बदलाव करने की मांग की है, जिनका मकसद लत लगाने वाले फीचर्स पर रोक लगाना, एज वेरिफिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाना और कड़ी निगरानी के जरिए बच्चों के यौन शोषण को रोकना था। ये मामला न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने दायर किया था। आरोप था कि मेटा के इंस्टाग्राम, फेसबुक बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और कंपनी ने जानबूझकर इन खतरों की अनदेखी की। जांच में सामने आया कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम बच्चों को ज्यादा समय तक जुड़े रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे उनमें लत लगने, डिप्रेशन और उनकी मेंटल हेल्थ को खतरा है। मामला सिर्फ मेंटल हेल्थ तक सीमित नहीं रहा, आरोप ये भी लगा कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बच्चों को फंसाने और यौन शोषण के लिए भी हो रहा था और कंपनी ने जानकारी होने के बावजूद उचित कदम नहीं उठाए। फिलहाल मेटा ने अमेरिकी अदालत के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वो इस जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी। मेटा कंपनी का तर्क है कि वे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सभी बैड एक्टर्स को रोकना मुश्किल है। साल 2023 में यूएस सर्जन जनरल ने चेतावनी दी थी कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खतरा बढ़ाता है, जबकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और नए कमेंट्स से डोपामिन रिलीज होता है, जो कि दिमाग में वही असर डालता है जैसा किसी आदत या फिर नशे में होता है। जाहिर है, मोबाइल पर स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद, पढ़ाई और फोकस पर असर पड़ता है। लंबे समय में इसका सीधा असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम से मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले नुकसान को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: मानना है कि बच्चों को सोशल मीडिया साइट्स पर एक एज के बाद आना चाहिए, करीब 15-16 साल के उम्र के बाद उनको सोशल मीडिया साइट्स का यूज करना चाहिए, और अगर इससे पहले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना या फिर ओवर टाइम स्पेंड करना वहां पर बच्चों की मेंटल हेल्थ, उनकी पढ़ाई और फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती है।
3: आजकल जैसे मैं देख रही हूँ, बहुत छोटी छोटी बच्चियां आइटम सॉन्ग्स पे डांस करती हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स, जो कि मुझे लगता है थोड़ा गलत है। हालांकि उनका अकाउंट उनके पेरेंट्स के अंडर हैंडल होता है, लेकिन फिर भी एक सर्टेन एज लिमिट होना चाहिए जब उन्हें सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस करवाया जाए। बिकॉज इसके चलते कई सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जल्दी होने लगते हैं, प्यूबर्टी जल्दी हिट करने लगती है, क्योंकि वो लोग बड़े लोगों के सॉन्ग्स पे, मेच्योर लोगों के सॉन्ग्स पे वैसे ही रेडी होके, वैसे ही क्लोथ्स पहन के वो डांस कर रहे हैं, तो उनमें प्यूबर्टी जल्दी हिट करने लगती है. दैट्स व्हाई उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्कूल लाइफ, ये सब खराब हो जाता है, और प्लस उनका बचपन भी उनसे छीन जाता है. तो आई रिक्वेस्ट कि ऐसा ना किया जाए, उनको बचपन उनका जीने दिया जाए टिल द एज, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता.
4: जहाँ तक सोशल मीडिया एप्स की बात है तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हर तरीके के एज ग्रुप के लिए डिजाइन किए गए हैं. जैसे कि ट्विटर इज नॉट फॉर किड्स, बट इंस्टाग्राम इज वेरी एक्सेसिबल अमंग किड्स. तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ना बहुत ज्यादा एकदम निष्फिक्र नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए. बिकॉज नाउ डेज व्हाट वी सी इज कि बच्चे हमेशा ही फोन पे रहते हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है अगर 2 मिनट उसका ध्यान थोड़ा सा हटाना है तो उसको फोन दे देते हैं, विच इज नॉट गुड आई गेस, क्योंकि वो क्या कॉन्टेंट देख रहा है डोंट नो. और जहां तक बात है कि मैंने कभी एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर थोड़ा सा डिप्रेस फील किया है वाई यूजिंग सोशल मीडिया, टू सो आई विल से नॉट एग्जैक्टली, बट समटाइम्स यू गेट वेरी बोर्ड ऑफ सोशल मीडिया, यू जस्ट स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग एंड गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, सो दैट मेक्स अस वेरी नर्वस. एंड ऑफकोर्स कंपेरिजन का भाव आता है, बिकॉज समझ लीजिए आप बहुत स्ट्रेस हैं एंड देन यू सी वन ऑफ योर फ्रेंड यू नो हैंगिंग आउट एंड हैविंग अ कॉफी एंड शेयरिंग अप विद फ्रेंड्स एंड यू जस्ट से दैट यू आर ऑल अलोन इन योर ओन रूम, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेक यू फील डिप्रेस. बट आई थिंक यंग जनरेशन से ज्यादा बच्चों को इससे दूर रखने की जरूरत.
5: सोशल मीडिया यंग जनरेशन के लिए थोड़ा सा तो डिप्रेसिंग है ही, क्योंकि हम जो फीड पे देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग अपनी अच्छी चीजें, अपनी अच्छी मेमोरीज शेयर करते हैं, बट हमको लगता है कि वी आर द वन हु इज नॉट लिविंग द लाइफ लाइक देम, तो थोड़ा डिप्रेसिंग है. ऑल्सो चिल्ड्रंस के लिए हम फोन को लॉक कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए भी वो सुटेबल नहीं है, बिकॉज आजकल जो कॉन्टेंट आ रहा है वो इतना सुटेबल नहीं है फॉर चिल्ड्रंस, फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ. तो उनको उनसे मतलब दूर रखना चाहिए, लॉक रखना चाहिए फोन को.
1: करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती. आज बात दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे डेनिम शो के आयोजन की करेंगे, जहां डेनिम ट्रेंड्स के साथ साथ एआई और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ा उद्योग को नई दिशा देने वाली मशीनें भी मौजूद हैं. इस डेनिम प्रदर्शनी में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से अधिक ब्रांड एक ही छत के नीचे जुटे हैं.
0: भारत मंडपम में डेनिम शो चल रहा है, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है. गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया के इस प्रदर्शनी में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड एक ही छत के नीचे अपने उत्पादों को लेकर जुटे हैं. इस खास प्रदर्शनी में गारमेंट मशीनरी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, नीटिंग और डेनिम सेक्टर की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है. इस एक्सपो में करीब 1200 प्रोडक्ट्स और 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान जेन जी और जेन अल्फा पर दिया जा रहा है.
6: काफी ब्रांड्स जेन जी और जेन अल्फा को लेके काफी फिट्स और बेसिकली फिट्स में खेल रहे हैं. अभी एक WGS ने प्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसमें जेन जी और जेन अल्फा को लेके उन्होंने किस तरह ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह जेन जी जेन अल्फा की रिक्वायरमेंट है, पैच वर्क, बैगी फिट्स, लूज जीन्स, उन सबको लेके कंफर्ट वेयर जो एक कैजुअल है, आजकल स्ट्रीट वेयर का बहुत ट्रेंड है जेन जी जेन अल्फा में, उनको ध्यान रखते हुए उन्होंने सारी अपनी लाइंस रेडी कर दी.
0: देश की युवा पीढ़ी और फैशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं. कंपनियों के मुताबिक अब युवाओं की पहली पसंद बैगी फिट, रिलैक्स्ड फिट, कार्गो स्टाइल, वाइड लेग और सस्टेनेबल डेनिम बन रही है. रिसाइकल्ड फैब्रिक और कम पानी में तैयार होने वाली डेनिम की मांग भी लगातार बढ़ रही है.
7: ये जो जीन्स है इसका स्टाइलिंग देख लीजिए, ये पूरा लूज फिट है, ये कम्फर्ट है, ये एक रिजिड है. तो इस तरीके के पैटर्न में इस तरह के जीन्स आजकल के जीन्स को बहुत पसंद है, और इस वजह से हमने एक सेल का साइकिल वापस रिवाइव होते देखा है होगा। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिस तरह से पूरा घूमता है, अब हम देख रहे हैं कि एक लूज फिट, उसमें अलग अलग फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर हो गया, ऑल क्लाइमा हो गया, यू नो, ये सब चीज़ें काफ़ी मार्केट में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं।
0: इस प्रदर्शनी का एक बड़ा आकर्षण AI वस्त्र है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसा समाधान है जिसमें कपड़े ट्राई करने के लिए आपको ट्रायल रूम जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मशीन आपकी सिर्फ एक फोटो क्लिक करती है और उसी तस्वीर पर कुछ ही सेकंड में सैकड़ों अलग अलग ड्रेस, रंग और डिजाइन वर्चुअली दिखा देती है। इससे ग्राहकों के लिए खरीदारी आसान हो जाती है और फैशन ब्रांड्स को भी अपने उत्पाद बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का विकल्प मिलता है।
8: डेनिम शो में एक बहुत ही शानदार चीज हमें मिली है। कहीं भी हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं कपड़ों में, तो उसे बार बार हम लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम पे अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार AI सॉल्यूशन लेकर आए हैं, AI वस्त्र इनका नाम है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने आपको खड़े होना है, ये आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आप डिज़ाइन चूज करते जाइए, आप पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है, वो कपड़ा कैसा लग रहा है, सब कुछ ये बताता चला।
0: टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब सस्टेनेबिलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में ऐसी आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया गया है जो कम पानी, कम बिजली और कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अधिक और बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन करने में सक्षम है। इन तकनीकों का उद्देश्य उत्पादन लागत कम करने के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी घटाना है।
9: आज की तारीख के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर गारमेंट एक्सपोर्ट हाउसेस और जितने भी वॉशिंग एरियाज हैं उसके अंदर उभर के आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जिसके लिए सबको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पिछले 5 साल में काफ़ी तरक्की करी है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी।
0: डेनिम के बदलते ट्रेंड, AI आधारित वर्चुअल ट्रायल और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी, ये संकेत दे रही है कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये इंडस्ट्री इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के दम पर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाएगी।
8: पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और जो चीज़ें हम उससे ले रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनें आज देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी हद तक ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
10: भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन ने स्पेस वॉक कर रचा इतिहास। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: अंतरिक्ष में भारतीय मूल के लोगों ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। इसके तहत भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS से बाहर निकलकर अपने जीवन का पहला ऐतिहासिक स्पेस वॉक किया। उन्होंने अपनी साथी जेसिका मीर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक किया। यह अनिल मेनन के करियर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। इस 6 घंटे 50 मिनट लंबे मुश्किल मिशन में इन दोनों ने मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन की बिजली प्रणाली को अपग्रेड करने का महत्वपूर्ण काम किया। इस स्पेस वॉक का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन के 3B पावर चैनल पर नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना था। ये काम भविष्य में लगाए जाने वाले नए सोलर पैनल की तैयारी के लिए किया गया। सबसे ऊंचाई वाले इलाके की हाई स्पीड रेल का ट्रायल शुरू हो गया है। इससे हार्बिन से यिचुन का सफर 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। यानी इस 318 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से रफ्तार में जोरदार इजाफा होगा। ये रेल चीन के सबसे ठंडे और बर्फीले इलाकों से होकर गुजरेगी। साथ ही इससे हार्बिन यिचुन की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस ट्रैक पर नई हाई स्पीड ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी।
10: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच की।
1: भारतीय जिमनास्ट अरिहा पंगवम ने भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: टेस्ट कप्तान शुभमन गिल श्रीलंका 11 के खिलाफ वार्म अप मैच में नहीं खेल रहे हैं। कल प्रैक्टिस के दौरान उनके दाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी। वार्म अप मैच में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं। भारत श्रीलंका पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल में खेला जाएगा। टीम मैनेजमेंट ने टेस्ट मैच को देखते हुए ही गिल को वार्म अप मैच में आराम देने का फैसला किया है। 3 दिन का ये वार्म अप मैच भारत के लिए काफी अहम है। टेस्ट की सीरीज से पहले खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों और स्पिन के अनुकूल ढलने का मौका मिलेगा। विमेंस एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कल टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी किया। T20 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट की शुरुआत 28 अगस्त को होगी। पहला मुकाबला थाईलैंड और हांगकांग के बीच होगा। भारत पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल है। ये विमेंस एशिया कप का 6th एडिशन होगा जिसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही होंगे। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में खेले गए ग्रैंड चेस टूर के सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। रैपिड राउंड के बाद प्रज्ञानानंदा पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थे। ब्लिट्ज के दूसरे अंतिम राउंड में उन्होंने उज्बेकिस्तान के जावोखिर सेंदारोव के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर एक राउंड बाकी रहते ही खिताब अपने नाम कर लिया। प्रज्ञानानंदा पूरे 5 दिन चले टूर्नामेंट में टॉप पर बने रहे। सिंदारोव ने आखिरी दिन तक उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारतीय ग्रैंडमास्टर ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। ब्लिट्ज के अंतिम 9 राउंड में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, 5 ड्रॉ खेले और सिर्फ 1 मैच गंवाया। अमेरिका में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के युवा एथलीट्स ने मिला जुला प्रदर्शन किया है। हालांकि 19 साल के मोहम्मद अशफाक ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 45.81 सेकंड का समय निकालते हुए अपना ही अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अशफाक ने 4th स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय जिमनास्ट अरिहा पंगवम फिलीपींस में हुई एरोबिक जिमनास्टिक एशियन चैंपियनशिप के सीनियर महिला पर्सनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अरिहा ने फाइनल में 19.100 का स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया और महाद्वीप के दूसरे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। अरिहा ने आर्टिस्ट्री के लिए 8.650, एग्जीक्यूशन के लिए 7.600 और डिफिकल्टी के लिए 2.850 अंक हासिल करके यह खिताब अपने नाम किया।
1: इसी के साथ न्यूज़पत में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
3: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: बीस साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खता, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री।
9: उत्तराखंड के युवक कमाल अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जारी। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की और यात्रा के अद्भुत रंग की। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी भीड़ हरिद्वार के रास्ते पर है, उतना ही जमघट देवघर के मार्ग पर अलग अलग अंदाज में कांवड़िए बोल बम का जय घोष करते जा रहे हैं। किसी ने शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का रूप धरा है, तो कोई यात्रा में शिव की सवारी नंदी को लेकर जा रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा के ऐसे ही कई रंग और कई तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही बात होगी बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर की भी। क्यों चमत्कारी माना जाता है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी, बताएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कांवड़ से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। 4 शिव भक्तों की ये टोली शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही है। 4 शिव भक्तों में 3 ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धरा है, जबकि एक ब्रिटिश काल के सिपाही की भूमिका में है, जो हाथ में रस्सी बांधकर शहीद आजम और उनके साथियों को ले जा रहा है। इस कांवड़ को देखकर लोग हैरान हैं और इन शिव भक्तों की खूब तारीफ हो रही है। इस टोली के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी तरह रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस नए अंदाज की कांवड़ के पीछे इनका मकसद लोगों को देशभक्ति का संदेश देना है। और चलिए अब आपको गंगा धाम से बाबा धाम तक की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। सावन का महीना, आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों शिव भक्तों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में इन दिनों देश भर से कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है, तो कोई मां तारा की प्रतिमा को कावड़ बनाकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
10: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रास्ते अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावा अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन विश्वास एक, आस्था एक और मंजिल भी एक, बाबा बैद्यनाथ का धाम। आस्था जब कदमों में उतरती है तो साधारण रास्ते भी पवित्र पथ बन जाते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का सबसे बड़ा उत्सव है। कंधों पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और मन में बाबा के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है। धूप हो या बारिश, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई देता है, हर हर महादेव बोल बम। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं।
11: तो भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए अपने कांवर के दोनों साइड में एक एक लोटा जल भरकर सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाबा धाम आकर बाबा का जलार्पण करते हैं। चूंकि भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल और तीन दल का बिलपत्र सबसे ज्यादा अति प्रिय है, तो जो भी लाके चढ़ाते हैं ये मनोकामना लिंग वैद्यनाथ है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बाबा वैद्यनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है।
10: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेल पत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। इसी आस्था के साथ भक्त सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
12: सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र से विष निकला था। उस विष को भगवान शंकर ने पी लिए थे, उसी से उनका कंठ नीला हो गया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और उस विष के कारण भगवान शंकर के कंठ में जो जलन होने लगी, तो श्रावण मास में गंगाजल चढ़ाने से, गंगाजल भगवान शंकर पीने से उनके जो कंठ में जलन है वो जलन शांत होता है। इसलिए भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। ताकि कोई भी चीज अगर जलन हो रही है उसमें जल पानी डालेंगे तो वो जलन को शांत करता है। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर में श्रावण महीने में कांवर चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
10: इस आस्था के सफर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी भक्ति हर किसी को प्रेरणा दे रही है। मधुबनी के रमेश डाक बम लेकर पिछले 2 वर्षों से आंखों पर पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु उन्हें रास्ता दिखाते हैं और रमेश बाबा की कृपा पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बाबा बैद्यनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है। उनका मानना है कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक हर सावन आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। जलाभिषेक के करीब 17 घंटे बाद ही वो आंखों से पट्टी हटाते हैं। भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भी आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता से आए 15 शिव भक्त करीब 80 किलो वजनी माँ तारा की प्रतिमा को कावड़ के रूप में लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। 4 श्रद्धालु मिलकर इस विशाल प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
13: इधर हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं।
14: इसमें सबको चला
13: ये हम लोग करीब 1 साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को। 2 बार तो अपने बाप को लेकर गए, इस बार अपने मम्मी को लेकर जा रहे हैं।
14: क्या बाबा से मन्नत?
13: कोई मन्नत नहीं है, बस हम लोग जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं।
10: ये लोग कई सालों से हर सावन सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर पहुँचते हैं। इससे पहले वो हनुमान जी और आदि योगी शिव की प्रतिमाओं के साथ भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार माँ तारा की प्रतिमा को विशेष रूप से कांवड़ का स्वरूप दिया गया है।
15: लास्ट ईयर हम लोग जैसे बजरंगबली लेकर गए थे, उसके लास्ट ईयर हम लोग आदि योगी लेकर गए थे, और दिस ईयर हम लोग माँ तारा लेकर जा रहे हैं।
14: वो आप कितने सालों से जा रहे हैं?
15: हम लोग इस ईयर से लेकर 5 ईयर्स हुआ।
14: क्या क्या इसमें सामग्री लगा बनाने में आए?
15: इसमें आपका जैसे कि बांस है, थर्मोकोल है, पेपर है, कलर है, कपड़ा है, यही सब।
10: वहीं दूसरी ओर मुंगेर के हेमजापुर निवासी सत्यपाल भगवान शिव का स्वरूप धारण कर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी है। वो विश्व शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश लेकर इस यात्रा पर चल रहे हैं।
16: 9 बजे निकला था पैदल यात्रा पे, और अभी सुल्तानगंज से जल बोझ के बाबा नगरिया में यहाँ तक आया हूँ।
14: बाबा का भीड़ भाड़ करके ही बाबा के दरबार?
16: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बार कुछ हटके है। सभी से समस्त संसार वासियों को समाज कल्याण है तो इस बार प्रश्न किए जाएंगे बाबा से।
17: खुशी है। बाबा के फेस में ही जाने का उद्देश्य क्या है?
16: शिवरात्रि के समय हमेशा शिव का गेटअप करता हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस था तो मेरा मन थोड़ा सा डोल गया इधर और मैं शिव जी का ही गेटअप लेके चल दिया।
17: ऐसा लग रहा है?
16: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
17: उससे काम उठा करके?
16: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
17: क्या कामना करते हैं बाबा?
16: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
17: अब तक पहुंचे?
16: ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाबा की जब मर्जी होगी तब पहुंचा लेंगे वो।
10: बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहते हैं। यही वजह है कि सावन में लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई रोजगार की कामना करता है, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है।
18: दानी लेक बैठा, हम सब भिखारी है। हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग में, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है। और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता शनि का यहाँ पे हृदय गया है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सब की मनोकामना पूरी करते हैं।
10: यह हर कदम एक प्रार्थना है, हर जयकारा एक विश्वास है और हर यात्रा महादेव को समर्पित है। क्योंकि जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, भक्त अपने आराध्य के धाम तक पहुंच ही जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: सावन में शिव भक्ति की एक और अद्भुत तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ धाम से सामने आई। यहां लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गरीबनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी ये खास रिपोर्ट।

का कोई नहीं उसे महादेव का सहारा है। दुखों से हार कर हर बार मन ने गरीब नाथ को पुकारा है। शिव के इस धाम का नाम इसके महत्व की पहचान है। वैसे तो अवघड़दानी सभी की सुनते हैं, पर सिर्फ यही इसी धाम पर उन्हें गरीबों का नाथ कहा जाता है। सौ साल से ये मंदिर बिहार में आस्था का ऐसा केंद्र है जहां सिर झुकाने रोज हजारों

0: no, tu na Siva Siva jata kata sambhramam bhramam nilimpa nirjal।
1: वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर सावन की रौनक ही कुछ और है। जिस तरह शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के धाम जल चढ़ाने जाते हैं, उसी तरह लाखों कांवड़िए पहलजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार और देवघर की तरह ये यात्रा देश की बड़ी कांवड़ यात्राओं में शुमार है।

0: बाबा गरीबनाथ धाम के प्रति भक्तों की आस्था कैसी है, इसे आंकड़ों से समझिए। पिछले साल सावन में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। अंदाजा है कि इस साल ये संख्या 25 लाख के पार जाएगी।
1: मंदिर में प्रतिदिन कई बार महाश्रृंगार भी होती है, महाश्रृंगार करने वाले पुरोहित हमारे साथ है। कितनी बार प्रतिदिन महाश्रृंगार होती है?
2: तीन बार महाश्रृंगार होता है
1: सालों भर। अच्छा, कितने प्रकार के फूल? काफी फूल और
2: फूल भांग फल जिससे बाबा की जिसकी इच्छा हो उसी से करवा लेते हैं। बाबा अपना श्रृंगार अपने खुद करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, कर लेते हैं।
0: मान्यता है कि जिसने भी मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ के आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे दुख दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिल गई।
3: मेरी शरीर अस्वस्थ होने लगी, गर्भ दशा में यह हुआ कि अब मेरा बिस्तर पकड़ लेंगे तो भगवान की नगरी में आ गए, और तब से बेल्ट लगा हुआ है, सर सफाई से लेकर के भगवान का पूजा उसमें सहयोग करना। हम
1: प्रतिदिन आते हैं
3: यहाँ रहे तब, यदि तीर्थाटन में रहे तो नहीं आते हैं।
1: तीर्थाटन स्वास्थ्य खराब हुई, इसके बाद आने लगे तो फिर स्वास्थ्य ठीक हो गए।
3: स्वास्थ्य ठीक है, अभी चल रहे हैं।
0: जैसा अद्भुत ये धाम है उतनी ही अद्भुत है इससे जुड़ी कथा। कहते हैं कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपना मकान बेचने का फैसला किया, लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि मकान की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। ऐसे में जब हताश निराश वो घर लौटे तो वहाँ जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब मुंशी समझ गए कि ये भोले नाथ की ही कृपा है। भाव विभोर होकर वो गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
4: अपने घर से चिल्लाते हुए, जैसे भाव विभोर लोग चिल्लाते हुए, गरीबों के नाथ गरीब नाथ, तब सनम के बाबा गरीब नाथ नाम पड़ गया।
0: एक गरीब मुंशी ने भावना में शिव को पुकारा और भोलेनाथ गरीब नाथ हो गए। पर उससे पहले भी यहाँ एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं यहाँ शहर नहीं घना जंगल था, जिसमें बरगद और पीपल के 7 पेड़ थे। सफाई के दौरान जब उनको काटने की कोशिश हुई तो बट वृक्ष से लाल रंग का द्रव निकला और कुल्हाड़ी रोक दी गई। अगले दिन जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर का ये बरगद उस चमत्कार का प्रमाण बनकर आज भी मौजूद है।
4: आसपास के जितने भी जिले हैं तो वही हैं, आसपास के जितने राज्य भी हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, और अभी जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: बाबा ने अपने गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी की थी, और ये भरोसा यही विश्वास इस मंदिर की ख्याति का आधार है। लोग सच्चे मन से सिर झुकाते हैं और खाली झोली भर के जाते हैं।
5: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
5: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ।
1: क्या ऐसा मन्नत मांगी थी बाबा से? क्या सरदार
5: बाबा से मन्नत तो मन ही मन माना जाता है, तो पब्लिकली कहने का चीज़।
1: पूरा हो गया?
5: पूरा नहीं हुआ तो आती कैसे हूँ, मन में शांति मिलती है।
1: अच्छा, मंदिर में आने से शांति मिलती
5: है, बहुत ज्यादा

0: लगता है।
1: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने 3300 स्वयं सेवकों की तैनाती की है, जबकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार की वजह से बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार की पहचान है, जिसे अब भव्य और दिव्य रूप दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के कायाकल्प को मंजूरी दे दी है। निर्माण और सौंदर्यकरण में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। मंदिर के शिखर और प्रवेश द्वार के नव निर्माण के साथ 2 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी जल्द ही देवघर ऑफ बिहार कहे जाने वाले इस मंदिर की शोभा और बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिवभक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिव सागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जा रहे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: फरीदकोट में सावन मेले पर निकाली गई महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने किए दर्शन। करीब 53 वर्षों पुरानी परंपरा के साथ निकाली गई भव्य झंडा शोभा यात्रा, देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने पेश की मनमोहक झांकियां। माता रानी की अति सुंदर और अलौकिक पालकी रही यात्रा का मुख्य आकर्षण, शोभा यात्रा में कई तरह की सुंदर झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक मलवई गिद्दा ने खींचा सबका ध्यान। फरीदकोट के ऐतिहासिक किला मुबारक चौक से हुआ महामाई की विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ, शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए वापस किला मुबारक पहुंची यात्रा। माता चिंतपूर्णी के दरबार खुद झंडा ले जाने में असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई इस यात्रा की शुरुआत। इसमें धार्मिक मंडलियों को सौंपे जाते हैं पवित्र झंडे, जो भव्य उन झंडों को शोभा यात्रा के साथ माता चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचाती। सावन के महीने में नजर आ रहे भक्ति आस्था के अनूठे रंग, पवित्र कांवड़ यात्रा में दिख रहा गजब का उत्साह, उज्जैन काशी हरिद्वार और देवघर में लगा भक्तों का तांता। भगवान भोलेनाथ की विशाल कांवड़ लेकर चल रहा है संभल के रहने वाले 126 कांवड़ियों का जत्था। 11 अगस्त को संभल के श्री कल्की धाम क्षेत्र में होगा भगवान शंकर का जलाभिषेक। बुलंदशहर के लिए भी कांवड़ लेकर निकला है शिव भक्तों का एक दल। शिव जी के साथ विराजमान है खाटू श्याम की प्रतिमा। इस कांवड़ दल में महिलाएं भी शामिल। भगवान विष्णु और गरुण के स्वरूप की कांवड़ लेकर निकले हैं कई कांवड़िए। भगवान भोलेनाथ के बम बम भोले के नारों से गूंज रहा पूरा यात्रा मार्ग। पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है बिजनौर। हर तरफ नजर आ रही है अलग अलग रूप और स्वरूप की कांवड़। हापुड़ में नजर आई कलयुग के श्रवण कुमार की अनोखी कांवड़। 95 साल की दादी को कांवड़ में बिठाकर पवित्र यात्रा पर निकले पोते। एक्सीडेंट के कारण खुद यात्रा करने में असमर्थ है दादी। यही वजह है कि सोनू और उनके भाई श्रवण कुमार की तरह उन्हें कंधे पर लाद कर ले गए हरिद्वार, करा रहे यात्रा। हरिद्वार से सिकंदराबाद लौट रहे सोनू और उनके भाई, दादी की इच्छा और पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना है इस यात्रा का मकसद। सहारनपुर में भोले को मनाने निकला अनोखा शिव भक्त। भगवान शिव की सवारी नंदी को स्वरूप बैल को ही बना डाला है कांवड़। 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में नंदी को कराया गंगा स्नान। मुजफ्फरनगर में शिव भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का दिखा रंग। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बने कांवड़ ने खींचा सबका ध्यान। ब्रिटिश सिपाही के साथ निकली देशभक्ति थीम वाली अनोखी कांवड़। हरिद्वार से दिल्ली तक क्रांतिकारियों को समर्पित कांवड़ यात्रा। शिवचौक पर देशभक्ति वाली कांवड़ देखने उमड़ी लोगों की भीड़। युवाओं में शहीदों की याद जगाने निकाली गई यह अनोखी कांवड़ यात्रा। रस्सियों में बंधे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव बने आकर्षण का केंद्र। 25 किलोमीटर रोज पैदल चलकर दिल्ली पहुंचाएंगे गंगा जल। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम महिलाओं की कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में गंगा जल लेकर निकली दो मुस्लिम महिलाएं कांवड़ यात्रा में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द के मिसाल। सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का दिखा अलग अंदाज। शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा में जुटे नजर आए मंत्री। कांवड़ शिविर पहुंचकर सबसे पहले शिव भक्तों का किया स्वागत। थके हुए कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर जाना उनका हालचाल। मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से श्रद्धालुओं को परोसा भोजन। सेवा भाव का दिया संदेश जीता कांवड़ियों का दिल। कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा सहारनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा। शिव भक्त की कांवड़ खुद अपने कंधों पर उठाकर उसे सुरक्षित उसके साथियों तक पहुंचाया। कांवड़ यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अस्वस्थ अवस्था में लेटे हुए शिवभक्त कांवड़िए पर पड़ी पुलिस की नजर, तुरंत उपलब्ध कराई प्राथमिक सहायता। कांवड़ यात्रा पर निकली है पिता और बेटी की जोड़ी। संगम नगरी से मध्य प्रदेश तक पूरा करेंगे सफर। पिछले 5 सालों से लगातार कांवड़ ला रहे हैं सोनू। 5 साल पहले भोलेनाथ से मांगी संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होने पर शुरू की पवित्र यात्रा की प्रथा। स्टील के घड़ों में करीब 80 लीटर गंगा जल के साथ कर रहे कांवड़ यात्रा। भविष्य में पावन यात्रा के लिए बेटे को भी कर रहे ट्रेन। कांवड़ मार्ग पर निरीक्षण के लिए खुद निकले डीएम। यात्रा की सुरक्षा और सुविधा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। कांवड़ियों से भी जिलाधिकारी ने की मुलाकात, लिया फीडबैक। श्रद्धालुओं को जाना हाल। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के बीच दिखानों का नजारा। एसएसपी संघ पत्नी और बच्चे भी कांवड़ियों की सेवा करते आए नजर। एसएसपी ने परिवार से श्रद्धालुओं का किया स्वागत। कांवड़ियों को केले, फ्रूटी, शुद्ध पेयजल और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की। चीता कांवड़ियों का दिल। इस दौरान एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी की बातचीत। श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखने के दिए निर्देश। बागपत में आस्था की राह पर नजर आया सुरक्षा का कवच। सुरक्षित कांवड़ मार्ग सुनिश्चित करने के लिए रात भर डटे रहे पुलिस अफसर। हाईवे पर तैनात पुलिस लगातार डाक कांवड़ियों की गतिविधियों पर रख रही नजर। आस्था की इस यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सतर्क। सावन के महीने में शिव भक्ति के रंग में रंगे नजर आए तेजस्वी सूर्या। हरिद्वार पहुंचकर शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर फूल बरसाकर किया उनका स्वागत। हर की पैड़ी पहुंचे तेजस्वी, गंगा में लगाई डुबकी। पवित्र स्नान के बाद विधि विधान से की मां गंगा की पूजा। कांवड़ में गंगा जल भरकर ऋषिकेश के लिए हुए रवाना। ऋषिकेश में भजन कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम में होंगे शामिल। 10 अगस्त को हरिद्वार की प्रसिद्ध हर की पैड़ी से कांवड़ लेकर रवाना होंगी उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर तक करेंगी यात्रा। करीब 22 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा के साथ करेंगे भगवान शंकर का जलाभिषेक। 2036 में भारत में ओलंपिक की मेजबानी मिलने की कमान के साथ करेंगी कांवड़ यात्रा। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। मॉनसून और सावन में धाम में दिख रहे भक्ति के अद्भुत रंग। यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक हर ओर दिखाई दे रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जय बद्री विशाल और हर हर महादेव के जय घोषों से भक्तिमय वातावरण में डूबा पूरा धाम। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। बड़ी संख्या में शिवभक्त कांवड़िए पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ धाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का 29वां जत्था चंद्रकोट से गुजरा। अब तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। देशभर में रक्षाबंधन की तैयारियां तेज। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखी, डाक से भेजने की तैयारी। द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक, सुरक्षा कारणों से रोकी गई यात्रा। खराब मौसम को कारण बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले उफंती नदी में बह गया था मोरखंडा नदी में बनाया गया लकड़ी का पुल। करनाल में सेना के जवानों ने बुलेट बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी सड़कें। डीएसपी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ यात्रा का आयोजन। इस यात्रा में 150 के करीब जवान हुए शामिल। साथ ही प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस यात्रा में लिया हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, सफदरजंग अस्पताल के बाहर से वाटर लॉगिंग। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से जलभराव। छतरपुर फार्म के पास से तस्वीर आई सामने। बारिश से दिल्ली का फतेहपुर बेरी इलाका जलमग्न, गलियों में भरा पानी। फतेहपुर बेरी की वाल्मीकि बस्ती बनी तालाब, सांकेतिक नाव बनी सहारा। दिल्ली में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के पास जलभराव, बदरपुर मेट्रो सबवे पानी में डूबा। दिल्ली में बारिश की वजह से वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, बारापुला फ्लाईओवर से तस्वीर आई सामने। दिल्ली के कापसहेड़ा में भी बारिश के कारण वाटर लॉगिंग, सड़कें हुई जलमग्न, वाहनों की रफ्तार रही धीमी। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली में सैनिक फार्म के पास का भरा पानी, वाहन चालकों को हुई परेशानी। दिल्ली के संगम विहार में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक भरा पानी। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर भीगी सड़कें। दिल्ली में भारी बारिश का असर मंडी हाउस पर, वाहनों की रफ्तार रही धीमी। भारी बारिश से राजधानी दिल्ली की थमी रफ्तार, आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में उखड़ा मोड़ पर वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक पर असर, जलभराव से जूझी राजधानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न, जाम और जल भराव से लोग प्रभावित। दिल्ली में भारी बारिश के बाद वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, आईटीओ पर ट्रैफिक रहा धीमा। लगातार बारिश से दिल्ली के गीता कॉलोनी में जलभराव, सड़कों और गलियों में भरा पानी, आवाजाही प्रभावित। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से लोहे के पुल पर वाटर लॉगिंग, सड़कें हुई जलमग्न। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली सचिवालय इलाके में बदला नजारा, तापमान में भी आई गिरावट। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बारिश के कारण जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। आज अमित राय की ओ माई डॉग सिनेमाघरों में हुई रिलीज, इस फिल्म में लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का जीरो भी सिनेमाघरों में दी दस्तक, इसमें हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सेगल, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार शामिल। आर माधवन की फिल्म जीडीएन रिलीज, जीडी नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रियामणि, जयराम और सत्यराज जैसे स्टार्स। सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज मैं वापस आऊंगा, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम दिलजीत, वेदांग रैना, शर्वरी वाघ और नसरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म। जिम शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी रिलीज, देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड ये सीरीज। चीन के युआनान में टॉर्च फेस्टिवल की धूम, पारंपरिक नृत्य और लोक संस्कृति का दिखा अद्भुत रंग। अलाव के चारों ओर थिरके लोग, ताइवानी सैलानी भी हुए शामिल, ये समुदाय ने मनाया टॉर्च फेस्टिवल। आग की पूजा और टॉर्च फेस्टिवल बने आकर्षण का केंद्र, अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की। चीन के सिचुआन में धूमधाम से मना टॉर्च फेस्टिवल, हजारों लोगों ने एक साथ मशाले जलाकर मनाया पारंपरिक उत्सव। गीत संगीत और लोक नृत्य के रंग में रंगा टॉर्च फेस्टिवल, पारंपरिक मशाल जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। 12 अगस्त को दुनिया देखेगी 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण, स्पेस, ग्रीनलैंड और आइसलैंड समेत कई देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कुछ मिनटों के लिए दिन में ही छा जाएगा अंधेरा, दिखेगा सूर्य का कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रोमांच, कई देशों में खास तैयारियां, सूर्य की बाहरी परत कोरोना होगी साफ दिखाई। पाथ ऑफ टोटैलिटी में दिखेगा सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य, चंद्रमा पूरी तरह ढकेगा सूर्य, बदलेगा बनेगा दुर्लभ नजारा। आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ लाइट जैसा अद्भुत नजारा, दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों में उत्साह। नासा के भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने रचा इतिहास, आईएसएस के बाहर एस्ट्रोनॉट जेसिका मीर के साथ किया अपना पहला स्पेस वॉक। अनिल मेनन ने करीब कुछ घंटे वहां पर स्पेस वॉक किया, जेसिका मीर के साथ। स्पेस स्टेशन में लगाया सोलर पैनल का फ्रेम, 30% बढ़ेगी बिजली सप्लाई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यूएस स्पेस वॉक 96 सफलतापूर्वक संपन्न, जेसिका मीर अपने करियर का छठा स्पेस वॉक कर रही थी। दोनों ने मिलकर आईएसएस की बिजली प्रणाली को किया अपग्रेड, अंतरिक्ष स्टेशन के 3B पावर चैनल पर नया हार्डवेयर किया इंस्टॉल। साल के अंत तक आईएसएस पर लगाए जाएंगे नए रोल आउट सोलर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लगाए जाने हैं कुल 8 नए सोलर पैनल। चीन के एक वाइल्ड लाइफ पार्क में श्रेणी नवजात बाघ के शावक की देखभाल करती दिखी, तीनों टाइगर शावक पूरी तरह बताए गए स्वस्थ।
5: श्रेणी ने दिखाया माँ जैसा प्यार, टाइगर श्रावक को किया दुलार, लोगों के लिए चर्चा का विषय बना ये अनोखा रिश्ता। पार्क में अफ्रीकी शेर और साइबेरियन बाघ पिछले 6 से 7 साल से रह रहे हैं साथ। बड़े होने पर टाइगर श्रावकों को भी इसी साझा बाड़े में रखा जाएगा। चीन के इनर मंगोलिया में 4 साल बाद फिर दिखे रेड क्राउन क्रेन पक्षी, एक जोड़े के साथ 2 बच्चे भी आए नजर। ऑर्किड नेशनल नेचर रिजर्व में दुर्लभ पक्षियों का देखा गया परिवार, इलाके में जैव विविधता लौटने के संकेत। 97 साल की ब्रिटिश महिला ने बनाया नया रिकॉर्ड, सबसे उम्रदराज महिला विंग वॉकर का रिकॉर्ड किया अपने नाम। संतानवे साल की उम्र में ब्रोमेज बेटी ने 6ठी बार विमान के पंखे पर खड़े होकर विंग वॉक किया। उन्होंने अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट के लिए फंड जुटाने के लिए किया हवाई करतब। बेटी ब्रोमेज ने 2025 में स्ट्रोक के बाद भी अपना हौसला कायम रखा। उन्होंने साबित किया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, जुनून हो तो कुछ भी संभव है। चीन के चोंकिंग में सड़कों पर मिस्ट कूलिंग फैन लगाए गए, फैन से निकल रही ठंडी हवा और पानी की फुहार से लोगों को गर्मी से मिल रही राहत। पैदल सड़क पर लगे इन फैन को देखने के लिए रुक रहे हैं लोग, कई लोगों ने ठंडी फुहार का आनंद लिया और तस्वीरें भी खींची।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई उस प्रेरणादायक तस्वीर की, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद का नया दरवाजा खोल रहा है। यहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि रहने, कोचिंग और लाइब्रेरी जैसी हर जरूरी सुविधा पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है।

0: बदायूं का ये छात्रवास छात्रों के सपनों को उड़ान देने के साथ साथ उनके सुनहरे भविष्य की बुनियाद बन गया है। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए ये लोधी छात्रवास किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ सभी छात्रों को बिना किसी शुल्क के कोचिंग के साथ साथ लाइब्रेरी और हॉस्टल की सुविधा भी दी जा रही है।
1: मेरे पीछे की ये इमारत आपको किसी बड़े शहर का कोई निजी कोचिंग संस्थान महसूस होता होगा, लेकिन यह है अवंतीबाई लोधी चैरिटेबल शिक्षा संस्थान। यहाँ पर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क सुविधा दी जा रही है। सुविधा भी ऐसी कि आपको देख के लगेगा कि ये किसी बड़े शहर का एक कोई महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट है।
0: इस छात्रावास की शुरुआत करीब 16 महीने पहले हुई थी। अब बदायूं और आसपास के करीब 15 जिलों के बच्चे इस छात्रावास का लाभ उठा रहे हैं। छात्रों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी इस छात्रावास में बेहतर करियर की आस लिए पहुंच रही हैं।
2: घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मेरे और मेरे भाइयों की पढ़ाई छूट गई। कहते हैं कि ये छात्रावास मेरे जैसे बच्चों के लिए तो एकदम वरदान ही सिद्ध हुआ है।
3: यहाँ पर सर एक दिवसीय एग्जाम से लेकर और पीसीएस लेवल तक की सिविल सर्विस तक की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है।
4: फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ठीक नहीं है उतनी, तो मतलब प्राइवेट लाइब्रेरी में अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं यहाँ आया तो यहाँ इतनी सुविधाएं मिल रही है, किसी को पैसे पे करके भी नहीं मिले।
0: यहाँ छात्रों को सिविल सर्विसेज के साथ साथ अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। छात्रावास की लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हजारों किताबें मौजूद हैं। छात्र परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म्स भी यहीं से भर सकते हैं। परीक्षाओं से पहले ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू भी यहीं कराया जाता है।
5: अवंतीबाई लोधी संस्थान खोलने का विचार, मैंने जिस तरह से बचपन से मैंने शिक्षा में संघर्ष किया और मैंने गरीबी भी देखी है और बदायूं की शिक्षा में क्या क्या बच्चों को झेलना पड़ता है मैंने देखा है, तब विचार किया कि एक इस प्रकार का संस्थान जो सर्व समाज के लिए रहे और निःशुल्क को चले और उसी को ध्यान में रख करके कि आने वाले समय में बच्चों को बहुत ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े और अच्छी सुविधाओं के साथ शिक्षा उनको बदायूं में मिले।
0: छात्रावास में किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही छात्रों को सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। पढ़ाई की सुविधा के साथ साथ करियर से जुड़ी गाइडेंस भी यहां मिल रही है। बदायूं और आसपास के इलाकों के छात्रों को ये छात्रावास सुनहरे भविष्य की राह दिखा रहा है। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
9: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब, एक राउंड बाकी रहते हैं अपने नाम की चैंपियनशिप। शिवभक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाएंगे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं आपके घर की। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि उनके घर में शुभता है, तो कई लोग ऐसे मानते हैं कि उनके घर में अशुभता है। अब पंडित जी से जानेंगे कि असल में क्या सच है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और संतान के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 8 अगस्त 2026 यानी शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:51 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं और क्या इनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है लोगों के।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं, और घर की शुभता अशुभता का प्रभाव क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभ तरंगे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और अगर मकान में अशुभता ज्यादा हो गई है, तो ऐसे अशुभ मकान में रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। और आपका मकान शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और मकान में थोड़ा ध्यान देने पर आपको मकान की अशुभता महसूस हो सकती है।
0: और चलिए आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं कि दिशाओं से कैसे मकान शुभ है या अशुभ ये जाना जा सकता है।
1: देखिए, कोई मकान शुभ है या अशुभ है उसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा। दिशाओं से, डायरेक्शन से कोई मकान शुभ या अशुभ किस तरीके से होता है? आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनकी अलग अलग शुभता होती है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि अलग अलग दिशाओं के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए, अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए, अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरण पर ध्यान दीजिए, और अगर दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन और गंदगी का विशेष ध्यान दें। यानी अलग अलग दिशा के मकान भी शुभ होते हैं, आपको उस दिशा के अनुसार काम करना होगा और उस दिशा के अनुसार आपको रहना होगा तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए वक्त हो चला है आज की आपके पहले सवाल का। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
1: जी, आज का पहला प्रश्न राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। 29 जनवरी 1976 का जन्म है, 10:50 सवेरे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं पहले व्यापार करता था और मेरा व्यापार 2024 में बंद हो गया, तब से मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं और मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरे जीवन में सुधार कब तक होगा? राजेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और धनु राशि की। आपकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से फरवरी 2027 तक आपको इंतजार करना होगा। फरवरी 2027 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। अगर आप दवाई का, खाने पीने की चीजों का या पानी का, ड्राई क्लीनिंग वगैरह का व्यापार करें तो इसमें आप सफल होंगे, उस दिशा में आपको विचार करना चाहिए। भविष्य में कर्जा भी उतार पाएंगे और जीवन को भी रास्ते पर ला पाएंगे। फरवरी 2027 के बाद ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, दूसरा सवाल आज का किसका रहने वाला है?
1: जी, अगला प्रश्न ध्रुव सैनी ने हमें लिखा है, हरिद्वार से लिखते हैं। 29 अगस्त 2005 का जन्म है। 11:35 प्रातः रुड़की हरिद्वार उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मैं अभी बीकॉम फाइनल कर रहा हूं, आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए बेहतर होगा। ध्रुव, आपको मैं सलाह दूंगा कि आप बीकॉम के बाद कंप्यूटर की कोई पढ़ाई करिए और साथ में ग्रेजुएशन के आधार पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2029 और 30 में आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश की कमी आपके घर में होती है तो किस तरह से अशुभता पैदा होती है।
1: सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में सूर्य का प्रकाश, जो घर में बहुत सारी शुभता पैदा करता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह अशुभता पैदा होती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में नहीं आता तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य बिगड़ने की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो शीशे की सहायता से या खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा के सुधार करिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए और रोज सुबह पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा।
0: इसी के साथ पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि घरों के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है।
1: देखिए, आपके घर की तरंगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है रंगों का। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? घर में अगर आप गलत रंग का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को खराब

0: घर में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा, लाल, गाढ़ा हरा रंग या काला रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्या देगा। और इसमें भी भूरा रंग अगर आप अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें तो जीवन दरिद्रता की तरफ जाएगा। घर में लाइट शेड के हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए और घर में जो छत है उसका रंग अगर हमेशा सफेद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग या क्रीम कलर का प्रयोग करना सबसे बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंडित जी से जान लेंगे कि घर के लोगों और घटनाओं से किस तरह से अशुभता पैदा हो सकती है।
0: देखिए, घर के जो लोग हैं और घर में घटने वाली जो घटनाएं हैं इनसे भी जीवन में अशुभता पैदा होती है। घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों या बुरी आदत के लोग हैं, घर में क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, नशा ये सब होता है तो घर अशुभ होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का

0: प्रयोग किया जाता हो, घर में गलत तरीके से अर्जित पैसा आता हो, तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। गलत और बुरे काम बिल्कुल मत करिए, वरना उसका प्रभाव आपके घर पर आएगा। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन ना कमाएं और एक महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करें तो घर की अशुभता कम होगी। और घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र या भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशि फल जानने का।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है। अगर आप भी पंडित जी तक अपना कोई प्रश्न पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, अपनी दुविधा पंडित जी के सामने रख सकते हैं, आपके जवाब जरूर मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, अगला प्रश्न संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 28 दिसंबर 1959 का जन्म है, 10 बजे रात को जन्म स्थान है हरदोई उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और मन में हमेशा डर या भय लगा रहता है। संजय जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपको डायबिटीज, किडनी, हड्डियों और नसों की समस्या का ध्यान देना होगा और आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक दिखाई दे रही हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादा बन रही है। आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें। रोज सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: और चलिए, वक्त हो चला है आज का चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेना चाहेंगे?
0: जी,

0: चंकी शर्मा ने हमें लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, 27 जून 1989 का जन्म है, 10:44 रात को कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चंकी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी साल 2027 के शुरुआती समय में दिख रही है, जनवरी 2027 से जून 2027 के बीच में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह जब भी करें, अगर एक बार कुंडली मिला लें, कुंडली मिला करके अगर विवाह करें तो परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 8 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से आपके बारे में जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, करियर वैसे तो ठीक चलेगा, लेकिन किसी तरह का रिस्क या जोखिम मत लीजिएगा। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बनेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि शंख बजाने का सबसे उचित समय कौन सा है। देखिए, शंख सुबह और शाम पूजा के बाद बजाना चाहिए। संध्या तक शंख बजा सकते हैं, रात के समय में शंख बजाना उचित नहीं होता।
1: तो जिज्ञासा के बारे में तो आपने जान लिया, अब जान लेते हैं कि 8 अगस्त 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। आपकी रोजगार से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 8 अगस्त शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जानने का कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का मंत्र जप करें जिससे उन्हें लाभ हो। आज की गुडलक राशि है कुंभ। आपके लिए चंद्रमा का मंत्र जपना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, रोज शाम को या रोज रात में अगर आप चंद्र ग्रह का मंत्र जपें तो उत्तम रहेगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपका संघर्ष कम होगा।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के अंत में आपके लिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आपका छोटा बच्चा है या घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या करेंगे? बच्चा जब भी नहाए उसके नहाने के पानी में गुलाब जल एक ढक्कन दो ढक्कन डालिएगा। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सवेरे पहनाइएगा और बच्चे की माता बच्चे के नाम से रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, छोटा बच्चा बार बार बीमार होता हो तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: कावड़ यात्रा की अद्भुत तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको अब लिए चलते हैं उस नगरी जहां पर सावन सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि हर सांस में महादेव का नाम बसता है। यह है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां सावन का हर दिन शिवमय है। हर गली में हर हर महादेव का जय घोष और हर भक्त की आंखों में अपने आराध्य के दर्शन की आस।
0: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज टुडे और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
7: हाँ जी बिल्कुल।
0: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
7: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है, तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर। रश बहुत चल रहा है
0: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई हैं आप?
7: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से आए हैं यहाँ पे, एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
0: सावन की वजह से देखिए भीड़ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
8: गोरखपुर से।
0: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
8: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
0: अभी लाइन में लगे। अभी लाइन। कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
8: अभी हम आधा घंटा हो गया।
0: आधा घंटा। आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
8: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
0: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे?
8: लगे हुए हैं। वहाँ भी दर्शन किए ना,
0: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
8: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
0: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
9: हम पुणे से आए हैं।
0: अच्छा,
9: हम कल से यहाँ आके।
0: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना?
9: हमारी बहुत सारी टोली,
0: सारी मैडम्स और सर्स दोनों सब लोग साथ हो जाएं। तो पहले सबसे पहले जय महाकाल।
10: जय महाकाल।
0: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
10: कर लिए।
0: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
11: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
11: हाँ पूरे हुए।
0: आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
9: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
0: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
11: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
11: कल ही,
0: कल ही शुरुआत की। तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
11: अभी इंदौर जा रहे हैं हम, ओंकारेश्वर।
12: ओंकारेश्वर जाएंगे।
0: मुझे ये बताइए कॉरिडोर आपने देखा, कैसा लगा कॉरिडोर?
12: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है।
0: बहुत इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
12: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
0: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
12: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
0: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
13: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा लगा।
13: हम देख रहे हैं, अभी आए इधर,
0: अभी देख रहे हैं आप। बताइए मैडम।
14: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
0: बहुत अच्छा लगा।
11: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
0: आपका अनुभव कैसा है?
15: बहुत बढ़िया रहा, हमें आप पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
0: तो कहाँ से आए आप?
16: हम धामनोद से आए हैं।
0: अच्छा, दर्शन हो गए
16: जी?
0: हाँ। कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
16: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
0: अच्छा।
16: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनोद चले गए।
0: अच्छा।
16: हाँ जी।
0: तो उसके बाद फिर सावन के दौरान?
16: हाँ जी। हाँ जी, ये मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ।
0: ये सेकंड टाइम? हाँ। कैसा लगा यहाँ?
16: बहुत अच्छा,
17: बहुत अच्छा लगा।
0: दर्शन हो गए,
18: शानदार।
0: क्या क्या सोच के आए थे, वो मन की मुराद सब पूरी हुई कि नहीं?
18: हमारी मनोकामना ये थी कि पहली बार जा रहे हैं और आरती में दर्शन हुए, तो पहली बार आए और आरती में दर्शन हुए।
0: आप भी कुछ बोलना चाहेंगी?
19: हाँ।
0: कहाँ से आई आप?
19: उत्तर प्रदेश।
0: उत्तर प्रदेश से। तो आपने दर्शन कर लिए?
19: हाँ।
0: आप आई कहाँ पे, ये कौन सी जगह पता आपको?
19: महाकाल कॉरिडोर।
0: वेरी गुड। और ये किसका मंदिर है?
19: शिव जी का।
0: तो देखिए यहाँ पर बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, आप जिधर
4: जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो, 24 घंटे, खासतौर पर अगर हम सावन की बात करें, 24 घंटे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैमरापर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा, उज्जैन, महाकाल से।
6: गुजरात के मोरबी जिले के वीरपड़ा गांव का एक कुआं इन दिनों लोगों के लिए सबसे बड़ा कौतूहल बना हुआ है। जैसे जैसे वीडियो फैल रहा है वैसे वैसे आसपास के गांव से लोग भी इस अनोखे नजारे को अपनी आंखों में देखने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
10: जरा इस कुएं को ध्यान से देखिए, न कोई पत्थर फेंका गया है, न तेज हवा चल रही है, फिर भी पानी की सतह पर लगातार लहरें उठ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुएं के अंदर कोई ताकत तेजी से पानी को हिला रही हो। गुजरात की मोरबी जिले के वीरपरड़ा गांव की तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर वायरल हैं, तब से लोगों की भीड़ मौके पर इस हिलते पानी को देखने के लिए उमड़ रही है। कुएं में डोलते इस पानी को लेकर जितने मुख उतनी बातें हैं। कोई इसे चमत्कार बता रहा है, कोई इस घटना को भूकंप आने का संकेत मान रहा है।
14: हमने गांव वालों ने 2 दिन पहले वहां पर बताया कि सदस्य जी ऐसे देखो तो इधर क्या चल रहा है, क्योंकि यहां पर अलग अलग गांव वाले सब लोगों देखने के लिए कि इकट्ठा इधर होते हैं। और हमने गांव वालों ने बताया कि 2 दिन पहले यहां से ज़्यादा पानी हिल रहा था और बीच में रुक गया, और अभी आज के दिन वो ज़्यादा हिलने लगा है, क्योंकि सबकी मान्यता अलग अलग होती है कि क्या ये भूत प्रेत का छाया है, क्या है क्या नहीं। इसलिए हमने यहां का जो तंत्र है ना उसको जानकारी दी है।
10: ऐसे में सवाल है कि कुएं में उठ रही इन लहरों के पीछे आखिर वजह क्या है और इन लहरों ने लोगों को क्यों हैरान किया हुआ है। फिलहाल तो तरह तरह की बातों का बाजार गर्म है।
4: ये कुएं का पानी जो हिल रहा है वो हमारे गांव में जाहिद भाई ने देखा था, तो उसने वीडियो बना के फिर गांव में सबको भेजा और फोन किया और मुझे भी बुलाया और गांव में मैंने सब लोगों को बोला, फिर इधर आए तो देखा तो देखते ही चकित हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले भी ऐसा ही हो रहा था और आज फिर से भी ऐसा ही होने लगा है, और तब से लेके आज तक अभी तक रुका ही नहीं, मेरे पीछे ही हुआ है आप देख सकते हो।
19: ऐसा आपने कभी पहले देखा हुआ?
4: नहीं, आज से पहले कभी नहीं देखा है।
19: कुछ लोग ऐसे कह रहे थे जो हवा तेज चल रही है उसकी वजह से ये हो रहा है, आपको लग रहा है?
4: नहीं नहीं, हवा की वजह से ये नहीं हो सकता है। देखो बगल में दूसरा भी कुआ है खेत में, उधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसके साथ ही वो कुआ भी बना है।
19: आज दोपहर को मैं 3 बजे जो मेरा काम था ना, इसलिए मैं दूसरे गांव जा रहा था, अजनाड़ी से मैं वापस आया तो 3:12 हुई थी, तब ये मैंने दृश्य देखा था, ये पानी का जो कुएं में जो हो रहा था
20: पानी, अब इधर से उधर हिल रहा है।
19: लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं?
20: हर बात तो कोई बोलता है कि भूकंप का आने वाला है, ऐसा बोलता है अपने अपने हिसाब से, बाकी तो क्या है तो वो तो विज्ञान वाला जान सके।
10: हालांकि कुएं में उठती लहरों को लेकर कोई गलत बात आगे न बढ़े और इसके पीछे का विज्ञान लोगों को समझ में आए, इसके लिए जिला प्रशासन और भू वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और शुरुआती जांच में ये बात साफ हो चुकी है कि इस घटना का भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद जमीन के नीचे मौजूद जल स्तर तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बारिश का पानी चट्टानों की परतों के बीच पहुंचा है और वहां फंसी हवा का दबाव इस पानी पर पड़ा है, यही हवा बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से कुएं के पानी में लगातार हलचल दिखाई दे रही है।
21: इस बारे में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से परामर्श किया था, तो यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी या फिर एक्टिव फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है। प्राइमरी ये लग रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उसकी वजह से जो रॉक में से पोर स्पेसिस आते हैं इसमें से एयर रिलीज होने की वजह से एक्टिविटी दिखने को मिल रही है, ये हैवी रेनफॉल में नॉर्मल है।
10: जाहिर है वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक भू वैज्ञानिक प्रक्रिया मान रहे हैं। गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने भी साफ किया है कि इस इलाके में न कोई भूकंप आया है और न ही कोई सक्रिय फॉल्ट लाइन मौजूद है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह आश्वस्त होने से पहले हर पहलू की जांच कराना चाहता है। गुजरात सरकार के निर्देश पर एक्सपर्ट की एक टीम अब इस कुएं का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी।
1: आज हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो जियोलॉजिस्ट की टीम है उनके द्वारा इस स्थल की विजिट की गई। उनके ध्यान पे ये आया है प्राथमिक कि वहाँ पे एयर जो है बिकॉज ऑफ रेन जो पिछले कुछ दिनों में बरसात हुई है उसके कारण कुछ एयर नीचे एक्विफर में ट्रैप हो गई है। जब उस एयर में मूवमेंट होता है तो उस कारण थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट ऊपर के सतह पे भी हमें देखने मिलता है। लोगों का ये डर है, लोगों की ये अफवाह है कि वहाँ शायद कोई सीज़मिक एक्टिविटी, ये भूकंप रिलेटेड कोई प्रश्न है, लेकिन इस बारे में हमने भूकंप जो जहाँ मेजर किया जाता है गुजरात का गांधीनगर में वहाँ भी पूछताछ की है और पिछले 5-10 दिन में कोई ऐसी सीज़मिक एक्टिविटी अनयूजुअल ध्यान पर नहीं आई है। इसका अर्थ यही है कि ये जो घटना बन रही है वो एक लोकल एरिया लोकल कोई ट्रैप होने के कारण बन रही है। इसके अलावा भी हमने गुजरात ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम को भी इन्फॉर्म किया है, आने वाले कुछ दिनों में वो भी विजिट करेंगे और हमें इस बारे में ज़्यादा स्पष्टता देंगे।
10: फिलहाल शुरुआती जांच में ये साफ है कि कुएं का हिलता डुलता ये पानी किसी चमत्कार या भूकंप का संकेत नहीं है बल्कि भारी बारिश के बाद भूजल में आए बदलाव का असर है। लेकिन इस रहस्यमय कुएं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रकृति के पास ऐसे कई राज हैं जो पहली नजर में चौंकाते जरूर हैं और इन्हें समझने के लिए ही हमें बार बार विज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सोचिए दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाए, आसमान में तारे टिमटिमाने लगे और कुछ पल के लिए ऐसा लगे जैसे कि रात ने दिन को अपनी आगोश में ले लिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। महज एक मिनट से भी कुछ ज्यादा समय के लिए बनने वाला ये दृश्य दुनिया भर के खगोल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं।

0: वो घड़ी नजदीक आ रही है जब दुनिया के बड़े हिस्से में एक बार फिर से लोग अंतरिक्ष में घटने जा रही अद्भुत खगोलीय घटना का दीदार करेंगे। कुछ वक्त के लिए दुनिया भर के खगोलविदों, वैज्ञानिकों और ज्योतिषविदों की निगाहें आसमान में होने जा रही उस अनोखी घटना को देखने के लिए ठहर जाएंगी। आज से ठीक 5 दिनों के बाद 12 अगस्त को इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तब वो अनोखा पल आएगा जब एक बार फिर से सूरज और धरती के बीच आ जाएगा चंद्रमा। तब सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेगा और धरती तक नहीं पहुंच सकेगी सूरज की रोशनी, तो धरती पर अंधेरा छा जाएगा। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल विश्व के कुछ ही भागों में देखा जा सकेगा, जबकि बाकी भागों में आंशिक सूर्य ग्रहण का दीदार किया जा सकेगा।
1: A total eclipse is an amazing event when the moon passes in between the sun and the earth and the moon casts a shadow. So if you're lucky to be right in that path, then you will see a very, very dark coin that is the moon covering the sun. A partial eclipse is when we are not located right in the center of that moon's shadow. So, for example, here in England, in August 2026, we will see a partial eclipse. So, we will still see part of the sun, but the moon will be covering a very good fraction of it.
0: बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 12 अगस्त को जिन इलाकों में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा, उनमें शामिल हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस का उत्तरी हिस्सा, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल का एक छोटा सा भाग, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड जैसे देशों में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अमेरिका के उत्तरी राज्यों और कनाडा के ज्यादातर भागों में भी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्से में आंशिक सूर्य ग्रहण का दीदार हो सकेगा, जबकि भारत और पूरे दक्षिण एशिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अधिकांश मध्य और दक्षिणी हिस्से और अंटार्कटिका में ये सूर्य ग्रहण बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। खगोल शास्त्रियों और जानकारों के अनुसार भले ही सूर्य का आकार और व्यास चंद्रमा के मुकाबले काफी बड़ा है, लेकिन चंद्रमा के धरती के करीब होने के कारण ऐसा लगता है जैसे उसने सूर्य को ढक लिया है। बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कई चरणों में संपन्न होता है। पहले चरण में पूर्ण सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से शुरू होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरना शुरू करता है। इससे सूर्य आंशिक तौर पर ढक जाता है और अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। बेलीज बेड्स वाले अगले चरण में चंद्रमा की आकृति के कारण सूर्य की किरणें चंद्रमा के किनारों पर पड़ती हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे मोती चमक रहे हों। इसके बाद डायमंड रिंग फेज आता है, जिसमें सूर्य की दिखाई देने वाली सतह का अंतिम चमकीला हिस्सा धुंधले सौर कोरोना के बगल में दिखाई देता है। ये चरण पूर्ण ग्रहण से ठीक पहले और पूर्ण ग्रहण समाप्त होने के बाद फिर से घटित होता है। जानकार कहते हैं कि इंसान के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से सीधे देखने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मामले में खास सावधानी बरतने की जरूरत है।
1: In the moments before the total solar eclipse, you should only wear solar eclipse approved sunglasses. And then, during the moment of the total eclipse, you can take them off, but then put them again. As the moon is moving away from the sun. And if you don't have solar eclipse approved sunglasses, then you can use, for example, a colander that you might have at home with holes, and then you can project the shadows on a white piece of paper, or you can actually drill holes on a sheet of paper and put that against the sun and look down on the floor and see the shadows. There are many different options.
0: इस बार लगने जा रहे साल के अंतिम सूर्य ग्रहण को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता बनी हुई है। स्पेन के एक छोटे से गांव में रहने वाले शौकिया एस्ट्रोनॉमर जोआकिन टेपियोलिस इसको लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि 1912 के बाद पहली बार इस इलाके में पूर्ण सूर्य ग्रहण का दीदार होगा। 67 साल के जोआकिन को अपने जीवन काल में घटने जा रही इस अनोखी खगोलीय घटना का बेसब्री से इंतजार है।
2: Mi ilusión sería que poder observar con la gente el eclipse y ayudar y tal. Pero me conozco y sé que si viene gente al observatorio, voy a estar más pendiente de que lo vean los demás y yo me lo voy a perder. Y ese día no me lo quiero perder. Y por eso ese día lo voy a ver en familia desde el observatorio.
0: Joaquín ne gaon mein apni vedshala banayi hai, jahan se wo durbin ke zariye 12 agast ko hone wale surya grahan ko dekhne ki taiyari kar rahe hain. Iske sath hi unka bachpan ka sapna saakar hone wala hai, jiski wo barson se pratiksha bhi kar rahe hain. Bureau report, Good News Today.
3: क्रोएशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी से राहत पाने के एक उपाय की यहाँ खूब चर्चा हो रही है, ये राहत है घुड़सवारी की। लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
4: घुड़सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बाल्कन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस नगर की जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वे, जिनसे काल भी भयभीत रहता है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है, श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विराजे हैं भगवान महाकालेश्वर और आज उन्हीं महाकाल की नगरी में पहुंचा है जीएनटी। आज दोपहर से जीएनटी पर हम आपको लगातार महाकाल की नगरी से खास पेशकश दिखा रहे हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी में जीएनटी के मंच पर धर्मगुरु, विचारक और कलाकार जुटे हैं। शिप्रा के किनारे शिव संस्कृति का मंथन चल रहा है। महादेव के नाम, रूप, आयाम कोई गाकर सुना रहा है, कोई चित्रों से बता रहा है। महाकाल की नगरी में आस्था का सावन बरस रहा है। इस सावन को फुहारों में भीगने आपको भी हम लिए चलेंगे उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी उन महाकाल की जिन्होंने अपने प्राकट्य के लिए शिप्रा के आंगन में बसे उज्जैन को चुना। आखिर उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल?

है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवादिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है।

0: शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्युलोक यानी इस संसार के स्वामी महाकाल ही हैं।
1: ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्युलोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखारविंद है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पर भगवान महाकाल का नियंत्रण है, इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है।
0: माना जाता है कि एक समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में एक वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। इस तरह बाबा महाकाल की नगरी हर युग में नारायण से जुड़ी रही।
1: उसको दुष्यंत उसका नाम था। उसका भगवान ने आत्मस्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे, जो जहाँ आज हम शिवलिंग देख रहे हैं, यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है, उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
0: अवंती में महाकाल की उत्पत्ति की कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार अवंती यानी उज्जैन नगरी में दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उसने ऋषियों और भक्तों पर अत्याचार किए तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार किया। चूंकि दूषण को लोग काल कहते थे, इसलिए उसके वध के बाद शिवजी को महाकाल कहा जाने लगा, यानी कालों के काल। दूषण वध के बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने महाकाल के नाम से ही उसी स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना भी स्वीकार किया। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसकी तांत्रिक और पौराणिक महत्ता अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मानी गई है। महाकालेश्वर के नाम में महा का अर्थ महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में रहता है उसके जीवन से मृत्यु और समय का भय समाप्त हो जाता है। महाकाल के रौद्र रूप से ये पता चलता है कि समय के चक्र में सब कुछ नश्वर है। शिवजी का ये रूप उनके रौद्र शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है।
2: महाकाल
0: आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है। हर रोज सूर्योदय से 90 मिनट पहले इस पवित्र भस्म से महाकाल का भस्म आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन मृत्यु चक्र का प्रतीक माना जाता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि शक्तिपीठ भी स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद हजारों भक्तों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी को राजसी अंदाज में शिप्रा नदी के घाट तक ले जाया जाता है।

वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजा अधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं।

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देवाधिदेव महादेव के जाने कितने नाम और कितने रूप हैं। उनके हर रूप के साथ उनका कोई ना कोई गुण जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सबसे अनछुए भी हैं। पर लोक जीवन में महादेव भोले भाले मस्त मौला देव के रूप में रचे बसे हैं। उनके भक्त भी उन्हीं की तरह मतवाले हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही मतवालों का मंच सजा। उज्जैन में जीएनटी की धर्म संसद में आज धर्म गुरुओं के साथ ही कई कलाकारों ने भक्ति रस बिखेरा। इन्हीं में शुमार थी मुस्कुरा के टोली। मुस्कुरा के हास्य कलाकारों का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश में बीते चार दशकों से हास्य और भक्ति रस में सराबोर नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब जीएनटी के मंच पर ये टोली उतरी तो सबको अपनी मस्ती के रंग में रंग दिया। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे उज्जैन से हमारी ये खास पेशकश।

0: देखिए परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के खिलखिला के क्या संदेश है, इसके पीछे आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुरा के, जी ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए,
0: हाँ,
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।

0: महाकाल के दरबार में आमतौर पर सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन का तो यूं समझिए कि हर दिन ही सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को रोज पहुंच रहे हैं। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन में शीश झुकाया था। माना जा रहा है कि इस साल सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। गुड न्यूज टुडे की टीम भी महाकाल के धाम पहुंची और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली।

0: करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से हैं यहाँ पे एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे? हाँ। कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
4: सुबह काल भैरव के संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
5: बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
5: कल ही
1: शुरुआत। तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
5: अभी इंदौर जा रहे हैं हम।
1: ओंकारेश्वर,
6: ओंकारेश्वर जाएंगे।
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं
3: कोऑर्डिनेटर हैं?
1: अच्छा, कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ हैं। क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
7: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है, पुणे से फ्रेंड सर्कल है और 7 फैमिली है। तो बावदन में हम लोग रहते हैं और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने 3 दिन की 4 दिन की यात्रा की है।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कॉरिडोर आपने देखा कैसा लगा? कॉरिडोर
8: बहुत ही सुंदर है। बहुत
1: इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
8: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
1: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या है?
8: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
1: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
5: बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं अभी आए इधर,
1: अभी देख रहे हैं आप बताइए मैडम?
5: बहुत अच्छा लगा। सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे। बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
1: आपका अनुभव कैसा है?
9: बहुत बढ़िया रहा, हम यहाँ पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
1: दर्शन हो गए, आइए। देखिए
7: एक बात,
1: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे नहीं तो। कहाँ से आए आप?
10: हम धामनुत से आए हैं।
1: अच्छा, दर्शन हो गए
10: जी।
1: कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
10: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे ही यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
1: अच्छा,
10: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनुत चले गए।
1: अच्छा,
10: हाँ जी।
1: बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो 24 घंटे, खास तौर पर अगर हम सावन की बात करें 24 घंटे भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैंपर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा उज्जैन महाकाल से।
0: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: क्रोएशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से राहत पाने के एक उपाय की यहाँ खूब चर्चा हो रही है। ये राहत है घुड़सवारी की, लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
12: सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है।

तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बाल्कन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।

0: postavilo se da ljudima baš zanimljivo.
1: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
11: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब, एक राउंड बाकी रहते हैं अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवक का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाते। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की और यात्रा के अद्भुत रंग की। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िये गंगा जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी भीड़ हरिद्वार के रास्ते पर है, उतना ही जमघट देवघर के मार्ग पर अलग अलग अंदाज में कांवड़िये बोल बम का जय घोष करते जा रहे हैं। किसी ने शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का रूप धरा है, तो कोई यात्रा में शिव की सवारी नंदी को लेकर जा रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा के ऐसे ही कई रंग और कई तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बात होगी बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर की भी। क्यों चमत्कारी माना जाता है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी, बताएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कांवड़ से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। 4 शिव भक्तों की ये टोली शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही है। 4 शिव भक्तों में 3 ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धरा है, जबकि एक ब्रिटिश काल के सिपाही की भूमिका में है, जो हाथ में रस्सी बांधकर शहीद आजम और उनके साथियों को ले जा रहा है। इस कावड़ को देखकर लोग हैरान हैं और इन शिव भक्तों की खूब तारीफ हो रही है। इस टोली के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी तरह रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस नए अंदाज की कावड़ के पीछे इनका मकसद लोगों को देशभक्ति का संदेश देना है। और चलिए अब आपको गंगा धाम से बाबा धाम तक की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। सावन का महीना, आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों शिव भक्तों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में इन दिनों देश भर से कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है तो कोई मां तारा की प्रतिमा को कावड़ बनाकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
8: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रास्ते अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावा अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन विश्वास एक, आस्था एक और मंजिल भी एक, बाबा बैद्यनाथ का धाम। आस्था जब कदमों में उतरती है तो साधारण रास्ते भी पवित्र पथ बन जाते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का सबसे बड़ा उत्सव है। कंधों पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और मन में बाबा के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है। धूप हो या बारिश, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई देता है, हर हर महादेव, बोल बम। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं।
12: तो भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए अपने कांवर के दोनों साइड में एक एक लोटा जल भरकर सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाबा धाम आकर बाबा का जल अर्पण करते हैं। क्योंकि भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल और तीन दल का बिलपत्र सबसे ज़्यादा अति प्रिय है, तो जो भी लाके चढ़ाते हैं ये मनोकामना लिंग बैद्यनाथ है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है।
8: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। इसी आस्था के साथ भक्त सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
13: सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र से विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने पी लिए थे, उसी से उनका कंठ नीला हो गया था, इससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा और उस विष के कारण भगवान शंकर के कंठ में जो जलन होने लगी, तो श्रावण मास में गंगाजल चढ़ाने से, गंगाजल भगवान शंकर पीने से उनके जो कंठ में जलन है वो जलन शांत होता है, इसलिए भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। ताकि कोई भी चीज अगर जलन हो रही है उसमें जल पानी डालेंगे वो जलन को शांत करता है। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर में श्रावण महीने में कांवर चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
8: इस आस्था के सफर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी भक्ति हर किसी को प्रेरणा दे रही है। मधुबनी के रमेश डाक बम लेकर पिछले 2 वर्षों से आंखों पर पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु उन्हें रास्ता दिखाते हैं और रमेश बाबा की कृपा पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बाबा बैद्यनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है। उनका मानना है कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक हर सावन आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। जलाभिषेक के करीब 17 घंटे बाद ही वो आंखों से पट्टी हटाते हैं। भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भी आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता से आए 15 शिव भक्त करीब 80 किलो वजनी माँ तारा की प्रतिमा को कावड़ के रूप में लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। 4 श्रद्धालु मिलकर इस विशाल प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
14: इधर हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। इसमें सबको चला ये हम लोग करीब 1 साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को। 2 बार तो अपने बाप को लेकर गए, इस बार अपने मम्मी को लेकर जा रहे हैं।
15: क्या बाबा से मन्नत?
14: कोई मन्नत नहीं है, बस हम लोग जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं।
8: ये लोग कई सालों से हर सावन सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर पहुँचते हैं। इससे पहले वो हनुमान जी और आदि योगी शिव की प्रतिमाओं के साथ भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार माँ तारा की प्रतिमा को विशेष रूप से कांवड़ का स्वरूप दिया गया है।
16: लास्ट ईयर हम लोग जैसे बजरंगबली लेकर गए थे उसके लास्ट ईयर हम लोग आदि योगी लेकर गए थे और दिस ईयर हम लोग माँ तारा लेकर जा रहे हैं।
15: वो आप कितने सालों से जा रहे हैं?
16: हम लोग इस ईयर लेकर 5 ईयर्स हुआ।
15: क्या क्या इसमें सामग्री लगा बनाने में आए?
16: इसमें आपका जैसे कि बांस है, थर्मोकोल है, पेपर है, कलर है, कपड़ा है, यही सब।
8: वहीं दूसरी ओर मुंगेर के हेंजापुर निवासी सत्यपाल भगवान शिव का स्वरूप धारण कर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी है। वो विश्व शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश लेकर इस यात्रा पर चल रहे हैं।
17: 9 बजे निकला था पैदल यात्रा पे और अभी सुल्तानगंज से जल बोझ के बाबा नगरिया में यहाँ तक आया हूँ।
15: बाबा का फिर धार करके ही बाबा के दरबार?
17: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बार कुछ हटके है। सभी से समस्त संसार वासियों को समाज कल्याण है तो इस बार प्रश्न किए जाएंगे बाबा से।
15: बाबा के पेश में ही जाने का उद्देश्य क्या?
17: शिवरात्रि के समय हमेशा शिव का गेटअप करता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस था तो मेरा मन थोड़ा सा डोल गया इधर और मैं शिव जी का ही गेटअप लेके चल दिया।
15: ऐसा लग रहा है?
17: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
15: उससे काम उठा करके?
17: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
15: क्या कामना करते हैं बाबा?
17: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
15: अब तक पहुँचे?
17: ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाबा की जब मर्जी होगी तब पहुँचा लेंगे वो।
8: बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहते हैं। यही वजह है कि सावन में लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार पहुँचते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई रोजगार की कामना करता है तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है।

0: से बैठना हम सब भिखारी है। हमारे बाबा भैरवनाथ जो है ज्योतिर्लिंग में, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में हमारे बाबा भैरवनाथ जी प्रमुख है, जो कि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है। और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता शनि का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो भी मनोकामना लेके आते हैं वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है, कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा भैरवनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।
1: यहाँ हर कदम एक प्रार्थना है, हर जयकारा एक विश्वास है और हर यात्रा महादेव को समर्पित है, क्योंकि जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, भक्त अपने आराध्य के धाम तक पहुंच ही जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन का पावन महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हरिद्वार की राह पर कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या अब तक करोड़ों में पहुंच चुकी है। नए नए अंदाज में, नए तौर तरीकों के साथ शिव भक्त कांवड़ लिए गंगा घाट जा रहे हैं। किसी ने भगवान शिव का रूप धरा है तो कोई अपने साथ उनकी सवारी यानी कि नंदी लेकर जा रहा है। भीड़ बहुत है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंत्री से लेकर अफसर तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखिए,
3: कांधे पर कांवड़ और बोल बम का जयकारा लगाते हुए ये कांवड़िए शिव भक्ति में मग्न शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका मकसद है देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करना। भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इन शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को अनोखे रंग और आकार में ढाला है, जिसके चलते ये कांवड़ इन दिनों शहर शहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिजनौर और सहारनपुर से आई तस्वीरें शिव भक्ति के इन्हीं अनोखे रंगों को समेटे हुए हैं। इनमें किसी ने कांवड़ पर शिवलिंग स्थापित किया है, किसी ने खाटू श्याम बाबा को ही कांवड़ पर विराजमान कर दिया है और कोई कांधे पर भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। बिजनौर की तरह सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रियों का उत्साह और उमंग पूरे चरम पर है। हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर सहारनपुर से गुजर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हरियाणा के रहने वाले रोशनलाल सेवादार, जो भगवान शिव की सवारी को लेकर करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। लोगों के बीच रोशनलाल की ये अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
4: गंगा जल लेके जा रहे हैं, नदी लेके जा रहे हैं, मनोत्री को भी पहुँच जाएगी।
5: इस बार कावड़ में आप अपने साथ नंदी को भी दर्शन करा रहे हैं, कावड़ मार्ग का भी?
4: हाँ जी, हाँ जी, अभी दुनिया के ऐड लाना चाहते हैं भी, काम करो तो एक बार ही कर दो, तो मुड़ के बार बार ना करो। जो किसी ने परेशानी हो या आपको परेशानी हो भी, काम एक बार ही बहुत होता कर ऐसी कावड़ चको जाके दुखी ना हो, आप ना दुखी हो।
3: सावन में शिव भक्ति का एक रंग कावड़ यात्रियों की सेवा करना भी है, इसलिए कहीं इनके लिए खाने पीने के लंगर है, कहीं आराम करने के लिए शिविर बनाए गए हैं और कहीं कांवड़ियों का स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। सहारनपुर में तो इन दिनों न सिर्फ कांवड़ रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हो रहा है, बल्कि पुलिस के आला अफसर परिवार संग कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। उधर मेरठ के जिलाधिकारी बीके सिंह कांवड़ मार्ग पर लगे शिविरों में पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शिविर में रुके कांवड़ यात्रियों से बातचीत भी की। इसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों को दिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा के इस पुण्य काम में मंत्री भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहां योगी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों के शिविर में पहुंचे और वहां आराम कर रहे कांवड़ियों के पैरों की मालिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन भी कराया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना ही भगवान शिव की सेवा के समान है और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है।
6: जिला प्रशासन का, पुलिस कर्मियों का

0: सफाई कर्मियों का, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे अन्य ग्राम सभाओं की हों, उनका ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, जिनके परिवार होने के बाद 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटियां लगातार दे रही है, और कांवड़ सेवा शिविरों का, उन दानदाताओं का जिन्होंने भरपूर दान दे करके सबके भोजन की, रहने की, आवास की व्यवस्था की। लगातार बारिश हो रही है लेकिन वाटर प्रूफ टेंट लगाने का काम किया है। पानीपत से एक शिव प्रतिवर्ष आता है, 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, 150 लोगों के लेकर गया, मैं शिव में गया वहां छपार के अंदर, 150 सेवादार भोजन के लिए और 150 सेवादार सेवा करने के लिए, और ये एक उदाहरण है, बाकी समय इसी प्रकार से लोग लगे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर पूरा शिव में है, मुजफ्फरनगर प्रत्येक बालक, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, आप देख रहे हैं सब लोग कांवड़ियों की सेवा में पूरे तत्पर हैं।
1: श्रावण मास में चल रही ये कांवड़ यात्रा केवल शारीरिक श्रम या पदयात्रा नहीं है, बल्कि ये अटूट शिव भक्ति, कठोर संयम, आत्मशुद्धि और मानसिक दृढ़ता का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें कदम कदम पर शिव का स्मरण और आस्था की असली परीक्षा होती है। बिजनौर से संजीव शर्मा, सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन में शिव भक्ति की एक और अद्भुत तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ धाम से सामने आई। यहां लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गरीबनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी एक खास रिपोर्ट।

उसका कोई नहीं, उसे महादेव का सहारा है। दुखों से हार कर हर बार मन ने गरीब नाथ को पुकारा है। शिव के इस धाम का नाम इसके महत्व की पहचान है। वैसे तो अवघड़दानी सभी की सुनते हैं, पर सिर्फ यहीं इसी धाम पर उन्हें गरीबों का नाथ कहा जाता है। सौ साल से ये मंदिर बिहार में आस्था का ऐसा केंद्र है जहां सिर झुकाने रोज हजारों शिव भक्त आते हैं।

0: శివ జటాకటాహ సంభ్రమం భ్రమం నిలింప నిర్జల।
1: वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर सावन की रौनक ही कुछ और है। जिस तरह शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के धाम जल चढ़ाने जाते हैं, उसी तरह लाखों कांवड़िए पहलजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार और देवघर की तरह ये यात्रा देश की बड़ी कांवड़ यात्राओं में शुमार है।

0: बाबा गरीबनाथ धाम के प्रति भक्तों की आस्था कैसी है, इसे आंकड़ों से समझिए। पिछले साल सावन में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। अंदाजा है कि इस साल ये संख्या 25 लाख के पार जाएगी।
1: मंदिर में प्रतिदिन कई बार महाश्रृंगार भी होती है, महाश्रृंगार करने वाले पुरोहित हमारे साथ है। कितनी बार प्रतिदिन महाश्रृंगार होती है?
2: तीन बार महाश्रृंगार होता है
1: सालों भर। अच्छा, कितने प्रकार के फूल? काफी फूल और
2: फूल, भांग, फल, जिससे बाबा की जिसकी इच्छा हो उसी से करवा लेते हैं। बाबा अपना श्रृंगार अपने खुद करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, कर लेते हैं।
0: मान्यता है कि जिसने भी मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ के आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे दुख, दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिल गई।
3: मेरी शरीर अस्वस्थ होने लगी, गर्भ दशा में ये हुआ कि अब मेरा बिस्तर पकड़ लेंगे तो भगवान की नगरी में आ गए, और तब से बेल्ट लगा हुआ है, सर सफाई से लेकर के भगवान का पूजा, उसमें सहयोग करना। हम
1: प्रतिदिन आते हैं
3: यहाँ रहे तब, यदि तीर्थाटन में रहे तो नहीं आते हैं। यहाँ तीर्थाटन
1: खराब हुई, इसके बाद आने लगे तो फिर स्वास्थ्य ठीक हो गई।
3: स्वास्थ्य ठीक है, अभी चल रहे हैं।
0: जैसा अद्भुत ये धाम है, उतनी ही अद्भुत है इससे जुड़ी कथा। कहते हैं कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपना मकान बेचने का फैसला किया, लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि मकान की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। ऐसे में जब हताश निराश वो घर लौटे तो वहाँ जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब मुंशी समझ गए कि ये भोले नाथ की ही कृपा है। भाव विभोर होकर वो गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
4: अपने घर से चिल्लाते हुए, जैसे भाव विभोर लोग चिल्लाते हैं, गरीबों के नाथ गरीब नाथ, तब सनम के बाबा गरीब नाथ नाम पड़ गया।
0: एक गरीब मुंशी ने भावना में शिव को पुकारा और भोलेनाथ गरीब नाथ हो गए। पर उससे पहले भी यहाँ एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं यहाँ शहर नहीं, घना जंगल था, जिसमें बरगद और पीपल के 7 पेड़ थे। सफाई के दौरान जब उनको काटने की कोशिश हुई तो बट वृक्ष से लाल रंग का द्रव निकला और कुल्हाड़ी रोक दी गई। अगले दिन जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर का ये बरगद उस चमत्कार का प्रमाण बनकर आज भी मौजूद है।
4: आसपास के जितने भी जिले हैं तो हुई हैं, आसपास के जितने राज्य भी हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, और अभी जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: बाबा ने अपने गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी की थी, और ये भरोसा, यही विश्वास इस मंदिर की ख्याति का आधार है। लोग सच्चे मन से सिर झुकाते हैं और खाली झोली भर के जाते हैं।
5: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
5: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ।
1: क्या ऐसा मन्नत मांगी थी बाबा से? क्या सरदार
5: बाबा से मन्नत तो मन ही मन माना जाता है, तो पब्लिकली कहने का चीज़।
1: पूरा हो गया?
5: पूरा नहीं हुआ तो आती कैसे हूँ, मन में शांति मिलती है।
1: मंदिर में आने से शांति मिलती
5: है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने 3300 स्वयं सेवकों की तैनाती की है, जबकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार की वजह से बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार की पहचान है, जिसे अब भव्य और दिव्य रूप दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के कायाकल्प को मंजूरी दे दी है। निर्माण और सौंदर्यकरण में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। मंदिर के शिखर और प्रवेश द्वार के नव निर्माण के साथ 2 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी जल्द ही देवघर और बिहार कहे जाने वाले इस मंदिर की शोभा और बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
7: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सोच दिखाती तो कुछ दिखाती।
2: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जा रहे।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस नगर की जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वे, जिनसे काल भी भयभीत रहता है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है,

श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विराजे हैं भगवान महाकालेश्वर, और आज उन्हीं महाकाल की नगरी में पहुंचा है जीएनटी। आज दोपहर से जीएनटी पर हम आपको लगातार महाकाल की नगरी से खास पेशकश दिखा रहे हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी में जीएनटी के मंच पर धर्मगुरु, विचारक और कलाकार जुटे हैं। शिप्रा के किनारे शिव संस्कृति का मंथन चल रहा है। महादेव के नाम, रूप, आयाम कोई गाकर सुना रहा है, कोई चित्रों से बता रहा है। महाकाल की नगरी में आस्था का सावन बरस रहा है। इस सावन को फुहारों में भीगने आपको भी हम लिए चलेंगे उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी उन महाकाल की जिन्होंने अपने प्राकट्य के लिए शिप्रा के आंगन में बसे उज्जैन को चुना। आखिर उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल?

है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवादिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है।

0: शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्यु लोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्यु लोक यानी इस संसार के स्वामी महाकाल ही हैं।
1: ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्यु लोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखारविंद है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पर भगवान महाकाल का नियंत्रण है, इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है।
0: माना जाता है कि एक समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में एक वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। इस तरह बाबा महाकाल की नगरी हर युग में नारायण से जुड़ी रही।
1: उसको दुष्यंत

0: तो उसका नाम था, उसका भगवान ने आत्मस्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे, जो जहाँ आज हम शिवलिंग देख रहे हैं, यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है, उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
1: अवंती में महाकाल की उत्पत्ति की कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार अवंती यानी उज्जैन नगरी में दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उसने ऋषियों और भक्तों पर अत्याचार किए तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार किया। चूँकि दूषण को लोग काल कहते थे, इसलिए उसके वध के बाद शिव जी को महाकाल कहा जाने लगा, यानी कालों के काल। दूषण वध के बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने महाकाल के नाम से ही उसी स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना भी स्वीकार किया। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसकी तांत्रिक और पौराणिक महत्ता अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मानी गई है। महाकालेश्वर के नाम में महा का अर्थ महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में रहता है उसके जीवन से मृत्यु और समय का भय समाप्त हो जाता है। महाकाल के रौद्र रूप से ये पता चलता है कि समय के चक्र में सब कुछ नश्वर है। शिवजी का ये रूप उनके रौद्र शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाए।

शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे शमी पीपल पलाश बड़ अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है। हर रोज सूर्योदय से 90 मिनट पहले इस पवित्र भस्म से महाकाल का भस्म आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन मृत्यु चक्र का प्रतीक माना जाता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि शक्तिपीठ भी स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद हजारों भक्तों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी को राजसी अंदाज में शिप्रा नदी के घाट तक ले जाया जाता है।

वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजा अधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं।

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देवाधिदेव महादेव के जाने कितने नाम और कितने रूप हैं। उनके हर रूप के साथ उनका कोई ना कोई गुण जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सबसे अनछुए भी हैं। पर लोक जीवन में महादेव भोले भाले मस्त मौला देव के रूप में रचे बसे हैं। उनके भक्त भी उन्हीं की तरह मतवाले हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही मतवालों का मंच सजा। उज्जैन में जीएनटी की धर्म संसद में आज धर्म गुरुओं के साथ ही कई कलाकारों ने भक्ति रस बिखेरा। इन्हीं में शुमार थी मुस्कुरा के टोली। मुस्कुरा के हास्य कलाकारों का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश में बीते चार दशकों से हास्य और भक्ति रस में सराबोर नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब जीएनटी के मंच पर ये टोली उतरी तो सबको अपनी मस्ती के रंग में रंग दिया। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे उज्जैन से हमारी ये खास पेशकश।

0: देखिए परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के खिलखिला के क्या संदेश है, इसके पीछे आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए, हाँ, एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।

0: महाकाल के दरबार में आमतौर पर सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन का तो यूं समझिए कि हर दिन ही सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को रोज पहुंच रहे हैं। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन में शीश झुकाया था। माना जा रहा है कि इस साल सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। गुड न्यूज टुडे की टीम भी महाकाल के धाम पहुंची और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है, तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर। रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई हैं आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से आए हैं यहाँ पे एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए? हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे? हाँ, हाँ। अभी लाइन। कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा? आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे
3: लगे हुए हैं। वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
3: हो जाएंगे।

0: आएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
1: हम पुणे से आए हैं।
0: अच्छा,
1: हम कल से यहाँ आके।
0: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना?
1: हमारी बहुत सारी
0: मैडम्स और सर्स दोनों सब लोग साथ हो जाएं।

0: दर्शन आप लोगों ने कर लिए हैं?
1: कर लिए।
0: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
1: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
1: हाँ, पूरे हुए।
0: मैं ये जानना चाहूंगी, आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
2: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
0: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए, कैसा अनुभव है आपका?
1: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
1: कल ही
0: शुरुआत की। तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
1: अभी इंदौर जा रहे हैं हम,
3: ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर जाएंगे।
0: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं,
4: कोऑर्डिनेटर हैं?
0: अच्छा, कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ हैं। क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
5: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है, पुणे से फ्रेंड सर्कल है और सात फैमिली है, तो बावदन में हम लोग रहते हैं। और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने चार दिन की यात्रा की है।
0: अच्छा, मुझे ये बताइए, कॉरिडोर आपने देखा, कैसा लगा कॉरिडोर?
6: बहुत ही सुंदर है।
0: इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है, जवाब उधर से आ रहा है।
6: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
0: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
6: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम,
0: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
1: बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं, अभी आए इधर,
0: अभी देख रहे हैं आप बताइए मैडम।
1: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
0: बहुत अच्छा लगा।
1: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
0: आपका अनुभव कैसा है?
7: बहुत बढ़िया रहा, हम यहाँ पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
0: दर्शन हो गए, आइए देखिए।
5: हाँ, एक बात,
0: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे, नहीं तो कहाँ से आए आप?
8: हम धामनोद से आए हैं।
0: अच्छा, दर्शन हो गए
8: जी।
0: कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
8: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे ही यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
0: अच्छा,
8: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनोद चले गए।
0: अच्छा,
8: हाँ जी।
0: बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में, आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो, 2400 घंटे, खास तौर पर अगर हम सावन की बात करें, 2400 घंटे भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैंपसन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा, उज्जैन महाकाल से।
9: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे,
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: एशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से राहत पाने के एक उपाय की यहाँ खूब चर्चा हो रही है, ये राहत है घुड़सवारी की। लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
16: घुड़सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बाल्कन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है।

0: druženja s konjima, ali isto je super način da se malo raskladimo kad je ovako vruće, tako da, eto, nema, ja mislim da je ovo najbolji način ikad u mojem životu kak sam iskoristila ljetovanje.
1: पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।

0: ostavilo se da ljudima baš zanimljivo.
1: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
6: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खिताब, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी रहा सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की और यात्रा के अद्भुत रंग की। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी भीड़ हरिद्वार के रास्ते पर है, उतना ही जमघट देवघर के मार्ग पर अलग अलग अंदाज में कांवड़िए बोल बम का जय घोष करते जा रहे हैं। किसी ने शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का रूप धरा है, तो कोई यात्रा में शिव की सवारी नंदी को लेकर जा रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा के ऐसे ही कई रंग और कई तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बात होगी बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर की भी। क्यों चमत्कारी माना जाता है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी, बताएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कांवड़ से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। 4 शिव भक्तों की ये टोली शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही है। 4 शिव भक्तों में 3 ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धरा है, जबकि एक ब्रिटिश काल के सिपाही की भूमिका में है, जो हाथ में रस्सी बांधकर शहीद आजम और उनके साथियों को ले जा रहा है। इस कांवड़ को देखकर लोग हैरान हैं और इन शिव भक्तों की खूब तारीफ हो रही है। इस टोली के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं। और इसी तरह रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस नए अंदाज की कावड़ के पीछे इनका मकसद लोगों को देशभक्ति का संदेश देना है। और चलिए अब आपको गंगा धाम से बाबा धाम तक की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। सावन का महीना आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों शिव भक्तों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में इन दिनों देश भर से कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है तो कोई मां तारा की प्रतिमा को कावड़ बनाकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
7: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रास्ते अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावा अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन विश्वास एक, आस्था एक और मंजिल भी एक, बाबा बैद्यनाथ का धाम। आस्था जब कदमों में उतरती है तो साधारण रास्ते भी पवित्र पथ बन जाते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का सबसे बड़ा उत्सव है। कंधों पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और मन में बाबा के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है। धूप हो या बारिश, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई देता है, हर हर महादेव बोल बम। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं।
8: भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए अपने कांवर के दोनों साइड में एक एक लोटा जल भरकर सुल्तानगंज से अजगैवीनाथ धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाबा धाम आकर बाबा का जलार्पण करते हैं। चूंकि भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल और तीन दल का बिलपत्र सबसे ज्यादा अति प्रिय है, तो जो भी लाके चढ़ाते हैं ये मनोकामना लिंग बैद्यनाथ है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है।
7: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। इसी आस्था के साथ भक्त सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
9: सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र से विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने पी लिए थे, उसी से उनका कंठ नीला हो गया था, इससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा और उस विष के कारण भगवान शंकर के कंठ में जो जलन होने लगी, तो श्रावण मास में गंगाजल चढ़ाने से, गंगाजल भगवान शंकर पीने से उनके जो कंठ में जलन है वो जलन शांत होता है, इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। कोई भी चीज अगर जलन हो रही है उसमें जल पानी डालेंगे वो जलन को शांत करता है। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर में श्रावण महीने में कांवड़ चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
7: इस आस्था के सफर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी भक्ति हर किसी को प्रेरणा दे रही है। मधुबनी के रमेश डाक बम लेकर पिछले दो वर्षों से आंखों पर पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु उन्हें रास्ता दिखाते हैं और रमेश बाबा की कृपा पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बाबा बैद्यनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है। उनका मानना है कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक हर सावन आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। जलाभिषेक के करीब 17 घंटे बाद ही वो आंखों से पट्टी हटाते हैं। भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भी आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता से आए 15 शिव भक्त करीब 80 किलो वजनी माँ तारा की प्रतिमा को कावड़ के रूप में लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। 4 श्रद्धालु मिलकर इस विशाल प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
10: इधर हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। इसमें ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाद आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को। 2 बार तो अपने बाप को लेकर गए, इस बार अपने मम्मी को लेकर जा रहे हैं।
11: क्या बाबा से मन्नत?
10: कोई मन्नत नहीं है, बस हम लोग जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं।
7: ये लोग कई सालों से हर सावन सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर पहुँचते हैं। इससे पहले वो हनुमान जी और आदि योगी शिव की प्रतिमाओं के साथ भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार माँ तारा की प्रतिमा को विशेष रूप से कांवड़ का स्वरूप दिया गया है।
10: लास्ट ईयर हम लोग जैसे बजरंगबली लेकर गए थे, उसके लास्ट ईयर हम लोग आदि योगी लेकर गए थे, और दिस ईयर हम लोग माँ तारा लेकर जा रहे हैं।
11: वो आप कितने सालों से जा रहे हैं?
10: हम लोग इस ईयर लेकर 5 ईयर्स हुआ।
11: क्या क्या इसमें सामग्री लगा बनाने में आए?
10: इसमें आपका जैसे कि बांस है, थर्मोकोल है, पेपर है, कलर है, कपड़ा है, यही सब।
7: वहीं दूसरी ओर मुंगेर के हेमजापुर निवासी सत्यपाल भगवान शिव का स्वरूप धारण कर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी है। वो विश्व शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश लेकर इस यात्रा पर चल रहे हैं।
12: 9 बजे निकला था पैदल यात्रा पे और अभी सुल्तानगंज से जल बोझ के बाबा नगरिया में यहाँ तक आया हूँ।
11: बाबा का भीड़ भाड़ करके ही बाबा के दरबार?
12: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बार कुछ हटके है। सभी से समस्त संसार वासियों को समाज कल्याण है तो इस बार प्रश्न किए जाएंगे बाबा से।
11: बाबा के फेस में ही जाने का उद्देश्य क्या है?
12: शिवरात्रि के समय हमेशा शिव का गेटअप करता हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस था तो मेरा मन थोड़ा सा डोल गया इधर और मैं शिव जी का गेटअप लेके चल दिया।
11: ऐसा लग रहा है?
12: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
11: उससे कामना उठा करते?
12: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
11: क्या कामना करते हैं बाबा?
12: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे। ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाबा की जब मर्जी होगी तब पहुंचा लेंगे वो।
7: बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहते हैं। यही वजह है कि सावन में लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई रोजगार की कामना करता है, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है।
13: हम सब भिखारी हैं। हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग में, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख है, जो कि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है। और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गया है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अच्छा लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।
7: यहाँ हर कदम एक प्रार्थना है, हर जयकारा
14: एक विश्वास है और हर यात्रा महादेव को समर्पित है, क्योंकि जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, भक्त अपने आराध्य के धाम तक पहुंच ही जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सावन का पावन महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हरिद्वार की राह पर कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या अब तक करोड़ों में पहुंच चुकी है। नए नए अंदाज में, नए तौर तरीकों के साथ शिव भक्त कांवड़ लिए गंगा घाट जा रहे हैं। किसी ने भगवान शिव का रूप धरा है तो कोई अपने साथ उनकी सवारी यानी कि नंदी लेकर जा रहा है। भीड़ बहुत है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंत्री से लेकर अफसर तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखिए,
15: कंधे पर कांवड़ और बोल बम का जयकारा लगाते हुए ये कांवड़िए शिव भक्ति में मग्न शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका मकसद है देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करना। भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इन शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को अनोखे रंग और आकार में ढाला है, जिसके चलते ये कांवड़ इन दिनों शहर शहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिजनौर और सहारनपुर से आई तस्वीरें शिव भक्ति के इन्हीं अनोखे रंगों को समेटे हुए हैं। इनमें किसी ने कांवड़ पर शिवलिंग स्थापित किया है, किसी ने खाटू श्याम बाबा को ही कांवड़ पर विराजमान कर दिया है और कोई कांधे पर भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। बिजनौर की तरह सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रियों का उत्साह और उमंग पूरे चरम पर है। हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर सहारनपुर से गुजर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हरियाणा के रहने वाले रोशनलाल सेवादार, जो भगवान शिव की सवारी को लेकर करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। लोगों के बीच रोशनलाल की ये अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
16: गंगा जल लेके जा रहे हैं, नदी लेके जा रहे हैं, पहुँच जाएगी।
17: इस बार कावड़ में आप अपने साथ नंदी को भी दर्शन करा रहे हैं, कावड़ मार्ग का भी?
16: हाँ जी, लेके जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसी दुनिया दे विच ऐड लाना चाहते हैं भी काम करो तो एक बार ही कर दो, तो मुड़ के बार बार ना करो। जो किसी ने परेशानी हो आपको परेशानी हो भी काम एक बार ही बहुत हों कर भी ऐसी कावड़ चको जाके दुखी ना हो, आप ना दुखी हो।
15: सावन में शिव भक्ति का एक रंग कावड़ यात्रियों की सेवा करना भी है, इसलिए कहीं इनके लिए खाने पीने के लंगर है, कहीं आराम करने के लिए शिविर बनाए गए हैं और कहीं कांवड़ियों का स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। सहारनपुर में तो इन दिनों न सिर्फ कांवड़ रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हो रहा है, बल्कि पुलिस के आला अफसर परिवार संग कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। उधर मेरठ के जिलाधिकारी बीके सिंह कांवड़ मार्ग पर लगे शिविरों में पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शिविर में रुके कांवड़ यात्रियों से बातचीत भी की। इसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों को दिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा के इस पुण्य काम में मंत्री भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहां योगी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों के शिविर में पहुंचे और वहां आराम कर रहे कांवड़ियों के पैरों की मालिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन भी कराया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना ही भगवान शिव की सेवा के समान है और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है।
18: जिला प्रशासन का, पुलिस का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे अन्य ग्राम सभाओं के हों, उनका ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी जिनके परिवार होने के बाद 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटियां लगातार दे रही है, और कांवड़ सेवा शिविरों का, उन दानदाताओं का जिन्होंने भरपूर दान देकर के सबके भोजन की, रहने की, आवास की व्यवस्था की। लगातार बारिश हो रही है लेकिन वाटरप्रूफ टेंट लगाने का काम किया है। पानीपत से एक शिव प्रतिवर्ष आता है, 1 करोड़ रुपये खर्च करता है, 150 लोगों के लेकर गया। मैं शिव में गया वहाँ छपार के अंदर, 150 सेवादार भोजन के लिए और 150 सेवादार सेवा करने के लिए, और ये एक उदाहरण है, बाकी समय इसी प्रकार से लोग लगे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर पूरा शिव में है, मुजफ्फरनगर प्रत्येक बालक, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, आप देख रहे हैं सब लोग कावड़ियों की सेवा में पूरे तत्पर हैं।
15: श्रावण मास में चल रही ये कावड़ यात्रा केवल शारीरिक श्रम या पदयात्रा नहीं है, बल्कि ये अटूट शिव भक्ति, कठोर संयम, आत्मशुद्धि और मानसिक दृढ़ता का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें कदम कदम पर शिव का स्मरण और आस्था की असली परीक्षा होती है। बिजनौर से संजीव शर्मा, सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सावन में शिव भक्ति की एक और अद्भुत तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ धाम से सामने आई। यहां लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गरीबनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी ये खास रिपोर्ट।
14: जिसका कोई नहीं उसे महादेव का सहारा है। दुखों से हार कर हर बार मन ने गरीब नाथ को पुकारा है। शिव के इस धाम का नाम इसके महत्व की पहचान है। वैसे तो अवघड़दानी सभी की सुनते हैं, पर सिर्फ यहीं इसी धाम पर उन्हें गरीबों का नाथ कहा जाता है। दो सौ साल से ये मंदिर बिहार में आस्था का ऐसा केंद्र है जहां सिर झुकाने रोज हजारों शिव भक्त आते हैं।
19: भुजंग

वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर सावन की रौनक ही कुछ और है। जिस तरह शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के धाम जल चढ़ाने जाते हैं, उसी तरह लाखों कांवड़िए पहलजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार और देवघर की तरह ये यात्रा देश की बड़ी कांवड़ यात्राओं में शुमार है।

0: बाबा गरीबनाथ धाम के प्रति भक्तों की आस्था कैसी है, इसे आंकड़ों से समझिए। पिछले साल सावन में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। अंदाजा है कि इस साल ये संख्या 25 लाख के पार जाएगी।
1: मंदिर में प्रतिदिन कई बार महाश्रृंगार भी होती है, महाश्रृंगार करने वाले पुरोहित हमारे साथ है। कितनी बार प्रतिदिन महाश्रृंगार होती है?
2: तीन बार महाश्रृंगार होता है
1: सालों भर। अच्छा, कितने प्रकार के फूल? काफी फूल और
2: फूल भांग फल जिससे बाबा की जिसकी इच्छा हो उसी से करवा लेते हैं। बाबा अपना श्रृंगार अपने खुद करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, कर लेते हैं।
0: मान्यता है कि जिसने भी मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ के आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे दुख दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिल गई।
3: मेरी शरीर अस्वस्थ होने लगी, गड़ा दशा में ये हुआ कि अब मेरा बिस्तर पकड़ लेंगे तो भगवान की नगरी में आ गए। और तब से बेल्ट लगा हुआ है, सर सफाई से लेकर के भगवान का पूजा उसमें सहयोग करना। हम
1: प्रतिदिन आते हैं
3: यहाँ रहे तब, यदि तीर्थाटन में रहे तो नहीं आते हैं।
1: तीर्थाटन स्वास्थ्य खराब हुई, इसके बाद आने लगे तो फिर स्वास्थ्य ठीक हो गई।
3: स्वास्थ्य ठीक है, चल अभी चल रहे हैं।
0: जैसा अद्भुत ये धाम है उतनी ही अद्भुत है इससे जुड़ी कथा। कहते हैं कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपना मकान बेचने का फैसला किया, लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि मकान की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। ऐसे में जब हताश निराश वो घर लौटे तो वहाँ जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब मुंशी समझ गए कि ये भोले नाथ की ही कृपा है। भाव विभोर होकर वो गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
4: अपने घर से चिल्लाते हुए, जैसे भाव विभोर लोग चिल्लाते हैं, गरीबों के नाथ गरीब नाथ, तब सलाम के बाबा गरीब नाथ नाम पड़ गया।
0: एक गरीब मुंशी ने भावना में शिव को पुकारा और भोलेनाथ गरीब नाथ हो गए। पर उससे पहले भी यहाँ एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं यहाँ शहर नहीं घना जंगल था, जिसमें बरगद और पीपल के 7 पेड़ थे। सफाई के दौरान जब उनको काटने की कोशिश हुई तो बट वृक्ष से लाल रंग का द्रव निकला और कुल्हाड़ी रोक दी गई। अगले दिन जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर का ये बरगद उस चमत्कार का प्रमाण बनकर आज भी मौजूद है।
4: आसपास के जितने भी जिले हैं तो हुई हैं, आसपास के जितने राज्य भी हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। और अभी जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: बाबा ने अपने गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी की थी और ये भरोसा यही विश्वास इस मंदिर की ख्याति का आधार है। लोग सच्चे मन से सिर झुकाते हैं और खाली झोली भर के जाते हैं।
5: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
5: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ।
1: क्या ऐसा मन्नत मांगी थी बाबा से? क्या सरदार
5: बाबा से मन्नत तो मन ही मन माना जाता है, तो पब्लिकली कहने का चीज।
1: पूरा हो गया?
5: पूरा नहीं हुआ तो आती कैसे हूँ, मन में शांति मिलती है।
1: मंदिर में आने से शांति मिलती
5: है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने 3300 स्वयं सेवकों की तैनाती की है, जबकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार की वजह से बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार की पहचान है, जिसे अब भव्य और दिव्य रूप दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के कायाकल्प को मंजूरी दे दी है। निर्माण और सौंदर्यकरण में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। मंदिर के शिखर और प्रवेश द्वार के नव निर्माण के साथ 2 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी जल्द ही देवघर और बिहार कहे जाने वाले इस मंदिर की शोभा और बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
1: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज खता, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाएंगे।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस नगर की जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वे, जिनसे काल भी भयभीत रहता है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है, श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विराजे हैं भगवान महाकालेश्वर और आज उन्हीं महाकाल की नगरी में पहुंचा है जीएनटी। आज दोपहर से जीएनटी पर हम आपको लगातार महाकाल की नगरी से खास पेशकश दिखा रहे हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी में जीएनटी के मंच पर धर्मगुरु, विचारक और कलाकार जुटे हैं। शिप्रा के किनारे शिव संस्कृति का मंथन चल रहा है। महादेव के नाम, रूप, आयाम कोई गाकर सुना रहा है, कोई चित्रों से बता रहा है। महाकाल की नगरी में आस्था का सावन बरस रहा है। इस सावन को फुहारों में भीगने आपको भी हम लिए चलेंगे उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी उन महाकाल की जिन्होंने अपने प्राकट्य के लिए शिप्रा के आंगन में बसे उज्जैन को चुना। आखिर उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल?

है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवादिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है।

0: शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्यु लोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्यु लोक यानी इस संसार के स्वामी महाकाल ही हैं।
1: ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्यु लोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखारविंद है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पर भगवान महाकाल का नियंत्रण है, इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है।
0: माना जाता है कि एक समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में एक वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। इस तरह बाबा महाकाल की नगरी हर युग में नारायण से जुड़ी रही।
1: उसको दुष्यंत उसका नाम था। उसका भगवान ने आत्मस्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे, जो जहाँ आज हम शिवलिंग देख रहे हैं, यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है, उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता
0: है। अवंती में महाकाल की उत्पत्ति की कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार अवंती यानी उज्जैन नगरी में दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उसने ऋषियों और भक्तों पर अत्याचार किए तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार किया। चूंकि दूषण को लोग काल कहते थे, इसलिए उसके वध के बाद शिव जी को महाकाल कहा जाने लगा, यानी कालों के काल। दूषण वध के बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने महाकाल के नाम से ही उसी स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना भी स्वीकार किया। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसकी तांत्रिक और पौराणिक महत्ता अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मानी गई है। महाकालेश्वर के नाम में महा का अर्थ महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में रहता है उसके जीवन से मृत्यु और समय का भय समाप्त हो जाता है। महाकाल के रौद्र रूप से ये पता चलता है कि समय के चक्र में सब कुछ नश्वर है। शिवजी का ये रूप उनके रौद्र शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है।
2: महाकाल
0: आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है। हर रोज सूर्योदय से 90 मिनट पहले इस पवित्र भस्म से महाकाल का भस्म आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन मृत्यु चक्र का प्रतीक माना जाता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्ति पीठों में से एक हर सिद्धि शक्ति पीठ भी स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद हजारों भक्तों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी को राजसी अंदाज में शिप्रा नदी के घाट तक ले जाया जाता है।

वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजाधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं।

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देवाधिदेव महादेव के जाने कितने नाम और कितने रूप हैं। उनके हर रूप के साथ उनका कोई ना कोई गुण जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमय हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सबसे अनछुए भी हैं। पर लोक जीवन में महादेव भोले भाले मस्त मौला देव के रूप में रचे बसे हैं। उनके भक्त भी उन्हीं की तरह मतवाले हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही मतवालों का मंच सजा। उज्जैन में जेएनटी की धर्म संसद में आज धर्म गुरुओं के साथ ही कई कलाकारों ने भक्ति रस बिखेरा। इन्हीं में शुमार थी मुस्कुरा के टोली। मुस्कुरा के हास्य कलाकारों का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश में बीते चार दशकों से हास्य और भक्ति रस में सराबोर नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब जेएनटी के मंच पर ये टोली उतरी तो सबको अपनी मस्ती के रंग में रंग दिया। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे उज्जैन से हमारी ये खास पेशकश।

0: देखिए परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के खिलखिला के क्या संदेश है, इसके पीछे आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए, एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।

0: महाकाल के दरबार में आमतौर पर सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन का तो यूं समझिए कि हर दिन ही सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को रोज पहुंच रहे हैं। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन में शीश झुकाया था। माना जा रहा है कि इस साल सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। गुड न्यूज टुडे की टीम भी महाकाल के धाम पहुंची और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए, सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से हैं यहाँ पे एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए? हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे? कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा? आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे?
3: लगे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
3: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
1: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: हम पुणे से आए हैं।
1: अच्छा,
4: हम कल से यहाँ आके।
1: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना? सारी मैडम्स और सर दोनों सब लोग साथ हो जाएं।
5: श्रद्धालु
1: तो पहले, सबसे पहले जय महाकाल।
6: जय महाकाल।
1: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
7: कर लिए।
1: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
8: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
8: हाँ, पूरे हुए।
1: मैं ये जानना चाहूंगी, आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
4: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव होके संदीपनी आश्रम गए। संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
8: बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
8: कल।

0: ओमकारेश्वर फिर
1: ओमकारेश्वर जाएंगे
0: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं
2: कोऑर्डिनेटर है।
0: अच्छा कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ है, क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
3: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है पुणे से, फ्रेंड सर्कल है और सात फैमिली है, तो बावदन में हम लोग रहते हैं और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने चार दिन की यात्रा की है।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कॉरिडोर आपने देखा कैसा लगा? कॉरिडोर
4: बहुत ही सुंदर है।
0: इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
4: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
0: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
4: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
0: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
5: बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे हैं, अभी आए इधर,
0: अभी देख रहे हैं आप बताइए मैडम।
6: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
0: बहुत अच्छा लगा।
7: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
0: आपका अनुभव कैसा है?
8: बहुत बढ़िया रहा, हमें आप पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
0: दर्शन हो गए, आइए आइए देखिए।
3: एक बात,
0: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे, नहीं तो कहाँ से आए आप?
9: हम धामनोद से आए हैं।
0: अच्छा दर्शन हो गए
9: जी।
0: कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
9: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे ही यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
0: अच्छा,
9: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनोद चले गए।
0: अच्छा
9: हाँ जी,
0: बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो 2400 घंटे, खास तौर पर अगर हम सावन की बात करें 2400 घंटे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैंपर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा उज्जैन महाकाल से।
10: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: क्या इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से राहत पाने के एक उपाय की यहाँ खूब चर्चा हो रही है, ये राहत है घुड़सवारी की। लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
12: घुड़सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बालकन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।

0: postavilo se da ljudima baš zanimljivo.
1: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब, एक राउंड बाकी रहते हैं अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में जहाँ हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की और यात्रा के अद्भुत रंग की। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी भीड़ हरिद्वार के रास्ते पर है उतना ही जमघट देवघर के मार्ग पर, अलग अलग अंदाज में कांवड़िए बोल बम का जय घोष करते जा रहे हैं। किसी ने शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का रूप धरा है तो कोई यात्रा में शिव की सवारी नंदी को लेकर जा रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा के ऐसे ही कई रंग और कई तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बात होगी बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर की भी। क्यों चमत्कारी माना जाता है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी, बताएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कांवड़ से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। 4 शिव भक्तों की ये टोली शिव भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति की मिसाल पेश कर रही है। 4 शिव भक्तों में 3 ने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का रूप धरा है, जबकि एक ब्रिटिश काल के सिपाही की भूमिका में है जो हाथ में रस्सी बांधकर शहीद आजम और उनके साथियों को ले जा रहा है। इस कांवड़ को देखकर लोग हैरान हैं और इन शिव भक्तों की खूब तारीफ हो रही है। इस टोली के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी तरह रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस नए अंदाज की कांवड़ के पीछे इनका मकसद लोगों को देशभक्ति का संदेश देना है। और चलिए अब आपको गंगा धाम से बाबा धाम तक की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। सावन का महीना, आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों शिव भक्तों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में इन दिनों देश भर से कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है तो कोई मां तारा की प्रतिमा को कावड़ बनाकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
6: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रास्ते अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावा अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन विश्वास एक, आस्था एक और मंजिल भी एक, बाबा बैद्यनाथ का धाम। आस्था जब कदमों में उतरती है तो साधारण रास्ते भी पवित्र पथ बन जाते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का सबसे बड़ा उत्सव है। कंधों पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और मन में बाबा के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है। धूप हो या बारिश, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई देता है, हर हर महादेव बोल बम। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं।
7: तो भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए अपने कांवर के दोनों साइड में एक एक लोटा जल भरकर सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाबा धाम आकर बाबा का जलार्पण करते हैं। चूंकि भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल और तीन दल का बिलपत्र सबसे ज्यादा अति प्रिय है, तो जो भी लाके चढ़ाते हैं, ये मनोकामना लिंग बैद्यनाथ है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है।
6: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेल पत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। इसी आस्था के साथ भक्त सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
8: सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र से विष निकला था। विष को भगवान शंकर ने पी लिए थे, उसी से उनका कंठ नीला हो गया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और उस विष के कारण भगवान शंकर के कंठ में जो जलन होने लगी, तो सावन मास में गंगा जल चढ़ाने से, गंगा जल भगवान शंकर पीने से उनके जो कंठ में जलन है वो जन शांत होता है, इसलिए भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। कोई भी चीज अगर जलन हो रही है उसमें जल पानी डालेंगे वो जल को शांत करता है। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर में श्रावण महीने में कांवड़ चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
6: इस आस्था के सफर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी भक्ति हर किसी को प्रेरणा दे रही है। मधुबनी के रमेश डाक बम लेकर पिछले 2 वर्षों से आंखों पर पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु उन्हें रास्ता दिखाते हैं और रमेश बाबा की कृपा पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बाबा बैद्यनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है। उनका मानना है कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक हर सावन आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। जलाभिषेक के करीब 17 घंटे बाद ही वो आंखों से पट्टी हटाते हैं। भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भी आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता से आए 15 शिव भक्त करीब 80 किलो वजनी माँ तारा की प्रतिमा को कावड़ के रूप में लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। 4 श्रद्धालु मिलकर इस विशाल प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
9: इधर हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं।
10: इसमें स्वागत करा
9: ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को। 2 बार तो अपने बाप को लेकर गए, इस बार अपने मम्मी को लेकर जा रहे हैं।
10: क्या बाबा से मन्नत?
9: कोई मन्नत नहीं है, बस हम लोग जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं।
6: ये लोग कई सालों से हर सावन सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर पहुँचते हैं। इससे पहले वो हनुमान जी और आदि योगी शिव की प्रतिमाओं के साथ भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार माँ तारा की प्रतिमा को विशेष रूप से कांवड़ का स्वरूप दिया गया है।
11: लास्ट ईयर हम लोग जैसे बजरंगबली लेकर गए थे, उसके लास्ट ईयर हम लोग आदि योगी लेकर गए थे, और दिस ईयर हम लोग माँ तारा लेकर जा रहे हैं।
10: वो आप कितने सालों से जा रहे हैं?
11: हम लोग इस ईयर से लेकर 5 ईयर्स हुआ।
10: क्या क्या इसमें सामग्री लगा बनाने में आए?
11: इसमें आपका जैसे कि बांस है, थर्मोकोल है, पेपर है, कलर है, कपड़ा है, यही सब।
6: वहीं दूसरी ओर मुंगेर के हेमजापुर निवासी सत्यपाल भगवान शिव का स्वरूप धारण कर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी है। वो विश्व शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश लेकर इस यात्रा पर चल रहे हैं।
12: 9 बजे निकला था पैदल यात्रा पे, और अभी सुल्तानगंज से जल बोझ के बाबा नगरिया में यहाँ तक आया हूँ।
10: बाबा का भीड़ भाड़ करके ही बाबा के दरबार?
12: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बार कुछ हटके है। सभी से समस्त संसार वासियों को समाज कल्याण है तो इस बार प्रश्न किए जाएंगे बाबा से।
10: बाबा के पेट में ही जाने का उद्देश्य क्या?
12: शिवरात्रि के समय हमेशा शिव का गेटअप करता हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस था तो मेरा मन थोड़ा सा डोल गया इधर, और मैं शिव जी का ही गेटअप लेके चल दिया।
10: ऐसा लग रहा है?
12: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
10: उससे काम उठा करते?
12: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
10: क्या कामना करते हैं बाबा?
12: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
10: तक पहुंचे
12: ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाबा की जब मर्जी होगी तब पहुंचा लेंगे वो।
6: बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहते हैं। यही वजह है कि सावन में लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई रोजगार की कामना करता है, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है।
13: हम सब भिखारी हैं। हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग में, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख है, जो कि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है, और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सरलिंग का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है, कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ समूह की मनोकामना पूरी करते हैं।
6: यहाँ हर कदम एक प्रार्थना है, हर जयकारा एक विश्वास है, और हर यात्रा महादेव को समर्पित है, क्योंकि जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, भक्त अपने आराध्य के धाम तक पहुंच ही जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: सावन का पावन महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हरिद्वार की राह पर कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या अब तक करोड़ों में पहुंच चुकी है। नए नए अंदाज में, नए तौर तरीकों के साथ शिव भक्त कांवड़ लिए गंगा घाट जा रहे हैं। किसी ने भगवान शिव का रूप धरा है तो कोई अपने साथ उनकी सवारी यानी कि नंदी लेकर जा रहा है। भीड़ बहुत है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंत्री से लेकर अफसर तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखिए,
14: कांधे पर कांवड़ और बोल बम का जयकारा लगाते हुए ये कांवड़िये शिव भक्ति में मग्न शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका मकसद है देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करना। भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इन शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को अनोखे रंग और आकार में ढाला है, जिसके चलते ये कांवड़ इन दिनों शहर शहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिजनौर और सहारनपुर से आई तस्वीरें शिव भक्त के इन्हीं अनोखे रंगों को समेटे हुए हैं। इनमें किसी ने कांवड़ पर शिवलिंग स्थापित किया है, किसी ने खाटू श्याम बाबा को ही कांवड़ पर विराजमान कर दिया है और कोई कांधे पर भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। बिजनौर की तरह सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रियों का उत्साह और उमंग पूरे चरम पर है। हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िये गंगा जल लेकर सहारनपुर से गुजर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हरियाणा के रहने वाले रोशनलाल सेवादार, जो भगवान शिव की सवारी को लेकर करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। लोगों के बीच रोशनलाल की ये अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
15: गंगा जल लेके जा रहे हैं, आते नदी लेके जा रहे हैं, मनोत्री को भी पहुँच जाएगी।
16: इस बार कांवड़ में आप अपने साथ नंदी को भी दर्शन करा रहे हैं, कांवड़ मार्ग का भी?
15: हाँ जी, हाँ जी, अभी दुनिया के बीच ऐड लाना चाहते हैं भी, काम करो तो एक बार कर दो, तो मुड़ के बार बार ना करो। जो किसी को परेशानी हो या आपको परेशानी हो भी, काम एक बार ही बहुत होता करे, भी ऐसी कांवड़ चको जाके दुखी ना हो, आप ना दुखी हो।
14: सावन में शिव भक्ति का एक रंग कांवड़ यात्रियों की सेवा करना भी है, इसलिए कहीं इनके लिए खाने पीने के लंगर है, कहीं आराम करने के लिए शिविर बनाए गए हैं और कहीं कांवड़ियों का स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। सहारनपुर में तो इन दिनों न सिर्फ कांवड़ रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हो रहा है, बल्कि पुलिस के आला अफसर परिवार संग कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। उधर मेरठ के जिलाधिकारी बीके सिंह कांवड़ मार्ग पर लगे शिविरों में पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शिविर में रुके कांवड़ यात्रियों से बातचीत भी की। इसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों को दिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा के इस पुण्य काम में मंत्री भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहां योगी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों के शिविर में पहुंचे और वहां आराम कर रहे कांवड़ियों के पैरों की मालिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन भी कराया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना ही भगवान शिव की सेवा के समान है और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है।
17: मैं जिला प्रशासन का, पुलिस का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे अन्य ग्राम सभाओं के हों, उनका ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी, जिनके परिवार होने के बाद 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी लगातार दे रही है, और कांवड़ सेवा शिविरों का, उन दानदाताओं का जिन्होंने भरपूर दान देकर के सबके भोजन की, रहने की, आवास की व्यवस्था की। लगातार बारिश हो रही है लेकिन वाटर प्रूफ टेंट लगाने का काम किया है। पानीपत से एक शिविर प्रतिवर्ष आता है, 1 करोड़ रुपये खर्च करता है, 150 लोगों के लेकर गया। मैं शिविर में गया वहाँ छपार के अंदर, 150 सेवादार भोजन के लिए और 150 सेवादार सेवा करने के लिए, और ये एक उदाहरण है, बाकी समय इसी प्रकार से लोग लगे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर पूरा शिव में है, मुजफ्फरनगर प्रत्येक बालक, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, आप देख रहे हैं सब लोग कांवड़ियों की सेवा में पूरे तत्पर हैं।
14: श्रावण मास में चल रही ये कांवड़ यात्रा केवल शारीरिक श्रम या पद यात्रा नहीं है, बल्कि ये अटूट शिव भक्ति, कठोर संयम, आत्मशुद्धि और मानसिक दृढ़ता का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें कदम कदम पर शिव का स्मरण और आस्था की असली परीक्षा होती है। बिजनौर से संजीव शर्मा, सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: सावन में शिव भक्ति की एक और अद्भुत तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ धाम से सामने आई। यहां लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गरीबनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी ये खास रिपोर्ट।

का कोई नहीं उसे महादेव का सहारा है। दुखों से हार कर हर बार मन ने गरीब नाथ को पुकारा है। शिव के इस धाम का नाम इसके महत्व की पहचान है। वैसे तो अवघड़दानी सभी की सुनते हैं, पर सिर्फ यहीं इसी धाम पर उन्हें गरीबों का नाथ कहा जाता है। सौ साल से ये मंदिर बिहार में आस्था का ऐसा केंद्र है जहां सिर झुकाने रोज हजारों शिव भक्त आते हैं।

0: जटाकटा हसम भ्रमम भ्रमम निलिम्ब निर्जल।
1: वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर सावन की रौनक ही कुछ और है। जिस तरह शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के धाम जल चढ़ाने जाते हैं, उसी तरह लाखों कांवड़िए पहलजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार और देवघर की तरह ये यात्रा देश की बड़ी कांवड़ यात्राओं में शुमार है।

0: बाबा गरीबनाथ धाम के प्रति भक्तों की आस्था कैसी है, इसे आंकड़ों से समझिए। पिछले साल सावन में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। अंदाजा है कि इस साल ये संख्या 25 लाख के पार जाएगी।
1: मंदिर में प्रतिदिन कई बार महाश्रृंगार भी होती है, महाश्रृंगार करने वाले पुरोहित हमारे साथ है। कितनी बार प्रतिदिन महाश्रृंगार होती है?
2: तीन बार महाश्रृंगार होता है
1: सालों भर। अच्छा, कितने प्रकार के फूल? काफी फूल और
2: फूल भांग फल जिससे बाबा की जिसकी इच्छा हो उसी से करवा लेते हैं। बाबा अपना श्रृंगार अपने खुद करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, कर लेते हैं।
0: मान्यता है कि जिसने भी मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ के आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे दुख दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिल गई।
3: मेरी शरीर अस्वस्थ होने लगी, गढ़ दशा में ये हुआ कि अब मेरा बिस्तर पकड़ लेंगे तो भगवान की नगरी में आ गए, और तब से बेल्ट लगा हुआ है, सर सफाई से लेकर के भगवान का पूजा उसमें सहयोग करना। हम
1: प्रतिदिन आते हैं
3: यहाँ रहे तब, यदि तीर्थाटन में रहे तो नहीं आते हैं। यहाँ तीर्थाटन
1: खराब हुई, इसके बाद आने लगे तो फिर स्वास्थ्य ठीक हो गई।
3: स्वास्थ्य ठीक है, चल अभी चल रहे हैं।
0: जैसा अद्भुत ये धाम है, उतनी ही अद्भुत है इससे जुड़ी कथा। कहते हैं कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपना मकान बेचने का फैसला किया, लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि मकान की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। ऐसे में जब हताश निराश वो घर लौटे तो वहाँ जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब मुंशी समझ गए कि ये भोले नाथ की ही कृपा है। भाव विभोर होकर वो गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
4: अपने घर से चिल्लाते हुए, जैसे भाव विभोर लोग चिल्लाते हुए गरीबों के नाथ गरीब नाथ, तब सनम के बाबा गरीब नाथ नाम पड़ गया।
0: एक गरीब मुंशी ने भावना में शिव को पुकारा और भोले नाथ गरीब नाथ हो गए। पर उससे पहले भी यहाँ एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं यहाँ शहर नहीं घना जंगल था, जिसमें बरगद और पीपल के 7 पेड़ थे। सफाई के दौरान जब उनको काटने की कोशिश हुई तो बट वृक्ष से लाल रंग का द्रव निकला और कुल्हाड़ी रोक दी गई। अगले दिन जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर का ये बरगद उस चमत्कार का प्रमाण बनकर आज भी मौजूद है।
4: आसपास के जितने भी जिले हैं तो वही हैं, आसपास के जितने राज्य भी हैं वहाँ से भी लोग आते हैं, और अभी जैसी बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: बाबा ने अपने गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी की थी, और ये भरोसा यही विश्वास इस मंदिर की ख्याति का आधार है। लोग सच्चे मन से सिर झुकाते हैं और खाली झोली भर के जाते हैं।
5: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
5: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ।
1: क्या ऐसा मन्नत मांगी थी बाबा से, क्या सरदार
5: बाबा से मन्नत? तो मन ही मन माना जाता है, तो पब्लिकली कहने का चीज़।
1: पूरा हो गया?
5: पूरा नहीं हुआ तो आती कैसे हूँ, मन में शांति मिलती है।
1: मंदिर में आने से शांति
5: बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने 3300 स्वयं सेवकों की तैनाती की है, जबकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार की वजह से बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार की पहचान है, जिसे अब भव्य और दिव्य रूप दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के कायाकल्प को मंजूरी दे दी है। निर्माण और सौंदर्यकरण में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। मंदिर के शिखर और प्रवेश द्वार के नव निर्माण के साथ 2 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी जल्द ही देवघर ऑफ बिहार कहे जाने वाले इस मंदिर की शोभा और बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर।
9: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
7: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नब्बे।
9: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
16: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब। एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली। देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार। रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित। हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाएंगे।

श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस नगर की जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वे, जिनसे काल भी भयभीत रहता है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है, श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विराजे हैं भगवान महाकालेश्वर और आज उन्हीं महाकाल की नगरी में पहुंचा है जीएनटी। आज दोपहर से जीएनटी पर हम आपको लगातार महाकाल की नगरी से खास पेशकश दिखा रहे हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी में जीएनटी के मंच पर धर्मगुरु, विचारक और कलाकार जुटे हैं। शिप्रा के किनारे शिव संस्कृति का मंथन चल रहा है। महादेव के नाम, रूप, आयाम कोई गाकर सुना रहा है, कोई चित्रों से बता रहा है। महाकाल की नगरी में आस्था का सावन बरस रहा है। इस सावन को फुहारों में भीगने आपको भी हम लिए चलेंगे उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी उन महाकाल की जिन्होंने अपने प्राकट्य के लिए शिप्रा के आंगन में बसे उज्जैन को चुना। आखिर उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल?

है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवादिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है।

0: शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्यु लोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु लोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्यु लोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्यु लोक यानी इस संसार के स्वामी महाकाल ही हैं।
1: ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्यु लोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखारविंद है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पर भगवान महाकाल का नियंत्रण है, इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है।
0: माना जाता है कि एक समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में एक वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। इस तरह बाबा महाकाल की नगरी हर युग में नारायण से जुड़ी रही।
1: उसको दुष्यंत उसका नाम था। उसका भगवान ने आत्मस्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे, जो जहाँ आज हम शिवलिंग देख रहे हैं, यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है, उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
0: अवंती में महाकाल की उत्पत्ति की कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार अवंती यानी उज्जैन नगरी में दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उसने ऋषियों और भक्तों पर अत्याचार किए तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार किया। चूँकि दूषण को लोग काल कहते थे, इसलिए उसके वध के बाद शिवजी को महाकाल कहा जाने लगा, यानी कालों के काल। दूषण वध के बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने महाकाल के नाम से ही उसी स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना भी स्वीकार किया। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसकी तांत्रिक और पौराणिक महत्ता अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मानी गई है। महाकालेश्वर के नाम में महा का अर्थ महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में रहता है उसके जीवन से मृत्यु और समय का भय समाप्त हो जाता है। महाकाल के रौद्र रूप से ये पता चलता है कि समय के चक्र में सब कुछ नश्वर है। शिवजी का ये रूप उनके रौद्र शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है।
2: महाकाल
0: आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है।

शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे शमी पीपल पलाश बड़ अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है। हर रोज सूर्योदय से 90 मिनट पहले इस पवित्र भस्म से महाकाल का भस्म आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन मृत्यु चक्र का प्रतीक माना जाता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि शक्तिपीठ भी स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद हजारों भक्तों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी को राजसी अंदाज में शिप्रा नदी के घाट तक ले जाया जाता है।

वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजा अधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं।

0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देवाधिदेव महादेव के जाने कितने नाम और कितने रूप हैं। उनके हर रूप के साथ उनका कोई ना कोई गुण जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सबसे अनछुए भी हैं। पर लोक जीवन में महादेव भोले भाले मस्त मौला देव के रूप में रचे बसे हैं। उनके भक्त भी उन्हीं की तरह मतवाले हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही मतवालों का मंच सजा। उज्जैन में जेएनटी की धर्म संसद में आज धर्म गुरुओं के साथ ही कई कलाकारों ने भक्ति रस बिखेरा। इन्हीं में शुमार थी मुस्कुरा के टोली। मुस्कुरा के हास्य कलाकारों का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश में बीते चार दशकों से हास्य और भक्ति रस में सराबोर नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब जीएनटी के मंच पर ये टोली उतरी तो सबको अपनी मस्ती के रंग में रंग दिया। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे उज्जैन से हमारी ये खास पेशकश।

0: देखिए परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के खिलखिला के क्या संदेश है, इसके पीछे आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ।

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए,
0: हाँ
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।

0: महाकाल के दरबार में आमतौर पर सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन का तो यूं समझिए कि हर दिन ही सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को रोज पहुंच रहे हैं। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन में शीश झुकाया था। माना जा रहा है कि इस साल सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। गुड न्यूज टुडे की टीम भी महाकाल के धाम पहुंची और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से हैं यहाँ पे एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, अभी तो लाइन में लगे।
1: अभी लाइन में लगे? हाँ, हाँ। कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा? आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे?
3: लगे हुए वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
3: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
1: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: हम पुणे से आए हैं।
1: अच्छा,
4: हम कल से यहाँ आके।
1: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना? सारी मैडम्स और सर दोनों सब लोग साथ हो जाएं।
5: श्रद्धालु
1: तो पहले सबसे पहले जय महाकाल।
6: जय महाकाल।
1: दर्शन आप लोगों ने कर लिए?
7: कर लिए।
1: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
8: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
8: पूरे हुए।
1: मैं ये जानना चाहूंगी आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
4: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव के संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकालेश्वर।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
8: बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
8: कल ही।
1: कल ही शुरुआत की है। तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
8: अभी इंदौर ही जा रहे हैं हम। ओमकारेश्वर?
1: फिर
9: ओमकारेश्वर जाएंगे।
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं?
9: कोऑर्डिनेटर हैं।
1: अच्छा, कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ हैं। क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
10: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है, पुणे से फ्रेंड सर्कल है और 7 फैमिली है। तो बावदन में हम लोग रहते हैं और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने 3 दिन की 4 दिन की यात्रा की है।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कॉरिडोर आपने देखा कैसा लगा? कॉरिडोर
11: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है।
1: बहुत इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
11: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
1: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या?
11: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है,

0: बहुत सुंदर,
1: बहुत अच्छा लगा।
2: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे। बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
1: आपका अनुभव कैसा है?
3: बहुत बढ़िया रहा, हमें आप पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
1: दर्शन हो गए, आइए आइए देखिए।
4: एक बात,
1: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे, नहीं तो कहाँ से आए आप?
5: हम धामनुत से आए हैं।
1: अच्छा, दर्शन हो गए
5: जी।
1: हाँ, कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
5: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे ही यहाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
1: अच्छा,
5: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनुत चले गए।
1: अच्छा,
5: हाँ जी।
1: बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे महाकाल कॉरिडोर में आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो, 2400 घंटे, खास तौर पर अगर हम सावन की बात करें, 2400 घंटे भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैमरापर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा उज्जैन महाकाल से।
6: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
6: एशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से राहत पाने के एक उपाय की यहाँ खूब चर्चा हो रही है, ये राहत है घुड़सवारी की। लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
8: घुड़सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बाल्कन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।

0: ispostavilo se da ljudima baš zanimljivo.
1: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
2: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब, एक राउंड बाकी रहते ही अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की और यात्रा के अद्भुत रंग की। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी भीड़ हरिद्वार के रास्ते पर है, उतना ही जमघट देवघर के मार्ग पर अलग अलग अंदाज में कांवड़िए बोल बम का जय घोष करते जा रहे हैं। किसी ने शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का रूप धरा है, तो कोई यात्रा में शिव की सवारी नंदी को लेकर जा रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा के ऐसे ही कई रंग और कई तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बात होगी बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर की भी। क्यों चमत्कारी माना जाता है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी, बताएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कांवड़ से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। 4 शिव भक्तों की ये टोली शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही है। 4 शिव भक्तों में 3 ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धरा है, जबकि एक ब्रिटिश काल के सिपाही की भूमिका में है जो हाथ में रस्सी बांधकर शहीद आजम और उनके साथियों को ले जा रहा है। इस कांवड़ को देखकर लोग हैरान हैं और इन शिव भक्तों की खूब तारीफ हो रही है। इस टोली के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी तरह रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस नए अंदाज की कांवड़ के पीछे इनका मकसद लोगों को देशभक्ति का संदेश देना है। और चलिए अब आपको गंगा धाम से बाबा धाम तक की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। सावन का महीना, आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों शिव भक्तों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में इन दिनों देश भर से कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है तो कोई मां तारा की प्रतिमा को कांवड़ बनाकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
3: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रास्ते अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावा अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन विश्वास एक, आस्था एक और मंजिल भी एक, बाबा बैद्यनाथ का धाम। आस्था जब कदमों में उतरती है तो साधारण रास्ते भी पवित्र पथ बन जाते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का सबसे बड़ा उत्सव है। कंधों पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और मन में बाबा के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है। धूप हो या बारिश, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई देता है, हर हर महादेव, बोल बम। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं।
4: तो भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए अपने कांवर के दोनों साइड में एक एक लोटा जल भरकर सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाबा धाम आकर बाबा का जल अर्पण करते हैं। चूंकि भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल और तीन दल का बिलपत्र सबसे ज्यादा अति प्रिय है, तो जो भी लाके चढ़ाते हैं ये मनोकामना लिंग बैद्यनाथ है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है।
3: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। इसी आस्था के साथ भक्त सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
5: सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र से विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने पी लिए थे, उसी से उनका कंठ नीला हो गया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा और उस विष के कारण भगवान शंकर के कंठ में जो जलन होने लगी, तो श्रावण मास में गंगाजल चढ़ाने से, गंगाजल भगवान शंकर पीने से उनके जो कंठ में जलन है वो जलन शांत होता है, इसलिए भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। ताकि कोई भी चीज अगर जलन हो रही है उसमें जल पानी डालेंगे तो वो जलन को शांत करता है। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर में श्रावण महीने में कांवड़ चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
3: इस आस्था के सफर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी भक्ति हर किसी को प्रेरणा दे रही है। मधुबनी के रमेश डाक बम लेकर पिछले दो वर्षों से आंखों पर पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु उन्हें रास्ता दिखाते हैं और रमेश बाबा की कृपा पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बाबा बैद्यनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है। उनका मानना है कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक हर सावन आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। जलाभिषेक के करीब 17 घंटे बाद ही वो आंखों से पट्टी हटाते हैं। भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भी आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता से आए 15 शिव भक्त करीब 80 किलो वजनी माँ तारा की प्रतिमा को कावड़ के रूप में लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। चार श्रद्धालु मिलकर इस विशाल प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
6: इधर हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं।
7: इसमें सालों से
6: ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया, 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाद आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को। दो बार तो अपने बाप को लेकर गए, इस बार अपने मम्मी को लेकर जा रहे हैं।
7: क्या बाबा से मन्नत?
6: कोई मन्नत नहीं है, बस हम लोग जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं।
3: ये लोग कई सालों से हर सावन सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर पहुंचते हैं। इससे पहले वो हनुमान जी और आदि योगी शिव की प्रतिमाओं के साथ भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार माँ तारा की प्रतिमा को विशेष रूप से कांवड़ का स्वरूप दिया गया है।
6: लास्ट ईयर हम लोग जैसे बजरंगबली लेकर गए थे, उसके लास्ट ईयर हम लोग आदि योगी लेकर गए थे और दिस ईयर हम लोग माँ तारा लेकर जा रहे हैं।
8: तो आप कितने सालों से जा रहे हैं?
6: हम लोग इस ईयर लेकर 5 ईयर्स हुआ।
8: क्या क्या इसमें सामग्री लगा बनाने में आए?
6: इसमें आपका जैसे कि बांस है, थर्मोकोल है, पेपर है, कलर है, कपड़ा है, यही सब।
3: वहीं दूसरी ओर मुंगेर के हेमजापुर निवासी सत्यपाल भगवान शिव का स्वरूप धारण कर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी है। वो विश्व शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश लेकर इस यात्रा पर चल रहे हैं।
9: 9 बजे निकला था पैदल यात्रा पे और अभी सुल्तानगंज से जल बोझ के बाबा नगरिया में यहाँ तक आया हूँ।
10: बाबा का भीड़ भाड़ करके ही बाबा के दरबार?
9: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बार कुछ हटके है, सभी से समस्त संसार वासियों को समाज कल्याण है तो इस बार प्रश्न किए जाएंगे बाबा से।
10: बाबा के पेश में ही जाने का उद्देश्य क्या है?
9: शिवरात्रि के समय हमेशा शिव का गेटअप करता हूँ तो मुझे प्रैक्टिस था तो मेरा मन थोड़ा सा डोल गया इधर और मैं शिव जी का ही गेटअप लेके चल दिया।
10: ऐसा लग रहा है?
9: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
10: उससे कामना उठा करके?
9: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
10: क्या कामना करते हैं बाबा?
9: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे। ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाबा की जब मर्जी होगी तब पहुंचा लेंगे वो।
3: बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहते हैं। यही वजह है कि सावन में लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई रोजगार की कामना करता है तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है।
11: हम सब भिखारी हैं। हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग में, पूरे भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है। और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अच्छा लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है, कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।
3: यहाँ हर कदम एक प्रार्थना है, हर जयकारा एक विश्वास है और हर यात्रा महादेव को समर्पित है, क्योंकि जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, भक्त अपने आराध्य के धाम तक पहुंच ही जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन का पावन महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हरिद्वार की राह पर कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या अब तक करोड़ों में पहुंच चुकी है। नए नए अंदाज में, नए तौर तरीकों के साथ शिव भक्त कांवड़ लिए गंगा घाट जा रहे हैं। किसी ने भगवान शिव का रूप धरा है तो कोई अपने साथ उनकी सवारी यानी कि नंदी लेकर जा रहा है। भीड़ बहुत है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंत्री से लेकर अफसर तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखिए,
12: कांधे पर कांवड़ और बोल बम का जयकारा लगाते हुए ये कांवड़िये शिव भक्ति में मग्न शिव मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका मकसद है देवाधिदेव महादेव का जलाभिषेक करना। भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इन शिव भक्तों ने अपनी कांवड़ को अनोखे रंग और आकार में ढाला है। जिसके चलते ये कांवड़ इन दिनों शहर शहर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बिजनौर और सहारनपुर से आई तस्वीरें शिव भक्ति के इन्हीं अनोखे रंगों को समेटे हुए हैं। इनमें किसी ने कांवड़ पर शिवलिंग स्थापित किया है, किसी ने खाटू श्याम बाबा को ही कांवड़ पर विराजमान कर दिया है और कोई कांधे पर भोलेनाथ की मूर्ति को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है। बिजनौर की तरह सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रियों का उत्साह और उमंग पूरे चरम पर है। हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़िये गंगा जल लेकर सहारनपुर से गुजर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हरियाणा के रहने वाले रोशनलाल सेवादार, जो भगवान शिव की सवारी को लेकर करीब 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। लोगों के बीच रोशनलाल की ये अनोखी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
13: गंगा जल लेके जा रहे हैं, नदी लेके जा रहे हैं, मनोत्री कोसी पहुँच जाएगी।
14: इस बार कावड़ में आप अपने साथ नंदी को भी दर्शन करा रहे हैं, कावड़ मार्ग का भी?
13: हाँ जी लेके जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसी दुनिया दे विच ऐड लाना चाहते हैं भी काम करो तो एक बार ही कर दो, तो मुड़ के बार बार ना करो। जो किसी ने परेशानी हो या आपको परेशानी हो भी काम एक बार ही बहुत हों कर भी ऐसी कावड़ चको जाके दुखी ना हो, आप ना दुखी हो।
12: सावन में शिव भक्ति का एक रंग कावड़ यात्रियों की सेवा करना भी है, इसलिए कहीं इनके लिए खाने पीने के लंगर है, कहीं आराम करने के लिए शिविर बनाए गए हैं और कहीं कांवड़ियों का स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। सहारनपुर में तो इन दिनों न सिर्फ कांवड़ रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हो रहा है, बल्कि पुलिस के आला अफसर परिवार संग कांवड़ शिविरों में जाकर कांवड़ यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। उधर मेरठ के जिलाधिकारी वीके सिंह कांवड़ मार्ग पर लगे शिविरों में पहुंचे और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने शिविर में रुके कांवड़ यात्रियों से बातचीत भी की। इसी फीडबैक के आधार पर उन्होंने व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों को दिए। कांवड़ यात्रियों की सेवा के इस पुण्य काम में मंत्री भी पीछे नहीं है। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई। यहां योगी सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल कांवड़ियों के शिविर में पहुंचे और वहां आराम कर रहे कांवड़ियों के पैरों की मालिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हाथों से कांवड़ियों को भोजन भी कराया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना ही भगवान शिव की सेवा के समान है और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है।
15: जिला प्रशासन का, पुलिस का, पुलिस कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, चाहे नगर पालिका के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे अन्य ग्राम सभाओं के हों, उनका ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी जिनके परिवार होने के बाद 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटियां लगातार दे रही है, और कांवड़ सेवा शिविरों का, उन दानदाताओं का जिन्होंने भरपूर दान देकर के सबके भोजन की, रहने की, आवास की व्यवस्था की। लगातार बारिश हो रही है लेकिन वाटर प्रूफ टेंट लगाने का काम किया है। पानीपत से एक शिव प्रतिमा आता है, 1 करोड़ रुपया खर्च करता है, 150 लोगों के लेकर गया। मैं शिव में गया वहाँ छपार के अंदर, 150 सेवादार भोजन के लिए और 150 सेवादार सेवा करने के लिए, और ये एक उदाहरण है, बाकी समय इसी प्रकार से लोग लगे। तो सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुजफ्फरनगर पूरा शिव में है, मुजफ्फरनगर प्रत्येक बालक, चाहे नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, आप देख रहे हैं सब लोग कांवड़ियों की सेवा में पूरे तत्पर हैं।
12: श्रावण मास में चल रही ये कांवड़ यात्रा केवल शारीरिक श्रम या पदयात्रा नहीं है, बल्कि ये अटूट शिव भक्ति, कठोर संयम, आत्मशुद्धि और मानसिक दृढ़ता का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, जिसमें कदम कदम पर शिव का स्मरण और आस्था की असली परीक्षा होती है। बिजनौर से संजीव शर्मा, सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन में शिव भक्ति की एक और अद्भुत तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ धाम से सामने आई। यहां लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गरीबनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी ये खास रिपोर्ट।
16: Yeah.
3: जिसका कोई नहीं उसे महादेव का सहारा है। दुखों से हार कर हर बार मन ने गरीब नाथ को पुकारा है। शिव के इस धाम का नाम इसके महत्व की पहचान है। वैसे तो अवघड़दानी सभी की सुनते हैं, पर सिर्फ यहीं इसी धाम पर उन्हें गरीबों का नाथ कहा जाता है। साल से ये मंदिर बिहार में आस्था का ऐसा केंद्र है जहां सिर झुकाने रोज हजारों शिव भक्त आते हैं।

0: శివ శివ జటాకటాహసంభ్రమం.
1: वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर सावन की रौनक ही कुछ और है। जिस तरह शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के धाम जल चढ़ाने जाते हैं, उसी तरह लाखों कांवड़िए पहलजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार और देवघर की तरह ये यात्रा देश की बड़ी कांवड़ यात्राओं में शुमार है।

0: बाबा गरीबनाथ धाम के प्रति भक्तों की आस्था कैसी है, इसे आंकड़ों से समझिए। पिछले साल सावन में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। अंदाजा है कि इस साल ये संख्या 25 लाख के पार जाएगी।
1: मंदिर में प्रतिदिन कई बार महाश्रृंगार भी होती है, महाश्रृंगार करने वाले पुरोहित हमारे साथ है। कितनी बार प्रतिदिन महाश्रृंगार होती है?
2: तीन बार महाश्रृंगार होता है
1: सालों भर। अच्छा, कितने प्रकार के फूल? काफी फूल और
2: फूल, भांग, फल, जिससे बाबा की जिसकी इच्छा हो उसी से करवा लेते हैं। बाबा अपना श्रृंगार अपने खुद करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, कर लेते हैं।
0: मान्यता है कि जिसने भी मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ के आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे दुख, दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिल गई।
3: मेरी शरीर अस्वस्थ होने लगी, गड़ा दशा में ये हुआ कि अब मेरा बिस्तर पकड़ लेंगे तो भगवान की नगरी में आ गए। और तब से बेल्ट लगा हुआ है, सर सफाई से लेकर के भगवान का पूजा, उसमें सहयोग करना। हम
1: प्रतिदिन आते हैं
3: यहाँ रहे तब, यदि तीर्थाटन में रहे तो नहीं आते हैं। यहाँ तीर्थाटन
1: खराब हुई, इसके बाद आने लगे तो फिर स्वास्थ्य ठीक हो गई।
3: स्वास्थ्य ठीक है, अभी चल रहे हैं।
0: जैसा अद्भुत ये धाम है, उतनी ही अद्भुत है इससे जुड़ी कथा। कहते हैं कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपना मकान बेचने का फैसला किया, लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि मकान की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। ऐसे में जब हताश निराश वो घर लौटे तो वहाँ जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब मुंशी समझ गए कि ये भोलेनाथ की ही कृपा है। भाव विभोर होकर वो गरीबों के नाथ गरीबनाथ कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
4: अपने घर से चिल्लाते हुए, जैसे भाव भी वो लोग चिल्लाते हैं, गरीबों के नाथ गरीबनाथ, तब सलाम के बाबा गरीबनाथ नाम पड़ गया।
0: एक गरीब मुंशी ने भावना में शिव को पुकारा और भोलेनाथ गरीबनाथ हो गए। पर उससे पहले भी यहाँ एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं यहाँ शहर नहीं, घना जंगल था, जिसमें बरगद और पीपल के 7 पेड़ थे। सफाई के दौरान जब उनको काटने की कोशिश हुई तो बट वृक्ष से लाल रंग का द्रव निकला और कुल्हाड़ी रोक दी गई। अगले दिन जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर का ये बरगद उस चमत्कार का प्रमाण बनकर आज भी मौजूद है।
4: आसपास के जितने भी जिले हैं तो वही हैं, आसपास के जितने राज्य भी हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। और अभी जैसी बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: बाबा ने अपने गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी की थी और ये भरोसा, यही विश्वास इस मंदिर की ख्याति का आधार है। लोग सच्चे मन से सिर झुकाते हैं और खाली झोली भर के जाते हैं।
5: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
5: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ।
1: क्या ऐसा मन्नत मांगी थी बाबा से? क्या सरदार
5: बाबा से मन्नत तो मन ही मन माना जाता है, तो पब्लिकली कहने का चीज।
1: पूरा हो गया?
5: पूरा नहीं हुआ तो आती कैसे हूँ, मन में शांति मिलती है।
1: मंदिर में आने से शांति,
5: बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने 3300 स्वयं सेवकों की तैनाती की है, जबकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार की वजह से बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार की पहचान है, जिसे अब भव्य और दिव्य रूप दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के कायाकल्प को मंजूरी दे दी है। निर्माण और सौंदर्यकरण में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। मंदिर के शिखर और प्रवेश द्वार के नव निर्माण के साथ 2 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी जल्द ही देवघर और बिहार कहे जाने वाले इस मंदिर की शोभा और बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
14: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।

0: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी ना।
2: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: 20 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा के नाम नई उपलब्धि, शानदार अंदाज में जीता अपना पहला सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स खिताब। एक राउंड बाकी रहते हैं अपने नाम की चैंपियनशिप। शिव भक्तों की आस्था के अनोखे रंग, यूपी के मुजफ्फरनगर में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की वेशभूषा में दिखी श्रद्धालुओं की एक टोली, देश के अमर सपूतों को अलग अंदाज में कर रहे नमन। बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, भूमि पेडनेकर ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। उत्तराखंड के युवा का कमाल, अल्मोड़ा के रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, रवि की फ्लाइंग कार ने भरी पहली सफल उड़ान। बारहवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, राष्ट्रपति ने विजेताओं को किया सम्मानित, हथकरघा बुनाई परंपराओं के सम्मान में 4 स्मारक डाक टिकट किए जारी।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस नगर की जहां ज्योति स्वरूप में विराजमान है स्वयं वे, जिनसे काल भी भयभीत रहता है। धरती का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग, एकमात्र ज्योतिर्लिंग जहां महादेव भस्म से स्नान करते हैं, ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसकी कहानी चारों युगों से जुड़ी है, श्री राम से जुड़ी है, श्री कृष्ण से जुड़ी है। अनंत काल से ये मंदिर करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विराजे हैं भगवान महाकालेश्वर और आज उन्हीं महाकाल की नगरी में पहुंचा है जीएनटी। आज दोपहर से जीएनटी पर हम आपको लगातार महाकाल की नगरी से खास पेशकश दिखा रहे हैं। उज्जैन की पवित्र नगरी में जीएनटी के मंच पर धर्मगुरु, विचारक और कलाकार जुटे हैं। शिप्रा के किनारे शिव संस्कृति का मंथन चल रहा है। महादेव के नाम, रूप, आयाम कोई गाकर सुना रहा है, कोई चित्रों से बता रहा है। महाकाल की नगरी में आस्था का सावन बरस रहा है। इस सावन को फुहारों में भीगने आपको भी हम लिए चलेंगे उज्जैन महाकाल के प्रांगण में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कहानी उन महाकाल की जिन्होंने अपने प्राकट्य के लिए शिप्रा के आंगन में बसे उज्जैन को चुना। आखिर उज्जैन में कैसे प्रकट हुए महाकाल?

है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये देवादिदेव का धाम है, ये महाकाल का गांव है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसते हैं स्वयं काल के स्वामी देवादिदेव महाकालेश्वर। महाकाल को द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है।

0: शास्त्रों में कहा गया है, आकाशे तारके लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके च महाकालम, त्रयलिंगम नमोस्तुते। यानी सृष्टि में तीन लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी महाकाल हैं। मृत्युलोक यानी इस संसार के स्वामी महाकाल ही हैं।
1: ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस पृथ्वी के प्रथम लिंग माने गए हैं, जो मृत्युलोक के राजा कहलाते हैं। इसलिए भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महिमा है वो कई कई गुना सभी ज्योतिर्लिंगों से अधिक है। दक्षिण मुखी होने के कारण दक्षिण की तरफ किसी भी देवता को मुख नहीं होता है, क्योंकि वो काल की दिशा मानी जाती है। हमारे भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मुखारविंद है वो दक्षिण की ओर है, इसलिए दक्षिण जो दिशा है वो जहाँ काल का वास है उस पर भगवान महाकाल का नियंत्रण है, इसलिए इस मंदिर का एक बहुत बड़ा महत्व है।
0: माना जाता है कि एक समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में एक वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण के अवंती खंड और शिव महापुराण में भी महाकाल वन का उल्लेख मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। महाकालेश्वर मंदिर का अस्तित्व सतयुग के समय से है। मान्यता है कि त्रेता युग में श्री राम ने यहाँ पूजा की थी। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी बताया जाता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। यहीं श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई। श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। इस तरह बाबा महाकाल की नगरी हर युग में नारायण से जुड़ी रही।
1: उसको दुष्यंत उसका नाम था। उसका भगवान ने आत्म स्वरूप यानी भगवान शिव की आत्मा से निकली हुई ज्योत, उसमें से भगवान शिव प्रकट होकर उसका संहार किया। संहार करने के बाद भगवान की पुनः ब्राह्मणों द्वारा, ऋषि द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा प्रार्थना की गई, तो वो जो ज्योति थी वो ज्योति स्वरूप में पुनः इसी पृथ्वी पे, जो जहाँ आज हम शिवलिंग देख रहे हैं, यहीं वो ज्योति समाई इस पृथ्वी में। जब वो ज्योति समाई गई तो उसका जो ये स्टोन बना है, उस ज्योत का ये स्टोन है, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है।
0: अवंती में महाकाल की उत्पत्ति की कथा दूषण नाम के राक्षस से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार अवंती यानी उज्जैन नगरी में दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब उसने ऋषियों और भक्तों पर अत्याचार किए तब भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रौद्र रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार किया। चूंकि दूषण को लोग काल कहते थे, इसलिए उसके वध के बाद शिवजी को महाकाल कहा जाने लगा, यानी कालों के काल। दूषण वध के बाद भक्तों के अनुरोध पर भगवान शिव ने महाकाल के नाम से ही उसी स्थान पर सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना भी स्वीकार किया। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत का एकमात्र ऐसा दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जिसकी तांत्रिक और पौराणिक महत्ता अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाली मानी गई है। महाकालेश्वर के नाम में महा का अर्थ महान और काल का अर्थ समय या मृत्यु है। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में रहता है उसके जीवन से मृत्यु और समय का भय समाप्त हो जाता है। महाकाल के रौद्र रूप से ये पता चलता है कि समय के चक्र में सब कुछ नश्वर है। शिवजी का ये रूप उनके रौद्र शक्तिशाली और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है।
2: महाकाल
0: आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की

शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे शमी पीपल पलाश बड़ अमलतास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जाप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है। हर रोज सूर्योदय से 90 मिनट पहले इस पवित्र भस्म से महाकाल का भस्म आरती अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान जीवन मृत्यु चक्र का प्रतीक माना जाता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्धि शक्तिपीठ भी स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के दिव्य और अनूठे संगम के कारण उज्जैन की धरती पुण्य भूमि कहलाती है। इन दिनों महाकाल के आंगन में सावन की अद्भुत छटा बिखरी हुई है। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद हजारों भक्तों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी को राजसी अंदाज में शिप्रा नदी के घाट तक ले जाया जाता है।

वहाँ से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है, जिसमें शान से सवार होकर अवंती के राजा अधिराज महाकाल अपने नगर का भ्रमण करने निकलते हैं।

Bureau Report, Good News Today. देवाधिदेव महादेव के जाने कितने नाम और कितने रूप हैं। उनके हर रूप के साथ उनका कोई ना कोई गुण जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ रूप बेहद उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमय हैं, तो कुछ प्रिय और आकर्षक। सीधे साधे भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सबसे अनछुए भी हैं। पर लोक जीवन में महादेव भोले भाले मस्त मौला देव के रूप में रचे बसे हैं। उनके भक्त भी उन्हीं की तरह मतवाले हैं। उज्जैन में आज ऐसे ही मतवालों का मंच सजा। उज्जैन में जेएनटी की धर्म संसद में आज धर्म गुरुओं के साथ ही कई कलाकारों ने भक्ति रस बिखेरा। इन्हीं में शुमार थी मुस्कुरा के टोली। मुस्कुरा के हास्य कलाकारों का एक ग्रुप है जो कि मध्य प्रदेश में बीते चार दशकों से हास्य और भक्ति रस में सराबोर नृत्य नाटिका का मंचन करते आ रहे हैं। महाकाल की नगरी में जब जेएनटी के मंच पर ये टोली उतरी तो सबको अपनी मस्ती के रंग में रंग दिया। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे उज्जैन से हमारी ये खास पेशकश।

0: देखिए परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के, खिलखिला के, क्या संदेश है इसके पीछे, आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ मैं

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए,
0: हाँ,
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।

0: महाकाल के दरबार में आमतौर पर सोमवार के दिन सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन का तो यूं समझिए कि हर दिन ही सोमवार है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन को रोज पहुंच रहे हैं। पिछले साल सावन के महीने में दर्शन का रिकॉर्ड बना था। तकरीबन 125 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन में शीश झुकाया था। माना जा रहा है कि इस साल सावन के महीने में दर्शन का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। गुड न्यूज टुडे की टीम भी महाकाल के धाम पहुंची और भगवान शिव में श्रद्धालुओं की आस्था को करीब से महसूस किया। चलिए आपको दिखाते हैं महाकाल के धाम में कैसा है भक्तों का उत्साह।
1: देखिए, सावन के रंग अगर आपको देखने हैं तो आपको तमाम शिवालयों में जाना चाहिए। और गुड न्यूज स्टूडियो और हम कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस वक्त महाकाल की नगरी में मौजूद हैं, जहां भक्त हमें नजर आ रहे। दर्शन हो गए?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: कैसे हुए दर्शन? समय कितना लगा?
2: एक्चुअली हम लोग आरती के लिए आए थे, तो हम लोगों ने आरती पीछे से अटेंड करी और आरती बहुत सुपर्ब गई है। तो अभी हम लोगों को निकलते निकलते 1 घंटा हो गया है बाहर, रश बहुत चल रहा है
1: क्योंकि सावन का महीना। कहाँ से आई हैं आप?
2: मैं इंदौर से ही हूँ। हम लोग की पूरी टीम आई है, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है। हम लोग मिलेनियम स्कूल से हैं यहाँ पे एंड अभी सावन चल रहा है तो उसके कारण दर्शन करने आए।
1: सावन की वजह से देखिए भीड़ आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे, थैंक यू, जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। यहाँ पर भी एक लेना। आप लोग कहाँ से आए हैं?
3: गोरखपुर से।
1: गोरखपुर से यहाँ दर्शन करने के लिए हुए दर्शन या अभी नहीं?
3: अभी नहीं, तो लाइन में लगे।
1: कितनी लंबी लाइन है, कब से शुरू हुए थे आप?
3: अभी हम आधा घंटा हो गया।
1: आधा घंटा? आप लोग यहाँ कब आए थे उज्जैन महाकाल?
3: उज्जैन में हम लोग आए थे 5 बजे के लगभग।
1: 5 बजे और तब से आप लाइन में लगे?
3: लगे हुए हैं, वहाँ भी दर्शन किए ना,
1: तो आज दर्शन हो जाएंगे?
3: हो जाएंगे, हो जाएंगे,
1: दर्शन हो जाएंगे। देखिए उसी दर्शन करने। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं?
4: हम पुणे से आए हैं।
1: अच्छा,
4: हम कल से यहाँ आके।
1: मुझे लग रहा है कि आपकी पूरी टोली आई है ना? सारी मैडम्स और सर्स दोनों सब लोग साथ हो जाएं।
5: श्रद्धालु
1: तो पहले, सबसे पहले जय महाकाल।
6: जय महाकाल।
1: दर्शन आप लोगों ने कर लिए हैं?
7: कर लिए।
1: अच्छा, मुझे एक एक करके बताते जाइए कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सामने देखिए।
8: अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। मन में जो भाव लेकर आए थे वो यहाँ पर पूरे हुए?
8: आप पूरे हुए।
1: मैं ये जानना चाहूंगी, आप पुणे से सीधा यहाँ पर आए महाकाल दर्शन करने के लिए?
4: हम लोग पहले इंदौर रुके, इंदौर से आज सुबह निकले, काल भैरव गए सुबह, काल भैरव के संदीपनी आश्रम गए, संदीपनी आश्रम करने के बाद हम लोग महाकाल।
1: मतलब पूरी धार्मिक यात्रा है। मैडम बताइए कैसा अनुभव है आपका?
8: बहुत अच्छा लगा,
1: बहुत अच्छा लगा। तो कितने दिन पहले शुरुआत की थी अपनी यात्रा की?
8: कल ही,
1: कल ही शुरुआत की है। तो महाकाल दर्शन हो गए, इसके बाद कहाँ जाएंगे?
8: अभी इंदौर ही जा रहे हैं हम, ओमकारेश्वर।
1: फिर
9: ओमकारेश्वर जाएंगे।
1: तो आप लोग जब यहाँ आते हैं,
10: कोऑर्डिनेटर हैं?
1: अच्छा, कोऑर्डिनेटर सर भी हमारे साथ हैं। क्या प्लान बनाया फिर आपने सबको सावन में शिव के दर्शन कराए?
11: ये हमारा सिद्धि विनायक ग्रुप है, पुणे से फ्रेंड सर्कल है और 7 फैमिली है। तो बावदन में हम लोग रहते हैं और इस साल यहाँ आने का प्लान किया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग की है और हमारे सब फ्रेंड्स को महाकाल का दर्शन करवाना था, तो हम लोगों ने 3 दिन की 4 दिन की यात्रा की है।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कॉरिडोर आपने देखा कैसा लगा? कॉरिडोर
12: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है।
1: इधर आके बोलो, सवाल इधर जो हो रहा है जवाब उधर से आ रहा है।
12: बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर।
1: कॉरिडोर की सबसे अच्छी चीज क्या है?
12: कॉरिडोर का ये जो बनावट है, ये खूबसूरती जो है ना, वाकई में दिल को छूने वाला है। मैम
1: आप बताइए कैसा लगा कॉरिडोर?
13: बहुत अच्छा,
1: बहुत अच्छा लगा।
13: आप देख रहे हैं, अभी आए इधर,
1: अभी देख रहे हैं आप। बताइए मैडम।
14: बहुत अच्छा, बहुत सुंदर,
1: बहुत अच्छा लगा।
8: सोचा ही नहीं था कि महाकाल के दर्शन इतने जल्दी होंगे, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। तो
1: आपका अनुभव कैसा है?
15: बहुत बढ़िया रहा, हम यहाँ पहली बार आए और यहाँ के बहुत अच्छा लगा।
1: दर्शन हो गए, आइए आइए देखिए। हाँ,
11: एक बात,
1: दर्शन हो गए, मैं अभी सुनती हूँ अभी ये लोग चले जाएंगे नहीं तो। कहाँ से आए आप?
16: हम धामनुत से आए हैं।
1: अच्छा, दर्शन हो गए
16: जी।
1: हाँ, कैसे रहे दर्शन, कैसा अनुभव रहा आपका?
16: बहुत अच्छा रहा जी। मैं वैसे ही हाँ उज्जैन से ही हूँ मैं।
1: अच्छा,
16: मैं छोटी थी जब फिर हम धामनुत चले गए।
1: अच्छा,
16: हाँ जी।

0: आपको यहाँ पर भक्ति के रंग, भव्य रंग नजर आ जाएंगे। और ये वो जगह है जहाँ पर भक्तों के कदम रुकते नहीं है, दिन हो रात हो, 2400 घंटे, खासतौर पर अगर हम सावन की बात करें, 2400 घंटे भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। कैमरापर्सन योगेंद्र के साथ मैं नवजोत रंधावा उज्जैन महाकाल से।
1: इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्रोएशिया में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी से राहत पाने के एक उपाय की यहाँ खूब चर्चा हो रही है। ये राहत है घुड़सवारी की, लेकिन खास बात घुड़सवारी में नहीं बल्कि घुड़सवारी की जगह में है। क्या है राहत का ये अनोखा उपाय और क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: घुड़सवारी का ये अनोखा अंदाज रोमांच के साथ साथ राहत का एहसास भी दिला रहा है। समंदर किनारे घुड़सवारी तो आम बात है, लेकिन ये घोड़ा लोगों को समंदर के पानी के अंदर घुड़सवारी का लाजवाब अनुभव दे रहा है। तस्वीरें चिलचिलाती गर्मी से परेशान क्रोएशिया की है। यूरोप के पूरे बाल्कन क्षेत्र में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है, लेकिन क्रोएशिया के ब्राग द्वीप पर लोगों ने गर्मी को मात देने की अनोखी तरकीब निकाली है। यहाँ पर्यटक द्वीप के आसपास समंदर के पानी में घुड़सवारी करके गर्मी से राहत पा रहे हैं। समंदर की कुदरती खूबसूरती के बीच ये घुड़सवारी लोगों को यादगार अनुभव दे रही है। पर्यटकों को इस अनोखे रोमांच का एहसास कराने का ये आइडिया हॉर्स रेंज के मालिक स्टीवन राज मिलिक का है। अपने बचपन के कुछ अनुभवों के आधार पर उन्होंने समंदर में घुड़सवारी का ये फॉर्मूला ढूंढ निकाला।

0: postavilo se da je ljudima baš zanimljivo.
1: यूरोप के ज्यादातर इलाकों में इस साल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई का औसत अधिकतम तापमान औसत से करीब 4.5 डिग्री से ज्यादा रहा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसी बेतहाशा गर्मी के बीच समंदर के पानी में ये घुड़सवारी किसी खुशनुमा सौगात से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना